श्रोताओं, सुप्रभात। आप सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के श्रावण माह की 24वीं तिथि, तदनुसार 15 अगस्त सन 2026 ईस्वी, प्रातः के 5:48 हो चुके हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है हमारा प्रातःकालीन दैनिक कार्यक्रम चिंतन।
1: विद्या विनय देती है, विनम्रता का वरेण्य गुण प्रदान करती है। इस श्लोक को हम बचपन से ही पढ़ते सुनते आए हैं, लेकिन विद्या है क्या? सामान्यतः हम विद्या और ज्ञान को समानार्थी मानते हैं। जिसने अनेक ग्रंथों को पढ़ा है, जिसे अनेकानेक उद्धरण याद हैं, जो किसी विषय पर लंबे समय तक और धारा प्रवाह बोल सकता है, जिसके पास विश्वविद्यालय की ऊंची ऊंची डिग्रियां हैं, जो शब्दों की माला बनाकर पुस्तकीय ज्ञान के रूप में हमारे सामने परोस देता है, उसे हम ज्ञानी या विद्वान मानते हैं। क्या ऐसे ज्ञान को विद्या की श्रेणी में रखा जा सकता है? ज्ञान और विद्या के अंतर

0: को पुराणों में वर्णित एक कथा द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। महर्षि नारद का नाम सुना होगा आपने। महर्षि नारद परम ज्ञानी थे। ज्ञान का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जिसमें नारद को महारत हासिल नहीं थी। उनके ज्ञान की कोई थाह नहीं थी। एक दिन वे जंगल में बेचैन हो घूम रहे थे। कभी शिलाखंड पर बैठ जाते, कभी सूखे पत्रों को हाथ में उठाकर बुदबुदाने लगते, कभी वृक्ष के तने से सटकर खड़े हो जाते। उनका मन बहुत अशांत था। कोई ऐसा प्रश्न था जो उन्हें मथ रहा था, अंदर ही अंदर कुरेद रहा था। उसी समय ब्रह्मर्षि का सर्वोच्च पद प्राप्त कर चुके चारों यमज भाई सनातन एवं सनत कुमार आए और उधेड़बुन की अवस्था में महर्षि नारद को देखकर बोले, हे महर्षि, आप तो सर्वज्ञान संपन्न हैं। कुछ ऐसा आपसे छूटा नहीं जो आपने जाना नहीं, फिर भी आप इतने अशांत क्यों हैं? नारद ने उत्तर दिया, ब्रह्मर्षि, यही प्रश्न तो मैं अपने आप से पूछ रहा हूँ। मैंने सब ज्ञान प्राप्त कर लिया है, सभी गुरुकुलों में अध्ययन कर लिया है, लेकिन फिर भी शांति नहीं मिल रही। आखिर क्यों? क्या आप इसका कारण बता सकेंगे? उन चारों जुड़वा भाइयों में जो सबसे छोटे थे सनत कुमार, वे हंसे और बोले, महर्षि, इतना ज्ञान प्राप्त करके भी आप अपने अंतर में इस प्रश्न का उत्तर नहीं ढूंढ सके? बहुत सहज है ये तो। महर्षि, आपने शब्द पढ़ा है, उसका अर्थ नहीं पढ़ा। चकित से नारद ब्रह्मर्षि सनत कुमार की ओर देखते रह गए, फिर बोले, यही तो है ब्रह्मर्षि मेरी बेचैनी का कारण, पर मैं इसे कैसे प्राप्त करूं? सनत कुमार बोले, इस प्रश्न का उत्तर तो बहुत सरल है। संसार में जाओ और जो शब्द रूपी ज्ञान तुमने प्राप्त किया है उसके अर्थ वहां ढूंढो, तुम्हारी बेचैनी स्वयं ही दूर हो जाएगी। ये सुनकर नारद के जैसे ज्ञान का पाठ खुल गया। विवेक ने बाहर झांका और वो उत्फुल्ल हो बोले, मैं समझ गया ब्रह्मर्षि, अनुभव के बिना ज्ञान प्राप्त करने का कोई अर्थ नहीं है। मैं अभी शब्दों के अर्थ की खोज में संसार में जाता हूं। इस प्रतीक कथा का सीधा साधा अर्थ यही है कि ज्ञान तभी विद्या का रूप लेता है जब वह अनुभव पर आधारित विवेक के सही अर्थ जान लेता है। ज्ञान में हमारी पकड़ शब्द और शब्द तक ही होती है, लेकिन शब्द तभी सार्थक होता है जब उसका अर्थ हम तक पहुंचे। ज्ञान द्वारा अर्जित शब्द के अर्थ को अनुभव और विवेक की आंच में पकाकर जब जीवन में उतारा जाता है, तब यह विद्या का स्वरूप ग्रहण करता है। अतः ज्ञान को विद्या की सीढ़ी का एक पायदान माना जा सकता है। ज्ञान से विद्या का क्षेत्र विस्तृत है। ज्ञान जानकारी का शिशु है, विद्या अनुभव की आंच का शिशु है, विवेक की रोशनी का शिशु है। अतः विद्या जीवन को संपूर्ण बनाती है और जो संपूर्ण हो जाता है वो प्रेम रस में डूब कर विनयी हो जाता है। जो सब कुछ जान लेता है वो प्रेम के ढाई अक्षर में लिप्त हो जाता है और उसके पास अहंकार या दर्प के लिए जगह ही नहीं होती। छलकना तो अधजल गगरी की नियति है। जो सचमुच अर्थ को जान लेता है वो मुक्त हो जाता है आसक्ति के परे, और आसक्ति छूटने पर विनय के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता।
1: चिंतन। अभी आपने सुना आलेख एवं वाचन स्वर कुसुमाकर दुबे का था। अब प्रस्तुत है किसान श्रोताओं को संबोधित हमारा कार्यक्रम कृषि चर्चा।
2: नमस्कार, आज कृषि चर्चा संग हम छी देवनारायण यादव। किसान श्रोता लोकन, आज कृषि चर्चा में चर्चा कर रहल छी नारियल के आधुनिक खेती पर। किसान श्रोता लोकन, ओना देखल जाए तो जाय दर से नारियल के मांग हाट बाजार में भ रहल अछि, ओहि दर से एकर पूर्ति नहीं भ रहल अछि। सदखन नारियल के मूल्य आसमाने छूने रहत अछि, तें नारियल के आधुनिक खेती क मांग आ पूर्ति क संतुलन कैल जा सकत अछि। ओनाहियो देखे रहल छी जे लगले लगले पावन त्यौहार सेहो आबि रहल अछि, तऽ आउ नारियल के खेती करबा सँ पहिने नारियल के वातावरण, माटि आ जलवायु पर प्रकाश डाली। किसान श्रोता लोकन, नारियल एकटा नगदी फसिल अछि, एकरा कल्प वृक्ष के नाम सँ सेहो जानल जात अछि।

0: एकर खेती समुद्रीय तटीय राज्य में विशेष रूप से होते हैं। ओना बिहार राज्य के अनेको जिला सबटा में एकर खेती के संभावना जताओल गेल अछि। नारियल पौध लगेबाक गप करी तो एकरा तालाब के किनारा नहर सड़क उच्चगर सेतु आ गृह वाटिका में आसानी से लगाओल जा सकत अछि। माटि आ जलवायु के गप करी ता नारियल पौध अनेको तरहक माटि आ जलवायु में कैल जा सकत अछि। नीक फलन लेल गर्म आ नम जलवायु के उपयुक्त मानल गेल अछि। खेती लेल हल्लुक आ नीक जल निकासी वाला बलुआही दोमट माटि जेकर पीएच 5 से 8 के सर्वोत्तम मानल गेल अछि। किसान श्रोता लोकनि, नारियल पौध के लगेबा से पहिने हमरा लोकनि के उन्नत प्रभेद के सेहो चुनाव क लेबाक चाही। एकर उन्नत प्रभेद अछि बेस्ट कॉस्ट टाल, ईस्ट कॉस्ट टाल, डायमंड, जायंट, गंगा पानी। बोनी प्रभेद में लक्षद्वीप, गंगा, बोंद्रम, मलायम, येल्लो इत्यादि अछि। ओना ही संकर किस्म में चंद्र शंकर, केरा शंकर, आनंद गंगा, गोदावरी गंगा इत्यादि अछि। नारियल पौध के लगेबाक समय थिक जून के अंतिम सप्ताह से सितंबर के अंत धरि।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब हिंदी में समाचार होंगे हमारे दिल्ली केंद्र से, कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ ही वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर समारोह स्थल पर पुष्प वर्षा करेंगे। ध्वजारोहण के साथ 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। इसके बाद प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस वर्ष लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह देखने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 5,000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की है। उन्होंने कहा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया।
3: हमारे देश में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। गांव की छोटी छोटी दुकानों में तथा रेहड़ी पटरी पर भी डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं। विश्व में आधे से अधिक रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में हो रहे हैं। हमारे देशवासियों और सरकार ने मिलकर डिजिटल क्रांति का उदाहरण विश्व समुदाय के सामने प्रस्तुत किया है।
2: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने भावी पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान किया।
3: प्राकृतिक संपदाओं पर हमारी भावी पीढ़ियों का भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे किसी भी कार्य से आने वाली पीढ़ियों द्वारा इस अधिकार के प्रयोग में तनिक

0: भी कमी ना हो। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम उनको और अधिक समृद्ध प्राकृतिक संपदाएं प्रदान करें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों की स्वीकृति दी। इन पुरस्कारों में 9 कीर्ति चक्र, 19 शौर्य चक्र, 36 सेना मेडल, 3 नौसेना मेडल और 5 वायुसेना मेडल शामिल हैं। अमेरिका के सीनेटरों और नेताओं ने भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कहा कि दोनों देशों की भागीदारी मजबूत है और भारत की उपलब्धियां तथा भारत के लोग विश्व को प्रेरित करते रहते हैं। न्यूयॉर्क से लेकर सिएटल तक अमेरिका के राज्यों के गवर्नर और सीनेटरों ने कहा है कि उनके यहां 15 अगस्त का दिन भारत दिवस के रूप में मनाया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने फिर कहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हो रहे अत्याचार और सीमा पार आतंकवाद के लिए इसका इस्तेमाल किए जाने पर चिंता व्यक्त करनी चाहिए। एक प्रश्न के उत्तर में श्री जायसवाल ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में भारत ने अफगानिस्तान के साथ कई बैठकें की हैं। अफगानिस्तान के कई मंत्री भारत के दौरे पर आए हैं, जिनसे विकास, सहयोग, व्यापार और संपर्क जैसे क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत हुई है। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित परिवारों को मुआवजा या पुनर्वास न मिलने के आरोप गलत और भ्रामक हैं। मंत्रालय ने कहा है कि अधिकांश पात्र परिवारों को पूरा मुआवजा और पुनर्वास लाभ मिल चुका है और कुछ मामलों में केवल प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं शेष हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना उद्योग की अपेक्षाओं और नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के कौशल के बीच की दूरी कम करने में मदद के लिए तैयार की गई है। 18 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के लोग प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के पात्र हैं और उन्हें इंटर्नशिप करने पर प्रतिमाह न्यूनतम 9,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलती है। दिल्ली की विशेष फास्ट ट्रैक अदालत ने नीट अंडर ग्रेजुएट परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को आगे की जांच करने की अनुमति दे दी है। ब्यूरो ने इस मामले में 13 आरोपियों के अलावा अन्य साजिशकर्ताओं की जांच जारी रखने की अनुमति की मांग की थी, जिनके विरुद्ध पहले ही आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर, साथ ही न्यूज ऑन AIR ऐप पर। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा।
3: स्वास्थ्य चर्चा के इस अंक में हम हाजिर हैं डॉक्टर रमन कुमार वर्मा जी के साथ, जो प्रख्यात नेत्र रोग चिकित्सक हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि अगर किसी को मोतियाबिंद हो जाए तो उसका उपचार वो कैसे करे। डॉक्टर साहब,
4: देखा जाए मोतियाबिंद का कोई मेडिकल ट्रीटमेंट दवा से संभव नहीं हो पाया है। हालांकि दावे किए जाते हैं, लेकिन उसका कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। मोतियाबिंद जब मरीज को होने लगे या हो गया है और मरीज को अपना काम करने में कठिनाई हो और चश्मे से आँखों की रोशनी दृष्टि उतनी न बढ़े जिससे कि वो देख पाए, तो उसे नेत्र विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए और ऐसी स्थिति में ऑपरेशन ही उपचार रह जाता है, चाहे मोतियाबिंद कच्चा हो या पका हो। ये पुराना कंसेप्ट है कि जब मोतियाबिंद पूरी तरह पक जाए तभी उसका ऑपरेशन कराना चाहिए।
3: यानी कि चश्मा आपके काम लायक नहीं रह गया, कितना भी पावर बढ़ा लो आपकी दृष्टि अगर नहीं आ रही है, आप चीज़ों को सही ढंग से नहीं देख रहे हो, तो आप तय मानो कि आपका ऑपरेशन कराना ही एकमात्र विकल्प आपके पास बचता है मोतियाबिंद का।
4: जी हाँ, पकने तक इंतजार नहीं करना चाहिए और अब तो यह ऑपरेशन बहुत ही सुरक्षित हो गया है।
3: क्या इसमें मौसम का भी कुछ असर होता है? कुछ लोग कहते हैं जाड़े में ऑपरेशन कराना चाहिए या गर्मी में नहीं कराना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या?
4: नहीं, वैसी बात नहीं है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन 12 महीने हो सकता है, लेकिन हाँ, चूंकि मरीजों को हिदायत दी जाती है, सभी मरीजों को, मोतियाबिंद के मरीजों को, कि ऑपरेशन के बाद 10-15 दिन सर से न नहाएं। इसलिए कुछ मरीज कठिनाई अनुभव करते हैं और उनकी मंशा होती है कि जाड़े में ही ऑपरेशन कराएं, लेकिन ये कोई मोतियाबिंद के ऑपरेशन को टालने का कारण नहीं है कि सिर्फ जाड़े में ही इसे इसका ऑपरेशन कराया जा सके।
3: आजकल लेंस वगैरह प्रत्यारोपित किया जाता है, उससे क्या आंखों को नई दृष्टि मिल जाती है?
4: हाँ बिल्कुल, मोतियाबिंद के ऑपरेशन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है विगत 2-3 दशकों से, और अब लेंस प्रत्यारोपण के साथ मोतिया

0: बिंद ऑपरेशन होता है और इसके साथ ही एक नए विजुअल वर्ल्ड की शुरुआत हो जाती है मरीज के लिए। पहले जो ऑपरेशन होता था उसमें मरीज को मोटा चश्मा लगाना पड़ता था, बाएं दाएं देखने के लिए उसे सर घुमाना पड़ता था, हर चीज़ें बड़ी नज़र आती थी। लेकिन अब जो ऑपरेशन हो रहा है लेंस प्रत्यारोपण के साथ, उसमें ऐसी बात नहीं रह गई है। लेंस प्रत्यारोपण में हमारे देश में, हमारे राज्य में लगभग सभी जिला और अनुमंडल स्तर पर विशेषज्ञों द्वारा यह ऑपरेशन बहुत ही कुशलता से और सफलता के साथ हो रहा है। और उसमें भी एक नई पद्धति आ गई है जिसके बारे में लोगों को जानकारी होनी चाहिए, वो है फेको इमल्सिफिकेशन पद्धति। ये नवीनतम पद्धति है लेंस प्रत्यारोपण का।
1: इसमें क्या होता है?
0: इसमें मोतियाबिंद ऑपरेशन में चीरा जो लगाते हैं इंसिजन, वो बहुत छोटा लगाने की जरूरत होती है, 2 या 3 मिलीमीटर, और ऑपरेशन के बाद टांके की जरूरत नहीं पड़ती। एक बहुत ही पतला 1 मिलीमीटर का टिटेनियम नीडल होता है जिसमें प्रति सेकंड 40,000 कंपन पैदा होते हैं। इसके द्वारा ही यह ऑपरेशन संपन्न किया जाता है। अंदर से कॉर्टिकल मैटर न्यूक्लियस निकाल देने के बाद फोल्डेबल लेंस डाल देते हैं। मरीज को 2 घंटे के बाद घर भेज दिया जाता है। मरीज को कोई कठिनाई नहीं होती है। इसमें समय भी पहले के मुकाबले कम लगता है और रोगी का पहला रिहैबिलिटेशन बहुत जल्दी हो जाता है।
1: और कुछ क्या ऑपरेशन के पहले या बाद में कोई सावधानी बरतनी पड़ती है क्या?
0: जी हाँ, ऑपरेशन के बाद हम लोग आमतौर पे रोगियों को हिदायत देते हैं कि उन्हें काला चश्मा पहनना है और जो दवाई विशेषज्ञ उन्हें प्रिस्क्राइब करते हैं उन्हें आँख में अवश्य डालना चाहिए। आँखों को कभी नहीं मलना चाहिए। सावधानी बरतनी चाहिए कि आँखों में चोट न लगे। ऑपरेशन किए गए आँख की तरफ करवट लेकर 2 या 3 सप्ताह तक सोने से हम लोग मना करते हैं और भारी वजन उठाने से भी हम लोग मरीज को रोकते हैं।
1: तो अभी आपने डॉक्टर आर के वर्मा से सुना, मोतियाबिंद का ऑपरेशन अगर आप कराते हैं तो क्या क्या सावधानी रखें, और इस ऑपरेशन की जो नवीनतम तकनीक है वो भी हमारे पास अब उपलब्ध है। सबसे अच्छी बात यह है कि अनुमंडल स्तर तक इसके विशेषज्ञ जो कृत्रिम लेंस है उसका प्रत्यारोपण करते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आपने सुना स्वास्थ्य चर्चा, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। वंदना में सर्वप्रथम सुनिए ये देश वंदना।

इस देश वंदना के बाद आइए अब सुनवाते हैं आपको ये गणेश वंदना विपिन सचदेवा के स्वर में। गीत और संगीत राजेश नाइक के हैं।

0: प्रजापति राम चंद्र की जय।
1: ये है कार्यक्रम वंदना की अंतिम भेंट कीर्तिमान के स्वर में।

वन में भटकते हुए प्रताप भानु को एक आश्रम दिखाई दिया जिसका निवासी एक ऐसा राजा था जिसे युद्ध में प्रताप भानु ने कभी परास्त किया था और वो अब मुनि के कपटी वेश में अज्ञातवास कर रहा था। उसने प्रताप भानु की खूब आवभगत की।

रामचरितमानस गान अभी आपने सुना, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

प्रातः 7 बजे से आप सुनेंगे लाल किले पर आयोजित ध्वजारोहण समारोह और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को संबोधन का सीधा प्रसारण।

9:50 पर आनंद ले सकेंगे आप कुछ फिल्मी गीतों का और 10:30 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत। प्रातः 11 बजे आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत। 11:30 से लेकर 12:30 पर आनंद ले सकेंगे आप फिल्मी गीतों का। महिला श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम नारी संसार आप सुनेंगे 12:30 पर। आपके पत्रों पर आधारित

फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा आपकी पसंद दोपहर 1:15 पर। दोपहर 2 बजे आप सुनते हैं प्रादेशिक समाचार, 2:05 पर इलाकाई खबरें और 2:10 पर आप सुनते हैं रोजगार सूचना। दोपहर समाचार का प्रसारण समय होता है 2:15 पर। 2:30 पर पुनः आनंद ले सकेंगे आप कुछ फिल्मी गीतों का। दोपहर 3 बजे प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत कुछ मराठी गीत आप सुनेंगे हमारे केंद्र से। ये थे हमारे इस सभा के शेष मुख्य कार्यक्रम। अब एक नजर डालते हैं दूसरी सभा के मुख्य कार्यक्रमों पर। दूसरी सभा की शुरुआत शाम 5 बजे युवा श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम युवाणी के साथ की जाती है। आज आप इसमें सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी।

शाम 5:30 पर आप सुनेंगे 80वें स्वतंत्रता दिवस पर दरभंगा और उसके आसपास के क्षेत्रों में आयोजित समारोहों पर आधारित रेडियो रिपोर्ट।

0: बिहार प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी का स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश की जनता के नाम संदेश आप सुनेंगे आज शाम 7 बजे। अब आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया थोड़ी
1: यम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका निधि झा। अथ वार्ता। अशीतितम स्वतंत्रता पर्वणः पूर्व संध्यायाम् अमृतेन संभाषणेन राष्ट्रमभिसंबोधयन्ति राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः प्राह यत् जागतिक अशान्तेः युद्ध विभीषिकायाश्च तमसि अपि भारतीया अर्थव्यवस्था उज्ज्वल नक्षत्रवत् तीव्रतमगत्या समेधते। राष्ट्रपतिना प्रोदीरितं यत् भारतस्य आर्थिक संवृद्धिः वैश्विक संवृद्धिमतिक्रम्य द्विगुणाधिकं यावत् वर्तते।
2: Even in such trying circumstances, our economy is moving ahead as the fastest growing major economy in the world. According to economic projections, the growth rate of the Indian economy is expected to be more than twice the average of global growth rate. Atmanirbhar Bharat Abhiyan has further strengthened the foundation of our economic progress and national security.
1: राष्ट्रपतिना प्रतिपादितं यत् राष्ट्रस्य नक्सल उन्मूलनम् एका ऐतिहासिकी सफलता अस्ति। सा प्रावोचत् यत् यानि क्षेत्राणि पूर्वं नक्सल आतंकेन प्रभावितानि आसन् तेषु क्षेत्रेषु इदानीम् उत्साह सन्ततिः विकास प्रवाहश्च दरीदृश्यते।
2: भारत को नक्सल मुक्त बनाना एक बड़ी उपलब्धि है। आप नक्सल प्रभावित क्षेत्र में उत्साह का वातावरण है तथा विकास के सर्वस्पर्शी धारा प्रवाहित हो रही है। बस्तर ओलंपिक्स में खिलाड़ियों ने, बस्तर पंडुम में कलाकारों ने तथा इन आयोजनों में दर्शकों ने भारी संख्या में हिस्सा लिया।
1: राष्ट्रपतिना प्रोक्तं यत् छात्रवृन्दः राष्ट्रभविष्यस्य मुख्यशिल्पीवर्गः अस्ति। परीक्षाव्यवस्थायाः परिष्काराय च शासनं प्रतिश्रुतमस्ति। राष्ट्रपतेः अनुसारं भारतस्य 65% युवजनसंख्या राष्ट्रस्य मुख्यशक्तिः अस्ति या स्वप्रयासैः उद्यमितायाः नूतनान् मार्गान् रचयति। अनेन भारतं 47.2% वर्षं यावत् विकसित भारत निर्माणस्य स्वप्नं साक्षात्कर्तुम् अग्रसरति। उपराष्ट्रपतेः सीपी राधाकृष्णन् अवोचत् यत् राष्ट्रपतेः

0: स्वतंत्रता दिवसस्य पूर्व संध्यायां एकः शक्तियुतः प्रेरणादायी च संदेशः दत्तः, यः एकस्य आत्मविश्वासपूर्णस्य प्रवर्धमानस्य जीवंत भारतस्य च आकांक्षाः प्रकटीकरोति। सामाजिकान्तर्जालीय स्वीये संदेशे राधाकृष्णन् इत्यनेन प्रोदीरितं यत् राष्ट्रपतेः संबोधने यूनाम् आशाः, नारीशक्तेः योगदानं, देशस्य आर्थिक प्रगतिं च संस्पृश्य एकस्य सशक्तस्य समृद्धस्य च राष्ट्रस्य व्यापकं दर्शनम् उपस्थापितम्। तेन अग्रे प्रतिपादितं यत् एते रवाः राष्ट्रयज्ञे नागरिक आहुत्यै दिव्यम् आह्वानं सन्ति। देशः अद्य अशीतितमं स्वातन्त्र्यदिवसम् आचरति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी दिल्ल्याः ऐतिहासिके रक्तदुर्गे समारोहस्यास्य नेतृत्वं करोति। समारोहस्य अन्तर्गतं भारतीयवायुसेनायाः द्वे MI-17 इत्येते विमाने आयोजनस्थले पुष्पवृष्टिं करिष्यतः। राष्ट्रियध्वजारोहणम् एकविंशति भुशुण्डिकानां निनादेन सह समन्वितं भविष्यति। पुष्पवृष्टेः अनन्तरं प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी रक्तदुर्गस्य प्राचीरात् राष्ट्रं सम्बोधयिष्यति। प्रशासनेन दूरदर्शनवाहिनीनां कृते 12-निमेषपरिमितां विज्ञापनावधिसीमां निरसितुं निर्णयः कृतः। सूचनाप्रसारणमन्त्रालयेन एकस्मिन् वक्तव्ये उक्तं यत् केबल् टेलिविजन् नेट्वर्क् नियम 1994 इत्यस्मिन् संशोधनस्य राजपत्रे अधिसूचना प्रकाशनस्य दिनांकात् एषः निर्णयः प्रवर्तयिष्यते। मन्त्रालयेन उक्तं यत् दूरदर्शन प्रसारण क्षेत्रे घटितानां परिवर्तनानां दृष्ट्या विज्ञापनावधि सम्बद्धानां प्रावधानानां पुनरावलोकनस्य आवश्यकता अनुभूता इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। अब हम आपको लाल किला लिए चलते हैं, जहां से आप भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण समारोह और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को संबोधन का सजीव प्रसारण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं श्री जैनेन्द्र सिंह, सुश्री नीलम मलकानिया और श्री देवेंद्र त्रिपाठी।
2: हॉलमार्क का निशान देखकर ही आभूषण ले, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: चाहे प्रेशर कुकर हो या बच्चों के खिलौने, ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि BIS ISI मार्क मतलब सुरक्षा की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: MRP यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।
5: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पात्र परिवार के लिए 5,00,000 रुपए का मुफ्त इलाज प्रतिवर्ष प्रति परिवार। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने दी है 60 करोड़ से अधिक भारतीयों को इलाज की चिंता से आजादी।
6: अब तक 12 करोड़ से अधिक मुफ्त इलाज हो चुके हैं, जिससे चिकित्सा खर्च में गरीब परिवारों की लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-4-5-5-5।
5: आयुष्मान भारत, अब इलाज की चिंता से आजादी।

0: बचाए। सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में ना हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।
1: आइए लाल किला चलें।
2: वंदे मातरम। स्वतंत्र भारत देश के 79 वर्षों की गौरवशाली यात्रा और इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने में अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले भारत भूमि के वीरों और वीरांगनाओं द्वारा किए गए बलिदान का स्मरणोत्सव। श्रोताओं,

0: ये स्वतंत्रता दिवस समारोह, जिनके अद्वितीय बलिदान का प्रतिफल है ये दिवस। नमन ऐसे लाखों ज्ञात अज्ञात सेनानियों को, नमन राष्ट्र नायकों और राष्ट्र निर्माताओं को, जिनके दूरदर्शी नेतृत्व का ही परिणाम है कि आज भारत दुनिया की चौथे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सका है और पूरे विश्व में भारत की पहचान और प्रतिष्ठा बढ़ी है। ऐसे राष्ट्र नायकों को भी नमन है आज के इस अवसर पर। गौरव के इन पलों में श्रोताओं, आप सभी को देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं। दिल्ली स्थित लाल किले के प्राचीर से मैं जैनेन्द्र, अपने साथी कमेंटेटर्स नीलम मलकानिया, देवेंद्र त्रिपाठी और आकाशवाणी की पूरी टीम के साथ आप सभी का इस विशेष प्रसारण में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ।
1: वंदे मातरम। लाल किले की इस ऐतिहासिक प्राचीर से आप सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त 2026 की ये सुनहरी सुबह भारत के इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ने जा रही है। लोकतंत्र की जननी भारत भूमि आज पूरे गर्व और उल्लास के साथ अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रही है। कोटि कोटि कंठ आज वंदे मातरम, जय हिंद और भारत माता की जय का उद्गार कर रहे हैं। देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम और उत्साह के रंग में रंगे हुए भारतीय और भारतवंशी देश विदेश में विविध कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। साथियों, आप जानते ही हैं कि मुख्य आयोजन यहां लाल किले पर हो रहा है, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री स्वयं राष्ट्र का नेतृत्व करते हुए प्राचीर पर बने ध्वज स्थल पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे। आकाशवाणी की तकनीकी और कार्यक्रम टीम यहां से आंखों देखा हाल आप तक पहुँचाने के लिए तैयार है। आज तो किले की छटा ही निराली है, जैसे ये स्वयं पर इठलाता हो कि यहीं से हर वर्ष हमारे इस राष्ट्रीय पर्व ने देश दुनिया को एक नई राह दिखलाई है। चहुं ओर भक्ति भाव और उत्साह का भाव परिलक्षित हो रहा है। किले की विशाल और शक्तिशाली दीवारें रंग बिरंगे पुष्पों और पताकाओं से सजाई गई हैं। स्वतंत्रता दिवस की बधाई वाले होर्डिंग्स हैं, बैनर हैं, पोस्टर्स लगे हैं तो सुरुचिपूर्ण पुष्प सज्जा भी की गई है। इस बार के आयोजन की थीम है वंदे मातरम। हमारे इस राष्ट्रीय गीत के 150 गौरवशाली वर्षों को याद करते हुए आज वंदे मातरम की गूंज यहां बार बार सुनाई दे रही है। ज्ञान पथ के सामने किले की विशाल दीवार पर ताजे पुष्पों से वंदे मातरम लिखा गया है। प्रेरणादायी संवर्धन ये है कि पहली बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगान के साथ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भी गूंजेगा। किले की बाहरी दीवार पर लगे कटआउट्स परमाणु और अंतरिक्ष तकनीक में भारत की प्रगति को दर्शा रहे हैं। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, मातृभूमि का वंदन करते हुए, नमन करते हुए, मातृभूमि के प्रति प्रेम प्रदर्शित करते हुए यहाँ पर अनेक प्रतीक चिन्ह हैं। हम आपको बताएं कि लाल किले की भव्य प्राचीर पर दोनों ओर दो बड़े बुर्ज हैं, इन्हीं से सटा हुआ हमारा कमेंट्री बूथ है। प्राचीर के ठीक बीच में कुछ ऊंचाई पर ध्वज स्थल है जो हमारे दाहिनी ओर है और इस समय ताजे फूलों से सजा हुआ है। ध्वज दंड को भी फूलों की लड़ियों से सजाया गया है। खुशनुमा मौसम में सुबह की मध्यम बहती मंद बयार के साथ ताजे फूलों की गंध हमारी उत्सव धर्मिता में शामिल हो रही है। आज वैसे भी तीज है, आप सभी को तीज पर्व की भी शुभकामनाएं। और तीज को माना जाता है बहुत ही शुभ अवसर, क्योंकि त्योहारों की शुरुआत इससे होती है। ऐसे में तीज के अवसर पर जब हमारा राष्ट्रीय पर्व है तो हमारे राष्ट्रीय पर्व ने अनेक पर्वों की गरिमा साथ ही बढ़ा दी है। ध्वज स्थल के दोनों ओर दर्शक दीर्घा बनाई गई है। लाल रंग की कुर्सियां करीने से सजी हुई हैं और उन पर आमंत्रित अतिथि गणों के नाम भी लिखे हैं। दाहिनी ओर की दर्शक दीर्घा में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश हैं तथा पद्म पुरस्कार विजेता अन्य अतिथि हैं। और बाईं ओर की जो दर्शक दीर्घा है उसमें केंद्रीय मंत्रियों की उपस्थिति है। हम आपको बताएं कि यहां से हम देख सकते हैं उपस्थिति है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की, श्री पीयूष गोयल हैं, श्री नितिन नवीन यहाँ से हम देख सकते हैं, श्री हरदीप सिंह जी की उपस्थिति है, श्री मनसुख मांडविया जी हैं, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, डॉक्टर जयशंकर उपस्थित हैं, श्री गिरिराज सिंह जी हैं, श्री नितिन गडकरी जी हैं, श्री अश्वनवी वैष्णव जी हैं, दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल सरदार तरनजीत सिंह संधू जी की भी गरिमा में उपस्थिति यहाँ पर है। वर्दी पहने सैन्य अधिकारियों की उपस्थिति है तो आकर्षक परिधानों में उल्लासित बच्चे भी हमें दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ से।
0: माननीय प्रधानमंत्री महोदय कुछ ही देर में यहाँ लाल किले के प्राचीर पर पहुंचेंगे और जब वे प्राचीर के ऊपर बने ध्वज स्थल पर पहुंचेंगे तो सबसे पहले राष्ट्रगीत, पहली बार स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह पहला अवसर होगा जब स्वतंत्रता दिवस के समारोह में राष्ट्रीय गीत की धुन और स्वर यहाँ पर गूंजेगा। राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा और उसके बाद

0: राष्ट्रगान होगा, राष्ट्रीय सलामी दी जाएगी। यहाँ आने से पहले माननीय प्रधानमंत्री महोदय राजघाट पहुंचकर वहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और उसके बाद यहाँ के लिए वो प्रस्थान करेंगे। लाल किले के ये प्राचीर और ये पूरा परिदृश्य अद्भुत है। इस समय ईश्वर की कृपा भी है क्योंकि मौसम बहुत खुशनुमा है, आसमान घने बादलों से ढका हुआ है, इसलिए धूप की रश्मियाँ जो हैं वो धरती तक नहीं पहुँच पा रही हैं और लोग बहुत ही सुखद वातावरण में यहाँ बैठे हुए हैं। लगभग 27 डिग्री का यहाँ तापमान हम समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, लगभग इतना ही यहाँ पर तापमान है। और पक्षियों के कलरों के साथ हल्की हल्की बयार के साथ जो पताकाएं लगी हैं वो लहरा रही हैं हवा के साथ, हमारे राष्ट्रीय ध्वज जहां जहां तक हमारी दृष्टि जाती है वहां तक लगे हुए हैं, वो भी लहराते हुए एक नई ऊर्जा का संचार हम सबके भीतर कर रहे हैं। वैसे भोर तो हर सुबह हर रोज होती है लेकिन आज की भोर सामान्य दिनों से बिल्कुल हटकर है क्योंकि भारतवासियों के लिए बहुत विशेष है। हो भी क्यों ना, आज ही के दिन तो 15 अगस्त को सन 1947 में दुनिया के मानचित्र पर स्वतंत्र देश के रूप में भारत का उदय हुआ था, वही भारत जिसके बारे में विष्णु पुराण में कहा गया है, उत्तरम यत् समुदस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद् भारतम नाम भारती यत्र संतति। अर्थात समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो भूभाग है उसे भारत कहते हैं और हम स्वयं को भारतीय कहते हैं। मंच की सज्जा को आपने जाना, अनुभव किया होगा, अपने अपने कल्पना में उसे सजीव भी किया होगा आपने। मंच के ठीक सामने जो ज्ञानपथ का क्षेत्र है वहाँ सबसे पहले हमारी दृष्टि जहां जाती है वो है राष्ट्रीय सलामी गारद जो वहां पर उपस्थित है ठीक सामने। इसमें सेना के तीनों अंगों और दिल्ली पुलिस की टुकड़ियां शामिल हैं, प्रत्येक टुकड़ी में 32 सैनिक हैं और एक अधिकारी उसमें शामिल हैं। राष्ट्रीय सलामी गारद का नेतृत्व कर रहे हैं मेजर लोकेंद्र सिंह, सेना की अपनी यूनिफॉर्म में वर्दी में सजे धजे गर्व से सीना तरा हुआ। सेना की टुकड़ी की कमान मेजर विकास यादव के हाथों में है जबकि लेफ्टिनेंट कमांडर अभिलाष नौसेना की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं अपने सफेद यूनिफॉर्म में और पीकॉक के साथ। वायुसेना की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं स्क्वाड्रन लीडर उमेश जी और एडिशनल DCP विकास मीणा दिल्ली की टुकड़ी दिल्ली पुलिस की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं। और हमारे ठीक सामने उस राष्ट्रीय सलामी गारद के दाहिनी हिस्से में वहां पर बैंड दल उपस्थित है जो राष्ट्रीय सलामी के समय राष्ट्रीय धुन बजाएगा और उसके पहले राष्ट्रीय गीत यहां पर बजाएगा। लेकिन उनके पीछे भी एक ऊर्जा का अनुभव अद्भुत दृश्य हम देख पा रहे हैं श्रोताओं, क्योंकि ये इस बार का आयोजन कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से प्रदर्शित कर रहा है जिसको हम यहाँ के कणकण में, यहाँ के पूरे वायुमंडल में हम उसको महसूस कर सकते हैं, यहाँ के वातावरण में महसूस कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ वंदे मातरम की गूंज यहाँ पर हम सबको उत्कंठा से प्रतीक्षा है उस क्षण की जब पहली बार यहाँ से उसे बजाया जाएगा और गाया जाएगा, उसके साथ साथ बड़ी संख्या में युवा शक्ति यहाँ पर एक नई ऊर्जा का प्रतिबिंब लेकर उपस्थित है। और इसमें सामने जो दृश्य हम देख पा रहे हैं ज्ञानपथ पर, वहाँ लगभग 2500 की संख्या ऐसे विद्यार्थियों की है जो NCC से संबंधित रखते हैं, NCC के तीनों विंग से संबंधित रखते हैं और उसके साथ साथ हमारे माय भारत वॉलंटियर स्वयंसेवक भी इसमें शामिल हैं। और इन्होंने जो अधिसंख्य हैं, बहुसंख्यक हैं, उसमें उन्होंने सफ़ेद रंग की वेशभूषा पहन रखी है ज़्यादातर जिनकी संख्या है, लेकिन बीच में कुछ ऐसा रंग है जो हमारे केसरिया रंग यानी हमारे बलिदान का भी प्रतीक है और उसी रंग के साथ केसरिया रंगों की वेशभूषा के साथ उन्होंने यहाँ रचा है वंदे मातरम, क्योंकि वंदे मातरम इस पहली बार इस स्वतंत्रता दिवस समारोह में गूंजेगा।
1: जी, उत्तर से लेके दक्षिणी लकीर तक, पूर्वा से लेके पश्चिमी समीर तक, सागरों से लेके नदियों के तीर तक, पर्वतों से लेके घाटियों के तीर तक, आत्मा से लेके नश्वर शरीर तक, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, चाहे जिंदा रहें चाहे मर जाएं हम गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम। देश की संचयी शक्ति जो देश का इतिहास अपने आप में समेटे है, एक अभिवादन भी है, सम्मान भी है, हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों की पहचान भी है, ये दो शब्द जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम में देशवासियों को एकजुट किया और आज़ाद भारत को भी सदा आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। हम आपको बताएं साथियों, वंदे मातरम जो यहाँ से हम देख रहे हैं, NCC कैडेट्स ने जो मानव संरचना में लिखा है, बेहद प्रेरक, बेहद खूबसूरत यहाँ से जान पड़ रहा है। और साथ ही जो अन्य यहाँ पर बच्चे हैं वो उत्सुकता से एक टक इन बच्चों को निहार रहे हैं। आज के आयोजन के लिए राजधानी में परिवहन व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं, वैकल्पिक मार्गों के बारे में काफ़ी पहले से ही जानकारी साझा की गई है, कई दिन पहले से ही सभी प्रमुख चौक चौराहों पर, महत्वपूर्ण भवनों पर रंग बिरंगी प्रकाश सज्जा की गई है, साथ ही जन समुदाय की सुविधा का भी ध्यान रखा गया है। राजधानी को गति देने वाली

क्यों भी हमारे इस राष्ट्रीय पर्व का आज हिस्सा है, अपनी सेवा देते हुए आज सुबह 4 बजे से सरपट दौड़ रही है। यहाँ आयोजन स्थल के आसपास क्लॉक रूम, व्हीलचेयर और पेयजल की व्यवस्था की गई है। लगभग 23,000 आगंतुकों को इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया गया है। अपनी सजीली सैन्य वर्दी पहने अधिकारी हैं, आकर्षक परिधानों में यहाँ पर सामान्य जन हैं, एनसीसी कैडेट्स हैं, माई भारत स्वयं सेवकों ने जो संरचना बनाई है हमने आपको बताया कि बेहद यहाँ पर बनाई है हमने आपको बताया कि बेहद यहाँ पर आकर्षक है। सीढ़ीदार व्यवस्था में इनके दोनों ओर दर्शक दीर्घा बनाई गई है। एक ओर विद्यालय के छात्र छात्राएं अपने शिक्षकों के साथ बैठे हैं, अन्य आगंतुक हैं, तो दूसरी ओर भी सीढ़ीदार व्यवस्था में कुर्सियां करीने से लगाई गई हैं। हल्के जामुनी रंग की दरी पर हरे रंग की कुर्सियों पर आगंतुक आज के अवसर के लिए विशेष तौर से हमारे तिरंगे के जो 3 प्रधान रंग हैं उनके परिधान पहने हुए हैं। आज का ये आयोजन अलग अलग क्षेत्रों में हमारे युवाओं की उपलब्धियों को भी उजागर कर रहा है। इंटरनेशनल फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ओलंपियाड में मेडल विजेता युवाओं को भी आयोजन का हिस्सा

0: से लगाई गई हैं हल्के जामुनी रंग की दरी पर, हरे रंग की कुर्सियों पर आगंतुक। आज के अवसर के लिए विशेष तौर से हमारे तिरंगे के जो तीन प्रधान रंग हैं उनके परिधान पहने हुए हैं। आज का ये आयोजन अलग अलग क्षेत्रों में हमारे युवाओं की उपलब्धियों को भी उजागर कर रहा है। इंटरनेशनल फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ओलंपियाड में मेडल विजेता युवाओं को भी आयोजन का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया गया है। नेशनल इनोवेशन कार्यक्रम से जुड़े युवा हैं, पीएम इंटर्नशिप योजना के छात्र हैं, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत चयनित बेहतरीन स्टार्टअप के तहत चुने गए श्रेष्ठ प्रतिभागी हैं, माई भारत के स्वयंसेवक हैं, दिल्ली के विभिन्न विद्यालयों में हुई परीक्षाओं और प्रतियोगिताओं के विजेता विद्यार्थी भी इस समय यहाँ बैठे हैं। इस अवसर पर देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के दिल्ली में रहने वाले 1500 से ज्यादा ऐसे लोगों को भी आमंत्रित किया गया है जो इस समय अपनी पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ बैठे हैं और लघु भारत का दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और एक खास बात ये है कि हमारी जल शक्ति का सम्मान रखते हुए इस बार जो प्रांगण घेरे हैं, एनक्लोजर्स हैं, इनके नाम प्रमुख झीलों के नाम पर रखे गए हैं। भीमताल, चंद्रताल, दूध सागर, रोबिंद्र शोबोर, रुद्र सागर, चिलिका, हाफलोंग नाम रखे गए हैं। हमें यहाँ दिखाई दे रहा है वो भारत जो समृद्ध है, जो संपन्न है, साथ ही जो संकल्पित है आगे बढ़ने के लिए और साथ ही विकसित भारत 2047 का लक्ष्य लिए, जिसमें हर उम्र का देशवासी अपनी ओर से योगदान करने के लिए तैयार है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। ये स्वतंत्रता जिसने पराधीन भारत में जब देशवासियों को पुकारा तो अपनी जान की परवाह न करते हुए देशवासी जुट गए कि भारत माँ को हमें परतंत्रता की बेड़ियों से आज़ाद करवाना है। और अब यही स्वतंत्रता हमें ये प्रेरणा देती है कि लगातार आगे बढ़ते हुए हम जहाँ हैं, जो कर सकते हैं, देश प्रेम मन में रखे हुए, संजोए हुए, देश को विकसित करने की ओर लगातार बढ़े, अपना योगदान करें।
1: निश्चित रूप से, और इसीलिए भारत के भविष्य को लेकर जो संकल्पना है, विजन है, विशेष तौर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश जिस गति से आगे बढ़ते हुए वर्ष 2047 तक यानी 100 वर्षों के स्वतंत्र भारत की यात्रा को पूरा करते हुए एक विकसित भारत के रूप में अपने आप को स्थापित कर सके, उसका भी यहाँ दृश्य हमें साफ नजर आता है। यहाँ लाहौरी गेट पर प्रधानमंत्री महोदय का आगमन कुछ ही पलों में होने जा रहा है। वहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और साथ ही रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह वहां पर उपस्थित हैं। साथ ही दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग भी वहां पर उपस्थित हैं, जो वहां प्रधानमंत्री महोदय की अगवानी करेंगे और वहां माननीय प्रधानमंत्री महोदय को सलामी दी जाएगी। और उसके बाद सलामी गारद का वो निरीक्षण करने के बाद लाल किले के प्राचीर पर पहुंचेंगे और आगे का जो कार्यक्रम है वो यहां आरंभ होगा। इस रूप में बिगुल वादन के साथ इस बात का संकेत मिल चुका है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय के वाहनों का काफिला यहां प्रवेश कर रहा है। आइए आपको आगे के विवरण के लिए सीधे लिए चलते हैं देवेंद्र के पास, जो लाहौरी गेट पर उपस्थित हैं।
2: धन्यवाद जैनेन्द्र। मैं देवेंद्र त्रिपाठी आप सभी श्रोताओं का लाल किले के ऐतिहासिक प्रांगण में लाहौरी गेट से स्वागत करता हूं। इस द्वार के समक्ष होने वाली सभी गतिविधियों की जानकारी आपसे साझा करूंगा, जहां माननीय प्रधानमंत्री को तीनों सेनाओं और दिल्ली पुलिस की संयुक्त सलामी दी जाएगी। प्रधानमंत्री सम्मान गारद का निरीक्षण करेंगे, उसके बाद ऐतिहासिक 13वीं बार ध्वज फहराएंगे और देश और दुनिया को संबोधित करेंगे। आजादी का ये दिन 15 अगस्त भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित, ना जाने कितने रक्तों से रंजित। ये स्वाधीनता का ही उत्सव नहीं, ये अवसर है मां भारती के वीर बलिदानियों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने का भी, उन्हें ये विश्वास दिलाने का कि आपके बलिदानों का ऋण हम मां भारती की सेवा करके चुकाएंगे। ये वीर शहीदों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर है, जिनके त्याग और बलिदान से ये प्रतिफल आज हमें मिला। श्रोताओं, माननीय प्रधानमंत्री के वाहनों का काफिला प्रांगण में प्रवेश कर रहा है और यहाँ का पूरा परिदृश्य नई ऊर्जा से ओतप्रोत, माँ भारती का वंदन और वीर बलिदानियों का अभिनंदन करने के इस पावन आयोजन में उत्साह, उल्लास और श्रद्धा का भाव। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन लाहौरी गेट के समक्ष सलामी मंच पर हो रहा है, जहां उनकी अगवानी के लिए उपस्थित हैं माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, माननीय रक्षा मंत्री राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल राजेश सेठी। श्रोताओं, सलामी मंच के सामने तीनों सेनाएं और दिल्ली पुलिस तथा नौसेना बैंड वादकों का दस्ता, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सलामी देने के लिए सभी मुस्तैद। दस्तों के पृष्ठभाग में लगा है तीन रंगों में बैनर, जिस पर झलक है विकसित भारत और विविध भारत की। अंतर सेना सम्मान गारद का जिम्मा इस बार थल सेना को दिया गया है, कमान है लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह के हाथों। और सलामी मंच के दोनों ओर खड़े हैं कैप्टन विक्की मेहता और प्रथम नेगी।

प्रधानमंत्री के वाहनों का काफिला पहुंचा है सलामी मंच के पास और माननीय प्रधानमंत्री अपने वाहन से उतरते हुए लाल रंग का साफा और ब्राउन यानी भूरे रंग की सदरी, सफेद रंग का कुर्ता पैजामा माननीय प्रधानमंत्री श्री राजनाथ सिंह, श्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री और रक्षा सचिव का अभिवादन स्वीकार करते हुए और रक्षा सचिव जीओसी दिल्ली एरिया राजेश सेठी से परिचय कराते हुए अब माननीय प्रधानमंत्री पहुंचे हैं सलामी मंच की ओर, जहां उन्हें अंतर सेना पुलिस सम्मान गारद सलामी देगी कमान लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह के हाथों में।

0: संयुक्त कमांडर के नेतृत्व में टुकड़ों की सलामी। भारतीय सैन्य बलों के पराक्रम और शौर्य का प्रदर्शन लाल किले की इस प्रांगण में। अब संयुक्त कमांडर सलामी मंच की ओर आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री जी से सम्मानगर टुकड़ियों का निरीक्षण करने के लिए आग्रहपूर्ण अनुमति लेंगे। सधे हुए कदमों से, हाथों में तलवार लिए और जोश भारतीय सैन्य बलों का जो झलक रहा है। प्रधानमंत्री जी ने सहमति दी और सलामी मंच से नीचे उतरते हुए मंच के बाईं ओर से बिछा है रेड कार्पेट, जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री के स्वागत में अपनी लालिमा से इस स्थल को और गौरव प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री के दाईं ओर दो कदम पीछे हाथों में तलवार और भारतीय सैन्य बलों का शौर्य लिए चल रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह। प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं नौसेना बैंड दस्ते के पास। बैंड मास्टर डी सेल्वम के नेतृत्व में नौसेना का ये बैंड आनंद लोके की धुन बजाएगा, जिसे तैयार किया बैंड मास्टर जे रोड्रिक्स ने, और बच्चों की आवाजें आप सुन पा रहे हैं। यहाँ मौजूद उपस्थित बच्चे माननीय प्रधानमंत्री का अपनी आवाज के साथ स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री के अब का आगमन हुआ है थल सेना की टुकड़ी के पास। 25 जवान नेतृत्व मेजर आदित्य शर्मा के हाथों में। प्रधानमंत्री के समक्ष पूरी नम्रता लेकिन अभिमान का आभामंडल देश के वीर सैनिकों के मुख पर, ये विश्वास दिलाते हुए मां भारती की रक्षा में हम सदैव तत्पर। नौसेना की कमान लेफ्टिनेंट कमांडर अरुण कलमाड़ी के हाथों में। तीनों सेनाएं देशवासियों को विश्वास दिलाती हुई, हम है भारत के प्रहरी, हम है मां भारती के सेवक और रक्षक। और अब प्रधानमंत्री वायुसेना के दस्ते के समक्ष 24 जवानों की टुकड़ी भारतीय वायुसेना का प्रतिनिधित्व 80वें स्वतंत्रता दिवस पर करती हुई कमान स्क्वाड्रन लीडर विपिन कुमार के हाथों में। दिल्ली पुलिस का नेतृत्व एडिशनल डीसीपी विनीत कुमार कर रहे हैं। सभी ने अपने भावों से माननीय प्रधानमंत्री को विश्वास दिलाया मां भारती के रक्षक सदैव तत्पर। और अब लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह परेड कमांडर माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद प्रकट करते हुए। और अब लाहौरी गेट से माननीय प्रधानमंत्री प्रस्थान कर रहे हैं समारोह स्थल लाल किले की प्राचीर की ओर, जो 1947 से हर वर्ष केंद्र बना है भारत के स्वाधीनता उत्सव का। प्रधानमंत्री के साथ हैं जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल राजेश सेठी। लाहौरी गेट, लाल किले की प्राचीर और दोनों गुंबद साक्षी हैं भारत के स्वाधीन होने, विकासशील से विकसित बनने के अमृतकाल के। स्वाधीन 79 वर्षों में भारत ने अपने विकास की लंबी यात्रा तय की है। श्रोताओं, 2026 का भारत विश्व पटल पर भी अपनी छाप छोड़ रहा है। भारत के विचार दुनिया के लिए मायने रखते हैं, जो समाधानों के लिए आज भारत की ओर देखते हैं, क्योंकि भारत की नीतियों के मूल में है वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श और भारत का उत्कर्ष। विकास भी और विरासत भी भारत की विचारधारा, और भारत, हमारा प्यारा भारत बढ़ रहा आगे। एक तरफ अपने हृदय में संजो रहा अपने पूर्वजों के बलिदानों को, तो दूसरी ओर माथे पर चंदन की तरह बिठा रहा युवाओं को, जो भविष्य के भारत की गाथा लिखने को तत्पर। एक ओर इंडियन नॉलेज सिस्टम का सम्मान, दूसरी ओर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उद्घोष भी। 80वां स्वाधीनता दिवस अवसर है अपने पूर्वजों को प्रणाम करने का, उनके प्रति श्रद्धावनत होने का, जिन्होंने तन मन और धन से माँ भारती की सेवा की। 21वीं सदी का सबल भारत वीर बलिदानियों का ऋणी है, जिनके समर्पण और बलिदान से हमें आज का यह सौभाग्य मिला। और श्रोताओं, मुख्य समारोह स्थल की ओर चलते हैं लाल किले की प्राचीर पर, जहां 150 वर्ष वंदे मातरम के पूर्ण होने के अवसर पर इस बार पहली बार लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम की धुन आप सुनेंगे। उसके बाद ध्वज फहराया जाएगा और फिर राष्ट्रगान होगा और प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। और विवरण के लिए हम लाल किले की प्राचीर कमेंट्री बूथ पर लिए चलते हैं अपने साथी कमेंटेटर नीलम और जैनेन्द्र के पास।
1: धन्यवाद देवेंद्र। साथियों, कुछ ही देर में ये पावन और ऐतिहासिक क्षण आएगा जब माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर ध्वज फहराने के लिए लाल किले की प्राचीर पर बने ध्वज

0: स्थल की ओर आएंगे। जैसे ही प्रधानमंत्री जी ध्वज स्थल पर पहुंचेंगे, तब भारतीय सेना का बैंड वंदे मातरम की धुन बजाएगा। अपने राष्ट्रगीत के सम्मान में हम सावधान मुद्रा में खड़े होंगे। प्रधानमंत्री जी भारत माँ की अस्मिता के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज को जब फहराएंगे, तब राष्ट्रगान होगा, साथ ही तिरंगे को सलामी भी दी जाएगी। आर्मी सिग्नल कोर से कैप्टन रितिका खरेटा माननीय प्रधानमंत्री जी का सहयोग करेंगी ध्वज फहराने में। 21 तोपों की सलामी दी जाएगी और साथ ही भारतीय वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर आकाश से झंडा वंदन करते हुए पुष्प वर्षा करेंगे। ध्वज फॉर्मेशन का नेतृत्व करते हुए कमान अधिकारी विंग कमांडर ऋषिकांत के साथ को पायलट स्क्वाड्रन लीडर मोहित सिंह राष्ट्रीय ध्वज वहन किए हुए आएंगे। दूसरा हेलीकॉप्टर वंदे मातरम का ध्वज लिए हुए आगे बढ़ेगा और स्क्वाड्रन लीडर पुनीत यादव पुष्प वर्षा करेंगे, इस तरह से अपनी ओर से झंडा वंदन भी करेंगे और साथ ही यहाँ बैठे उत्साहित देशवासियों पर भी पंखुड़ियाँ जब गिरेंगी तो वो दृश्य देखने लायक होता है। बच्चे बेहद उत्साहित हो जाते हैं इसे देखते हुए और आप जानते ही हैं कि अब राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान दोनों के सम्मान में हम सावधान मुद्रा में खड़े होते हैं। इस तरह से अपने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों को, राष्ट्र को प्रेरणा देने वाले इन गीतों को हम सम्मान देते हैं। मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, भगत सिंह की फांसी, मैं बापू की अंगड़ाई हूँ, हूँ जलियांवाला बाग भी मैं, पानीपत का पानी हूँ, ऊधम की पिस्तौल भी मैं, झांसी वाली रानी हूँ, रंग दे बसंती चोला, मैं गुरु गोविंद सिंह का बलिदान हूँ, चेतक की हुंकार में ही मैं राणा प्रताप की शान हूँ, मैं छुपा बोस किनारों में, मैं जंग लगी तलवारों में, मैं इनकलाब की बोली हूँ, आजाद की आखिरी गोली हूँ, मैं भारत का हर भाव चंगा हूँ, मैं सबका पूज्य तिरंगा हूँ। इसी तिरंगे के सम्मान में पूरा आयोजन यहाँ का हो रहा है और यहाँ पर जो सलामी गारद है वो भी जब राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा उस समय राष्ट्रीय सलामी देगी
1: निश्चित रूप से और सभी को उस पल की प्रतीक्षा है। श्रोताओं, लाल किले के प्राचीर से जब हमारी दृष्टि सामने इस पूरे क्षेत्र की तरफ जाती है, चांदनी चौक की तरफ जाती है, तो अनायास ही बहुत सारे ऐसे इतिहास के पन्ने अपने आप सजीव होने लगते हैं जो हमारे पूरे राष्ट्र के लिए, देश के लिए संघर्ष का एक बहुत कठिन दौर रहा है जिससे देश गुजरा है। धर्मांधता और बलपूर्वक धर्मांतरण की वो विभत्स और क्रूर घटनाएं दृश्य आंखों के सामने सजीव होने लगते हैं। आपको मालूम ही है लाल किले के प्राचीर के सामने चांदनी चौक में ही स्थित है गुरुद्वारा सीसगंज। सन 1675 में 24 नवंबर की वो तारीख थी जब यहीं हमारे नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर का सिर धड़ से अलग कर दिया गया था। गुरु साहब ने बलिदान से पहले, गुरु साहब के बलिदान से पहले उनके शिष्य भाई मतीदास, भाई दयाला और भाई सतीदास के ऊपर भी बर्बरता भला कौन भूल सकता है। देश के स्वतंत्रता के आंदोलन में भी ये दिल्ली स्थित चांदनी चौक एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक केंद्र रहा है। 1857 की क्रांति का दमन करने के लिए ब्रिटिश सेना ने यहाँ की मुख्य सड़कों और कोतवाली के आसपास के क्षेत्रों में अपना दमन चक्र चलाया। क्रांतिकारियों को खुलेआम फांसी दी गई। 1857 में आपको याद होगा ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने वाले जिन्हें दिल्ली का आयरन वॉल कहा जाता था, बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह को 9 जनवरी 1858 में 32 साल की मात्र उनकी उम्र थी तब उनको इसी चांदनी चौक में फांसी पर लटकाया गया था खुले में। 23 दिसंबर 1912 को जब ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड हार्डिंग दिल्ली को राजधानी बनाने के उपलक्ष्य में इसी चांदनी चौक से होकर शाही जुलूस निकाल रहा था तब यहाँ घंटाघर के पास क्रांतिकारियों ने उस पर बम फेंका और उस हमले की योजना राजबिहारी बोस ने बनाई थी। उसमें मास्टर अमीर चंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद जी और बसंत कुमार विश्वास जैसे क्रांतिकारी शामिल थे। बाद में बाल मुकुंद और बसंत कुमार विश्वास को फांसी दे दी गई थी जबकि राजबिहारी बोस वेश बदलकर देश से बाहर निकल गए और जापान पहुंचकर आजाद हिंद फौज की स्थापना की और उसके आगे का इतिहास आप सबको विदित है। सन 1915 से 1934 के बीच महात्मा गांधी ने चांदनी चौक में कई ऐतिहासिक बैठने की थी। यहाँ की मारवाड़ी पब्लिक लाइब्रेरी हो, गांधी मैदान हो, ये सब क्रांतिकारियों और देशभक्तों की बैठकों का बहुत महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। अंग्रेजों के दमनकारी कानून रॉलट एक्ट को लेकर जब देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे तब 1919 में ही स्वामी श्रद्धानंद जी ने चांदनी चौक के घंटाघर पर पुलिस की संगीनों के सामने खड़े होकर निडरता से रॉलट एक्ट का विरोध किया था। कोतवाली के सामने का जो क्षेत्र है इसी चांदनी चौक की एक गली में क्रांतिवीर स्वतंत्रता संग्राम के पर्चे और बुलेटिन चुपके चुपके छापा करते थे और पूरे शहर में बांटकर स्वतंत्रता की अलख जगाया करते थे। यहाँ चाहे वो कटरा नील हो, खारी बावली हो, दरीबा

0: श्रृंखला हो, इन सभी क्षेत्रों के व्यापारी और आम नागरिक भी इस लड़ाई में शामिल थे। और इस समय जबकि माननीय प्रधानमंत्री महोदय के आगमन के साथ जब शुरू होगा यहाँ का मुख्य आयोजन और वंदे मातरम के स्वर गूंजेंगे, उसकी उत्कंठा में और उल्लास में बहुत बड़ी संख्या में जो यहाँ उपस्थित जनसमुदाय है, विशेष रूप से बच्चे अपने अपने स्थान पर खड़े होकर हाथ हिला रहे हैं, प्राचीर की तरफ देख कर उनके उत्साह और उमंग की अभिव्यक्ति उनके चेहरे पर साफ नजर आती है, और जो पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं उनके स्वर, उनकी पहचान और उनकी आभा जो व्यक्तित्व की है वो भी बहुत आकर्षित कर रही है।
1: बिल्कुल जानेंद्र जी, और मैं देख पा रही हूँ कि बच्चे जो हैं वो बार बार टुकुर टुकुर निहार रहे हैं यहाँ ध्वज स्थल की ओर, क्योंकि वो जानते हैं कि कुछ ही क्षणों में यहाँ पर पूरे विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय और सम्मानित प्रधानमंत्री जी का आगमन होने जा रहा है। साथियों, आज का दिन हम अपने उन स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए, उनकी स्मृति को नमन करने के लिए भी विशेष तौर पर मनाते हैं। विशेष तौर पर आज का दिन हमें ये अवसर देता है, क्योंकि हम जानते हैं तुम न समझो देश को स्वाधीनता यूं ही मिली है, हर कली इस बाग की कुछ खून पीकर ही खिली है। स्वतंत्रता संग्राम के चिर परिचित सेनानियों के साथ ही गुमनाम नायकों के प्रति आज कृतज्ञता का भाव है, तो आज़ाद भारत के उन वीरों का गुणगान भी है जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम रोशन किया है। मंगल पांडे की पहली चिंगारी से लेकर रानी लक्ष्मीबाई का दम्य साहस, सब कुछ हमें प्रेरित करता है। और हम देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो चुका है इस समय ध्वज स्थल।

0: और इस समय आकाश आकाश में जो स्वर हमें सुनाई दे रहे हैं, ध्वनि सुनाई दे रही है, वो उन हेलीकॉप्टर्स की है जो पुष्प वर्षा करते हुए लाल किले के प्राचीर के ऊपर से गुजर रहे हैं और लोगों की निगाह उसी आसमान की तरफ है। एक हेलीकॉप्टर ये Mi-17 हेलीकॉप्टर से भारतीय वायुसेना के, जिसमें एक हेलीकॉप्टर में राष्ट्रीय ध्वज उसमें दिखाई दे रहा है हवा के साथ अठखेलियां करता हुआ, और दूसरे हेलीकॉप्टर में नीचे लिखा है वंदे मातरम और पुष्प वर्षा करते हुए ये सभी यहाँ से हमारी बाई तरफ से दाहिनी तरफ आसमान में आगे बढ़ते हुए। बच्चों के बीच खासतौर पर उल्लास और फूलों की पंखुड़ियाँ यहाँ चारों तरफ बिखरी दिखाई देती है। खासतौर पर जो सफ़ेद वेशभूषा में बच्चे बैठे हुए हैं वहाँ ठीक सामने, उनके कपड़ों पर सफ़ेद रंग पर जो पुष्प है, पंखुड़ियाँ हैं पीले रंग की, वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आनंदित करने वाली लग रही है।
1: जी, और जनेंद्र किस तरह से बच्चे उल्लासित होकर प्रधानमंत्री जी को भी निहार रहे हैं और उनकी कोशिश है कि एक दो पंखुड़ी को वो कैच कर पाए, और ये पंखुड़ियाँ इस समय हमारे बूथ की ओर भी आई, बेहद रमणीय दृश्य है ये।
0: जी, और राष्ट्रीय सलामी गारद अब राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने के बाद और राष्ट्रीय सलामी देने के बाद यहाँ से प्रस्थान करती हुई सेना कमांड कुमायूं रेजिमेंट सेंटर, जो इसमें शामिल थे, जिसने आज पहली बार ये इतिहास रचा गया, स्वतंत्रता दिवस के आयोजन में पहली बार यहाँ राष्ट्रगीत वंदे मातरम की धुन बजी, लेकिन सस्वर यहाँ उपस्थित हजारों लोगों ने उस गीत को अपने मुखारबिंदु से गाया है, चाहे वो प्राचीर के ऊपर बैठे हुए हमारे सभी अतिथियों दर्शक दीर्घाओं में या ठीक सामने हमारे बाईं और दाहिनी तरफ बड़ी संख्या में जो दर्शक दीर्घा में हजारों की संख्या में देश भर से पधारे हमारे दर्शक हैं, विशेष मेहमान हैं, दिल्ली वासी हैं, अलग अलग प्रदेशों के और केंद्र शासित प्रदेशों के वासी हैं, उन सबने अपने वेशभूषा में, जिसमें बहुत सारे लोग हैं पारंपरिक वेशभूषा में, खड़े होकर बड़े गर्व के साथ इस बार पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया। इस समय परेड कमांडर मेजर लोकेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में राष्ट्रीय सलामी गारद जो है हमारी दाहिनी तरफ, जो उनका स्थल है इकट्ठे होने का, वहाँ आगे की तरफ लाल किले के प्राचीर से ज्ञानपथ से होते हुए यहाँ से प्रस्थान करते हुए, और आतुरता से यहाँ उपस्थित हजारों की संख्या में उपस्थित जनसमुदाय, देश के 145 करोड़ जनता और दुनिया भर के लोग आतुरता से इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लाल किले की ये प्राचीर, जिसने पिछले 12 वर्षों में विकास के नए नए प्रतिमानों का बीजारोपण जहाँ से हुआ है लाल किले के प्राचीर से, और इस प्राचीर से विकसित भारत के संकल्प को जन जन तक पहुंचने और जन जन की प्रेरणा प्राप्त करने का अवसर मिला है। राष्ट्र को जब प्रधानमंत्री महोदय संबोधित करते हैं तो उसे सभी सुनते हैं, सभी प्रेरणा लेते हैं, सभी उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि आज राष्ट्र की प्रति सोच, राष्ट्र के प्रति हमारी संवेदनाएं अपनी गहनता के शिखर पर हैं, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, विकसित भारत बनना है। श्रोताओं,
2: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम सब 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज हर दिलों की धड़कन वंदे मातरम के नाद से गूंज रही है। आज हर घर तिरंगा है, हर मन तिरंगा है, और देश उत्साह और उमंग के साथ नए संकल्पों

को लेकर के आज आगे बढ़ रहा है। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश आज उन महान सपूतों का पुण्य स्मरण करती है जिन्होंने देश की आजादी के लिए त्याग बलिदान की पराकाष्ठा की। अपने तप त्याग और बलिदान से आजादी के एकमात्र लक्ष्य को लेकर के अपनी पूरी जिंदगी खपा दी। पूज्य बापू समेत सभी स्वातंत्र सेनानियों को बलिदान की महान परंपरा जगाने वाले महान क्रांतिकारियों को आज मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। आज जो इस समारोह में उपस्थित है उन सब के लिए आज एक ऐतिहासिक पल भी है। आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले दिनों देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप रहा, भूस्खलन का प्रकोप रहा, अनेक परिवार प्रभावित हुए। उनके दुख दर्द को हम भली भांति अनुभव करते हैं। पीड़ित परिवारों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम और पूरा देश उनके साथ खड़े हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है तब अपनी सिद्धियों को प्राप्त करता है जब अपने सपनों अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। मेरे देशवासियों, अब छोटे सपनों से चलने वाला नहीं है। हमें बड़े सपने, क्योंकि बड़े सपने हमारी सोच को भी विस्तार देते हैं, हमारी सोच की क्षितिज को विस्तृत करते हैं, हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है। और मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे संकल्प भी ऊंचे होने चाहिए, क्योंकि जब सपने ऊंचे होते हैं, संकल्प ऊंचे होते हैं, तो हमारे सामर्थ्य की ऊंचाई भी बढ़ती है, हमारे प्रयासों की ऊंचाई भी बढ़ती है, और तब जाकर के हम सपनों को साकार कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों,

आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा, दृढ़ संकल्प के साथ देखा है, नई ऊंचाइयों को छूने के लिए देखा है। और वो सपना है, जब आजादी के 100 साल होंगे, 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे, 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है। और जब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश विकसित होने का संकल्प लेता है, तो ये दुनिया की नजरों में भी हमारे साहस का परिचायक बन जाता है। दुनिया हमारी तरफ देखने का नजरिया बदलने के लिए मजबूर हो जाती है। अरे देशवासियों, और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, पिछले 12 वर्ष में देश के कोटि कोटि नागरिकों ने, दलित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, गांव में रहने वाला हो, शहर में रहने वाला हो, गरीब हो, मध्यम वर्ग का हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, नारी हो, पुरुष हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, हर किसी ने पिछले 12 साल में एक संकल्प के साथ, समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में हर प्रकार से प्रयास किया है। मैं उनके इस प्रयासों का आदरपूर्वक स्वीकार करता हूं, और उसी का परिणाम है कि इतने कम समय में 25 करोड़ देशवासी गरीबी को परास्त करके गरीबी से बाहर निकले हैं। इन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है कि हम कभी फ्रेजाइल फॉल में गिरे जाते थे, 12 साल के भीतर भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं। साथियों, देश आजाद हुआ, बहुत सारे सपने लेकर के आजाद हुआ, लेकिन हम गति नहीं पकड़ पाए, रफ्तार नहीं पकड़ पाए। होती है, चलती है, अरे हो जाएगा, देखा जाएगा, उसी में खोए रहे। 2014 तक आते आते तो पूरे विश्व ने हमें फ्रेजाइल फाइव के उस डंप कर दिया था। ऐसे समय पिछले 12 साल में भारत ने एक नई रफ्तार पकड़ी है, तेज गति से हम आगे बढ़ रहे हैं। और देशवासियों का संकल्प है कि अब 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प को, सामर्थ्य को रोकना नामुमकिन है। अरे देशवासियों, पिछले 12 वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना हुआ, खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ा, आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा, मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा। इतना ही नहीं, आधुनिक युग को देकर के भी, डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी हमने अपना परचम लहराया। इंटरनेट कंज्यूमर करीब करीब 4 गुना बढ़े, पेटेंट ग्रांट होने की संख्या 4 गुना बढ़ी, डिजिटल ट्रांजैक्शन 100 गुना बढ़े, सामान्य मानवीय की सुविधाओं की तरफ भी हमने उतना ही गंभीरता से काम किया। हर साल औसतन 15 गुना ज्यादा तेजी से हमने नल से जल कनेक्शन दिए, हर साल औसतन 6 गुनी ज्यादा रफ्तार से लोग

को गैस कनेक्शन दिए, हर साल चार गुनी रफ्तार से गरीबों के लिए टॉयलेट बनाने का काम किया, हर साल तीन गुना ज्यादा तेजी से गरीबों को घर देने का काम किया। देश ने गवर्नेंस में भी बहुत बदलाव लाया, हजारों की संख्या में कंप्लायंसेस खत्म किए, सैकड़ों की तादाद में पुराने कानून खत्म किए। पिछली शताब्दी के कानूनों से 21वीं शताब्दी की मार्च नहीं हो सकती। हमने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मेट्रो का विस्तार किया, हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ताकत दी। जिस स्पीड से काम, जिस स्केल पर काम किया, ये सब, ये रफ्तार, ये विस्तार, ये अचीवमेंट आजादी के बाद पहली बार पिछले एक दशक ने देखा है। और जब इतनी सारी सिद्धियां हमारे सामने हो, इतनी तेज गति दिखाई देती हो, देशवासियों का सामर्थ्य पल पल प्रकट होता है, तब तो 2047 में विकसित भारत बनने का संकल्प कभी भी अधूरा नहीं रह सकता है। ये सारे आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि हम आगे बढ़ने वाले हैं, मेरे प्यारे देशवासियों। लेकिन उसके लिए आत्मविश्वास की जरूरत होती है, आत्मगौरव की जरूरत होती है, और साथ साथ आत्मनिर्भर भारत होना भी बहुत जरूरी होता है। और इसलिए बीते वर्षों में हमारा कन्विक्शन रहा है कि भारत को हमें अब दूसरे देशों पर निर्भर रह करके नहीं जीना चाहिए, हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। दुनिया में बहुत कुछ मिलता है, सस्ता मिलता है, जल्दी मिल सकता है, लेकिन उससे हमारा सामर्थ्य तैयार नहीं होता, न हमारे सामर्थ्य की कसौटी होती है। और इसलिए हमें भी अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है, अपने हितों की सुरक्षा हमें खुद को करनी है। और इसलिए आत्मनिर्भर भारत का संकल्प बहुत दृढ़ता के साथ हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मेक इन इंडिया, स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल, इन सारे क्षेत्रों में आज हर भारतीय का मन जुड़ रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं सेमीकंडक्टर का। देश आजाद होने के बाद विश्व में तो सेमीकंडक्टर की चर्चा हो चुकी थी, हमारे यहां भी बातें होती थी, लेकिन सेमीकंडक्टर का कोई बड़ा प्लान हम आगे नहीं बढ़ा पाए। और आज स्थिति क्या है? आज की डिजिटल दुनिया में, आज की टेक्नोलॉजी में चिप का महात्म्य हम समझते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है। और इसे चिप के बिना दुनिया थम जाए, ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी है। और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लान, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लान, तीन सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके हैं। और मुझे बताया गया है कि वहां जो प्रोडक्शन हो रहा है वह एक्सपोर्ट होना शुरू हो चुका है। और मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, आने वाले 7-8 वर्ष में और 5, 7 या 8 सेमीकंडक्टर प्लांट बहुत ही जल्द शुरू होने वाले हैं। ये आत्मनिर्भर भारत हमें विकसित भारत की दिशा में जाने का महामार्ग देते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, वैसी ये चर्चा क्रिटिकल मिनरल

तरक्की हो रही है, पूरी टेक्नोलॉजी क्रिटिकल मिनरल पर निर्भर है, भारत इसमें भी अपने आप को सुरक्षित करने में जुटा हुआ है। क्रिटिकल मिनरल का लक्ष्य साझा किया जाए, नेशनल क्रिटिकल मिनरल ये हमने लॉन्च किया। बजट में क्रिटिकल मिनरल कॉरिडोर की हमने घोषणा की है, कई देशों के साथ एग्रीमेंट हो रहे हैं। विश्व के कई देश अब इस क्रिटिकल मिनरल विषय में भारत के पर भरोसा करने लगे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, जैसे सेमीकंडक्टर की बात हो, क्रिटिकल मिनरल की बात हो, वैसे ही जिस टेक्नोलॉजी की दिशा में हम जा रहे हैं, दुनिया जा रही है, उसमें एनर्जी का महत्व और बढ़ता चला जा रहा है। अब एनर्जी के बिना भी नई दुनिया को चलाना मुश्किल है, और इसलिए हमें चीप हो, एआई हो, डेटा सेंटर हो, हमें बहुत बड़ी मात्रा में बिजली की जरूरत होगी। एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारे समय की मांग है, और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य स्तर जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। इसी एक दशक में हम 5 नए न्यूक्लियर रिएक्टर शुरू करने का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। इस वर्ष भारत ने 5 ब्रीडर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करके एक अहम पड़ाव पार किया, और इसके कारण परमाणु ईंधन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में हमें एक बहुत बड़ा सफलता का कदम हमने रखा है। मेरे प्यारे देशवासियों, कई बार संसाधनों की कमी के कारण देश रुकता नहीं है, लेकिन रुकने का कारण सोच की सीमाएं होती है। जब सोच बंद जाती है, सीमाओं में सड़ने लग जाती है, तब हम अपने सामर्थ्य को भी पहचान नहीं पाते। देश को आज कच्चे तेल पर निर्भर रहना पड़ रहा है, और हमारी गलत सोच के कारण है। आप जान के हैरान हो जाएंगे, हमने समुद्री तट पे 99% हमारा समुद्री तट का पूरा हिस्सा ऐसी सोच के कारण नो गो एरिया घोषित करके रखा। हमने ही समंदर के अंदर जाकर के एक्सप्लोरेशन न करने का निर्णय कर लिया था। ये सोच का दारिद्र था, हमने फैसला किया ये नहीं चल सकता। हमने उस 99% को, जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया, और अब हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। हमने पिछले वर्ष उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रखते हुए समुद्र मंथन की घोषणा की थी, और पिछले दिनों हमने 85,000 करोड़ रुपए इस काम के लिए आवंटित करके काम को गति देने का निर्णय कर लिया है। मेरे प्यारे देशवासियों, एनर्जी सिक्योरिटी, इसका मैंने कहा कि हमें अल्टरनेट स्रोतों की तरफ भी पूरी शक्ति लगाना बहुत जरूरी है।

और इसलिए ऊर्जा का सही इस्तेमाल बढ़ाते हुए भारत इसी दिशा में आज तेजी से काम कर रहा है। 2014 से पहले, मतलब आज से 12 साल पहले, हमारे देश में सिर्फ 70 शहरों में पाइप से गैस की व्यवस्था थी, पाइप से गैस डिस्ट्रीब्यूशन होता था। 12 साल में इन 70 शहरों को हमने 700 शहरों तक पहुंचा दिया है। ये होती है रफ्तार, ये होता है विस्तार। 2014 के पहले मुश्किल से 20-22 लाख घरों में पाइप से गैस पहुंचता था, आज 2.25 करोड़ घरों में पाइप से गैस पहुंचाने का काम हो रहा है। 12 वर्ष पहले देश में सोलर एनर्जी की कैपेसिटी सिर्फ 2 गीगावाट थी, 2 गीगावाट, आज 160 गीगावाट हमने प्राप्त किया है लक्ष्य। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं एक और जानकारी देता हूं, हमने इसका लाभ देश के मध्यम वर्ग को, सामान्य परिवार को मिले इस तरफ भी उतना ही ध्यान केंद्रित किया। हमने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना चालू की और आज मुझे संतोष है कि इतने कम समय में 50 लाख घरों का सोलर एनर्जी का काम हम आंकड़ा पार कर चुके हैं, तेजी से चल रहा है। और इसके कारण हजारों घरों का बिजली बिल जीरो हो गया है, हजारों घर अपनी बिजली का उपयोग करने से अतिरिक्त बिजली आज बेच करके कमाई कर रहे हैं। हर परिवार को हम इस काम के लिए 80,000 रुपया सरकार की तरफ से एक एक परिवार को मदद दी जा रही है, तब जाकर के हम इस काम को पूरा कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आपको जानकर के हैरानी होगी, ये जो हमारी रेलवे है उसका इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हमारे देश में 1925 में शुरू हुआ था। 1925 में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम शुरू हुआ, लेकिन 90 साल में, 1925 से लेकर के 90 साल में सिर्फ 30% रेल का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। यानी 90 साल में 30%। हमारी रफ्तार देखिए, लक्ष्य को पाने के लिए हमारी दौड़ देख लीजिए। हमें इन एक दशक के अंदर 100% काम पूरा कर दिया। 90 साल में 30%, 10 साल में 70%, ये होता है काम। और इसके कारण डीजल जो हमें बाहर से लाना पड़ता है उसकी बचत हुई, बिजली से हमारी ट्रेनें चली, पर्यावरण को फायदा होने लगा। मेरे प्यारे देशवासियों, हम यहां तो नहीं रुके हैं, हम दुनिया के अंदर पीछे रहना नहीं चाहते। पिछले दिनों आपने खबर सुनी होगी, भारत ने ईंधन का एक नया क्षेत्र को भी छू लिया है। देश ने पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू कर दी है और मुझे खुशी है ये सबसे लंबी ट्रेन है और सबसे ताकतवर ट्रेन है। और दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेन के क्षेत्र में भी भारत ने अपना झंडा गाड़ दिया है। प्यारे देशवासियों, पिछले 10-12 साल हम लगातार 2047 के लक्ष्य को पाने के लिए दौड़ रहे हैं, एक के बाद एक सोपान सिद्ध कर रहे हैं। हमने सोचा भी नहीं था कि हमें इसमें भी कुछ मुसीबतों का झेलना पड़ेगा।

पिछले 10-12 वर्ष में कितने संकटों का सामना करना पड़ा। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया, सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई। कोरोना से बाहर निकले युद्ध की विभीषा की खबरें आने लगी, कहीं यूक्रेन तो कहीं पश्चिम एशिया, हर जगह पर तनाव का माहौल और पता नहीं भविष्यवेत्ताओं ने तो न जाने क्या क्या घोषणाएं कर दी थी। देश को डराना, देश को भयभीत रखना, देश को चिंतित रखना, इसी में कुछ लोगों को आनंद आता है। वैक्सीन नहीं मिलेगी, कोविड में लोग बचेंगे नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला, ईस्ट एशिया का क्राइसिस आया, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिलेगा, गैस नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा, फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा, सारी दुनिया भर की अफवाहें फैला करके भारत के लोगों को भयभीत करने का, डराने का, चिंता के अंदर डुबो देने का कुछ लोगों को आनंद आ रहा था। लेकिन देश ने देख लिया कि पिछले 10-12 साल की सुविचारित योजनाएं रंग ला रही है और हम इतने बड़े संकट के बावजूद भी नागरिक देवो भव के मंत्र को लेकर के जीते हुए भारत ने जो तैयारियां की थी, एक के बाद एक कदम उठाया था, सोचा नहीं था यह संकट आएगा, लेकिन इस संकट के समय में ये सारी चीजें काम आ गई और आज देश में गैस भी है, पेट्रोल भी है, यूरिया भी है। हम अपनी ताकत के ऊपर खड़े हो रहे, चल रहे। मेरे प्यारे देशवासियों, दुनिया के इन संकटों का प्रभाव हर किसी पर हुआ, हम भी अछूते नहीं। यूरिया के दाम दुनिया में 3000 रुपये पहुंच गए एक बोरी का। आज भी हम मेरे देश के किसानों को वो बोझ सहने के लिए मजबूर नहीं कर रहे, सरकार अपने कंधों पर वो बोझ उठा रहा है। और दुनिया से जो 3000 रुपये में यूरिया का बोरा हमें मिलता है, वो हमारे किसानों को हम सिर्फ 300 रुपये में दे पाते हैं। इतना ही नहीं, डीएपी आज दुनिया में बाजार 5000 पहुंच चुका है, लेकिन मेरे देश के किसानों को दिक्कत ना हो इसलिए 1350 रुपए में आज भी डीएपी देने का काम हम कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, एक समय था जब मैं आत्मनिर्भरता की बात कर रहा था तो कुछ लोग एयर कंडीशन चैम्बर में बैठ करके सोचने वाले लोग हमें बता रहे थे ग्लोबलाइजेशन का क्या होगा, लेकिन दुनिया देख रही है कि पिछले एक दशक में ऐसा लग रहा है कि दुनिया ने ग्लोबलाइजेशन बोलना ही बंद कर दिया। जहां से ग्लोबलाइजेशन की आवाज आती थी वो बंद सुनाई नहीं देती। दुनिया का हर देश अपनी अपनी संभालों के मिजाज की तरफ गया है, लेकिन दुर्भाग्य से इस संकट के कालखंड में कुछ लोगों ने अपना रुतबा दिखाने के लिए संसाधनों को वेपनाइज करने का खेल खेला है। दुनिया अपने पास जो कुछ भी है उसको वेपनाइज करने में लगी है, संसाधनों का वेपनाइज, रिसोर्स का वेपनाइज, पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर्स, दवाइयां, टेक्नोलॉजी की चिप्स। इतना ही नहीं, भूभाग को भी वेपनाइज किया जा रहा है। ऐसे समय अगर हम आत्मनिर्भर के मंत्र को लेकर 10 साल सही दिशा में न चले होते तो हम कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी चुनौतियों का मजबूती से मुकाबला कैसे करते। और हमारी तैयारियां निरंतर बढ़ती जा रही है। मेरे प्यारे देशवासियों, दूसरी तरफ आज भारत का प्रोफाइल पूरी तरफ बढ़ रहा है। आज भारत दुनिया के लिए एक स्वीकृत और सम्मानीय देश के रूप में बन रहा है। भारत के पास स्थिर पॉलिटिकल मैंडेट है, स्थिर सरकार है, भारत का वाइब्रेंट लोकतंत्र है, भारत का मजबूत न्याय तंत्र है और हम सब

को दिशा देने वाला भारत का संविधान है और अब दुनिया हमारे इन सामर्थ्य को पहचानने लगी है। और इसलिए 2014 के बाद दुनिया करीब करीब 40 देशों के साथ हमारा एफटीए एग्रीमेंट हो रहा। अब देखिए कितना बड़ा अवसर आया है। लेकिन मैं ये जो ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं ये एक बहुत बड़ा अवसर है और इसलिए खास करके मैं मेरे एमएसएमईज को कहना चाहूंगा कि हमें इस मौके को छोड़ना नहीं है। दुनिया में हमें पहुंचना है, भारत के उत्पाद की हर चीज विश्व के बाजार में पहुंचे। और हमारा टेक्सटाइल हो, हमारी मशीनरी हो, हमने दवाइयां हो, हमने मौका छोड़ना नहीं है। लेकिन वैश्विक जो पैरामीटर्स हैं उस पैरामीटर को हमें पार करना होगा। हमें दुनिया से जो मिलता है उसे अच्छा देना पड़ेगा, दुनिया में जो मिलता है उसे सस्ता देना पड़ेगा। और पंजाब के लुधियाना से लेकर के तमिलनाडु के तिरुपुर तक हमारा टेक्सटाइल सेक्टर दुनिया में पहुंच सकता है। इतना ही नहीं, केरलम से लेकर के गुजरात और तमिलनाडु से लेकर के बंगाल, ये हमारा समुद्री तट, हमारे मछुआरे भाई बहन आज इस एफपीए के कारण हमारे श्रीप यानी झींगा उसके एक्सपोर्ट की बहुत संभावना बनी है। हमारे सी फूड की दुनिया में पहुंच बनने की संभावना पड़ी हुई है। और इसलिए मैं चाहूंगा हमें इस परिस्थिति का फायदा उठाते हुए हम आगे चलते हुए हम इन कामों को पार करने के लिए प्रयास करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने जो भूमिका आपके सामने रखी है उसके पीछे 2047 का लक्ष्य इन मजबूत नींव पर खड़ा है। 2047 विकसित भारत का लक्ष्य हमने पिछले 10-12 साल में देशवासियों ने जो सामर्थ्य दिखाया है उस सामर्थ्य का हिस्सा है। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सभी का एक चौथाई हिस्सा बीत चुका और अगला एक चौथाई हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम रुक नहीं सकते हैं, हमारी गति नहीं रुक सकती है, हमारी दिशा तय हो चुकी है, हमें प्राप्त करके रहना है। और इसके लिए हमें अपना वर्क कैपिटल बदलना होगा, हमारे वर्क कल्चर को बदलते हुए हमें हमारी सोच को भी बदलना होगा, हमें हमारे काम की गति को भी बदलना होगा। जो काम पिछले 5-7 दशक में नहीं हुए हैं वो काम हमें आने वाले 5-7 साल में करने हैं। और मेरा भरोसा है मेरे देश की युवा शक्ति पर, मेरे देश के नौजवानों पर, मेरे देश की माताओं को बहनों पर, मेरे देश के किसानों पर, मेरे देश के मजदूरों पर कि हम इस सपने को साकार कर सकते हैं। और इसलिए हमें रिफॉर्म की गति को भी आगे बढ़ाना है। और जब मैं रिफॉर्म की बात कर रहा हूं, रिफॉर्म नहीं हमारे लिए कोई कंपल्शन है, नहीं रिफॉर्म ये हमारे लिए कोई बजबर है, हमारे लिए रिफॉर्म ये कन्विक्शन है। आउट ऑफ कन्विक्शन हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़े हैं और हम आने वाले दिनों में भी नेक्स्ट लेवल रिफॉर्म की ओर बढ़ने वाले हैं। और इसलिए सरकार, समाज, उद्योग, उत्पादक, किसान, हर किसी ने अपनी ट्रेडिशनल व्यवस्थाओं में रिफॉर्म करना पड़ेगा, सोच में रिफॉर्म करना होगा, अपने लक्ष्यों को रिफॉर्म करना होगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, हमें एक निश्चित दिशा में को लेकर के चलना होगा। मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे। अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आह्वान करता हूं। आने वाले 5-7 साल में

पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्तधारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा, उनकी शक्ति जोड़ी जाएगी। आने वाले दिनों में जब मैं सप्तधारा की बात करता हूं, सप्तधारा की वैली शक्ति है,

छोटे छोटे ऊर्जे भी बनाने हैं और बड़े बड़े प्रोडक्ट भी बनाने हैं। पूरा वैल्यू चेन हमारा होना चाहिए और उसे लेकर के चाहें हमें कंपोनेंट भी चाहिए और हमें कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग भी चाहिए, कंप्लीट प्रोडक्ट भी चाहिए। डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का भरोसामंद केंद्र बनना होगा। इसके लिए मैं तीन चीजों पर विशेष जोर देना चाहता हूं। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में जो मेरे भाई बहन हैं, ये समय का ये अवसर है, इस अवसर को जाने मत दें। और इसके लिए हमें कॉस्ट, क्वालिटी और स्केल, इसके विषय में वैश्विक मानदंडों से खरा उतरना पड़ेगा। हमारी फैक्ट्रीज कॉम्पिटिटिव हो, हमारे प्रोडक्ट्स यूजर फ्रेंडली हो, हमारा पैकेजिंग दुनिया के लोगों को लुभावने वाला हो, आकर्षित करने वाला हो, हमारा जीरो डिफेक्ट प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग, ये हमारी पहचान बनना चाहिए। हर मैन्युफैक्चरर, हर एंटरप्रेन्योर, हर एमएसएमई से मैं कहना चाहता हूं, ग्लोबल मार्केट में हमारी पहचान विश्वसनीयता और गुणवत्ता के आधार पर होनी चाहिए। क्वालिटी के संबंध में नो कॉम्प्रोमाइज, और इसलिए हमारा मंत्र क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी होना चाहिए। यही हमारा ग्लोबल ब्रांड वैल्यू बनेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, इस सप्तधारा की दूसरी शक्ति है कृषि और फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोसेसिंग। हमें इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। हमारे किसानों ने, अब दुनिया के बाजार खुल चुके हैं, एफपी के कारण हमें एक बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है, हमें वहां पहुंचना है, हमें उस जगह को हाथ लगाना है, हमें खेत से लेकर हमें एक्सपोर्ट मार्केट की ओर जाना होगा। हमारे पारंपरिक खान पान हो, हमारे मिलेट्स हो, हमारे मसाला हो, हमारे फल हो, फूल हो, क्या कुछ नहीं है हमारे पास, वो ग्लोबल ब्रांड्स बनने चाहिए। हमारे किसान केमिकल फ्री खेती को बल देंगे, दुनिया में इनकी मांग और बढ़ने वाली है। और जो ग्लोबल पैरामीटर्स के अंदर हर प्रकार से सिद्ध होने वाले हमारे एग्रो प्रोडक्ट होंगे, तो दुनिया में हम आसानी से पहुंच पाएंगे। मेरी सप्तधारा की तीसरी शक्ति है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। मेरे प्यारे देशवासियों, आज जमाना एआई का है, क्वांटम का है, स्पेस का है, रोबोटिक्स का है, डेटा सेंटर्स का है, पूरी तरह एक नया क्षेत्र खुल चुका है। और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ये भी हर पल हमें चुनौती दे रही है। और इसलिए देश को दुनिया के लिए मार्केट नहीं बना देना, हमें इनोवेशन का हब बनना है। हमने यूपीआई और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में लोहा मनवा लिया है, हमारी ताकत का परिचय करवा दिया है। अब भारत को डिजिटल पब्लिक टेक्नोलॉजीज, उसको भी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है। भारत को नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में लीड करना है। मेड इन इंडिया 6G हर कोने में पहुंचे, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए और हमें उस पर तेजी करनी चाहिए, और इसके लिए हमारा प्रयास कम नहीं होना चाहिए। सप्तधारा की चौथी शक्ति है गतिशक्ति। ये गतिशक्ति देश के अंदर सीमलेस फास्ट कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा। शहरों को हाई स्पीड रेल से हमें जोड़ना होगा। मॉडर्न हाईवे चाहिए, इनलैंड वाटरवेज चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक की व्यवस्था चाहिए। हमें पोर्ट्स को सिर्फ सामान उतारना चढ़ाने की जगह नहीं, दुनिया के शिप्स आकर के लंगर हो जाए इतना नहीं, हमें हमारे पोर्ट्स को पोर्ट लेड डेवलपमेंट ग्रोथ की दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा। हमारी पांचवी शक्ति है सप्तधारा की, वो है रक्षा शक्ति। अरे, रक्षा शक्ति का महत्व हर प्रकार से है। मेरे प्यारे देशवासियों, डिफेंस में आत्मनिर्भर होना अब भारत ने अनुभव कर लिया, दुनिया ने अनुभव कर लिया है, इसके बिना कोई चारा नहीं है। विश्व जब अपनी अपनी ही सोच

कहा है तो भारत विश्व के लिए बाजार बन करके नहीं रह सकता है। हमें डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना होगा, नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप करके हमें ग्लोबल सप्लायर बनने की दिशा में हमें लक्ष्य लेकर के चलना है। हमें ड्रोन काउंटर ड्रोन सिस्टम को विकसित करना होगा और हाइपरसोनिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज उस पर हमें लीडरशिप लेनी होगी। साथियों साइबर सुरक्षा भी आज हर घर के लिए एक समस्या बन रही है, वो भी एक रक्षा का क्षेत्र है जिसमें हमारे युवाओं की जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य का उपयोग हम देश के और दुनिया के लिए कर सकते हैं। हमारी सप्तधारा की छठी शक्ति है ग्रीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी जो ग्रीन जॉब को भी जन्म देती है। हमें ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग इन ग्लोबल स्केल हमें पा करके रहना है। हमें दुनिया में, दुनिया जब ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा करती रहती है हम रास्ते खोजते रहते हैं, हम समस्याओं का समाधान दे रहे हैं और भारत ये ग्रीन मूवमेंट का बहुत बड़ा सामर्थ्य लेकर के चलिए। भारत के पास ब्लू इकोनॉमी के लिए भी बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा लंबा हमारा कोस्ट लाइन है, ब्लू इकोनॉमी के लिए बहुत बड़े अवसर है, फिशरीज है, कोस्टल टूरिज्म है, ओशन टेक्नोलॉजी है, ऐसे कितने ही क्षेत्र हैं जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत सप्तधारा की जब बात करके लेकर चला है तो हमारी सातवीं धारा है और दुनिया के लिए इसका अपना भी एक महत्व है और वो है भारत का सॉफ्ट पावर। भारत के सॉफ्ट पावर की ताकत है। आज योग ने पूरी दुनिया को भारत के साथ जोड़ के रखा हुआ, योग दुनिया के लिए एक ऊर्जा बनता जा रहा है, भारत के लिए विश्वास का बड़ा कारण बनता जा रहा है। इस भारत के पास आस्था के केंद्र हो, जिस भारत के पास आयुर्वेद हो, जिस प्रकार से भारत के पास होलिस्टिक हेल्थ केयर की व्यवस्था हो, हील इन इंडिया का मूवमेंट हो, हम दुनिया के अंदर हमारे सामर्थ्य को लेकर के जा सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट हो, संस्कृति हो, हमारी फिल्में हो, हमारा क्रिएटिव वर्ल्ड हो, वीएफएक्स हो, हमारा एनिमेशन हो, हमारे गेमिंग हो, डिजिटल कंटेंट हो, क्रिएटिव वर्ल्ड के अंदर भारत अपना रुतबा दिखा सकता है। हमने उसको वैश्विक सामर्थ्य के रूप में विकसित करना होगा। आज भारत ने वेव समिट को एक बहुत बड़ी ताकत दी है। दुनिया धीरे धीरे भारत का ये जो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट है उसकी राह देखता रहता है और वो भारत के सॉफ्ट पावर को, भारत के क्रिएटिव दुनिया को परिचित करेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत के पास विशाल वन्य संपदा है, हमारे पास 100 से ज्यादा नेशनल पार्क है। क्षमता बहुत है लेकिन विदेशी टूरिस्टों को आकर्षित करने में हम कम पड़े हैं। हमें मौका है हमारे सॉफ्ट पावर के माध्यम से दुनिया के टूरिस्टों को भारत के लिए आकर्षित करने का, हमारा सामर्थ्य हमें दुनिया को दिखाना है। हम ये काम आरा से करें और हम जल्द से जल्द हम इन लोगों आज दुनिया में स्पोर्ट्स की जो है वो भी एक बहुत बड़ा भारत के प्रति आकर्षण का केंद्र, दुनिया के स्पोर्ट्स इवेंट भारत में क्यों न हो। कॉन्सर्ट इकोनॉमी बहुत बढ़ रही है, देश के नौजवानों का आकर्षण है, विश्व का हर कोई कलाकार चाहता है कभी न कभी भारत की धरती पर अपना कॉन्सर्ट करे। ये बहुत बड़ा अवसर है, हमें इसको मोबिलाइज करने के लिए व्यवस्थाएं खड़ी करनी होगी। साथियों सप्तधारा की सप्त शक्तियां उद्देश्य सिर्फ एक सेक्टर में प्रगति करने का नहीं है, एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हमें राष्ट्र को जो लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हैं, जो एम्बिशन लेकर के चल रहे हैं उस स्केल को हमें पार करने की दिशा में काम करना है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ चीजें मैंने बताई हैं लेकिन मैं इससे भी आगे सोचता हूं, मैं जरा देश को झकझोरना चाहता हूं, मैं देश की शक्ति को भी झकझोरना चाहता हूं। देश यानी सिर्फ सरकार नहीं होती है, देश यानी हर नागरिक जुड़ता है। क्या हम सोच नहीं सकते कि फॉर्च्यून 500 की चर्चा तो बहुत सुनते हैं, आने वाले एक दशक में इन फॉर्च्यून 500 में 50

बड़ी कंपनियां भारत की क्यों न हो, ये लक्ष्य हमारा क्यों न होना चाहिए। आज बैंकिंग सेक्टर फल फूल रहा है, दुनिया की टॉप बैंक के अंदर भारत की बैंक का झंडा भी क्यों न फहरता हो, भारत की बैंक भी टॉप बैंक, पांच बैंक में भारत की भी एक बैंक होनी चाहिए। भारत की फार्मा की दिशा में हमने बहुत काम किया है, लेकिन समय की मांग है कि दुनिया की पांच बड़ी फार्मा कंपनियों में भारत की भी एक दो फार्मा कंपनियों का नाम गूंजना चाहिए, भारत उसमें अपना स्थान बनाना चाहिए। लॉ फर्म्स होते हैं, रेटिंग एजेंसी होती है, क्या समय की मांग नहीं है कि ग्लोबल लीडरशिप अब हमारे हाथ में होनी चाहिए? टैलेंट है, सामर्थ्य है, हमारा लंबा इतिहास भी है, भाषाओं पर हमारा प्रभुत्व है, हमें विश्व में पहुंचना चाहिए। हमारी कोई कंसल्टिंग फर्म, अकाउंटिंग फर्म दुनिया के टॉप फर्म्स के अंदर क्यों नहीं होनी चाहिए? भारत की टेक्नोलॉजी कंपनियां दुनिया के अंदर सिरमौर हो, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमारे ऐसे ब्रांड हो जिससे दुनिया आकर्षित होती हो, हमारे ब्रांड हमारे देश की पहचान हो और विश्व के लिए एक डेस्टिनेशन बन जाए, उस दिशा में हमें काम करना है। और इसके लिए मैं राज्य सरकारों को कहना चाहता हूं, मैं स्थानीय स्वराज की संस्थाओं को कहना चाहता हूं, भारत सरकार का भी यह दायित्व है कि हमें हमारे रिफॉर्म की गति बढ़ानी होगी, हमें 2047 के लक्ष्य के अनुरूप हमारी व्यवस्थाओं को विकसित करना होगा। हमें बीते हुए काल के नीति नियमों से नहीं चल सकते, हमें आने वाले सपनों के हिसाब से नीति नियमों को गढ़ना होगा, और इसको अगर हम गढ़ेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है और मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं, इसी रास्ते मेहनत में कोई कमी न करते हुए हम विकसित भारत का सपना पार करके रहेंगे। हमें सबको मिलकर के चलना है, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, इंडस्ट्री हो, हम सब ने मिलकर के आगे बढ़ना है। हमें रिफॉर्म्स करते रहना है, रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाते रहना है, और मैंने पहले भी कहा था, हम रिफॉर्म कंपल्शन से नहीं, कन्विक्शन से करें, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करें। मेरे प्यारे देशवासियों, जब मैं विकसित भारत की बात कर रहा हूं, देश को तेज गति से आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूं, उसका सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा साधक कौन है? अगर साधक है तो मेरे देश का युवा है, मेरे देश की युवा शक्ति है। विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है, और इसलिए हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है। युवाओं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ हमें आगे बढ़ना है। साथियों, पिछले 10-12 साल में उस दिशा में बहुत कुछ हुआ है। स्टार्टअप इंडिया अभियान, आज पूरे देश में 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप बन गए। देश के नौजवान खुद तो काम कर रहे हैं, अनेकों को रोजगार दे रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपया इनोवेशन फंड भारत सरकार ने घोषित किया है। मैं देश के नौजवानों को कहना चाहता हूं, आप अपने सपनों को लेकर के आइए, संसाधनों की कमी नहीं रहने देंगे। 1 लाख करोड़ रुपया आपके दिल दिमाग को सामर्थ्य देने का एक व्यवस्था हमने कर दी है। रिसर्च के नए अवसर मिले, डिजिटल इंडिया के नए सस्ते डेटा युवाओं को सशक्त किया। दुनिया में सस्ता डेटा कहीं है तो भारत की धरती पर, और देश के नौजवानों को उसने नई ताकत दी है। स्किल इंडिया हमने नेशनल प्रोग्राम बनाया है, स्पेस सेक्टर को हमने ओपन कर दिया, नेशनल ड्रोन पॉलिसी हमने बनाई है, खेलो इंडिया पॉलिसी बनाई है, 35 वर्षों तक एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी, नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आए हैं, और इसका फायदा मिडिल क्लास के परिवारों को हुआ है। साथियों, 2004 से 14 आंकड़े मुझे देना चाहिए आपको, 2004 से 14 हमारे देश में 350 से भी कम यूनिवर्सिटी थी, और आज 10-12 साल के भीतर

करीब 650 नई यूनिवर्सिटी जुड़ चुकी है, करीब 1000 का आंकड़ा हम पहुंच रहे हैं। 2014 के पहले मेडिकल की सिर्फ 400 सीटें हुआ करती थी, आज करीब करीब 850 सीटें मेडिकल की हो रही है। इतना ही नहीं, अब विदेशी यूनिवर्सिटी भी भारत की धरती पर आ रही है। भारत के अंदर विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्री मेरे नौजवान को मिले, इसका प्रबंध भी हो चुका है। हमारे देश के युवा मन बचपन से ही टेक्नोलॉजी की तरफ आकर्षित हो, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं, और इसलिए हमने करीब 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब छोटे छोटे बच्चों के हवाले कर दी है, ताकि उनका इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के अंदर उनका मन बने। 12 वर्ष युवा, हमने अनेक रास्ते खोले, हम स्टार्टअप ओपन कर दिया। आपने देखा होगा भारत के प्राइवेट स्टार्टअप 28 साल के एवरेज उम्र के बच्चों ने, नौजवानों ने दुनिया में पहले ही ट्रायल में अपना सैटेलाइट लॉन्च कर दिया और रॉकेट लॉन्च कर दिया उन्होंने, बहुत बड़ा काम कर दिया। साथियों, आज करीब 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप है। हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था, एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान एआई की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य। मेरे साथियों, बायो इकोनॉमी एक नया क्षेत्र है। एक समय था 2014 के पहले सिर्फ 60,000 करोड़ रुपए का बायो इकोनॉमी का काम होता था। मेरे देश के नौजवान, आपने क्या कमाल कर दिया है। देखिए, नीतियां जब सही होती है, लक्ष्य जब साफ होता है, तो मेरे देश के नौजवान कैसा करके देते। बायो इकोनॉमी में देश की युवा शक्ति ने सामर्थ्य दिखाया। 2014 के पहले जो 60,000 करोड़ का कारोबार था, आज वो कारोबार बायो इकोनॉमी का, बायो इकोनॉमी 20 लाख करोड़ पहुंच चुकी है। दोस्तों, दो हजार 9-10 का कालखंड था, सिर्फ 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे देश में बिके थे, 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके थे 2009-10 में, 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल। इस 25-26 में 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके। मेरे प्यारे देशवासियों, एविएशन सेक्टर भी मेरे नौजवानों के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। नए एयरपोर्ट, नए रूट, नए रोजगार के अवसर बना रहे हैं। मेंटेनेंस, ओवरहॉलिंग, इसके भी कारण देश में बहुत बड़ी मात्रा में स्किल मैन पावर को काम मिल रहा है। मेड इन इंडिया हवाई जहाज बनाने की दिशा में हमने सफलता पाई। मेड इन इंडिया डिफेंस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C295 ऑलरेडी अपनी उड़ान भर चुका है, सफल उड़ान भर चुका है। ये देश के नौजवानों के लिए। मेरे साथियों, ड्रोन ने भी बहुत बड़ा काम किया है। स्वामित्व योजना, गांव में ड्रोन से स्वामित्व योजना सफल हो रही है। करीब 3.25 करोड़ परिवारों को स्वामित्व योजना का लाभ मिला है, और इसके कारण 140 लाख करोड़ रुपए जैसी संपत्ति अनलॉक हुई है, जिसके कारण बैंक से लोन मिल सकता है, लोग अपना कारोबार कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे मध्यम वर्ग के परिवारों के सामने एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है कोचिंग क्लासेस की स्पर्धा। हर माँ बाप को लग रहा है कि कोचिंग क्लास में बच्चे को नहीं भेजा तो हम प्रतिष्ठित परिवार नहीं है। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए 1000 करोड़ रुपए का उनका खर्च है, वो भी बचे, बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, परिवार पर आर्थिक बोझ ना आए, और इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री

ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं हमेशा कहता आया हूं, जो खेले वो खिले। तो मैं खेले वो खिले की बात कर रहा हूं तब, मेरे प्यारे देशवासियों, आज भारत खेल की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। अब खेल के पोडियम में भारत का राष्ट्रगीत सुनाई देता है, भारत का राष्ट्रगान सुनाई देता है, भारत का तिरंगा झंडा लहराता दिखाई नजर आ रहा है। टॉप्स योजना ने बहुत बड़ी सफलता की है। खेलो इंडिया गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, विंटर गेम्स, बीच गेम्स, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स के लिए कोचिंग, स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स के लिए न्यूट्रिशन, इन सारे विषयों में भारत अब महारत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नौजवानों के लिए पूरा नया क्षेत्र, खिलाड़ी न बन सके तो उसकी सपोर्ट सिस्टम में भी बहुत बड़ा क्षेत्र खुल रहा है। स्पोर्ट्स की दुनिया में भारत का प्रदर्शन बेहतर होता रहा है और हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बन करके आगे बढ़ रहे हैं और 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स का को भारत होस्ट करने वाला है। और मेरे साथियों, दुनिया में जो ओलंपिक की खेल होते हैं, करीब 40 प्रकार के गेम होते हैं और करीब 350-350 स्पर्धाएं होती ओलंपिक में। और आपको जानकर के दुख होगा मेरे देशवासियों, मेरे नौजवानों, मैं आपको चुनौती देता हूं, मैं आह्वान करता हूं, मैं आपकी मदद चाहता हूं। 350 जितने स्पर्धाओं में भारत को तिहाई खेलों में कहीं होता ही नहीं, हमारी मौजूदगी नहीं होती, हम क्वालिफाई नहीं होते। हमने तय किया है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा, हम चाहते हैं कि वो भारत में हो, लेकिन 2036 में जिन विधाओं में आज भारत खेलता नहीं है, जिन विधाओं में भारत क्वालिफाई नहीं करता है, जिन स्पर्धाओं में भारत ने छोड़ के रखा है, 3/4 हिस्सा हमारे इंतजार कर रहा है, भारत उस पर बल देगा। और इसके लिए हम टैलेंट हंट का एक अभियान भी चलाना चाहते हैं। हमें अगर 2036 के लिए खिलाड़ी चाहिए तो आज जो 5 साल 10 साल 15 साल की उम्र के नौजवान है, बेटे हैं, उनके तरफ ध्यान देना होगा, उन बेटियों पर ध्यान देना होगा। और इसलिए 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव गांव, शहर शहर, स्कूल स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा। बच्चों की प्रतिभा को देखा जाएगा और फिर उनको स्पेशल ट्रेनिंग दे करके देश के लिए खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी बनाए जाएंगे। मेरे प्यारे युवा, देश के सामने, देश के नौजवानों के सामने नशा एक बहुत बड़ा संकट बनता जा रहा है। नशा मुक्त भारत, ये हम सबका सामूहिक दायित्व तो होना चाहिए। हमारे उज्जवल भविष्य के लिए हमारी युवा पीढ़ी मजबूत हो, हमारा युवा सामर्थ्य हमारे देश के लिए काम आए, इसलिए नशा मुक्त भारत। पिछले दिनों माई भारत के वॉलेंटियर्स ने, देश के एनजीओ ने, देश के सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों ने, देश के आध्यात्मिक पुरुषों ने मिलकर के नशा मुक्त भारत का 100 सप्ताह का एक कार्यक्रम तय किया है। 100 सप्ताह तक एक अभियान चलने वाला है। मैं हर परिवार को कहना चाहता हूं कि आप भी इस अभियान का हिस्सा बने, आप इसके साथ जुड़िए और देश के नशा मुक्त भारत के सपने को पूरा करने के लिए आप आगे आइए। मेरे प्यारे देशवासियों, 21वीं सदी में दशकों पुरानी जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को खत्म करना बहुत अनिवार्य है। नक्सलवाद, माओवाद, लाखों युवाओं के भविष्य को तबाह कर दिया, अनेक माताओं के दुर्बल नौजवानों को छीन लिया,

बर्बाद कर दिया और मां बाप के सपनों को चूर चूर कर दिया। इस नक्सलवाद ने चार चार दशक तक हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्से को, बहुत बड़ी आबादी को दबोच करके रखा था, बंदूक के नोक पर दबोच करके रखा था, संविधान की धज्जियां उड़ा दी थी और देश के सामान्य नागरिकों की रक्षा में 3,500 से ज्यादा हमारी पुलिस के, सुरक्षा बल के जवान शहीद हो गए। युद्ध के अंदर जितने सैनिक मरते हैं उससे ज्यादा हमारे पुलिस जवानों को जान की बाजी लगानी पड़ी ताकि देश के सामान्य मानवी को सुरक्षा मिले। ये नक्सलवाद ने धरती को लहू लुहान कर दिया था। 2014 में आपने जब हमें मौका दिया, उसी दिन हमने संकल्प लिया था कि हम देश को नक्सलवाद से मुक्त करेंगे। और आज मुझे खुशी है कि नक्सली माओवादी हिंसा आखिरी सांस भी शायद रहने की अब तो ताकत नहीं रही है, पूरी तरह उसे खत्म करने की दिशा में जहां पर कभी नक्सलवादियों की गोलियां चलती थी, जहां पर कभी धरती रक्त रंजित रहा करती थी, आज उसी नक्सल क्षेत्रों में, उसी इलाकों में नक्सल मुक्त होने के कारण विकास, विश्वास और प्रयास का तिरंगा लहरा रहा है, मेरे प्यारे देशवासियों। लेकिन इस चुनौती को हमने कम नहीं आंकना, इस चुनौती से हमें और भी सावधान रहने की जरूरत है। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे, सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है, लेकिन हथियारी नक्सल तो गए लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, सुरक्षित भारत बनाना हम सबका दायित्व है। चुनौती सीमा के भीतर हो या सरहद से बाहर, भारत हर परिस्थिति के लिए तैयार है। आज युद्ध का नेचर बदल रहा है, अब युद्ध सीमा पर ही होता है गारंटी नहीं है, युद्ध सीमा के अंदर कहीं रिफाइनरी पे जाकर के, कहीं बैंकिंग सेक्टर को जाकर के, कहीं डेटा सेंटर को जाकर के, एक प्रकार से लड़ाई का नया रूप इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़े जा रहे हैं, फैक्ट्रियां तोड़ी जा रही है। हमने मिशन सुदर्शन चक्र की पिछले सालों घोषणा की, बहुत तेजी से उस पर काम चल रहा है। आज डिफेंस एक्सपोर्ट हमारा करीब 50 गुना बढ़ा है, करीब 100 देशों में हमारे अस्त्र शस्त्र पहुंच रहे हैं, वैश्विक पटल पर भारत की प्रतिष्ठा धीरे धीरे बढ़ रही है। बदलते हुए समय में अस्त्र शस्त्र की तरफ काम करना है, सैन्य बलों का सामर्थ्य बढ़ाना है, लेकिन साथ साथ नागरिकों को भी तैयार करना होगा। पिछली शताब्दी के युद्धों के अनुरूप जो सिविल डिफेंस की व्यवस्थाएं हमारे देश में विकसित हुई है वो कालबाह्य हो चुकी है, और इसलिए मैं आज लाल किले से घोषणा कर रहा हूं कि हम आने वाले दिनों में सिविल डिफेंस का एक वाइब्रेंट नेटवर्क खड़ा करेंगे, आधुनिक व्यवस्थाओं से उनको परिचित कराएंगे, आधुनिक संकटों से नागरिकों को रक्षा करने की क्या व्यवस्था हो सकती है, एक बहुत बड़ा वॉलेंटरी फोर्स सिविल डिफेंस का आधुनिक चुनौतियों को पार करने वाला हम बनाने वाले हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, राष्ट्र के निर्माण में आज हमारी बहनों बेटियों

बेटियों का योगदान हम सबके लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का कारण बना हुआ है। फाइटर जेट हो या सिविल एविएशन, हमारी बेटियां सबसे आगे दिखाई दे रही है। खेलकूद का मैदान हो, हमारी बेटियां आगे देखकर दिखाई दे रही है। स्टेम एजुकेशन में भर्ती होने की प्रक्रिया हो, सबसे ज्यादा हमारी बेटियां आगे दिख रही है। आज सेना में भी एनडीए से जो बेटियां निकली हैं, वो बड़े रौब के साथ देश की सेना का नेतृत्व करने का सामर्थ्य दिखाने लगी। मेरी बेटियों की ताकत कैसी है? मैं पिछले दिनों सारण में एक सेमीकंडक्टर प्लांट में गया, वहां आदिवासी बेटियां, देश के अलग अलग कोने से आई हुई बेटियां काम कर रही, वो उस गांव से आई थी जिन्होंने पासपोर्ट क्या होता है पता तक नहीं था। वो बेटियां विदेशों में गई ट्रेनिंग लेकर के आई और आज चिप निर्माण का काम कर रही है और बड़े कॉन्फिडेंस, मैं जो उनका कॉन्फिडेंस देखा, मैं सचमुच में बहुत प्रभावित हुआ था। आज तीन करोड़ बहनों को हमने लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया था, उसको पार कर लिया। अब हम 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। 3 करोड़ नई लखपति दीदी बनना मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव मातृशक्ति के द्वारा आने वाला है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज पंचायतों में, नगर पालिका में, महानगर पालिका में बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन कर रही है, समस्याओं का समाधान कर रही है, बहुत ही सक्षम नेतृत्व दे रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था, लेकिन किसी न किसी कारण से राजनीति के अखाड़े में पिछले 40 साल से ये सपना हमेशा राजनीतिक अखाड़े का शिकार हो गया। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता हूं, आग्रह करता हूं, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए, उन महिलाओं के सम्मान में आगे आइए और जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले। ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यश लीजिए, आप भी क्रेडिट लीजिए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए। मेरे प्यारे देशवासियों, विकसित भारत का संकल्प तभी पूरा होगा जब विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा। 2014 से पहले सिर्फ 25 करोड़ लोगों के पास सोशल सिक्योरिटी का कवर था, सिर्फ 25 करोड़ का। साथियों, पिछले 5-7 दशक में सिर्फ 25 करोड़, हमने एक दशक के भीतर भीतर 100 करोड़ देशवासियों को सोशल सिक्योरिटी का कवच दिया है। आयुष्मान भारत योजना से 70 साल की उम्र के बुजुर्गों से भी आज 5 लाख रुपए तक मुफ्त दवाई की व्यवस्था हो रही है। करोड़ों करोड़ों परिवारों को इसके कारण बहुत बड़ी सुविधा मिली है और इस आयुष्मान कार्ड के कारण 2 लाख करोड़ रुपया जो दवाई और ऑपरेशन के पीछे खर्च होना था, वो मेरे परिवारों के बच्चे हैं, वो गरीब परिवार है, वो मध्यम वर्ग के परिवार है, उनको इतनी बड़ी। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मुझे एक काम के लिए आपकी मदद चाहिए। मैं आप सबसे एक मदद मांग रहा हूं। सभी नौजवानों से मैं चाहता हूं कि आप इसका नेतृत्व करिए। आपका 1 या 2 घंटे देश को बहुत बड़ी शक्ति देने वाला। आपको लगेगा ये 1-2 घंटे में मैं देश की क्या शक्ति, मैं बताता हूं, आप बहुत बड़ी शक्ति बनने वाले। और इसलिए हर घर में वातावरण बने। इन दिनों देश में जनगणना का काम हो रहा है, सेंसस का काम हो रहा है, गिनती चल रही है। और गिनती सिर्फ आंकड़ों से बात बनती नहीं।

उसकी बारीकियों से नीतियां बनती हैं, योजनाएं बनती हैं, देश आगे बढ़ने की अपनी रूपरेखा तैयार करता है। और इसलिए सटीक जानकारियां होना बहुत जरूरी है। कभी कभी जो सरकार की तरफ से प्रतिनिधि आते हैं वो इतनी जल्दी में होते हैं, कभी स्पेलिंग एक लिख देते हैं, कभी अलग लिख देते हैं, और इसके कारण अल्टीमेट परिणाम हमें सही मिलने में दिक्कतें आती हैं। अब जब टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और इस बार निर्णय किया है, आप स्वयं भी जनगणना में अपनी जानकारियां अपने मोबाइल फोन से भर करके दे सकते हैं। बाद में कोई बाबू आएंगे, कोई प्रतिनिधि आएंगे, आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन आप परिवार के सब बैठ करके अगर डिजिटली अपना रजिस्ट्री करवा दे, सारी बारीकियां, स्पेलिंग में भी गलती ना हो, कोई भी जानकारियों में गलती ना हो, आप जितनी परफेक्ट जानकारी देंगे देश को आगे बढ़ने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। और इसलिए मैं देश के नौजवानों कहता हूं कि आप अपने परिवार के लोगों को बिठा करके पूरे फॉर्म को समझिए, पहले कागज पे फॉर्म को भर दीजिए, कोई गलती है तो करेक्ट कर लीजिए, और फिर टेक्नोलॉजिकली उसको डिजिटली इसको अपलोड कर दीजिए। आप देखिए इतना बड़ा काम देश कर लेगा और देश का समय और शक्ति सही काम के लिए उपयोग आएगा। और इसलिए मेरे देश के नौजवानों को जनगणना के इस काम में सक्रियता से जुड़ने के लिए मैं आग्रह करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने लाल किले से पंच प्राण की बात कही, इस पंच प्राण ने देश को अपने आत्मगौरव की ओर लेकर के आगे बढ़ने का, लक्ष्यों को पार करने के सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा संबल दिया है। हमें गुलामी की मानसिकता हर पल मिटाते ही रहना है। जिस भारत का सपना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देखा था, बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा था, पंडित नेहरू ने देखा था, सरदार पटेल, भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु ने देखा था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, भगवान बिरसा मुंडा ने देखा था, ज्योतिबा फुले ने देखा था, उन सब से प्रेरणा लेकर के हम आगे बढ़े। इस आइए इस संकल्प को हम दोहराएं, स्वयं से ऊपर राष्ट्र का हित हो, स्वयं से ऊपर राष्ट्र का हित हो और कर्तव्य ही हमारी पहचान हो। मैं सभी देशवासियों से कहूंगा, समय हमारा है। मैं सभी देशवासियों को कहूंगा, समय हमारा है, अवसर हमारा है, संकल्प हमारा है। आइए सपनों को संकल्प बनाए, संकल्प को सामर्थ्य बनाए और सामर्थ्य को सफलता में बदल के रहे। आइए हर कदम को विकास का कदम बनाए, कदम से कदम मिलाए, मन से मन मिलाए, लक्ष्य से जुड़े रहे, एक दीप से जले दीप हजारों, आओ मिलकर विकसित भारत बनाए। इसी एक भावना के साथ इस मंगल पर्व पर आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: महोदय और वो सामने से
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अभी लाल किले की प्राचीर पर बने ध्वज स्थल से राष्ट्र को संबोधित किया। प्रेरणादायी वक्तव्य आपके जो लंबे समय तक सभी को प्रेरित करते रहेंगे। और इस समय हम देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो राष्ट्रीय ध्वज फहराया है, शान से वो लहराता हुआ और हमारे दाहिनी ओर से तीन रंगों के गुब्बारे इस समय गगन को चूमने के लिए तैयार ऊपर उठते हुए सभी की निगाहें इन गुब्बारों को देखती हुई माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय अपने केंद्रीय मंत्रियों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और ध्वज स्थल से ही हाथ हिलाकर जो विशाल जन समुदाय यहाँ पर उपस्थित है उनका अभिवादन, उनका स्नेह भी स्वीकार कर रहे हैं। साथ ही जो एनसीसी कैडेट्स बैठे हैं, माई भारत के स्वयंसेवक इस समय बैठे हैं अपने श्वेत वस्त्र धारण किए हुए और बीच में नारंगी रंग से वंदे मातरम जिन्होंने लिखा है, वो करतल ध्वनि से माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति सम्मान और स्नेह प्रकट करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी का इस समय लाल किले की प्राचीर से उसके प्रांगण में प्रस्थान हो रहा है और सभी केंद्रीय मंत्री अपने अपने स्थान पर खड़े होकर हाथ जोड़कर माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करते हुए उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हुए शान से हमारा तिरंगा यहाँ पर लहराता हुआ सभी की निगाहें कभी प्राचीर की ओर, कभी आसमान में उड़ते तीन रंगों के गुब्बारों की ओर और कभी दाहिनी ओर जाती है, क्योंकि सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के वाहनों का काफिला उस ओर से आएगा कुछ ही देर में और सभी इस उत्कंठा से भरे हुए कि अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने स्वयं को प्रधान सेवक कहा है, उन्हें नजर भर देख लें और

0: और अगर ये सौभाग्य प्राप्त हो जाए कि माननीय प्रधानमंत्री जी उनके सर पर हाथ रख दें तो जीवन भर के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि और एक ऐसी याद रहेगी जो इन युवाओं को तो प्रेरित करेगी ही, साथ ही इनके पूरे परिवार को और विद्यालयों को भी प्रेरित करेगी। हम आपको बताएं कि हर घर तिरंगा माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो ये अभियान शुरू हुआ है 9 अगस्त से इस बार 17 अगस्त तक चलेगा। इस बार नया ये है कि सूर्य पथ तिरंगा भी हमारे पास है जिसने कि भूखंड और कालखंड की सीमाओं को छोटा कर दिया है। यही है वसुधैव कुटुंबकम का वास्तविक भाव। अलग अलग देशों में जहाँ जहाँ सूर्य रश्मियाँ पहुँचेंगी यानी सूर्योदय के साथ ही भव्य उदय होगा हमारे राष्ट्र ध्वज का भी, हमारे प्रिय तिरंगे का भी। विभिन्न देशों में स्थित भारतीय दूतावास और मिशन के परस्पर संयोजन से तिरंगा फहराया जाएगा, अनेक माध्यमों से प्रदर्शित किया जाएगा, वैश्विक स्तर पर तकनीक का परंपरा के साथ समागम होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहां राष्ट्रीय ध्वज फहराया और साथ ही इस मंच से आपने बात की शक्ति की, सप्त धारा की, यहीं से पंच प्रण का उल्लेख हुआ, स्वच्छ भारत यहीं से हमने अपनाया और फिर उसे दुनिया को भी दिखाया कि भारतीय जब एकजुट हो जाएं एक लक्ष्य के प्रति तो क्या कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सराहना इसी मंच से हुई। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने विनिर्माण क्षेत्र में विशेष उपलब्धियों को हासिल करने की प्रेरणा दी है, इनोवेशन का हब भारत को बनाने की बात कही है, भारत की सॉफ्ट पावर किस तरह दुनिया में अपना स्थान बना रही है इसका उल्लेख किया, तो साथ ही खेल क्षेत्र और शिक्षा क्षेत्र का भी उल्लेख किया है।
1: और इस समय जी,
0: माननीय प्रधानमंत्री जी के वाहनों का काफिला हम देख रहे हैं कि इस समय बढ़ चला है ज्ञान पथ की ओर, और जो NCC कैडेट्स हैं वो उत्सुकता से अपने अपने स्थान पर खड़े होने को आतुर हैं। जानेंद्र,
1: निश्चित रूप से उनके लिए ये बहुत विशेष अवसर होता है जब माननीय प्रधानमंत्री महोदय या लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करने के बाद जब वे यहाँ से प्रस्थान कर रहे होते हैं, उस समय इन सभी उपस्थित बच्चों को उनका स्नेह मिलता है। यहाँ पर दर्शक कार्यक्रम की समाप्ति के बाद भी बड़ी उत्कंठा से यहाँ उपस्थित होते हैं इस बात के लिए, और उस काफिले के राह के किनारे कहीं खड़े होकर एक झलक पाने को आतुर होते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का युवाओं के साथ जो जुड़ाव है, जो कनेक्ट है, वो बहुत अद्भुत है, और इसीलिए वो देश, चूंकि ये युवाओं का देश है और इस देश के भविष्य में 1 करोड़ ऐसे युवाओं को जो कि कर्तव्य को अपनी पहचान बनाए, राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखे, ऐसे 1 करोड़ युवा अपने आप को कौशल के साथ जोड़ते हुए राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं, इस बात का बहुत विशेष उल्लेख किया उन्होंने। इसके पहले भी उन्होंने अनेक बार युवाओं को केंद्र में रखते हुए अपनी विजन, अपने विजन को, अपनी सोच को यहां से इस मंच से साझा किया है। शक्ति की सप्तधारा का बहुत विशेष उन्होंने आज एक नई सोच दी है इस देश को और देश के प्रगति को, विकास को, और इसमें जो 7 अलग अलग क्षेत्रों की उन्होंने बात की, दरअसल इसके पीछे चूंकि कार्य तो हर क्षेत्र में हो ही रहा है लेकिन इसको गति देने की बात है, इसको शक्ति देने की बात है। और अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय अपने वाहन से उतरकर बच्चों के बीच में पहुंच रहे हैं, इसलिए करतल ध्वनि के जो गूंज है वो आप तक पहुंच रही होगी। प्रधानमंत्री जी ने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए उन बच्चों को अपना आशीष दिया है, और जो 7 बच्चे वहां निकट हैं उनके, उन बच्चों के साथ वो हाथ मिलाकर उन्हें अपना स्नेह दे रहे हैं। इस समय बच्चों के लिए ये विशेष अवसर होता है क्योंकि एक बार का दृश्य मुझे याद है, पहले का, बच्चे जब खड़े होते हैं तो सब निकट आने की कोशिश करते हैं और ऐसे में थोड़ी सी अफरा तफरी भी होती है, लेकिन चूंकि अनुशासन और संयम का ये एक दृश्य इस समय NCC के विद्यार्थी यहाँ पर दिखा रहे हैं, तो वो दृश्य हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। सभी अपने अपने स्थान पर बैठे हुए युवा साथी अभिवादन कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी का और उनका स्नेह प्राप्त कर रहे हैं
0: जी। और जिन बालिकाओं से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाथ मिलाया है उनके लिए तो ये एक ऐसा पल है जो वो लंबे समय तक याद करेंगी, और जब एक लक्ष्य चुनेंगी, अपने जीवन को एक दिशा देंगी, उस समय भी ये पल उन्हें अभिभूत करता रहेगा, प्रेरित करता रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय NCC कैडेट्स के बीच से दोनों ओर हाथ हिलाते हुए जैसे एक साथ सभी को अपना स्नेह, अपना आशीष देना चाहते हूं, और ये कैडेट्स जो हैं बहुत ही मुश्किल से संयम दिखा रहे हैं, इस समय अपने अपने स्थान पर बैठे हुए हैं निर्देशों का पालन करते हुए, लेकिन अपना स्नेह लगातार प्रकट कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति। हवा में दोनों हाथ हिलाते हुए नमस्कार भी कर रहे हैं और साथ ही भारत माता की जय के नारे यहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष लगा रहे हैं। मैं भारत के उज्ज्वल भविष्य का प्रमाण हूं, राष्ट्र हित में होने वाला सारा उत्थान हूं, स्वामी विवेकानंद के विचारों का चितवाण हूं, मैं युवा हूं, मैं भारत का प्राण हूं।
1: प्रधानमंत्री जी ने एक जो उनके पूरे व्यक्तित्व और कृतित्व से एक बात, एक

0: संदेश जो साफ झलकती है वो है नई सोच नागरिक देवो भव का, नागरिक को केंद्र में रखते हुए अपने पूरे सुशासन के तंत्र को व्यवस्था को उस ढंग से रूप देना, आकार देना। बच्चों के बीच से होते हुए प्रधानमंत्री महोदय अब दर्शक दीर्घा की तरफ जा रहे हैं। हमारी बाई तरफ जो दर्शक दीर्घाएं बनी है उसके रेलिंग के साथ साथ बहुत बड़ी संख्या में लोग बड़े उत्साह उमंग से अपने अपने मोबाइल को हाथ में पकड़े हुए वे कोई सेल्फी लेना चाहता है, कोई फोटो खींचना चाहता है, कोई हाथ हवा में लहराते हुए प्रधानमंत्री जी का अभिवादन और अभिनंदन कर रहे हैं। देश का ये वो नेतृत्व है जो दुनिया में सबसे अधिक लोकप्रिय है, जो विकसित भारत की सोच और विजन को इस देश को जिन्होंने दिया है, इस देश के करोड़ों युवाओं को नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और आत्मगौरव का भाव जिन्होंने भरा है, और हर व्यक्ति आज हर भारतवासी इस विश्वास के साथ कि भारत विकसित होगा, भारत आत्मनिर्भर होगा, भारत अपने स्वदेशी सोच और अपने पुरातन चिंतन के साथ, धर्म और आध्यात्म के साथ विश्व में अपनी पहचान बनाएगा, भारत विकसित भी होगा, अपनी विरासत के साथ विकसित होगा। इस समय दर्शक दीर्घा में काफी आगे तक प्रधानमंत्री जी बढ़ चुके हैं और उनकी इच्छा होती है कि कोई भी दूर दूर तक जहां तक भी दर्शक आए हुए हैं, और बल्कि ये देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं, इसमें ऐसी बड़ी संख्या में हमारे दर्शक हैं जो अलग अलग जो सरकार की नीतियां रही हैं, उनकी योजनाएं रही हैं, उसका लाभ लेते हुए जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, और उन सबको विशेष रूप से इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ आमंत्रित किया गया है। और सबसे बड़ी खास बात यह है, आकर्षण की चीज ये लगती है कि वो सभी अपने अपने प्रदेश की अलग अलग वेशभूषा में यहाँ पर आए हुए हैं। अधिकांशता उसमें से वहां प्रधानमंत्री महोदय के निकट अपने आप को पाकर वो निश्चित रूप से बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहे होंगे।
1: जी बिल्कुल जैनेन्द्र, और यहाँ पर भारत में जो अन्य देशों के दूतावास हैं उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति भी है। इस समय वे भी बेहद आह्लादित महसूस कर रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी की यही शैली जो अपने देशवासियों से जुड़ने की शैली है, इससे दुनिया के बहुत सारे नेता प्रेरित हुए हैं, और यही वजह है कि खाड़ी और मध्य पूर्व के देशों या हमारे पड़ोसी और एशियाई देशों या फिर कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, आपने माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्मानित किया है, अपने देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान दिए हैं, सैन्य सम्मान दिए हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने व्यवहार से अन्य देशों को दिखाया है कि किस प्रकार से अपने देशवासियों से जुड़ना है, उनके आकांक्षाओं को कैसे समझना है, और किस प्रकार से उनके लिए जनहित की नीतियां बनाकर जन जन को राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए प्रेरित करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी, अपने प्रिय ये जो जनता है इनसे भेंट करने के बाद, सासने भेंट करने के बाद, अब पुनः जो एनसीसी कैडेट्स हैं उनकी ओर प्रस्थान कर रहे हैं, लेकिन लगातार हाथ हिलाते हुए, सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा कर्मी हैं उनके लिए ये थोड़ी सी कठिन घड़ी है, क्योंकि लगातार पैनी दृष्टि हर ओर उन्होंने बना रखी है, लेकिन वो भी समझते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्युत्तर दे रहे हैं सबके स्नेह का, इसलिए उचित दूरी उन्होंने बनाए रखी है, लेकिन पूरी तरह से मुस्तैद और चौकस हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर स्नेहिल मुस्कान है अपने देशवासियों को देखकर, और साथ ही जो बच्चे हैं यहाँ पर उन्हें देखते हुए, और ये जो देशवासी है इस समय आभार प्रकट कर रहे हैं एक तरह से उन नीतियों के लिए जिन्होंने इनके जीवन में बड़ा बदलाव किया है, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, जीएसटी हो, आर्थिक सशक्तिकरण हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, प्रधानमंत्री जी की कही ये उक्ति हो, हरित ऊर्जा हो, अंतरिक्ष अनुसंधान हो, जनधन से जन जन तक होता वित्तीय समावेशन हो, उन सभी के प्रति एक तरह से आभार प्रकट करते हुए, माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कहते हुए अपने जो ये संकेत है उनसे, और अब माननीय प्रधानमंत्री जी के बेहद नजदीक पहुंच गए कुछ एनसीसी कैडेट और सुरक्षाकर्मी, उन्हें स्नेहिल भाव से थोड़ा हटाते हुए, वहाँ थोड़ा अनुशासन बनाते हुए, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत का सपना, डिजिटल भारत जिसकी धूम अब दुनिया भर में है, और साथ ही आत्मनिर्भर भारत, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा ये कहते रहे हैं हमारे उत्पाद जो हैं वो वैश्विक गुणवत्ता के हो, हमारे बाजार दुनिया भर के लिए खुले रहें, और जब भी कोई विदेशी मेहमान हमारे यहां आता है तो जो भोजन परोसा जाता है उसमें हमारे हर प्रांत का कोई एक व्यंजन उसमें होता है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, और साथ ही जो हमारे बुनकर हैं उनके द्वारा बुनी हुई जो वस्तुएं हैं वो भेंट स्वरूप माननीय प्रधानमंत्री जी देश दुनिया के बड़े नेताओं को देते हैं, और बहुत सारी इस तरह की सरकारी योजनाएं हैं जिनका लाभ लगातार हमारे देशवासियों को मिलता रहा है। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो मंच है, गरिमामयी मंच है, यहाँ से भी देश दुनिया को एक नई

0: दिशा दिखाई है, नए प्रयास किए हैं, देशवासियों को लगातार प्रेरित किया है आगे बढ़ने के लिए, और अब नया लक्ष्य हमारे सामने विकसित भारत का, जिसमें हम सभी को लगातार योगदान देना है।
1: आज प्रधानमंत्री जी ने इस लाल किले के प्राचीर से जहां संकल्पों की बात की, संकल्प से सामर्थ्य के निर्माण की बात की, और सामर्थ्य से सफलता की राह पर आगे बढ़ते हुए देश को समृद्धि की राह पर विकसित भारत बनाने का एक संकल्प उन्होंने दिया है। बीते 12 वर्षों में सरकार की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नेतृत्व में जो तमाम प्रयास किए गए हैं, उनके बारे में इस बात की परिकल्पना शायद पहले भी किसी ने नहीं की होगी कि उनका इतना बड़ा परिणाम और फल इस देश को मिलेगा। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें जनधन योजना की ही, तो जब जनधन योजना की शुरुआत हुई, आज आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बैंकिंग सेवा देश के कोने कोने तक पहुंची है, हर गांव तक पहुंची है। 99.92% गांवों तक इस सेवा की पहुंच बनी है, ये निश्चित रूप से 100% आप इसको कह सकते हैं। और किसी भी गांव में, 6 लाख से अधिक गांव में देश में मात्र 5 किलोमीटर की दूरी के भीतर भीतर बैंकिंग सेवाएं प्राप्त होती हैं। प्रधानमंत्री महोदय बच्चों के बीच से निकलते हुए और एक बार फिर से प्राचीर की तरफ उन्होंने हाथ हिलाकर यहाँ के अतिथियों का भी अभिवादन स्वीकार करते हुए अब अपने वाहन में वो सवार हो चुके हैं, और अब समय है जब 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अंतिम चरण में माननीय प्रधानमंत्री महोदय राष्ट्र को संबोधित करने के बाद और यहाँ उपस्थित जनसमुदाय और विशेष रूप से युवा शक्ति के साथ संवाद और निकटता का एक भाव प्रेषित संप्रेषित करने के बाद अपने वाहन में सवार होकर यहाँ से अब प्रस्थान करने जा रहे हैं। आप सबके लिए उनकी तरफ से जो प्रेरणा मिली है, इस राष्ट्र को निश्चित रूप से आगे लेकर जाएगी।
0: जी बिल्कुल, और माननीय प्रधानमंत्री जी अब अपने वाहन में सवार हो चुके हैं। वाहनों का काफिला मंथर गति से बूथ जो है हमारा उसकी बाई ओर बढ़ता हुआ धीरे धीरे, और जो एनसीसी कैडेट्स हैं वो अब पुनः अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं। जो आगंतुक है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के वाहनों की भी तस्वीर इस समय ले रहे हैं, और साथ ही प्रधानमंत्री जी अपने वाहन के भीतर से भी हाथ हिलाकर लगातार सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। नया देश है, नया भारत है, बदलती तस्वीर है, जिसमें बेटियों को भी बराबरी मिल रही है, और इसी वजह से शायद माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब एनसीसी कैडेट्स के बीच पहुंचे तो सबसे पहले एक बेटी के सर पर हाथ रखा। सैन्य क्षेत्र, शिक्षा, विज्ञान, कृषि, फैशन, खेल और उद्योग क्षेत्र में भारत माँ की बेटियां भी प्रभावशाली प्रदर्शन कर रही हैं। फाइटर कॉम्बैट लीडर बनना हो या ड्रोन दीदी, या फिर अपनी मेहनत से सफलता के नए अध्याय रचती लखपति दीदी हो, माँ भारती का नाम रोशन कर रही हैं देश की बेटियां। कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारे मेहनती खिलाड़ियों ने 13 स्वर्ण पदक जीते, जिनमें 8 स्वर्ण पदक बेटियों ने जीते हैं। 10 करोड़ से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं। लगभग 3 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। इस दिशा में नए लक्ष्य हासिल किए जा रहे हैं, और ऐसे ही लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज भी हमें दिए हैं। मत पूछो मुझसे देश क्या है, ये कागज पर खींची रेखा नहीं, ये उन वीरों की आखिरी सांस है जिन्होंने पीछे मुड़कर देखा नहीं। हमारे स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी हैं उनके प्रति आभार प्रकट करने का दिन आज, लेकिन साथ ही जो राष्ट्र निर्माण में लगातार सहयोग करते रहे हैं उनके प्रति भी। निष्ठावान विद्यार्थी और शिक्षक, विकास के लिए तत्पर वैज्ञानिक और इंजीनियर, स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी, मेहनती श्रमिक और अन्नदाता किसान, प्रतिभावान खिलाड़ी, शिल्पकार और कलाकार, जनहित में सेवारत जनप्रतिनिधि, न्याय व्यवस्था से जुड़े न्यायकर्मी, कार्यनिष्ठ सिविल सेवक, अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले छोटे बड़े सभी निवेशक, निस्वार्थ समाज सेवी और स्वच्छता अभियान के अग्रणी कार्यकर्ता, हमारे सैनिक और सशस्त्र बल, अपनी कर्तव्य निष्ठा से हम सभी को विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाना है, इसमें अपना दायित्व निभाते हैं प्रवासी भारतीय भी। सभी के ऊपर ये दायित्व के 2047 तक हमें भारत को विकसित भारत बनाना है। और आपको फिर से एक बार आकाशवाणी की पूरी टीम की ओर से 80वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए मैं तकनीकी टीम प्रमुख श्री जितेंद्र पुरुथी, तकनीकी टीम के सदस्य शांतनु घोष, शक्तिधर ध्यानी, अशोक कुमार मिश्र, कमल सिंह, सुमित कटियार, नागेंद्र पटेल, नीरज तिर्की, बाबूलाल मीणा, राजकमल शर्मा, नरेंद्र नाथ, किरण पाल सिंह, विष्णु आनंद तिवारी, अतुल कुमार, हेमराज मीणा, विशाल कुमार, अभिषेक कुमार, कार्यक्रम प्रमुख श्रीमती मनीषा जैन, कार्यक्रम टीम के सदस्य विवेक कुमार तोमर, तुषार पाराशर, शाहनवाज खान, भगवती चरण बौखंडी, जगमोहन सिंह, कार्यक्रम संयोजक श्री प्रमोद कुमार वत्स के साथ मैं नीलम मलकानिया, अपने साथी कमेंटेटर जैनेन्द्र सिंह और देवेंद्र त्रिपाठी के साथ पुनः 80वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लेकर चलती हूँ।

0: जय हिंद।
1: अभी आप भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से ध्वजारोहण समारोह और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को किए गए संबोधन का सजीव विवरण सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे श्री जैनेन्द्र सिंह, सुश्री नीलम मलकानिया और श्री देवेंद्र त्रिपाठी।
2: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
3: आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना।

0: बलकानिया और श्री देवेंद्र त्रिपाठी।
1: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
2: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पात्र परिवार के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज प्रतिवर्ष प्रति परिवार। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने दी है 60 करोड़ से अधिक भारतीयों को इलाज की चिंता से आजादी।
3: अब तक 12 करोड़ से अधिक मुफ्त इलाज हो चुके हैं, जिससे चिकित्सा खर्च में गरीब परिवारों की लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-4-5-5-5।
2: आयुष्मान भारत, अब इलाज की चिंता से आजादी।
4: किसी भी उपभोक्ता शिकायत के लिए 1915 पर कॉल करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: जब भी हेलमेट खरीदें या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान BIS ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि जान है तो जहान है। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
2: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पात्र परिवार के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज प्रतिवर्ष प्रति परिवार। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने दी है 60 करोड़ से अधिक भारतीयों को इलाज की चिंता से आजादी।
3: अब तक 12 करोड़ से अधिक मुफ्त इलाज हो चुके हैं, जिससे चिकित्सा खर्च में गरीब परिवारों की लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-4-5-5-5।
2: आयुष्मान भारत, अब इलाज की चिंता से आजादी।
4: MRP यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: ये प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।

0: नजर नहीं आ रहा, याद रखें समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। आकाशवाणी समाचार कक्ष की ओर से हमारे सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने संकल्प दोहराया, 2047 तक हम विकसित भारत बनकर रहेंगे। विकसित भारत के लिए उत्पादन, कृषि, तकनीक, गतिशक्ति और समुद्र मंथन को मिलाकर सप्तधारा की घोषणा। समुद्र में नए अवसर तलाश करने के लिए नो गो एरिया के स्थान पर गो अहेड एरिया योजना की शुरुआत। ऊर्जा सामर्थ्य के बारे में उन्होंने कहा, हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर भारत ने हाइड्रोजन ऊर्जा की दिशा में झंडा गाड़ दिया है। उन्होंने कहा, सुरक्षित भारत के लिए हमें दिमागी नक्सलियों से निपटना होगा। प्रधानमंत्री ने जनगणना में सटीकता के लिए युवाओं से डिजिटल रजिस्ट्रेशन का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, सरकार परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति ने रक्षा और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी। और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मैच आज से श्रीलंका के

0: Stalin. और अब समाचार विस्तार से। देश आज 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र ध्वज फहराया। राष्ट्र को स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हर दिल की धड़कन वंदे मातरम के गायन से गूंज रही है।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें अपनी कार्य संस्कृति, अपनी सोच और काम की गति को बदलना होगा।
1: जब सपने ऊंचे होते हैं, संकल्प ऊंचे होते हैं, तो हमारे सामर्थ्य की ऊंचाई भी बढ़ती है, हमारे प्रयासों की ऊंचाई भी बढ़ती है और तब जाकर के हम सपनों को साकार कर सकते हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश सुधार यानी रिफॉर्म एक्सप्रेस पर आगे बढ़ चला है और अब नेक्स्ट लेवल यानी अगले स्तर के सुधार पर भी हम आगे बढ़ेंगे। श्री मोदी ने विकसित भारत के लिए उत्पादन, कृषि, तकनीक, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, हरित व्यवस्था और समुद्र मंथन को मिलाकर सप्तधारा की घोषणा की। उन्होंने गति शक्ति को सप्तधारा की चौथी शक्ति बताते हुए कहा कि निर्बाध और तेज कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा।
1: आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्तधारा का आह्वान करता हूं। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्तधारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर बनने में संसाधनों की बाधा नहीं होती, बल्कि सोच की सीमाएं बाधा होती हैं। उन्होंने कहा कि आज देश को कच्चे तेल पर निर्भर होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश में 99% समुद्र तट को, नो गो एरिया को, तेल भंडार की खोज के लिए गो अहेड घोर एरिया घोषित किया जाएगा।
1: हमने समुद्र तट पे समुन्द्र के अंदर जाकर के एक्सप्लोरेशन न करने का निर्णय कर लिया था। ये सोच का दारिद्र्य था, हमने फैसला किया ये नहीं चल सकता। हमने उस 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया। हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि हमने दुनिया में हाइड्रोजन के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है।
1: देश ने पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू कर दी और मुझे खुशी है ये सबसे लंबी ट्रेन है और दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेन के क्षेत्र में भी भारत ने अपना झंडा गाड़ दिया है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद देश में सेमीकंडक्टर को लेकर कोई बड़ी योजना नहीं थी। उन्होंने कहा कि आज की डिजिटल दुनिया में हम चिप के महत्व को समझते हैं।
1: कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है और इसे इस चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो जाए और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि नक्सलवाद ने 4 दशक तक भारत की आबादी को दबोच कर रखा था। नक्सलवाद से निपटने में 3,500 से ज्यादा जवानों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। श्री मोदी ने देश को नक्सलवाद से मुक्त बनाने का आह्वान किया।
1: ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा,

0: इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड जैसी वैश्विक महामारी से पूरी व्यवस्था चरमरा गई थी, लेकिन सभी के प्रयासों से देश को उस संकट से बाहर निकाला गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत नागरिक देवो भव के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है।
0: इतने बड़े संकट के बावजूद भी नागरिक देवो भव के मंत्र को लेकर के जीते हुए भारत ने जो तैयारियां की थी, एक के बाद एक कदम उठाया था। सोचा नहीं था यह संकट आएगा, लेकिन इस संकट के समय में ये सारी चीजें काम आ गई और आज देश में गैस भी है, पेट्रोल भी है, यूरिया भी है। हम अपनी ताकत के ऊपर खड़े हो रहे, चल रहे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था ने नई रफ्तार पकड़ी है और एक नई गति से देश आगे बढ़ रहा है।
0: इन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है कि हम कभी फ्रेजाइल फाइव में गिरे जाते थे, 12 साल के भीतर भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत एक बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। जब 2047 में स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होंगे, हम विकसित भारत बना कर रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये 140 करोड़ भारतीयों के पुरुषार्थ से ही संभव है।
0: आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा और वो सपना है जब आजादी के 100 साल होंगे, 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में आए संकट का हर किसी पर प्रभाव पड़ा। उन्होंने कहा कि हमने किसानों पर यूरिया और डीएपी जैसे उर्वरकों में बड़ी कीमतों का असर नहीं आने दिया।
0: यूरिया के दाम दुनिया में 3000 रुपया पहुंच गए एक बोरी का। आज भी हम मेरे देश के किसानों को वो बोझ सहने के लिए मजबूर नहीं कर रहे, सरकार अपने कंधों पर वो बोझ उठा रहा है। और दुनिया से जो 3000 रुपया में यूरिया का बोरा हमें मिलता है, वो हमारे किसानों को हम सिर्फ 300 रुपये में दे पाते हैं। इतना ही नहीं, डीएपी आज दुनिया में बाजार 5000 पहुंच चुका है, लेकिन मेरे देश के किसानों को दिक्कत ना हो इसलिए 1350 रुपए में आज भी डीएपी देने का काम हम कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नशा मुक्त भारत के 100 सप्ताह के अभियान से जुड़ने की अपील की। उन्होंने देश के युवाओं से जनगणना में सटीकता के लिए डिजिटल रजिस्ट्रेशन कराने का आह्वान भी किया। प्रधानमंत्री के भाषण के बाद लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम का गायन हुआ। इससे पहले प्रधानमंत्री ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ा है। ऐसी परिस्थितियों में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी अर्जित कर रहे हैं। उन्होंने भावी पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान किया। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि सरकार परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है। इनमें 13 ऐसे वीर शामिल हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। इन पुरस्कारों में 9 कीर्ति चक्र, 19 शौर्य चक्र, 36 सेना मेडल, 3 नौसेना मेडल और 5 वायुसेना मेडल शामिल हैं। सरकार ने टेलीविजन चैनल्स के लिए विज्ञापन की 12 मिनट की समय सीमा को हटाने का फैसला किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में आए बदलाव को देखते हुए विज्ञापन की अवधि से जुड़े नियमों पर फिर से विचार करने की जरूरत महसूस की गई। भारत में पे चैनल या फ्री टू एयर

0: सभी बहुत हद तक विज्ञापनों पर ही निर्भर हैं। भारत और श्रीलंका के बीच दो क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला आज श्रीलंका के गाले स्टेडियम में खेला जाएगा। ये श्रृंखला 2025-27 के ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल और श्रीलंका टीम के कप्तान धनंजय डी सिल्वा हैं। ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ आज तिरंगे की छटा बिखेर रहे हैं। कुछ अखबारों ने देश की उपलब्धियों का उल्लेख किया है तो कुछ ने स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाले सैनिकों और रक्षा कर्मियों की गाथाएं सचित्र प्रकाशित की हैं। इसके अतिरिक्त जनगणना प्रक्रिया में पूछे जाने वाले सवालों की सूची को भी अखबारों ने सुर्खियों में जगह दी है। अधिकांश समाचार पत्रों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संदेश को भी मुख्य पृष्ठों पर सुर्खियों में प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए उठाए जा रहे कदमों का उल्लेख इस संबोधन में किए जाने को अपना शीर्ष समाचार बनाया है। परीक्षा प्रणाली सुधारने में जुटी सरकार। हिंदुस्तान ने हाल में शौर्य का नया इतिहास रचने वाले रक्षा कर्मियों की वीरता की कहानियां प्रकाशित की हैं। शीर्षक दिया है तिरंगे को दिल दिया देश के लिए जान। नवभारत टाइम्स ने स्वतंत्रता दिवस के आसपास रिलीज हुई फिल्मों का विश्लेषण प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वहीं राजस्थान पत्रिका, जनसत्ता और दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों ने जनगणना में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उल्लेख अपने मुख्य पृष्ठ पर किया है। जनसत्ता ने अपने संपादकीय लेख को शीर्षक दिया है अभिव्यक्ति का हक। पत्र का कहना है कि इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि कुछ विद्यार्थियों के सिर्फ असहमति जताने या विरोध जाहिर करने की वजह से उनके समूचे समूह की पढ़ाई के आगे के रास्ते को बंद करने का फरमान जारी कर दिया जाए। पत्र ने नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च के दीक्षांत समारोह में भारत के प्रधान न्यायाधीश को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने पर कुछ विद्यार्थियों के विरोध पर दंडात्मक कार्रवाई का हवाला देते हुए ये भी कहा है कि लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति सजग नागरिकों सहित खुद प्रधान न्यायाधीश की ओर से जैसी प्रतिक्रिया आई वो उम्मीद जगाने वाली है। दैनिक जागरण ने विभिन्न क्षेत्रों में देश की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए विश्लेषण प्रकाशित किया है और शीर्षक दिया है गरीबी से गर्व करने की ओर भारत। जबकि लोकसत्ता ने स्वतंत्रता दिवस के आयोजन को देखते हुए दिल्ली पुलिस द्वारा जारी यातायात परामर्श को विस्तार से प्रकाशित किया है।
0: अमरीका के सीनेटरों और नेताओं ने भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कहा है कि दोनों देशों की भागीदारी मजबूत है और भारत की उपलब्धियां और भारत के लोग विश्व को प्रेरित करते रहे हैं। न्यूयॉर्क से लेकर सिएटल तक अमेरिका के राज्यों के गवर्नर और सीनेटरों ने कहा है कि उनके यहां 15 अगस्त का दिन भारत दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने संकल्प दोहराया 2047 तक हम विकसित भारत बनाकर रहेंगे। विकसित भारत के लिए उत्पादन, कृषि, तकनीक, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्र मंथन को मिलाकर सप्तधारा की घोषणा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में समुद्र में तेल भंडार की खोज के लिए नो गो एरिया को गो अहड एरिया घोषित किया गया। ऊर्जा सामर्थ्य के बारे में उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर भारत ने हाइड्रोजन ऊर्जा की दिशा में झंडा गाड़ दिया है। सुरक्षित भारत के लिए हमें दिमागी नक्सलियों से निपटना होगा। प्रधानमंत्री ने जनगणना में सटीकता के लिए युवाओं से डिजिटल रजिस्ट्रेशन कराने का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सरकार परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति ने रक्षा और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को अपनी स्वीकृति दी। और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मैच आज से श्रीलंका के गाले में। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, उद्योगों को मिलकर आगे बढ़ना होगा। और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मैच आज से श्रीलंका के गाले में खेला जाएगा। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Akashvani presents Morning News. Good morning, I'm Sarabjeet Kaur. The headlines. Nation celebrates its 80th Independence Day today. Prime Minister Narendra Modi hoists national flag at Red Fort in Delhi. Addressing the nation, Prime Minister unveils 7-point reform framework or Saptadhara aimed at accelerating India's journey towards becoming Vikasit Bharat by 2047. Mr. Modi says India has set target of 100 gigawatt nuclear energy and set up 5 new reactors. Prime Minister says India has rapidly progressed in the last 12 years with significant progress in digital, manufacturing, infrastructure and social welfare sectors. President Draupadi Murmu says government taking comprehensive steps to curb unfair means in public examinations. President approves 78 gallantry awards, including 13 posthumous for defence and Central Armed Police Forces personnel. And in cricket, first test of 2-match series between India and Sri Lanka to begin today at Gale. And now the news in detail. The nation celebrates its 80th Independence Day today. Prime Minister Narendra Modi hoisted the national flag at Red Fort in Delhi and addressed the nation. The celebrations this year also commemorates Yuva Shakti, acknowledging the contribution of young India in building a Vikasit Bharat by 2047. Addressing the nation from the ramparts of Red Fort, Prime Minister Modi said that this is the first time since independence that Vande Mataram has resonated from the ramparts of Red Fort.
1: आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है पिछले दिनों देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप रहा भूस्खलन का प्रकोप रहा अनेक परिवार प्रभावित हुए उनके दुख दर्द को हम भली भांति अनुभव करते हैं पीड़ित परिवारों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम और पूरा देश उनके साथ खड़े हैं
0: Prime Minister said a nation becomes great when it moves forward on the strength of its resolve and capabilities.
1: मेरे प्यारे देशवासियों, कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है जब अपने सपनों, अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। मेरे देशवासियों, अब छोटे सपनों से चलने वाला नहीं, हमें बड़े सपने, क्योंकि बड़े सपने हमारी सोच को भी विस्तार देते हैं। हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है
0: मिस्टर मोदी सेड दैट ओवर द पास्ट 12 इयर्स crores of citizens of the country with their determination and dedication made every possible effort to take the country to new heights he said due to these efforts 25 crore people have come out of poverty.
1: पिछले 12 वर्ष में देश के कोटि कोटि नागरिकों ने दलित हो पीड़ित हो वंचित हो आदिवासी हो गांव में रहने वाला हो शहर में रहने वाला हो युवा हो बुजुर्ग हो नारी हो पुरुष हो हर किसी ने पिछले 12 साल में एक संकल्प के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में हर प्रकार से प्रयास किया है मैं उनके इस प्रयासों का आदरपूर्वक स्वीकार करता और उसी का परिणाम है इतने कम समय में 25 करोड़ देशवासी गरीबी को पास करके गरीबी से बाहर निकले हैं
0: He said India, which was once among the fragile 5 economies, has now emerged as a major and the fastest growing economy in the world. Mr. Modi said that India has set a big goal to become a developed nation by 2047.
1: आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा और वो सपना है जब आजादी के 100 साल होंगे 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना और जब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश विकसित होने का संकल्प लेता है तो ये दुनिया की नजरों में भी हमारे साहस का परिचायक बन जाता है
0: Highlighting the achievements made in different sectors, the Prime Minister said, over the past 12 years, defense production has increased nearly fourfold.
1: पिछले 12 वर्ष

0: डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना, खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ा, आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा, मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा, आधुनिक युग को देकर के भी डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी हमने अपना परचम लहराया, इंटरनेट यूजर करीब 4 गुना बढ़े, पेटेंट ग्रांट होने की संख्या 4 गुना बढ़ी, डिजिटल ट्रांजेक्शन 100 गुना बढ़े।
1: He said internet users increased by nearly fourfold and digital transactions by 100 times. Mr. Modi said the NDA government has worked with equal seriousness towards the welfare and amenities for the common man. Prime Minister said energy security is today's need and that's why we have already taken steps in this direction. Mr. Modi said the government is moving forward with the aim of 100 gigawatts of nuclear power capacity by 2047. He added that India has set a target of commissioning 5 new nuclear reactors during the current decade.
0: अब एनर्जी के बिना भी नई दुनिया को चलाना मुश्किल है और इसलिए हमें चीप हो, एआई हो, डेटा सेंटर हो, हमें बहुत बड़ी मात्रा में बिजली की जरूरत होगी। एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारे समय की मांग है और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं।
1: Prime Minister said India has already begun production at 3 semiconductor plants and 5 to 8 more plants are expected to come up in the coming years.
0: देश आजाद होने के बाद विश्व में तो सेमीकंडक्टर की चर्चा हो चुकी, हमारे यहाँ भी बातें होती थी, लेकिन सेमीकंडक्टर का कोई बड़ा प्लान हम आगे नहीं बढ़ा पाए। और आज स्थिति क्या है, आज की डिजिटल दुनिया में चीप का महात्म्य हम समझते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है और इसे इस चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो। भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुका।
1: Prime Minister said India must move towards self-reliance and not remain dependent on other countries. He asserted that the country needs to strengthen its own capabilities and protect its national interests.
0: बीते वर्षों में हमारा कन्विक्शन रहा है कि भारत को हमें अब दूसरे देशों पर निर्भर रह करके नहीं जीना, हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। दुनिया में बहुत कुछ मिलता है, सस्ता मिलता है, जल्दी मिल सकता है, लेकिन उससे हमारा सामर्थ्य तैयार नहीं होता, न हमारे सामर्थ्य की कसौटी होती है और इसलिए हमें भी अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है।
1: Mr. Modi unveiled a 7-point reform framework or Saptadhara aimed at accelerating India's journey towards becoming a Vikasit Bharat by 2047. He said work that could not be completed in the past 5 to 7 decades must be achieved within the next 5 to 7 years.
0: मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे। अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आह्वान करता हूँ। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा।
1: Prime Minister said that government has decided that 1 crore youth will be given training in AI skilling in the next 1 year. He said this will enable them to take the lead in the global AI sector. Mr. Modi said the country has to focus on 3 things: cost, quality and skill.
0: हमने पिछले दिनों AI impact summit किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूँ, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान AI की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य। मेरे साथियों, बायो इकोनॉमी एक नया क्षेत्र है।
1: दिस इज

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। भारत आज अपना 80वां यौम आजादी मना रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले पर परचम कुशाई की। वजीर आजम ने मुल्क से खिताब करते हुए साल 2047 तक विकसित भारत बनने के मुल्क के सफर को तेज करने पर मरकूज सात निकाती इस्लाही फ्रेमवर्क सप्त धारा का ऐलान किया। जनाब मोदी ने कहा कि भारत ने 100 गीगावाट न्यूक्लियाई तवानाई पैदा करने और 5 नए रिएक्टर्स कायम करने का हदफ मुकर्रर किया है। वजीर आजम ने कहा कि भारत ने गुज़श्ता 12 साल के दौरान तेजी से तरक्की की है, जिनमें डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, बुनियादी ढांचे और समाजी बहबूद के शोबों में पेशरफ्त काबिल जिक्र है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हुकूमत पब्लिक इम्तहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम के लिए जामे इकदाम कर रही है। सदर जमहूरिया ने 78 बहादुरी इनामात को मंजूरी दी है, जिनमें दिफाई और मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्सेज अहलकारों के 13 बादज मर्ग इनामात भी शामिल हैं। और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के दरमियान दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच आज से गाले में शुरू होगा। अब खबरें तफसील से। मुल्क आज अपना 80वां यौम आज़ादी मना रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के तारीखी लाल किले से यौम आज़ादी तकरीबात की क़यादत की। वजीर आजम की लाल किला आमद पर पहली मरतबा वंदे मातरम की धुन बजाई गई। वजीर आजम ने परचम कुशाई की और उसके बाद कौमी तराना गाया गया। परचम कुशाई के दौरान 21 तोपों की सलामी दी गई और भारतीय फजाइया के MI-17 हेलीकॉप्टर्स के जरिए फूलों की पंखुड़ियाँ निछावर की गईं। इस साल की यौम आज़ादी तकरीबात साल 2047 तक विकसित भारत की तामीर में यंग इंडिया के तावुन के इतराफ़ के तौर पर युवा शक्ति को भी तस्लीम करती है। लाल किले की फसील से मुल्क से खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि आज़ादी के बाद पहली मरतबा लाल किले की फसील से वंदे मातरम गूंज रहा है। उन्होंने कहा कि हालिया दिनों में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद सैलाब और चट्टाने खिसकने के वाकयात हुए हैं, जिससे कई कुनबे मुतासिर हुए। वजीर आजम ने सभी मुतासिर कुनबों को यकीन दिलाया कि मुल्क उनके साथ मजबूती से खड़ा है।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है जब अपने सपनों, अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। मेरे देशवासियों, अब छोटे सपनों से चलने वाला नहीं, हमें बड़े सपने, क्योंकि बड़े सपने हमारी सोच को भी विस्तार देते हैं। हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से, आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुज़श्ता 12 वर्षों में मुल्क के करोड़ों शहरियों ने अपने मुसम्मम इरादे और लगन के साथ मुल्क को नई बुलंदियों तक पहुंचाने की तमाम मुमकिन कोशिशें की हैं। उन्होंने कहा कि इन कोशिशों के सबब 25 करोड़ अफराद ने गरीबी से निजात हासिल की। उन्होंने कहा कि भारत जो कभी 5 कमजोर मईशतों में शामिल था, आज दुनिया की सबसे तेज रफ्तार तरक्की करने वाली मईशत बन चुका है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत ने एक बड़ा हदफ अपने सामने रखा है और वो है साल 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनना।
1: आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा और वो सपना है जब आजादी के 100 साल होंगे 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है। और जब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश विकसित होने का संकल्प लेता है तो ये दुनिया की नजरों में भी हमारे साहस का परिचायक बन जाता है।
0: मुख्तलिफ शोबों में अहम हुसूलियाबियों को उजागर करते हुए वजीर आजम ने कहा कि गुज़श्ता 12 साल में दिफाई पैदावार में तकरीबन 4 गुना इजाफा हुआ है, जबकि खादी और देही सनत की पैदावार में 5 गुना इजाफा, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में तकरीबन 7 गुना, जदीद रेलवे कोच की मैन्युफैक्चरिंग में 21 गुना और मोबाइल फोन तैयार करने में

0: 30 गुना इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि इंटरनेट सारिफीन की तादाद में भी तकरीबन 4 गुना, जबकि डिजिटल माली लेन देन में जबरदस्त 100% इजाफा हुआ है। जनाब मोदी ने कहा कि एनडीए हुकूमत ने आम आदमी की बहबूद और बुनियादी जरूरियात के तई यकसां संजीदगी के साथ काम किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने हजारों जाब्ता जाति तामीली तकाजों और सैकड़ों फरसुदा कवानीन को मनसूख करके तर्ज हुक्मरानी में भी गैर मामूली तब्दीलियां की हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना, खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ा, आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा, मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा। आधुनिक युग को देकर के भी डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी हमने अपना परचम लहराया। इंटरनेट यूजर करीब 4 गुना बढ़े, पेटेंट ग्रांट होने की संख्या 4 गुना बढ़ी, डिजिटल ट्रांजेक्शन 100 गुना बढ़े।
0: वजीर आजम ने कहा कि भारत ने 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने की राह पर गामजन होते हुए कई गैर मुतवक्के बहरानों पर कामयाबी हासिल की है। उन्होंने कोविड-19 वबा और यूक्रेन और मगरबी एशिया के तनाजों के बाद पैदा होने वाले चैलेंजों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन बहरानों के दौरान टीकों, ईंधन, गैस, डीजल और फर्टिलाइजर्स के बारे में लोगों के दरमियान खौफ फैलाने की खातिर कई तरह की अफवाहें फैलाई गईं। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि भारत की मनसूबाबंद पॉलिसियों, तैयारियों और बरवक्त इकदामात से मुल्क ने इन चैलेंजों का बखूबी सामना किया। वजीर आजम ने कहा कि नागरिक देवो भवा के नजरिए को सामने रखते हुए हुकूमत ने इस बात को यकीनी बनाया कि पिछले दहाई के दौरान किए गए इंतजाम बहरान के वक्त में मुअसर साबित हों। उन्होंने कहा कि आज मुल्क के पास गैस, पेट्रोल और यूरिया की अच्छी सप्लाई मौजूद है और मुल्क अपनी सलाहियतों की ताकत की बुनियाद पर इतमाद के साथ आगे बढ़ रहा है। वजीर आजम ने कहा कि कई मौकों पर मुल्क वसाइल की कमी की वजह से नहीं, बल्कि वो अपनी महदूद सोच की वजह से रुक जाता है। उन्होंने कहा कि आज भारत को खाम तेल पर मुनहसर होना पड़ रहा है और ये भी महदूद सोच का नतीजा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने साहिली इलाकों के 99% को खोल दिया है, जहां पहले कोई नहीं जा सकता था। उन्होंने कहा कि हुकूमत समंदर की गहराइयों में नए वसाइल तलाश कर रही है। वजीर आजम मोदी ने कहा कि तवानाई की यकीनी फराहमी मौजूदा वक्त की अहम जरूरत है और हुकूमत ने इस समत कई ठोस इकदाम किए हैं। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियाई तवानाई मुल्क की तवानाई फराहमी को यकीनी बनाने के लिए एक अहम जरिया है। जनाब मोदी ने कहा कि हुकूमत 2047 तक न्यूक्लियर बिजली की सलाहियत 100 गीगावाट के हदफ को हासिल करने की जानिब गामजन है। उन्होंने कहा कि भारत इस दहाई के दौरान 5 नए न्यूक्लियर रिएक्टर शुरू करने का हदफ रखता है।
1: अब एनर्जी के बिना भी नई दुनिया को चलाना मुश्किल है और इसलिए हमें चीप हो, AI हो, डेटा सेंटर हो, हमें बहुत बड़ी मात्रा में बिजली की जरूरत होगी। एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारे समय की मांग है और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं।
0: वजीर आजम मोदी ने कहा कि 2014 के बाद से भारत ने तकरीबन 40 मुल्कों के साथ आजाद तजारती समझौते किए हैं, जिससे भारत के ताजिरों और बरामदकारों के लिए वसी मवाक़े पैदा हुए हैं। वजीर आजम ने मुल्क की बहुत छोटी छोटी और औसत दर्जे की कंपनियों MSMEs से कहा कि वो इन मवाक़े का भरपूर इस्तेमाल करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि भारत का सामान पूरी दुनिया के बाजारों तक पहुंचे। वजीर आजम ने कहा कि आज हर भारतीय मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल की लगन के साथ काम कर रहा है।
1: बीते वर्षों में हमारा कन्विक्शन रहा है कि भारत को हमें अब दूसरे देशों पर निर्भर रह करके नहीं जीना, हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। दुनिया में बहुत कुछ मिलता है, सस्ता मिलता है, जल्दी मिल सकता है, लेकिन उससे हमारा सामर्थ्य तैयार नहीं होता, न हमारे सामर्थ्य की कसौटी होती है और इसलिए हमें भी अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है।
0: अपने खिताब में वजीर आजम ने मुल्क के अवाम से सप्त धारा के नाम से ताकत और कुव्वत की 7 धाराओं पर अमल करने को कहा। उन्होंने कहा कि अगले 5 से 7 वर्षों में मुल्क वो सब हासिल कर लेगा जो पिछली 5 से 7 दहाइयों में हासिल नहीं कर सका। उन्होंने कहा कि सप्त धारा की

0: اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
1: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: आपकी जिंदगी में कौन जीतता है, दिल या दिमाग? दिमाग समझा रहा है घी तेल कम खाओ तंदुरुस्त रहोगे, पर दिल ललचा रहा है अंकल जी रोज पराठे दबाते हैं कुछ नहीं हुआ। दिमाग मनाता है, कल को ऐसी बीमारियां हो गई कुछ खाई ना पाओ तो क्या फायदा, इसलिए आधे लड्डू से काम चलाओ। पर दिल जिद करता है खाऊंगा तो पूरा ही, इसलिए सोचिए आपकी जिंदगी में हर दिन कौन जीतता है, क्योंकि तंदुरुस्ती दिल से ज्यादा दिमाग का खेल है। आज से ही खाने में चीनी नमक और तेल कम कीजिए।
3: खाद्य संरक्षा आयुक्त स्वास्थ्य विभाग बिहार और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: अगर आपके योग्यता के अनुकूल हो नौकरियों का अवसर तो आप क्या करेंगे?
5: मैं तो तुरंत अप्लाई करूंगा।
4: और अगर ये मौके हो बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, रिटेल और अन्य संबंध क्षेत्रों में,
5: फिर तो ये मौका बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा।
4: तो सुन लीजिए, बिहार सरकार के युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग बिहार कौशल विकास मिशन लेकर आ रहा है रोजगार मेला 2026, जहां है लगभग 20,000 रिक्तियां। दिनांक 19 से 23 अगस्त 2026, स्थान ज्ञान भवन उत्तरी गांधी मैदान पटना।
6: रोजगार है तैयार, अपने भविष्य को दे आकार।
4: पंजीकरण के लिए detjob.bihar.gov.in/registration पर जाएं और आज ही अपना पंजीकरण करें। बिना पूर्व पंजीकरण रजिस्ट्रेशन के आप इस मेले में भाग नहीं ले सकते हैं, साथ अपने निर्धारित तिथि और समय पर ही साक्षात्कार के लिए आएं। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1-800-296-5656 पर संपर्क करें।
6: आपकी सफलता हमारी प्रतिबद्धता। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। देश आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं से जनगणना अभियान से जुड़ने की अपील की। पटना में ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित मुख्य राजकीय समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया झंडोत्तोलन, प्रदेशवासियों को संबोधित किया। और केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 के दूसरे चरण के लिए आम लोगों से पूछे जाने वाले प्रश्नों की सूची जारी की। अब समाचार विस्तार से। देश आज 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक लाल किले के प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया। राष्ट्र को स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हर दिलों की धड़कन वंदे मातरम के गायन से गूंज रही है। लाल किले पर आज पहली बार पूरे राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन हुआ।
1: आजादी के बाद

0: अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 के विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए हमें अपनी कार्य संस्कृति, सोच और काम की गति को बदलना होगा। उन्होंने कहा कि यह लक्ष्य हासिल करने के लिए युवा शक्ति, माता बहनों, किसानों और मजदूरों पर पूर्ण भरोसा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश सुधार यानी रिफॉर्म एक्सप्रेस पर आगे चल पड़ा है और अब नेक्स्ट लेवल यानी अगले स्तर के सुधार पर भी आगे बढ़ेंगे।
0: डिजिटल इंडिया के नए सस्ते डेटा युवाओं को सशक्त किया। दुनिया में सस्ता डेटा कहीं है तो भारत की धरती पर है और देश के नौजवानों ने नौजवानों को नवी ताकत दी है। स्किल इंडिया हमने नेशनल प्रोग्राम बनाया है, स्पेस सेक्टर को हमने ओपन कर दिया, नेशनल ड्रोन पॉलिसी हमने बनाई है, खेलो इंडिया पॉलिसी बनाई है, 35 वर्षों तक एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी, नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आए हैं और इसका फायदा मिडिल क्लास के परिवारों को हुआ है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र के निर्माण में बहनों और बेटियों का योगदान सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया गया है, अब देश ने 6 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, उद्योगों को मिलकर आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि सुधारों को आगे बढ़ाने से सबसे बड़ा लाभ युवाओं का होगा। श्री मोदी ने कहा कि युवा हमारी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि युवा सपने देखें तो सरकार संसाधनों की कमी नहीं रहने देगी। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नशा मुक्त भारत का 100 सप्ताह के अभियान से जुड़ने की अपील की है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त किया है। उन्होंने कहा कि अब देश दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा।
0: ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत एक बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। जब 2047 में स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होंगे, हम विकसित भारत बनाकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि यह 140 करोड़ भारतीयों के पुरुषार्थ से ही संभव है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित मुख्य राजकीय समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने झंडोत्तोलन किया और परेड की सलामी ली। अपने संबोधन में श्री चौधरी ने कहा कि बिहार लगातार विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य का बजट 3,47,000 करोड़ रुपए का हो गया है, जो बदलते बिहार का प्रतीक है।
2: आज ऐतिहासिक दिन है और हम लोगों ने संकल्प लिया है कि बिहार में अगले नवंबर तक लगभग 5,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस बिहार में, क्योंकि हमारा बजट 3,47,000 करोड़ का है, लेकिन इसके बावजूद 5,00,000 करोड़ का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इस बिहार की धरती पर लाने का काम किया जाएगा।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा, उद्योग, खेल समेत सभी प्रमुख क्षेत्रों में विकास के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इस अवसर पर भव्य परेड में बिहार पुलिस, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएमपी, होमगार्ड्स, एनसीसी और भारत स्काउट एंड गाइड के जवानों ने भाग लिया। इस अवसर पर शिक्षा, सहकारिता, पर्यटन और जीविका समेत 13 विभागों की ओर से झांकियां भी निकाली गईं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने राजभवन में झंडोत्तोलन किया। विधानसभा परिसर में अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार, विधान परिषद में सभापति अवधेश नारायण सिंह और पटना उच्च न्यायालय में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुधीर सिंह ने ध्वजारोहण किया। आकाशवाणी पटना के प्रांगण में उप महानिदेशक अभियंत्रण सह कार्यालय प्रमुख ब्रजेश कुमार ने झंडोत्तोलन किया। भाजपा, जदयू, राजद, कांग्रेस और वामपंथी दलों समेत विभिन्न राजनीतिक दलों और संस्थाओं के कार्यालयों में भी इस अवसर पर झंडोत्तोलन कार्यक्रम

जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने अपने शुभकामना संदेश में वीर शहीदों और महान स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए देशवासियों से आपसी प्रेम और भाईचारे की भावना को बनाए रखने की अपील की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई।

0: शुभकामना संदेश में वीर शहीदों और महान स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए देशवासियों से आपसी प्रेम और भाईचारे की भावना को बनाए रखने की अपील की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी तथा बिजेंद्र प्रसाद यादव, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार, विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत अन्य गणमान्य लोगों ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की है। राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है।
1: आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर के तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है।
0: पूर्णिया जिले में विशेष परंपरा के तहत 15 अगस्त की तारीख शुरू होते ही पहली पहर में ही तिरंगा फहराया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्ष 1947 से आज तक जिले में इस परंपरा का निर्वाह किया जा रहा है।
2: जिले के ऐतिहासिक भट्टा बाजार स्थित झंडा चौक पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मध्य रात्रि में झंडोत्तोलन किया गया। घड़ी की सुई 12:01 पर पहुंची, तभी हवा में तिरंगा लहराने लगा। स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय रामेश्वर प्रसाद सिंह के पौत्र विपुल प्रसाद सिंह ने झंडोत्तोलन कर तिरंगे को सलामी दी। राष्ट्र प्रेम का अनूठा नजारा देखने के लिए आधी रात्रि को भी बड़ी संख्या में लोग झंडा चौक पर जुटे रहे। देशभक्ति के गीत और रोशनी से सजे झंडा चौक पर बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों के हाथों में तिरंगा और होठों पर जनगण मन का गान था। पूरा इलाका भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे से गूंज उठा। मौके पर पूर्णिया के विधायक विजय कुमार खेम का, महापौर विभा कुमारी, जदयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष कुमार वर्मा सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद थे। आकाशवाणी समाचार के लिए पूर्णिया से होमी चंदन।
0: राज्य के 7 पुलिसकर्मियों को उनकी वीरता के लिए आज गांधी मैदान में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में सम्मानित किया गया। पुरस्कार पाने वालों में बेगूसराय जिले में आसूचना इकाई के अवर पुलिस निरीक्षक राजेश कुमार, एसटीएफ बिहार के दारोगा अभिनव कुमार भारती, हवलदार रुपेश थापा और 4 जूनियर कमांडो राकेश कुमार, मृत्युंजय कुमार मंडल, सुमन कुमार और संतोष कुमार के नाम शामिल हैं। इन सभी को सम्मान स्वरूप 51,000 रुपये की नकद राशि भी प्रदान की गई। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
3: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: 158.2 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि आज राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य और दक्षिण पश्चिम हिस्सों में आंधी बारिश और वज्रपात की आशंका है।
1: दिनांक 15 अगस्त को राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर मध्य भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है।
0: केंद्र सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए विज्ञापन की 12 मिनट की समय सीमा हटाने का फैसला किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुसार यह फैसला राजपत्र में अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू हो जाएगा। पटना जिले के नौबतपुर में चिचौल के पास पुलिस ने वाहन जांच के दौरान 134 किलो गांजा के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। मधुबनी जिले के नरहिया थाना क्षेत्र अंतर्गत भपटियाही से पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 2 देसी पिस्तौल और 5 कारतूस बरामद किए गए हैं। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश के शहीदों के सम्मान में लिखा है, जाबाज जेंजी तिरंगे को दिल दिया देश के लिए जान। दैनिक जागरण लिखता है, 2 से 3 माह में 26,000 पुलिसकर्मियों की होगी नियुक्ति। दैनिक भास्कर ने राज्य में राजस्व न्यायालयों के ऑनलाइन मोड में काम करने पर लिखा है, कोर्ट में अब अधिकारी के सामने नहीं जाना होगा, दोनों पक्ष ऑनलाइन जुड़ेंगे, मुजफ्फरपुर और मुंगेर में ट्रायल सफल। प्रभात खबर की सुर्खी है, राज्य में अब बन सकेगी 35 मंजिल तक इमारतें, सड़क के सामने छोड़नी होगी अधिक जगह। आज अखबार ने लिखा है, राज्य में अब शिक्षक भर्ती परीक्षा में देनी होगी पीटी और मेंस। राष्ट्रीय सागर का शीर्षक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 2 दिवसीय दौरे पर रविवार से बिहार में होंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं से जनगणना अभियान से जुड़ने की अपील की। पटना में ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित मुख्य राजकीय समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने झंडोत्तोलन किया, प्रदेशवासियों को संबोधित किया। और केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 के दूसरे चरण के लिए आम लोगों से पूछे जाने वाले प्रश्नों की सूची जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: गन्ना किसानों के लिए सुनहरा अवसर।
3: गन्ना उद्योग विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम की बीज विकास योजना के अंतर्गत आधार बीज के उत्पादन पर 70,000 प्रति हेक्टेयर, प्रमाणित बीज उत्पादन पर 70 रुपए प्रति क्विंटल, प्रमाणित एवं सत्यापित बीज के उपयोग पर 260 रुपए से 310 रुपए प्रति क्विंटल तथा सिंगल बर्ड प्लांटलेट पर 15,000 प्रति एकड़ तक आकर्षक अनुदान का लाभ उठाइए।
2: योजना का लाभ लेने के लिए ccs.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। उन्नत बीज अपनाइए, अधिक उपज पाइए।
3: गन्ना उद्योग विभाग एवं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: अब खेल सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं, खेल पहुंचा है गांव-गांव। खेल संस्कृति के सर्वांगीण विकास हेतु बिहार सरकार की शानदार पहल पंचायत खेल क्लब।
5: पंचायत खेल क्लब की सदस्यता हेतु कोई भी इच्छुक व्यक्ति, महिला व पुरुष जिनकी आयु 14 वर्ष से 45 वर्ष के बीच हो, आवेदन कर सकता है।
4: फुटबॉल हो या कबड्डी, वॉलीबॉल हो या हॉकी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, कुश्ती या कोई भी पसंदीदा खेल, जुड़िए पंचायत खेल क्लब से। अभी आवेदन करें club.biharsports.org पर। आवेदन की अंतिम तिथि 15 अगस्त 2026।
2: खेल विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 के दूसरे चरण के तहत जनसंख्या गणना के लिए आम लोगों से पूछे जाने वाले 40 प्रश्नों को जारी कर दिया है। भारत के जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने बताया कि स्वतंत्र भारत में पहली बार अनुसूचित जाति और जनजाति के साथ सभी जातियों की भी गणना की जाएगी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2011 की जनगणना के दौरान 29 प्रश्न पूछे गए थे। श्री कुमार ने बताया कि जनगणना का दूसरा चरण 17 अगस्त से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बर्फीले क्षेत्रों से शुरू होगा। देश के अन्य हिस्सों में यह चरण अगले वर्ष फरवरी माह में शुरू होगा। राज्य सरकार की ओर से आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश के 30,000 भूमिहीन परिवारों के बीच भूमि बंदोबस्ती प्रमाण पत्र का वितरण किया जाएगा। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने बताया कि इन परिवारों को अभियान बसेरा 2 के अंतर्गत 3-3 डिसिमल जमीन दी जाएगी। प्रदेश में मानसून की सक्रियता बढ़ गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिणी और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार सीवान के रघुनाथपुर में सबसे अधिक

0: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है।
1: घर घर केरवाणी आकाशवाणी।

0: हृदय हृदय के वाणी आकाशवाणी आ हृदय सबके जोड़वा लेल हम आब रहल छी एक कई क्लिक पर हमर स्टेशंस लाइव मनक बात संगीत ड्रामा स्पोर्ट्स क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर नव भारत नव आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी देश भर के रेडियो श्रोता संघों की अद्यतन जानकारी एकत्रित कर रही है ताकि आपसे संवाद और भी मजबूत हो सके। यदि आप बिहार में किसी रेडियो श्रोता संघ से जुड़े हैं तो कृपया अपने रेडियो श्रोता संघ का नाम, संचालक का नाम एवं पता, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की प्रामाणिक जानकारी हमें अवश्य उपलब्ध कराएं। हमारा ईमेल पता है pcpatnacom@gmail.com। आप यह जानकारी अपने नजदीकी आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से भी हमें दे सकते हैं। आकाशवाणी आपकी आवाज आपके साथ।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: नमस्कार, मैं हूँ अमिताभ बच्चन। आप सभी से निवेदन में करना चाहता हूं कि देखिए, सांप के काटने को हल्के में आप ना लें। क्या आप जानते हैं कि हर साल हमारे देश में सांप के काटने से 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी जो है वो गंवा देते हैं। तो सतर्क रहें और पीड़ित को तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाएं। याद रखें, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार। धन्यवाद।
5: ये जानकारी चिकित्सीय सलाह नहीं है। कृपया किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, चिंता या प्रश्न के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।

अरिजीत सिंह और आशीष कौर के गाए फिल्म केसरी के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम संपन्न होता है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत।

0: चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का,
1: हर सपने में है भारत की नई तस्वीर।
0: इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
1: आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं।
0: SBI, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज।

0: चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का,
1: हर सपने में है भारत की नई तस्वीर।
0: इस स्वतंत्रता दिवस पर
1: आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं।
0: SBI, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का,
1: हर सपने में है भारत की नई तस्वीर।
0: इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
1: आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं।
0: SBI, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का,
1: हर सपने में है भारत की नई तस्वीर।
0: इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
1: आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं।
0: SBI, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज।
4: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। आप सभी से निवेदन मैं करना चाहता हूं कि देखिए, सांप के काटने को हल्के में आप ना लें। क्या आप जानते हैं कि हर साल हमारे देश में सांप के काटने से 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी जो है वो गंवा देते हैं। तो सतर्क रहें और पीड़ित को तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाएं। याद रखें, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार है। धन्यवाद।
5: ये जानकारी चिकित्सीय सलाह नहीं है। कृपया किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, चिंता या प्रश्न के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
0: चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का,
1: हर सपने में है भारत की नई तस्वीर।
0: इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
1: आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं।
0: SBI, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज।

0: चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का,
1: हर सपने में है भारत की नई तस्वीर।
0: इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
1: आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं।
0: SBI, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे

0: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। आप सभी से निवेदन में करना चाहता हूं कि देखिए, सांप के काटने को हल्के में आप ना लें। क्या आप जानते हैं कि हर साल हमारे देश में सांप के काटने से 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी जो है वो गंवा देते हैं। तो सतर्क रहें और पीड़ित को तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाएं। याद रखें, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार। धन्यवाद।
1: ये जानकारी चिकित्सीय सलाह नहीं है। कृपया किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, चिंता

0: अपने में है भारत की नई तस्वीर।
1: इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
0: आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं।
1: SBI, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420-2233।
1: चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का,
0: हर सपने में है भारत की नई तस्वीर।
1: इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
0: आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं।
1: SBI, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज।
4: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। आप सभी से निवेदन मैं करना चाहता हूं कि देखिए, सांप के काटने को हल्के में आप ना लें। क्या आप जानते हैं कि हर साल हमारे देश में सांप के काटने से 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी जो है वो गंवा देते हैं। तो सतर्क रहें और पीड़ित को तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाएं। याद रखें, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार। धन्यवाद।
5: ये जानकारी चिकित्सीय सलाह नहीं है। कृपया किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, चिंता या प्रश्न के लिए अपने डॉक्टर से सलाह ले। भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
1: चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का,
0: हर सपने में है भारत की नई तस्वीर।
1: इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
0: आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं।
1: SBI, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420-2233।
1: चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का,
0: हर सपने में है भारत की नई तस्वीर।
1: इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
0: आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं।
1: SBI, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज।

0: चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का,
1: हर सपने में है भारत की नई तस्वीर।
0: इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
1: आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं।
0: SBI, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
0: चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का,
1: हर सपने में है भारत की नई तस्वीर।
0: इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
1: आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं।
0: SBI, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज।
4: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
5: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
4: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800420223 पर कॉल करें।
0: चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का,
1: हर सपने में है भारत की नई तस्वीर।
0: इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
1: आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं।
0: SBI, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज।
6: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा। विज्ञापन पूर्व आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम, जो कि अब संपन्न हुआ। हमारे अगले कार्यक्रम के लिए कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।

स्वतंत्रता दिवस की आप सभी श्रोताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत बांसुरी वादन पर राग यमन। कलाकार हैं राजेंद्र प्रसन्ना।

0: चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का,
1: हर सपने में है भारत की नई तस्वीर।
0: इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
1: आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं।
0: SBI, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
0: चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का,
1: हर सपने में है भारत की नई तस्वीर।
0: इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
1: आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं।
0: SBI, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज।
4: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
5: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
4: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800420223 पर कॉल करें।
0: चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का,
1: हर सपने में है भारत की नई तस्वीर।
0: इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
1: आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं।
0: SBI, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।

0: तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आइडियल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है।

0: आकाशवाणी देश भर के रेडियो श्रोता संघों की अद्यतन जानकारी एकत्रित कर रही है ताकि आपसे संवाद और भी मजबूत हो सके। यदि आप बिहार में किसी रेडियो श्रोता संघ से जुड़े हैं तो कृपया अपने रेडियो श्रोता संघ का नाम, संचालक का नाम एवं पता, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की प्रामाणिक जानकारी हमें अवश्य उपलब्ध कराएं। हमारा ईमेल पता है pcpatnacom@gmail.com। आप यह जानकारी अपने नजदीकी आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से भी हमें दे सकते हैं। आकाशवाणी, आपकी आवाज आपके साथ।
1: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
2: अप टू 85% LTV के साथ अब मणप्पुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
2: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मणप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
3: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का,
7: हर सपने में है भारत की नई तस्वीर।
6: इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
7: आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं।
6: SBI, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज।
8: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे कुछ सदाबहार देशभक्ति गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: संदेश से पहले आप सुन रहे थे फिल्म तुम्हारे हवाले वतन साथियों का गीत उदित नारायण एवं अलका याग्निक की आवाज़ों में। समीर के लिखे इस गीत को संगीत दिया था अनु मल्लिक ने। आइए अब सुनते हैं बी पराग की आवाज़ में फिल्म केसरी का ये गीत, जिसे लिखा है मनोज मुंतशिर ने और संगीत आरको का।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: कुमार सानू एवं आदित्य नारायण की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे फिल्म दिल जले का गीत, बोल जावेद अख्तर के, और संगीत दिया था अनु मलिक ने। अब आपको हम सुनवाने जा रहे हैं फिल्म स्वदेश का ये गीत, स्वर ए आर रहमान का, जिसे लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत भी ए आर रहमान का। ये गीत सुनने से पहले आइए सुनते हैं एक छोटा सा संदेश।
1: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
2: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मणप्पुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान,
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
2: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मणप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान,
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
4: फिल्म स्वदेश के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।
5: आकाशवाणी देश भर के रेडियो श्रोता संघों की अद्यतन जानकारी एकत्रित कर रही है, ताकि आपसे संवाद और भी मजबूत हो सके। यदि आप बिहार में किसी रेडियो श्रोता संघ से जुड़े हैं, तो कृपया अपने रेडियो श्रोता संघ का नाम, संचालक का नाम एवं पता, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की प्रामाणिक जानकारी हमें अवश्य उपलब्ध कराएं। हमारा ईमेल पता है pcpatnacom@gmail.com। आप यह जानकारी अपने नजदीकी आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से भी हमें दे सकते हैं। आकाशवाणी, आपकी आवाज आपके साथ।
4: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 12 बजने ही वाले हैं। अब आप एक बार पुनः सुनेंगे फिल्म संगीत, जिसमें हम आपको कुछ नए गाने सुनवाएंगे।

उदित नारायण, शंकर महादेवन, महालक्ष्मी अय्यर, डोमिनिक सेरेजो को आप सुन रहे थे फिल्म 10 में। समीर के लिखे इस गीत को संगीत दिया था शंकर एहसान लॉय ने। आइए आपको अब सुनवाते हैं फिल्म डंकी का ये गीत जावेद अली की आवाज़ में, स्वर प्रीतम का और बोल वरुण ग्रोवर के।

फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर का गीत अभी आप सुन रहे थे दिव्य कुमार की आवाज में। संगीत निर्देशन अनु मलिक का था। आइए अब सुनते हैं फिल्म मिशन मजनू का ये गीत सोनू निगम की आवाज में। बोल लिखे हैं मनोज मुंतशिर ने और संगीत रोचक कोहली का।

फिल्म फाइटर का गीत अभी आप सुन रहे थे विशाल ददलानी शेखर राउत के आवाज़ में। कुमार के लिखे इस गीत को अभी आपने सुना। आइए आपको अगला गीत सुनवाते हैं फिल्म मैदान से, जिसे गाया है एआर रहमान, नकुल अभ्यंकर, सुलोचिता, दविंदर सिंह ने। गीत लिखा है मनोज मुंतशिर, सुलोचिता और दविंदर सिंह ने, और संगीत है एआर रहमान का।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म केसरी टू का गीत। मनमोहन वारिस, कमल हीर, संगतार और सचदेव की आवाज़ों में। गीत लिखा था सुखविंदर अमृत ने और संगीत संगतार और शाश्वत सचदेव का था। इसी के साथ फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।

हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम नारी संसार।

ना पूछो जमाने से, ना पूछो जमाने से, क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं, कि हम हिंदुस्तानी हैं। सखी बहनों, आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए इस पावन अवसर पर देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीरों को याद करें और देश की तरक्की में योगदान का संकल्प लें। नमस्कार, मैं आरती, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नारी संसार। सखी बहनों, स्वतंत्रता दिवस हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है। ये वो दिन है जब 1900

1947 में भारत को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद मिली थी। ये राष्ट्रीय पर्व हमारे वीरों के बलिदान की याद दिलाते हैं और देश प्रेम की भावना को जगाता है। जी हाँ, ये एकता का भी प्रतीक है। ये उत्सव जाति, धर्म और भाषा से ऊपर उठकर सभी भारतीयों को एक सूत्र में बांधता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि आज़ादी को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार नागरिक बनना और देश के विकास में योगदान देना आवश्यक है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के हमारे नायक देश की शान है। इन वीरों ने हंसते हंसते अपने प्राण देश के लिए दे दिए। उनके बलिदान से हमें आज की आज़ादी मिली है। महान स्वतंत्रता सेनानी के बारे में मैं आपको बता दूं कि महात्मा गांधी, इन्हें हम राष्ट्रपिता कहते हैं। इन्होंने अहिंसा और सत्य के रास्ते पर चलकर देश को आज़ादी दिलाई। सुभाष चंद्र बोस, इन्हें हम नेताजी कहते हैं। इन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिए। भगत सिंह ये देश के बहुत ही साहसी युवा थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा देकर इन्होंने हंसते हंसते फांसी को गले लगा लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हें लोह पुरुष कहते हैं। इन्होंने देश की सभी रियासतों को एक साथ जोड़कर एक मजबूत भारत बनाया। सखी बहनों, इसी तरह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहा गया है। इन्होंने सामाजिक न्याय और समानता के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिए। बहनों, आपको पता है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इन्हें मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है। इन्होंने अपने विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में देश का नाम रोशन किया। इसी तरह खुद्दीराम बोस, देश के लिए सबसे कम उम्र में हंसते हंसते फांसी पर चढ़ने वाला क्रांतिकारियों में शामिल थे। बहनों, आपको पता है चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कसम खाई थी। उनका कहना था कि पुलिस के हाथ जिंदा नहीं आएंगे। अल्फ्रेड पार्क में आखिरी गोली तक अंग्रेजों से मुकाबला किया और खुद को गोली मारकर देश के प्रति निष्ठा दिखाई। इतना ही नहीं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी नायडू और बेगम हजरत महल जैसी साहसी नायिकाएं थीं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिए। ऐसे ही अनेक नायक नायिकाएं थीं जो देश के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिए। बहनों, आज के समय में स्वतंत्रता दिवस न केवल अतीत को याद करने का अवसर है, बल्कि विज्ञान, तकनीकी, शिक्षा और रक्षा के क्षेत्र में देश की प्रगति पर गर्व करने का भी दिन है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव कार्यक्रम और सोशल मीडिया के माध्यम से देश विदेश में लोग इस उत्सव में शामिल होते हैं। सखी बहनों, भारत का स्वतंत्रता दिवस हमें उन संघर्षों और बलिदानों की याद दिलाता है जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। ये हमें एक मजबूत, एकजुट और समृद्ध भारत बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो बहनों, बातें आगे और भी करेंगे, पर उससे पहले आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा देशभक्ति गीत।

0: चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का,
1: हर सपने में है भारत की नई तस्वीर।
0: इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
1: आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं।
0: SBI, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का,
1: हर सपने में है भारत की नई तस्वीर।
0: इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
1: आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं।
0: SBI, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज।
4: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
5: अप टू 85% LTV के साथ अब मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान,
4: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
5: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
4: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
0: चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का,
1: हर सपने में है भारत की नई तस्वीर।
0: इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
1: आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं।
0: SBI, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का,
1: हर सपने में है भारत की नई तस्वीर।
0: इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
1: आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं।
0: SBI, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज।
4: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
5: अप टू 85% LTV के साथ अब मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान,
4: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
5: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
4: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
6: बहनों, अंतराल के बाद आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम नारी संसार में, और आज आपके साथ है आपकी रेडियो सखी आरती। बहनों, हर साल जब अगस्त का महीना आता है तो पूरा देश देशभक्ति के रंगों में सराबोर हो जाता है। गलियों में गूंजते देशभक्ति के तराने आसमान में फहराता तिरंगा और हर भारतीय के दिल में एक अजीब सा फक्र, ये नज़ारा भारत के स्वतंत्रता दिवस का होता है। इस साल यानी 15 अगस्त 2026 को भारत अपनी आज़ादी की 18वीं सालगिरह मनाने की तैयारियों में लगी हुई है। ये दिन महज एक सरकारी छुट्टी या जश्न का मौका नहीं है, बल्कि उस लंबी

दर्द भरी दास्तान का गवाह है, जिसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने खून पसीने से लिखा था। 1947 में मिली इस आज़ादी ने सैकड़ों साल की आज़ादी सखी बहनों 1947 में मिली इस आज़ादी ने सैकड़ों साल की अंग्रेजी गुलामी की जंजीरों को काट फेंका और भारत को एक राष्ट्र के रूप में नई पहचान दी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अंग्रेजों से भारत की सत्ता हासिल करने के लिए 15 अगस्त का ही दिन क्यों तय किया गया? क्या ये कोई इत्तेफाक था या इसके पीछे कोई गहरी सियासी रणनीति और व्यक्तिगत सोच छिपी थी? जब बात आप इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो पाएंगे कि इस तारीख का चुनाव भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने एक निजी फैसलों और दूसरे विश्व युद्ध की तैयारी के लिए शुरू किए। तो बहनों बातें आगे और भी करेंगे, पर उससे पहले आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा फिल्म संगीत।

0: चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का,
1: हर सपने में है भारत की नई तस्वीर।
0: इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
1: आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं।
0: SBI, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
2: जो लेकर आए हैं

0: 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मनप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का,
3: हर सपने में है भारत की नई तस्वीर।
2: इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
3: आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं।
2: SBI, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज।
4: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
5: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनप्पुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
4: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800-420-2233 पर कॉल करें।
2: चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का,
3: हर सपने में है भारत की नई तस्वीर।
2: इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
3: आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं।
2: SBI, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज।
6: पुनः एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम नारी संसार में। सखी बहनों, आज 15 अगस्त है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अंग्रेजों से भारत की सत्ता हासिल करने के लिए 15 अगस्त का ही दिन क्यों तय किया गया? क्या ये कोई इस्तेफाक था या इसके पीछे कोई गहरी सियासी रणनीति और व्यक्तिगत सोच छिपी थी? जब आप इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो पाएंगे कि इस तारीख का चुनाव भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के एक निजी फैसलों और दूसरे विश्व युद्ध के एक बड़े ऐतिहासिक मोड़ से और गहराई से जुड़ा हुआ था। बात मार्च 1947 की है, जब माउंटबेटन भारत के आखिरी वायसराय बनकर दिल्ली पहुँचे। उस वक्त ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने संसद में ये ऐलान कर रखा था कि अंग्रेज जून 1948 तक भारत को सत्ता सौंपकर वापस लौट जाएंगे। इसके लिए बाकायदा 3 जून प्लान तैयार किया गया था, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही व्या कर रही थी। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे और देश में सियासी हलचल और सांप्रदायिक तनाव बेहद खतरनाक मोड़ लेता जा रहा था, जगह जगह दंगे भड़क रहे थे और राजनीति गतिरोध टूटने का नाम नहीं ले रहा था। माउंटबेटन को जल्द ही ये एहसास हो गया कि अगर जून 1948 तक का इंतज़ार किया गया तो हालात पूरी तरह बेकाबू हो जाएंगे और देश में गृह युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं। हालात को देखते हुए माउंटबेटन ने डेडलाइन को करीब 1 साल पहले फैसला लिया और उन्होंने तय किए कि अगस्त 1947 में ही भारत को आज़ादी दे दी जाएगी। श्रोताओं, बातें आगे और भी करेंगे, पर उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
2: चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का,
3: हर सपने में है भारत की नई तस्वीर।
2: इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
3: आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं।
2: SBI, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज। चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का,
3: हर सपने में है भारत की नई तस्वीर।
2: इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
3: आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं।
2: SBI, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज।
6: बहनों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने ही कार्यक्रम नारी संसार में। आज 15 अगस्त का दिन, ये पावन दिन हम सभी भारतीयों के लिए गर्व और गौरव का दिन है। ये वो दिन है जब हमारा देश लंबे संघर्ष और बलिदानों के बाद 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। लेकिन स्वतंत्रता केवल एक तारीख नहीं, ये हमारे वीरों के त्याग की कहानी है, माताओं की पीड़ा की कहानी है और उन अनगिनत सेनानियों के संघर्ष की कहानी है जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिए। सिखी बहनों, हर घर तिरंगा अभियान भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रीय उत्सव है। इसका उद्देश्य लोगों के दिलों में देशभक्ति जगाना और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान बढ़ाना है। इसके तहत स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी लोगों को अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित करना है। इससे देश में एकता, भाईचारा और देशभक्ति की भावना बढ़ती है। चलते चलते एक खास बात मैं आपको बता देती हूँ, झंडा फहराने के बाद राष्ट्रीय ध्वज को ज़मीन पर फेंकना या कचरे में डालना भारतीय ध्वज संहिता और राष्ट्रीय गौरव अपमान अधिनियम के तहत कानूनी अपराध है, इसका ध्यान रखें। कार्यक्रम के बाद कागज या प्लास्टिक वाले छोटे झंडे को भी इधर उधर या ज़मीन पर ना फेंकें। अगर झंडा फट गया हो तो या मैला हो गया है तो उसे एकांत में सम्मान के साथ ज़मीन में दबा सकते हैं। झंडा फहराते या उतारते समय तिरंगा का कोई भी हिस्सा जमीन या पानी को नहीं छूना चाहिए। याद रखें, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने पर 3 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकता है। तो ध्यान रखें सखी बहनों, भारत सखी बहनों, स्वतंत्रता दिवस का इस साल यानी 15 अगस्त 2026 को भारत अपनी आज़ादी की 80वीं सालगिरह मनाने की तैयारी में सब लोग जुटे हुए हैं। तो बहनों, चलते चलते एक बार फिर से मैं स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको देती हूँ। तो बहनों, इसी के साथ दीजिए अपने सखी आरती को विदा। नमस्कार।

0: कार्यक्रम नारी संसार, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दरभंगा से। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के एक बजने ही वाले हैं। अब आप हिंदी समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्र आज 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। श्री मोदी ने स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज हर दिल की धड़कन वंदे मातरम के गायन से गुंजायमान है।
2: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि एआई शिखर सम्मेलन के आयोजन से भारत ने विश्व को अपनी शक्ति दिखाई। उन्होंने कहा कि देश की युवा शक्ति एआई के क्षेत्र में भी प्रयास कर रही है।
2: हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूँ, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
1: श्री मोदी ने कहा कि सरकार मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
2: विभिन्न

0: परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स है, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 80वीं स्वाधीनता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय समर स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि सरकार महात्मा गांधी के कार्यों और उनके दृष्टिकोण से सदैव प्रेरणा लेती रहेगी। छत्तीसगढ़ में स्वाधीनता दिवस उत्साह, उल्लास और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में मुख्य समारोह में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। चेन्नई में 80वें स्वाधीनता दिवस पर मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सेंट जॉर्ज किला पर ध्वजारोहण किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार जनता के लिए लाभकारी योजनाओं को लागू करने के लिए केंद्र के साथ सहयोग बनाए हुए है। मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दोहोमा ने कहा है कि राज्य संतुलित और समावेशी विकास की ओर अग्रसर है। आइजोल में स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री लाल दोहोमा ने कहा कि उनकी सरकार आत्मनिर्भर और विकसित मिजोरम बनाने तथा जनता के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए कार्यरत है। त्रिपुरा में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर महाराजा वीर विक्रम महाविद्यालय में विशेष देशभक्ति संगीत कार्यक्रम आयोजित किया गया। वंदे मातरम इन 1000 वॉयसेज नामक इस कार्यक्रम में 1300 से अधिक विद्यार्थियों, पूर्व विद्यार्थियों और शिक्षकों ने एक साथ वंदे मातरम का गायन किया। लेबनान में आज सवेरे इसराइल के हवाई हमलों में 7 लोग मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। मलबे में दबे लोगों को बचाने के प्रयास जारी हैं। लेबनान और इसराइल के बीच इस वर्ष 26 जून को बनी सहमति के अनुसार दक्षिण लेबनान से इसराइली सैनिकों को वापस जाना था। इसके बदले ईरान के समर्थन वाले हिजबुल्ला गुट को हथियारों से मुक्त करने की पहल शुरू करनी थी। इंडोनेशिया के फ्लोरेस क्षेत्र के पास आज सवेरे आए 7.7 तीव्रता के भूकंप से 20 लोगों की मौत हो गई। भूकंप से कई इमारतें भी ढह गईं। भूकंप के कारण 6 लोग घायल हुए हैं और 2 लापता हैं। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। गाले में श्रीलंका के साथ 2 मैचों की क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने चायकाल तक 1 विकेट पर 101 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। फिलहाल वर्षा के कारण खेल रुका हुआ है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। जानकारी प्राप्त कीजिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में।

अब से कुछ ही देर में यानी कि 1:10 पर आप सुनेंगे देशभक्ति गीत मोहम्मद रफ़ी एवं मन्ना डे के स्वर में। कार्यक्रम आपकी पसंद का प्रसारण समय है 1:15। प्रादेशिक समाचार और इलाकाई खबरें आप सुनेंगे हमारे पटना केंद्र से 2:05 पर। रोजगार सूचना हम आपको सुनवाएंगे 2:10 पर। फिल्म संगीत का आनंद एक बार पुनः आप ले सकेंगे 2:30 पर। प्रादेशिक संगीत आप सुन सकेंगे अपराह्न 3:00। हमारी दूसरी सभा के अंतर्गत शाम 5:00 आप सुनेंगे किसान वाणी।

5:30 पर आप सुन सकेंगे 80वें स्वतंत्रता दिवस पर दरभंगा और उसके आसपास के क्षेत्रों में आयोजित समारोहों पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान द्वारा प्रायोजित

प्रजापति गीत का समय होगा शाम 6:10, 6:25 पर। आप सुनेंगे हमारे एक पटना केंद्र से मैथिली संवाद, प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। आप सुनेंगे शाम 6:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान का प्रसारण समय होगा 6:40। 6:55 पर हम आपको सुनवाएंगे देशभक्ति गीत।

बिहार प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी का स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश की जनता के नाम संदेश आप सुनेंगे शाम 7 बजे।

7:10 पर प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। प्रादेशिक समाचार आप सुन सकेंगे 7:30 पर और जिले की हलचल 7:47 पर हमारे पटना केंद्र से। फिल संगीत का आनंद आप एक बार पुनः ले सकेंगे 7:50 पर। इस सप्ताह संसद में, जिसका प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से कर आप तक पहुंचाएंगे 8:00। राज्य भर में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह पर आधारित विशेष रेडियो रिपोर्ट।

9:30 पर आप सुनेंगे लाल किले पर आयोजित ध्वजारोहण समारोह में भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को किए गए संबोधन का मैथिली अनुवाद। स्वर सहयोग राकेश चंद्र नंदन का। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात्रि 10 बजे हमारे दिल्ली केंद्र से।

देशभक्ति गीत अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दरभंगा से। अब आनंद लीजिए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद का, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ देशभक्ति गीत। देशभक्ति गीत आपकी पसंद के इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं को एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त नूतन। पहला गीत मैं आपको सुनवाने जा रही हूं पूर्व और पश्चिम से। गायक कलाकार हैं महेंद्र कपूर और साथी। इंदिवर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने। वाले हमारे श्रोता हैं आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा। गांधी चौक रोपर पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर मीका, बलविंदर बीरक, जयतेग बीरक, मीका बीरक। गरीब नवाज कॉलोनी बंदना नगर इंदौर से रेखा संतोषी रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र रघुवंशी, बबीता सुरेंद्र रघुवंशी, पूजा विक्की रघुवंशी, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, ललिता नारायण खर्चे। महाराजा रेडियो जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे, गायत्री धनजे। खुर्दी रोड मानापुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद पर ये गीत।

रघुवंशी, बबीता सुरेंद्र रघुवंशी, पूजा विक्की रघुवंशी, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, ललिता नारायण खर्चे, जातुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना आलम, चांदनी नाज, सिराजपुर गणेशपुर से फिरोज आलम, नाज प्रवीण, अर्श बाबू, अर्सलान बाबू, इनके लिए हम लेकर आए हैं फिल्म उपकार का ये गीत महेंद्र कपूर की आवाज़ में। गुलशन बाबरा के लिखे इस गीत को संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

अगले गीत के लिए हमारे पास चिट्ठी आई है छत्तीसगढ़ से दतरंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लक्षनपुर से विश्वनाथ साहू, चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गा राम साहू, चांडूर विश्वा तालुका नांदुरा जिला बुलोडाना महाराष्ट्र से नारायण भाऊ खरसे, रक्षा ताई खरसे, ललिता संजना खरसे, गणेश और कार्तिक खरसे, मालती चौधरी, स्वाति प्रयाग चौधरी। एरोड्रम थाने के पास वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से रेखा संतोष रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र।

कार्यक्रम आपकी पसंद में अगला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं पूर्व और पश्चिम का, महेंद्र कपूर एवं साथियों की आवाज़ में। इंदिवर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने। सुनने वाले हमारे श्रोता हैं झंझारपुर लगना चौक से हरेराम पासवान, जयशंकर पासवान, काजल कुमारी, रानी कुमारी, आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा, निवान शर्मा, चांडूर विश्वा तालुका नांदुरा जिला बुलडाणा महाराष्ट्र से नारायण भागु खर से, रक्षाताई खर से, मेहसौल सीतामढ़ी बिहार से मुसर्रत जहां नाज, तलअत जहां नाज, फरहत जहां नाज, फिर रिफअत जहां नाज, नुजहत जहां नाज, साजिया शाहीन नाज, नाजिया नूरी नाज, बैंक रोड भगवतीपुर वार्ड नंबर 3 से संतोष कुमार मुखिया, रानी अनीता राज, गरिमा राज, अभिषेक कुमार, अविनाश कुमार, अमृत वंश प्रसाद, जरूर वरुण महाराष्ट्र से बाबा साहेब बाडोरदे, मीनाक्षी चरपे, रजनी कानीरे, कार्तिक युवराज। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा से कार्यक्रम आपकी पसंद, और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त नूतन। श्रोताओं, कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति है फिल्म जिस देश में गंगा बहती है से, स्वर मुकेश का, गीत लिखा है शैलेंद्र ने और संगीत शंकर जयकिशन का। सुनने वाले हमारे श्रोता हैं छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झाविंद्र कुमार वर्मा, ताजपुर मोरवा से भाई कारी राय कारी, श्रीमती मीना कारी, पुंज राय राज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी रिंकी रिक्की रितु, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा, ढोली सकरा से जयंत कुमार बैरागी, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश। आइए सुनते हैं इस गीत को।

जिस देश में गंगा बहती है, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मुकेश एवं साथियों की आवाज़ में। शैलेंद्र के लिखे इस गीत को संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। सुनने वाले हमारे श्रोता थे बिरडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन गवनेकर, धीरज सवासेरे, कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय। अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म शहीद से। गायक कलाकार हैं महेंद्र कपूर, मुकेश एवं राजेंद्र मेहता। गीत एवं संगीत प्रेम धवन का। इस गीत को सुनने वाले हमारे श्रोता हैं डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल राजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। लुधियाना पंजाब से अमरजीत सोनम कौर, परमजीत आदिवा कौर। बिहारी कॉलोनी महासमुंद से वली उल्लाह फकीर, डब्लू उल्लाह फकीर, परवीन आसमा फकीर। बुलंदशहर से बदरू वली अंसारी, फर्जू वली अंसारी, फर्जी वली अंसारी। नाहर मंटोला से कादिर अली, जाकिर अली, हामिद अली, जाविर अली, मोहम्मद अरमान, मोहम्मद सलमान। तो आइए सुनते हैं फिल्म शहीद का ये गीत।

कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति है फिल्म हम हिंदुस्तानी से। स्वर मुकेश का, गीत प्रेम धवन और संगीत उषा खन्ना का। इस गीत को सुनने वाले हमारे श्रोता हैं रहमानिया मोहल्ला महसौल सीतामढ़ी बिहार से तलअत जहानाज, फरहत जहानाज, रिफअत जहानाज, नुजहत जहानाज, वसीम अकरम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, अमन अकरम, रामपट्टी गौसनगर से शुभ नारायण महतो, राजा बाबू, राजेश कुमार, लक्ष्मी नारायण महतो, जीवन कुमार, मोहम्मद कली गदीवाना, मोहम्मद दानिश, मोहम्मद अमन, मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद अमाज, सोनी बेगम, खुशबू प्रवीण, शाहशता प्रवीण, शमा प्रवीण, डोली प्रवीण, मेहर प्रवीण, बेर्डी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन गवनेकर, धीरज सब्बासेरे, भोलेनाथ कॉलोनी इंदौर मध्य प्रदेश से स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, भाऊ मराठा, गणेश दादा मराठा, कार्तिक भाऊ मराठा, परी संजना मराठा, ललिता नारायण खर्चे। तो आइए सुनते हैं फिल्म हम हिंदुस्तानी का ये गीत।

फिल्म हम हिंदुस्तानी के इसी गीत के साथ कार्यक्रम आपकी पसंद अब संपन्न हुआ। श्रोताओं, अब समय हो चला है प्रादेशिक समाचार और इलाकाई खबरों का, जिसका प्रसारण हम अपने पटना केंद्र से कर आपको सुनवाएंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। देश आज 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया। राष्ट्र को स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हर दिलों की धड़कन वंदे मातरम के गायन से गूंज रही है। हर घर तिरंगा है, मन तिरंगा है और देश उत्साह तथा उमंग के साथ नए संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत एक बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। जब 2047 में स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होंगे, हम विकसित भारत बनाकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि यह 140 करोड़ भारतीयों के पुरुषार्थ से ही संभव है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें निश्चित दिशा में आगे बढ़ना है। भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु से ही संभव होगा। उन्होंने शक्ति की सप्तधारा का आह्वान किया ताकि देश को नई ऊंचाई तक पहुंचाया जा सके। श्री मोदी ने कहा कि कोविड जैसी वैश्विक महामारी से पूरी व्यवस्था चरमरा गई थी, लेकिन सभी के प्रयासों से देश को उस संकट से बाहर निकाला गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के पास शक्ति है और सामर्थ्य है, इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि वैश्विक नेतृत्व हमारे हाथ में हो। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया अब भारत की शक्ति को पहचानने लगी है, इसलिए अनेक देशों ने मुक्त व्यापार समझौते किए हैं। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, उद्योगों को मिलकर आगे बढ़ना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सुरक्षित भारत बनाना सभी का दायित्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि खतरा सीमाओं के बाहर हो या देश के भीतर, भारत हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हमें आने वाले वर्षों में सिविल डिफेंस का नेटवर्क बढ़ाना होगा। स्वतंत्रता दिवस पर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित मुख्य राजकीय समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि बिहार लगातार विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य का बजट 3,47,000

0: करोड़ रुपए का हो गया है, जो बदलते बिहार का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा, उद्योग और खेल समेत सभी प्रमुख क्षेत्रों में विकास के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष नवंबर तक 5,00,000 करोड़ रुपए का निजी निवेश का लक्ष्य है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने परेड की सलामी ली। परेड में बिहार पुलिस, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएमपी, होमगार्ड, एनसीसी और भारत स्काउट्स एंड गाइड के जवानों ने भाग लिया। इस अवसर पर शिक्षा, सहकारिता, पर्यटन और जीविका समेत 13 विभागों की ओर से झांकियां भी निकाली गई। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश भर में स्वतंत्रता दिवस समारोह उल्लासपूर्वक माहौल में मनाया जा रहा है। विभिन्न जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि प्रभारी मंत्रियों ने ध्वजारोहण किया। स्कूल, कॉलेज, सरकारी कार्यालयों और निजी संस्थानों में भी तिरंगा फहराया गया। महादलित गांव और टोलों में आयोजित कार्यक्रम में समुदाय के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने तिरंगा फहराया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त अता हसनैन ने राजभवन में तिरंगा फहराया। विधानसभा परिसर में अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार, विधान परिषद में सभापति अवधेश नारायण सिंह और पटना उच्च न्यायालय में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुधीर सिंह ने ध्वजारोहण किया। आकाशवाणी पटना के प्रांगण में उप महानिदेशक अभियंत्रण सह कार्यालय प्रमुख ब्रजेश कुमार ने तिरंगा फहराया। भाजपा, जदयू, राजद, कांग्रेस और वामपंथी दलों समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यालयों में भी इस अवसर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्य सरकार की ओर से आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विभिन्न जिलों में आयोजित कार्यक्रम में 30,000 भूमिहीन परिवारों के बीच भूमि बंदोबस्ती प्रमाण पत्र वितरित किए गए। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने बताया कि इन परिवारों को अभियान बसेरा 2 के अंतर्गत 3-3 डिसमिल जमीन देने का प्रावधान है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
1: ये आकाशवाणी पटना है। अब आप शर्फुल हुदा से इलाकाई खबरें सुनिए। मुल्क आज 80वां यौम आज़ादी मना रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तारीखी लाल किले की फसील से कौमी परचम लहराया। कौम के नाम यौम आज़ादी की मुबारकबाद देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि आज हर दिलों की धड़कन वंदे मातरम के गीत से गूंज रही है। हर घर तिरंगा है, मन तिरंगा है और मुल्क जोश और जज्बे के साथ नए अज़ायम को लेकर आगे बढ़ रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि आज भारत एक बहुत बड़े ख्वाब की तकमील में आगे बढ़ रहा है। जब 2047 में आज़ादी के 100 बरस पूरे होंगे, हम विकसित भारत बनाकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के अजायम से ही मुमकिन है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें एक ख़ास सिमत में आगे बढ़ना है। जनाब मोदी ने कहा कि कोविड जैसी आलमी बीमारी से पूरी मईशत बिगड़ गई थी, लेकिन सभी की कोशिशों से मुल्क को बहरानी कैफियत से बाहर निकाला गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि देश के पास ताकत और सलाहियत है, इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि आलमी क़यादत हमारे हाथ में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया अब भारत की ताकत को पहचानने लगी है, इसलिए कई ममालिक ने ओपन ट्रेड समझौते किए हैं। जनाब मोदी ने कहा कि महफूज भारत की तामीर सभी की जिम्मेदारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि खतरा सरहदों के बाहर हो या मुल्क के अंदर, भारत हर हालात से निपटने के लिए तैयार है। यौम आज़ादी पर पटना के तारीखी गांधी मैदान में मुनक़िद अहम सरकारी तकरीब में वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने परचम कुशा

0: की और परेड की सलामी ली। इस मौके पर श्री चौधरी ने कहा कि बिहार मुसलसल मुख्तलिफ शोबों में तरक्की कर रहा है। उन्होंने कहा कि रियासत का बजट 3,47,000 करोड़ रुपए का हो गया है, जो बदलते बिहार की तस्वीर है। वज़ीर आला ने कहा कि तालीम, सनत, खेल समेत सभी अहम शोबों में तरक्की के हदफ मुकर्रर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अगले साल नवंबर तक 5,00,000 करोड़ की निजी सरमायाकारी का निशाना रखा गया है। इससे पहले वज़ीर आला ने परेड की सलामी ली। परेड में बिहार पुलिस, CRPF, ITBP, BMP, होमगार्ड, NCC और भारत स्काउट एंड गाइड के जवानों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर तालीम, इमदाद बाहमी, सियाहत और जीविका समेत 13 महकमों की जानिब से झांकियां भी निकाली गईं। इधर पूरी रियासत में यौम आज़ादी की तकरीब जोश जज्बे के माहौल में मनाई जा रही है। कई ज़िला हेडक्वार्टर से हमारे नामानिगारों ने खबर दी है कि इंचार्ज वज़रा ने परचम लहराया। स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफातर और प्राइवेट अदारों में भी तिरंगा लहराया गया। महादलित टोलों में मुनक़िद प्रोग्राम में कम्युनिटी के सबसे बुजुर्ग शख्स ने तिरंगा लहराया। यौम आज़ादी के मौके पर गवर्नर अता हसनैन ने राजभवन में परचम कुशाई की। असेंबली अहाते में स्पीकर डॉक्टर प्रेम कुमार, काउंसिल में चेयरमैन अवधेश नारायण सिंह और पटना हाई कोर्ट में कारगुजार चीफ जस्टिस सुधीर सिंह ने परचम लहराया। आकाशवाणी पटना के अहाते में डिप्टी डायरेक्टर जनरल इंजीनियरिंग कम ऑफिस हेड ब्रजेश कुमार ने तिरंगा लहराया। मुख्तलिफ सियासी जमातों के दफ्तरों में भी इस मौके पर झंडा लहराने के प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। रियासती हुकूमत की तरफ से आज यौम आज़ादी के मौके पर मुख्तलिफ ज़िलों में मुनक़िद प्रोग्राम में 30,000 बेज़मीन ख़ानदान के बीच ज़मीन बंदोबस्ती सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। महसूलात और इस्लाहात अराजी के वज़ीर डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने बताया कि इन ख़ानदान के अभियान बसेरा 2 के तहत 3-3 डिसमिल ज़मीन देने का नज़्म है। और इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई ख़बरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।
1: हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़, साथ ही न्यूज ऑन AIR ऐप पर सुनिए रोजगार सूचना।

इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, कुल पद 200। आवेदन शुरू होने की तिथि 20/7/2026 और आवेदन की अंतिम तिथि 19/8/2026। इसकी न्यूनतम उम्र सीमा है 18 वर्ष और अधिकतम 24 वर्ष। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट www.igcar.gov.in पर जाकर

NFR रेलवे अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2026 कुल पद 6,777। आवेदन शुरू होने की तिथि 20/7/2026 और आवेदन की अंतिम तिथि 19/8/2026। उम्र सीमा न्यूनतम 15 वर्ष और अधिकतम 24 वर्ष। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट www.nfr-recruitment.in पर जाकर देखें।

0: सूचना समाप्त हुई।
1: चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का,
2: हर सपने में है भारत की नई तस्वीर।
1: इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
2: आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं।
1: SBI, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज।
3: आकाशवाणी देश भर के रेडियो श्रोता संघों की अद्यतन जानकारी एकत्रित कर रही है ताकि आपसे संवाद और भी मजबूत हो सके। यदि आप बिहार में किसी रेडियो श्रोता संघ से जुड़े हैं तो कृपया अपने रेडियो श्रोता संघ का नाम, संचालक का नाम एवं पता, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की प्रामाणिक जानकारी हमें अवश्य उपलब्ध कराएं। हमारा ईमेल पता है pcpatnacom@gmail.com। आप यह जानकारी अपने नजदीकी आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से भी हमें दे सकते हैं। आकाशवाणी, आपकी आवाज आपके साथ।
1: चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का,
2: हर सपने में है भारत की नई तस्वीर।
1: इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
2: आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं।
1: SBI, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज।
0: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2:15 होने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप दोपहर समाचार सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। लाल किला पर पहली बार वंदे मातरम का गायन। प्रधानमंत्री ने गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग और अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI कौशल का प्रशिक्षण देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा, महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में भारत एक विश्वसनीय वैश्विक साझेदार के रूप में उभर रहा है। कई देशों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। श्री मोदी ने कुछ देशों द्वारा संसाधनों का दुरुपयोग कर अपना वर्चस्व दिखाने के प्रयासों पर निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा, भारत आत्मनिर्भरता की भावना से इस चुनौती का सामना कर रहा है। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इंडोनेशिया के पूर्वी तट पर आए 7.7 तीव्रता के भूकंप में 20 लोगों की मौत और गाले में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट में भारत ने 1 विकेट पर 106 रन बनाए। राष्ट्र आज 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। श्री मोदी ने स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज हर दिल की धड़कन वंदे मातरम के गायन से गुंजायमान हो रही है।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि AI शिखर सम्मेलन के आयोजन से भारत ने विश्व को अपनी ताकत दिखाई है। उन्होंने कहा कि देश की युवा शक्ति AI के क्षेत्र में भी प्रयास कर रही है।
1: हमने पिछले दिनों AI इम्पैक्ट समिट किया था। AI

0: का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
1: श्री मोदी ने कहा कि सरकार मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
0: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को

0: पूरी ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स है, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में करोड़ों देशवासियों के संकल्प, समर्पण और हर संभव प्रयास की बदौलत देश ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। उन्होंने कहा कि पहले भारत 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देशों में गिना जाता था, लेकिन अब भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था है।
0: इन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है कि हम कभी फ्रेजाइल 5 में गिरे जाते थे, 12 साल के भीतर भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि कई बार देश केवल संसाधन की कमी के कारण नहीं बल्कि सीमित सोच के कारण भी पिछड़ता है। उन्होंने कहा कि भारत को कच्चे तेल पर निर्भर रहना पड़ा है और ये भी सीमित सोच का परिणाम था। श्री मोदी ने कहा कि जिन अपतटीय क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के काम की अनुमति नहीं थी, सरकार ने उनमें से 99% को खोल दिया, जहां अब समुद्र के भीतर नए संसाधनों और भंडारों की खोज की जा रही है।
0: हमने समुद्री तट पे समुद्र के अंदर जाकर के एक्सप्लोरेशन न करने का निर्णय कर लिया था। ये सोच का दारिद्र्य था, हमने फैसला किया ये नहीं चल सकता। हमने उस 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया। हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 7-8 वर्ष में लगभग 8 सेमीकंडक्टर संयंत्र काम शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि इस समय देश में 3 संयंत्रों में सेमीकंडक्टर का निर्माण हो रहा है और इस क्षेत्र में भारत की प्रगति तकनीकी आत्मनिर्भरता को दर्शाती है।
0: कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है और इसे इस चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो जाए, और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके हैं।
1: स्वाधीनता दिवस समारोह पर हमारे संवाददाता की विस्तृत रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के बाद अंतर सेवा और दिल्ली पुलिस के संयुक्त गार्ड ने उन्हें सलामी दी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ 21 तोपों की सलामी दी गई। वहीं पहली बार लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन किया गया। ध्वजारोहण के बाद भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर ने समारोह स्थल पर फूलों की बारिश की। इनमें से एक हेलीकॉप्टर पर राष्ट्रीय ध्वज था और दूसरे पर वंदे मातरम लिखा हुआ ध्वज था। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद NCC कैडेट्स और मेरा भारत के स्वयंसेवकों ने वंदे मातरम का गायन किया। इसके बाद राष्ट्रगान हुआ। सेना, नौसेना और वायुसेना के कुल 2500 कैडेट्स और मेरा भारत के स्वयंसेवकों ने समारोह में हिस्सा लिया। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों से करीब 5000 विशेष अतिथियों ने लाल किले पर आयोजित समारोह में भाग लिया। इनमें PM विश्वकर्मा योजना के कारीगर, PM मुद्रा योजना की महिला उद्यमी, PM स्वनिधि योजना के रेहड़ी पटरी वाले, भारत टैक्सी के चालक, स्वच्छ भारत मिशन के सफाई कर्मचारी और राष्ट्रीय नवाचार कार्यक्रम से जुड़े युवा शामिल थे। लाल किले पर आयोजित समारोह का समापन आसमान में तिरंगे गुब्बारे छोड़ने के साथ हुआ। अनुपम और आनंद के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय समर स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। श्री मोदी ने कहा कि सरकार महात्मा गांधी के कार्यों और उनके दृष्टिकोण से सदैव प्रेरणा लेती रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार प्रत्येक नागरिक की प्रगति के लिए काम करती रहेगी, इससे

0: देश प्रगतिशील और समृद्ध बनेगा। नई दिल्ली के आकाशवाणी मुख्यालय में भी 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने राष्ट्र ध्वज फहराया और हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, यह दिन उन शहीदों को याद करने का दिन है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की जनता से राष्ट्र के विकास में योगदान देने और राष्ट्र को कमजोर करने वाली शक्तियों से दूर रहने की अपील की है। पश्चिम बंगाल में मातृभूमि के प्रति गहरे श्रद्धा के साथ 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है।
1: कोलकाता में मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 2047 तक विकसित बंगाल विकसित भारत के निर्माण में योगदान दे सकता है। रेड रोड परेड में राज्य सरकार की कई झांकियां प्रदर्शित की गईं, जिनमें पीएम सूर्य घर योजना और विकसित भारत जी राम जी योजना जैसी विभिन्न योजनाओं को दिखाया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने बैरकपुर के गांधी घाट पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया और महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। कोलकाता से आकाशवाणी समाचार के लिए कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ मैं कुमार राधारमण।
0: जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्य समारोह श्रीनगर के प्रसिद्ध बख्शी स्टेडियम में आयोजित किया गया।
2: स्वतंत्रता दिवस के हवाले से सबसे बड़ा समारोह श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में हुआ, जहां मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आजकल के हालात अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि आजादी के 80 साल बाद जम्मू कश्मीर का भारत का हिस्सा बनने का फैसला सही साबित हुआ है। इधर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी श्रीनगर के लोक भवन में तिरंगा फहराया और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लोगों को बधाई दी। इस बीच जम्मू कश्मीर के सभी जिला मुख्यालयों में भी ऐसे ही कार्यक्रम आयोजित किए गए। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इशफाक शाह।
0: छत्तीसगढ़ में 80वां स्वाधीनता दिवस उत्साह उल्लास और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर में मुख्य समारोह में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली।
3: रायपुर में आयोजित स्वाधीनता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साहसिक नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दृढ़ संकल्प से नक्सलवाद के विरुद्ध ऐतिहासिक सफलता मिली है। माओवाद से मुक्त बस्तर में आज तिरंगा यात्राओं के माध्यम से स्वतंत्रता का उत्सव मनाया जा रहा है। जो क्षेत्र कभी हिंसा और भय से प्रभावित थे, वहां आज शांति, विश्वास और विकास की नई सुबह हुई है। उन्होंने कहा कि बस्तर की सर्वांगीण प्रगति सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से है। कभी माओवाद से प्रभावित रहे और अब नक्सलवाद से मुक्त हो चुके राज्य के बस्तर संभाग के करीब 90 गांव ऐसे हैं जहां आजादी के बाद आज पहली बार स्वाधीनता दिवस पर तिरंगा फहराया गया। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: केरलम में मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने तिरुवनंतपुरम में राष्ट्रध्वज फहराया। इसके बाद वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने समारोह स्थल पर पुष्प वर्षा की।
4: तिरुवनंतपुरम में मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने परेड की सलामी ली। विभिन्न सशस्त्र बलों की टुकड़ियों के साथ माउंटेड पुलिस, एनसीसी, स्काउट्स एंड गाइड्स तथा स्टूडेंट पुलिस कैडेट्स ने इसमें हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस संदेश देने के बाद पुलिस, अग्निशमन और बचाव सेवा तथा कारागार विभाग के कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक प्रदान किए। कोच्चि में दक्षिणी नौसेना कमान समारोह में वाइस एडमिरल समीर सक्सेना ने परेड की सलामी ली। समारोह के दौरान नौसेना के जहाजों को झंडों से सजाया गया। इडुक्की में बांधों और नौका केंद्रों पर स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किए गए, जिनमें पर्यटकों ने भी भाग लिया। कोवलम बीच के निकट एक निर्जन द्वीप पर तटरक्षक बल ने भी स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया। स्मिथि एम पुल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: वैश्विक नेताओं ने भी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत और अमेरिका के बीच मजबूत संबंधों का उल्लेख किया है। इसराइल के राजदूत रूवेन अजार, अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो कोसीना, श्रीलंका के उच्चायुक्त महेशिनी कोलोन, नेपाल दूतावास, फ्रांस दूतावास, ऑस्ट्रेलिया के उप उच्चायुक्त और कनाडा के उच्चायुक्त ने भी भारत की विरासत, विविधता, आर्थिक क्षमता और बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों पर जोर देते हुए शुभकामनाएं दी। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद स्वालेह और मालदीव नेशनल पार्टी के अध्यक्ष मोहम्मद नाजिम ने भारत के विकास और मालदीव के साथ घनिष्ठ साझेदारी की प्रशंसा की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल

0: मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इंडोनेशिया के फ्लोरेंस क्षेत्र के पास आज सवेरे आए 7.7 तीव्रता के भूकंप से 20 लोगों की मौत हो गई। भूकंप से कई इमारतें ढह गईं। भूकंप के कारण 6 लोग घायल हुए हैं और 2 लापता हैं। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। लेबनान में आज सवेरे इसराइल के हवाई हमले में 7 लोग मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। मलबे में दबे लोगों को बचाने के प्रयास जारी हैं। लेबनान और इसराइल के बीच इस वर्ष 26 जून को बनी सहमति के अनुसार दक्षिण लेबनान से इजरायली सैनिकों को वापस जाना था। इसके बदले ईरान के समर्थन वाले हिजबुल्ला गुट को हथियारों से मुक्त करने की पहल की जानी थी। गाले में श्रीलंका के साथ 2 मैचों की क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 1 विकेट पर 118 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। लाल किला पर पहली बार वंदे मातरम का गायन। प्रधानमंत्री ने गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग और अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI कौशल का प्रशिक्षण देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा, महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में भारत एक विश्वसनीय वैश्विक साझेदार के रूप में उभर रहा है। श्री मोदी ने कुछ देशों द्वारा संसाधनों का दुरुपयोग कर अपना वर्चस्व दिखाने के प्रयासों पर निराशा व्यक्त की। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इंडोनेशिया के पूर्वी तट पर आए 7.7 तीव्रता के भूकंप में 20 लोगों की मौत और गाले में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट में भारत ने 1 विकेट पर 118 रन बनाए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ष पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:30 हो चुके हैं। अब हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत। इससे पहले आइए सुनते हैं एक कार्यक्रम संबंधी सूचना। श्रोताओं, सिर दर्द एक सामान्य समस्या है, लेकिन कई बार इसके लक्षण असामान्य, अत्यंत कष्टप्रद और घातक भी हो सकते हैं। सिर दर्द, कारण, लक्षण और इलाज, यही है आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगले अंक का विषय। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर भुवन जी झा, विभागाध्यक्ष न्यूरो सर्जरी विभाग DMCH दरभंगा। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़ने के लिए फोन नंबर होंगे 06-272-222-481। हमारा मोबाइल नंबर होगा 9430029353। समय याद रखें, रविवार 16 अगस्त 2026 दिन के 11 बजे।

हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के। फिल्म जागृति का ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीत लिखा था कवि प्रदीप ने और संगीत हेमंत कुमार का। अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म आक्रमण से, किशोर कुमार की आवाज़ में, बोल आनंद बख्शी के, और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

फिल्म गंगा जमुना का गीत अभी आप सुन रहे थे हेमंत कुमार की आवाज़ में। शकील बदायूनी के लिखे इस गीत को संगीत दिया था नौशाद ने। आइए अब सुनते हैं फिल्म सिकंदर आजम का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, बोल हंसराज बहल के।

और संगीत दिया है राजेंद्र कृष्ण ने। इस गीत को सुनने से पहले आइए सुनते हैं एक कार्यक्रम संबंधी सूचना। श्रोताओं, सिर दर्द एक सामान्य समस्या है, लेकिन कई बार इसके लक्षण असामान्य, अत्यंत कष्टप्रद और घातक भी हो सकते हैं। सिर दर्द कारण, लक्षण और इलाज, यही है आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगले अंक का विषय। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर भुवनजी झा, विभागाध्यक्ष न्यूरो सर्जरी विभाग DMCH दरभंगा। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़ने के लिए फ़ोन नंबर होंगे 06-272-222-481। हमारा मोबाइल नंबर होगा 9430029353। समय याद रखें रविवार 16 अगस्त 2026 दिन के 11 बजे।

फिल्म मुझे जीने दो का गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। साहिर लुधियानवी के लिखे इस गीत को संगीत दिया था जयदेव ने। इसी के साथ फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। प्रस्तुत है प्रादेशिक संगीत।

0: चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का,
1: हर सपने में है भारत की नई तस्वीर।
0: इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
1: आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं।
0: SBI, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज।

0: चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का,
1: हर सपने में है भारत की नई तस्वीर।
0: इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
1: आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं।
0: SBI, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज।
2: संदेश से पहले आप सुन रहे थे प्रादेशिक संगीत। प्रादेशिक संगीत में आज आपने सुना कुछ मराठी गाने। गायक कलाकार थे अजीत कड़कड़े। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3:20 हो चुके हैं। अब हमारी ये सभा यहीं समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे शाम 5:00। तब तक के लिए दीजिए अनुमति।

ये गीत आप सुन रहे थे सत्यम शिवम सुंदरम। इस फिल्म से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी, आनंद बख्शी के बोल थे, मुकेश की आवाज थी। संबलपुर कांकेर से फागुन राम और ज्योति यादव, ओजस्वी यादव और ईशिका यादव ने इस गीत को सुनना चाहा था। अलीवाड़ा छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से देवीराम इनवाती और दामिनी इनवाती की फरमाइश आप सुन रहे थे। जमशेदपुर से चिन्मयी महतो, रेखा महतो ने इस गीत को सुनना चाहा और ये हमारे श्रोता हैं लोहारा बालोद के अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा तमूरिया, राधिका प्रभा देवी और ये हमारा हमारे श्रोता हैं हिच्छा महासमुंद से, अदालत दास मानसी, शांति ऋचा गायत्री।

खानदान फिल्म का गीत था, लता मंगेशकर का गाया, नक्शलालपुरी के बोल थे, खयाम का संगीत था, जगदलपुर बस्तर से पूनम नायडू, साजन के मास्टर शिवांशु, अभिषेक नायडू की फरमाइश आई, इस्लामपुर जिला बुलढाणा से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, कुमारी साधना, सुमित कुमार दामोदर ने इस गीत के लिए पत्र लिखा। लोहेड़ी महोबा के हमारे श्रोता हैं उत्तर प्रदेश से, जयपाल यादव, इंद्रपाल, अरविंद, राघवेंद्र, रिया, रेणु, देव्यांशी, रोनिका और रागिनी यादव ने इस गीत को सुनना चाहा। शीतला नगर दुर्ग के हमारे श्रोता हैं शिवचंद्राकर भगवान और पार्वती राधा चंद्राकर भी यहीं से, और इस गीत के लिए एक और पत्र भेजा अवधेश गुप्ता, भोलू नीलू, शालराज और वंशराज ने। ये हमारे श्रोता हैं गर्ल्स स्कूल रोड मनिहारी से।

चिराग फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी का गाया, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे, मदन मोहन का संगीत था। रिधोरा से बाबूलाल बुराखड़े, गोकुला बुराखड़े, मंगेश की फरमाइश थी। अकोले महाराष्ट्र से श्याम संतानी, आशा नैन्सी, सुमित की फरमाइश थी। लचनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज तिरुपति और अनल साहू की फरमाइश ये थी। और हमारे डव्वाली हरियाणा के श्रोता हैं जेके बकोलिया, सुनीता बकोलिया, मीनू बकोलिया और जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, ज्योति शुभम और भावना, ये हमारे श्रोता हैं मोटक का मूर्ति जिला खंडवा के। और इन्हीं गीतों के साथ संपन्न होता है आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम। भेजते रहिए अपने पत्र श्रोताओं, क्योंकि आपके पत्रों का रहता है हमें इंतजार। स्वतंत्रता दिवस की एक बार फिर बहुत सारे शुभकामनाओं के साथ लेते हैं इजाजत इस कार्यक्रम से। आप सभी को संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार।

आज की नाट्य तरंग कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं नाटक लगन। इसके लेखक हैं रोमी सिराज, निर्देशन किया है मुद्रा राक्षस ने। तो आइए सुनते हैं नाटक लगन।

0: सर्दी तो लगता है फिर से पलट गई है। इतनी ठंड तो दिसंबर में भी नहीं थी।
1: कल रात से रुक रुक कर पानी बरस रहा है, बाहर निकलने की तो हिम्मत ही नहीं पा रही है। मिस्टर निगम, आप एक कॉफी और लेना पसंद करेंगे?
0: क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं। लेकिन सुनिए, बस दूध की कंजूसी मत कीजिएगा। आई लाइक कॉफी विद लॉट ऑफ मिल्क, कॉफी और लय।
1: मतलब?
0: मतलब कॉफी विद मिल्क, आई सेड इट इन फ्रेंच।
1: फ्रेंच। अच्छा एक बात बताइए, ये फ्रेंच पढ़ना छोड़ क्यों दिया आपने?
0: जब मेरी जगह उस थुल थुल बनर्जी को फ्रांस भेजा गया तो फ्रेंच पढ़ना तो छोड़ना ही था।
1: ये लीजिए गर्मा गर्म अपनी कॉफी और ले।
0: थैंक यू वेरी मच। भाई लगता है कि मौसम इस बात से बहुत नाराज है कि आखिर हम इस ठंड को चुपचाप सहने की बजाय कॉफी के प्याले को हथियार बनाने पर क्यों तुले।
1: निगम साहब, प्रकृति ने जब चाहा बेरहमी से कुचला ही है हमें।
0: नो मिस्टर शेखर, हियर यू आर रॉन्ग। कितनी बेरहमी आदमी ने प्रकृति पर दिखाई है तो क्या कम है? जस्ट फॉर सम बक्स वी हैव वर्चुअली रेप्ड एनवायरनमेंट। पहाड़ों पर पूरे के पूरे जंगल काट डाले, पूरे

0: के पूरे जंगल बरसात का पानी है कि रुकता ही नहीं। बाढ़ आने का एक बड़ा कारण है ये, और उधर जंगलों में पूरा का पूरा मैदान साफ कर दिया। तुम्हें याद है ना वो क्या नाम था उसका, वो हाँ वो सिन्हा के लड़के प्रदीप का केस।
1: हाँ, वो फॉरेस्ट ऑफिसर
0: जी, वो इस सब के खिलाफ था, रोकना चाहता था ये सब, मगर जब एक बार उसने अवैध लट्ठों से भरे हुए ट्रक को पकड़ा तो जानते हो क्या हुआ? न जाने लट्ठों को बांधने वाली रस्सी कैसे खुल गई और लट्ठे भारी आवाज के साथ उसे रौंदते हुए आगे तक फिसलते चले गए। इट वॉज नॉट एन एक्सीडेंट, यू नो, ही वॉज किल्ड।
1: पुअर चैप। निगम, ये जो डेजर्ट है ना अफ्रीका का, सहारा, इसके बारे में भी कहते हैं कि यहां पर पहले मीठे पानी का सोता था, हरा भरा जंगल था।
0: ये सब बातें सुन करके तो ऐसा लगता है शेखर, मानो हम सब मेज कुर्सी पर नहीं, हड्डियों को छील कर बनाए गए ढांचे पर बैठे हो।
1: एक बात कहूं, प्रदीप की बीबी सोनाली के साथ बहुत बहुत बुरा व्यवहार किया सिन्हा ने।
0: अरे भाई, सास ससुर थे नवे, और प्रदीप का मरना तो मानो मानो सोनाली की मर्जी से हुआ।
1: अब तो सोनाली ने शादी कर ली।
0: उसका हस्बैंड एक्सपोर्टर है, अच्छा काम है उसका दिल्ली में, और भाई वो भी बहुत खुश है। लेकिन एक बात बताऊं शेखर, वो प्रदीप को भूल नहीं पाई।
1: प्रदीप ऐसा था ही नहीं जिसे भूला जा सके। अरे कौन है बाहर? कौन है बाहर? ए, कौन है बाहर? अरे कौन है बाहर? देखे, मैंने पूछा कौन है भाई, बोलता क्यों नहीं है?
2: अरे हाँ, मैं बाबूजी, बरसात से बचे के खातिर।
1: अरे हद होती है, बरसात से बचना है तो कहीं और जाओ भाई, और साथ में कौन है तुम्हारे?
2: चलो चलो, हजूर हमारे घर के ही बच्चे हैं।
1: अरे भाग जाओ तुम लोग, चलो भागो यहाँ से।
2: हजूर तेरी बरसात खत्म हो जाए।
1: मैं कहता हूँ अभी बाहर जाओ, इडियट्स, निकलो बाहर।
0: अरे अरे भाई शेखर, जरा बरसात तक।
1: अरे नहीं यार, तुम समझते नहीं हो, बरामदे में तमाम तरह के गुलाब लगा रखे हैं मैंने, एक नहीं बचेगा, सब तोड़ ले जाएंगे ये लोग। अरे देखो तो, इनकी हिम्मत तो देखो, गेट खोलकर अंदर आ गए।
0: अरे भाई दरअसल ठंड इतनी ज्यादा है बाहर की।
1: करते हो निगम, तुम भी ठंड है तो कहीं और जाए। अरे सुना नहीं तुम लोगों ने, कुत्ता है घर में, छोड़ो क्या?
2: जाते हैं बाबूजी, जाते हैं, चलो कहीं और।
1: बताओ भला, हाँ गेट खोलकर अंदर घुस आए थे, कम से कम आठ तो बच्चे होंगे साथ में, वो क्या पता बच्चे चुराने वाला ही हो। लो अब इन चक्करों में आग ही बुझने लगी, एक दो लकड़ियां और डालनी पड़ेंगी। निगम, ये क्या बजाने लगे तुम?
0: क्यों, उस खांसने वाले आदमी की तरह ये भी तुम्हें नापसंद है क्या?
1: अरे नहीं नहीं, क्या बात करते हो, वाकई ये तो बड़ा खूबसूरत म्यूजिक है।
0: शेखर, मैं जब मध्य प्रदेश में था तो वहां के आदिवासियों का लोक संगीत टेप किया था मैंने।
1: हाँ हाँ, वो एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट के
0: डॉक्टर मूले।
1: ओह यस।

0: गाना बजाना इन आदिवासियों के जीवन का सबसे चटक और पक्का रंग है।
1: निगम, इन लोगों को देखकर हमेशा हमेशा मुझे ऐसा लगा मानो आज भी इस देश का एक टुकड़ा आदिम युग में जी रहा हो।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं शेखर, ऐसा नहीं है। हर जगह एक वर्ग जरूर अपनी सोच और मानसिकता की वजह से आदिम युग में ही है। अब सोनाली के सास ससुर सिन्हा को क्या कहोगे तुम? बोलो, विल यू कॉल देम मॉडर्न?
1: नो, कम से कम मैं तो नहीं कहूंगा।
0: अरे ये क्या हुआ?
1: लगता है इस तूफान की वजह से कोई पेड़ गिरा है।
0: हाँ, ऐसा तो नहीं कि कोई ट्रक या बस खड्डे में गिर गई हो?
1: वैसे आवाज तो बहुत भीषण थी, अब इतनी बारिश और तूफान में जाकर देखना भी असंभव है। अब छोड़ो यार, सुबह पता चल जाएगा।
0: मामला तो कुछ सीरियस लगता है यार।
1: वो कोयला खदान में तो कुछ गड़बड़ नहीं हो गई?
0: नहीं नहीं, फॉर गॉड से ऐसा नहीं हो तो अच्छा है। अरे भाई, इंजीनियर मैं हूं, मुझे ही धरा जाएगा।
1: शोर तो बढ़ता ही जा रहा है।
0: वैसे खदान में अगर कुछ होता तो
2: साहब, साहब, साहब,
0: मर गए।
2: साहब, क्या बात है बहादुर? साहब,
0: हाँ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ बहादुर?
2: साहब,
0: क्या क्या हुआ, क्या बहादुर?
2: साहब,
0: अरे भाई बहादुर, इतने घबराए हुए क्यों? कुछ बोलो भी।
2: साहब, साहब, साहब, वो
0: क्या? साहब, वहाँ वहाँ कहाँ?
2: साहब, साहब, साहब, साहब, वहाँ।
0: अरे भाई रो क्यों रहे हो, हुआ क्या? अरे कुछ बोलोगे भी।
2: साहब, साहब,
0: वहाँ कहाँ बहादुर?
2: अरे साहब, साहब, वहाँ कोयला खान, कोयला खान में। साहब,
0: कोयला खान में? क्या हुआ कोयला खान में?
2: साहब, कोयला खान, कोयला खान में अंदर की दीवार से पानी आ गया। साहब,
0: पानी आ गया?
2: मजदूर लोग वहां अंदर फंस गया है। साहब,
0: कितने होंगे?
2: साहब, बहुत साहब, मर गया होगा। साहब,
0: अरे मरेंगे तो अब हम
2: क्या बोले? साहब,
0: नहीं नहीं कुछ नहीं। अच्छा सुनो, तुम चलो, मैं भी आता हूँ।
2: चलो जल्दी आओ साहब,
0: चलो वहां लोगों से कहो मैं भी फौरन ही पहुंच रहा हूं।
2: जल्दी आना साहब, जल्दी आना साहब।
0: गॉड, जो सोचा था वही हुआ।
1: मेरे ख्याल से बरसात की वजह से कोई खान ढह गई है।
0: नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है, हो सकता है अंडरग्राउंड वाटर किसी दीवार को फाड़ कर खान में घुस आया हो। मेरे ख्याल से तो हम शायद ही बचा पाए किसी को। रेनकोट भी नहीं है यहाँ पर।
1: ये लो छाता, मैं भी साथ आऊं?
0: नहीं नहीं, रहने दो, मैं चलता हूं। लेकिन इस आधी तूफान में बाहर निकलना, जिसका डर था वही। हजार बार मना किया था कि इस खान में काम बंद कर दो, बंद कर दो, पानी भरने का खतरा है। लेकिन जब तक कोई मरे नहीं, किसी के कानों में जूं तक नहीं देखती। और अब सब मुझे ही नोच डालेंगे। खैर, जाना तो पड़ेगा ही। अरे साहब आ गए। अरे मनोहर, अरे भाई मनोहर, कैसे हुआ ये सब?
3: अरे क्या बताएं साहब, खान नंबर 3 में पानी भर गया है, बगल की दीवार ढह गई, वहीं से जमा पानी अंदर आ गया। साहब, हम तो पहले ही कहते थे साहब, दीवार से पानी रिश्ता दिख रहा है, खतरा है।
0: अच्छा ये बताओ, कुल कितने लोग फंसे?
3: अरे साहब, होंगे करीब 35।
0: 35?
3: साहब कुछ कीजिए। हाँ साहब, कुछ कीजिए, नहीं तो एक नहीं बचेगा अंदर।
0: अच्छा
3: साहब,
0: ठीक है मैं देखता हूँ। ये बताओ, चीफ साहब को खबर की कि नहीं?
3: हाँ जी साहब, वो शंकर गया है।
4: अरे निगम साहब, कहाँ गए आपके सेफ्टी मेजर? खदान में पानी भर चुका है, कैसे निकालेंगे उन्हें बाहर?
0: देखिए देखिए देखिए, मैं
4: इतनी बार आपसे कह चुका हूँ कि इस खदान के बगल में पानी भरा है, यहाँ पर काम बंद करवाइए। सुना
0: भाई, देखिए वो मेरी भी कुछ मजबूरी
4: है। हमारा एक भी आदमी मरा तो हम दिखाएंगे आपको कि मजदूर की ताकत क्या
0: है। अरे भाई देखिए देखिए, काम बंद करना है न करना चीफ साहब के ऊपर था।
4: अरे तो आप किस लिए हैं? चीफ कभी नजर आते हैं?
0: भाई देखिए देखिए, मेरी एक बात
4: सुनिए। देखिए क्या देखे, तो रहे 35 लोग फंसे पड़े, उनको निकालने का कोई साधन किया है आपने?
0: देखिए मैं पूरी कोशिश करता हूँ
4: मनोहर, हम लोग खुद कर लेंगे।
0: मनोहर जी साहब, भाई लिफ्ट का क्या हाल है? चालू हालत में

0: लेकिन
1: तो
0: साहब लिफ्ट है तो चालू हालत में, मगर मुसीबत यह है कि मस्जिद काफी अंदर फंसे हैं साहब, और आगे की सुरंग काफी नीची है, वहाँ पानी छत तक भर गया है। ऐसे में साहब लिफ्ट तक उन लोगों को कैसे लाएंगे?
2: क्या पानी अभी भी अंदर आ रहा है?
0: जी इस तरफ का पानी तो खान में उतर चुका है, पर लगातार बरसात से अगर मिट्टी पोली पड़ गई तो बगल के ताल का पानी भी अंदर आने लगेगा। साहब तब किसी को भी बचा पाना बहुत मुश्किल होगा।
2: क्या करूँ? अच्छा सुनो, कितनी गहराई पर होंगे ये लोग?
0: होंगे यही करीब करीब 400-450 फीट पर। ये शंकर आ गया साहब।
3: नमस्ते साहब।
2: नमस्ते शंकर, वो तुमने चीफ साहब से बात की कि नहीं?
3: जी चीफ साहब ने कहा है कि आप उनसे बात कर लें।
2: मैं बात कर लूं?
3: जी।
2: अच्छा ठीक है, वो आने के लिए कुछ नहीं कहा उन्होंने? मतलब आ रहे हैं या नहीं?
3: जी नहीं, अभी तो घर ही पर है।
2: अच्छा मनोहर, मनोहर तुम जाओ और 4 जनरेटर और पानी निकलवाने के लिए पंप और पाइप गोदाम से निकलवाओ जल्दी। और सुनो शंकर, तुम भी मनोहर के साथ जाओ। मैं चीफ साहब से फोन पर बात करता हूँ।
4: शायद ऊपर तक जानी चाहिए।
2: कमाल है, इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई और चीफ यहाँ तुरंत आने की बजाय कह रहे हैं बात करो। पता नहीं बात क्या करनी है।
5: लीजिए साहब, चीफ साहब से बात कीजिए।
6: हेलो हेलो सर, सर मैं निगम, मैं यहाँ पर सर खदान नंबर 3 में 3 से बोल रहा हूँ। सर खदान में पानी भर गया है, करीब 35 लोग अंदर फंस गए हैं।
7: कब हुआ ये
6: सर? करीब आधा घंटा पहले।
2: सर यहाँ पर लोग बुरी तरह से एजिटेटेड हैं, मुझे तो लगता है कि ऑफिशियल्स का घेराव करने वाले हैं।
7: अंदर फंसे सब जिंदा हैं या मर मर गए?
2: मर गए सर? मतलब
7: निगम मरने से बेकार का पकड़ा खड़ा होगा।
2: सर वो तो ठीक है, लेकिन लेकिन आप यहाँ सर तुरंत पहुँच जाइए प्लीज।
7: निगम डोंट टेल मी व्हाट टू डू, आई डोंट थिंक आई नीड एडवाइस फ्रॉम यू।
2: आई एम सॉरी सर, वेरी सॉरी सर, पर सर मेरा मतलब था इतनी बड़ी दुर्घटना सर, अगर अगर आप होते सर तो।
7: निगम ये सब वही करता है, कोई नई बात नहीं है। उनको निकालने का कोई इंतजाम वगैरह करो। बस कोई मरे नहीं, यू गॉट दैट? आई वोंट बियर एनी कैजुअलिटी निगम।
2: बट सर सर सर, हेलो हेलो हेलो हेलो, नो, फोन भी रख दिया। आई वोंट बियर एनी कैजुअलिटी, नॉनसेंस, जैसे जैसे मरना जीना भी मेरे हाथ में है। गॉड, इन लोगों के परिवार वाले भी पहुंच गए लगते हैं। अब तो लगता है पुलिस बुलवानी ही पड़ेगी।
8: सर चीफ साहब आ रहे हैं ना?
2: आने की सोच रहे हैं अभी। जनरेटर वगैरह मिला?
8: सर सर वहाँ गोदाम में ताला पड़ा है।
2: What?
8: जी चौकीदार के पास चाबी है, 2 लोगों को भेजा है चौकीदार को बुलाने।
2: ओ, अब ये चौकीदार कहाँ गायब हो गया इस समय?
8: अरे सर बरसात की वजह से शायद अपने क्वार्टर में हो। मनोहर भी गया है उसे लेने।
2: देखो देखो यहाँ तो भीड़ बहुत बढ़ने लगी है, अब तो मुझे लग रहा है कि इन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा।
8: सर सर मैंने मैंने पुलिस हेडक्वार्टर को फोन कर दिया है, पुलिस आती ही होगी।
2: पुलिस?
8: जी।
2: अच्छा ठीक है, अच्छा चलो हम लोग चलते हैं।
8: चलिए।
9: अरे अरे बचा लो मेरे बच्चे को, कोई बचा लो रे, कोई निकालो उसे, मेरे बच्चे को कोई निकालो, मेरे बच्चे को कोई निकालो रे।
2: देखिए देखिए आप लोग शांत रहिए भाई, आप लोग शांत रहिए, देखिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। हंगामा शुरू हो गया आखिर, और ये चौकीदार भी चाबी लेकर पता नहीं कहां मर गया है। औने दो सस्पेंड कर दूंगा बदमाश को। भगवान अब तक तो काम शुरू भी हो गया होता। इधर ये बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है।
8: वो देखिए साहब मनोहर वगैरह आ गए।
2: अरे भाई मनोहर, वो क्या हुआ, चाबी अभी मिली?
0: अरे साहब वो चौकीदारी का पता नहीं चल पा रहा है, उसके दरवाजे पर भी ताला लगा हुआ है, वो शायद किसी रिश्तेदार के यहाँ रुक गया साहब।
2: माय गॉड, लेकिन भाई जनरेटर वगैरह तो निकालना ही पड़ेगा ना। मनोहर तुम ऐसा करो, जा करके गोदाम का ताला तोड़ दो।
0: ताला तोड़ दे?
2: हाँ हाँ भाई तोड़ दो उसे।
0: अरे मगर साहब गोदाम की बाकी माल की गारंटी।
2: साहब अगर आप साथ चले तो ठीक रहेगा। देखिए साहब हम तो मामूली कर्मचारी हैं साहब, आप
8: भाई अब मैं यहाँ देखूँ या वहाँ चलूँ?

0: चले चलिए
1: अच्छा ठीक है हाँ चलो चलता हूँ मैं।
2: इन लोगों को तो शोर शराबे के अलावा और कोई काम ही नहीं है।
3: सुनो
2: जी
3: हथौड़ा वगैरह तो है ना पास में?
4: हाँ साहब है।
2: साहब ये जो आदमी आपसे बहस कर रहा था ना लक्ष्मण है, एक नंबर का बदमाश है। दो तीन बार तो साहब इसे कोयला चुराते मैंने खुद पकड़ा।
3: हाँ अच्छा तो मुझे बताया क्यों नहीं?
2: अरे क्या बताएं साहब, रोने गिड़गिड़ाने लगता है और फिर इसके साथ सात बच्चे और इसकी जोरू बहुत भली है साहब।
3: क्या सात बच्चे?
2: जी सात बच्चे। वो जो जूट मिल है ना साहब भवानीपुर वाली, वहीं पहले वॉचमैन था, वहीं से निकाला गया है। चुराया होगा कुछ वहां भी। लो शंकर चलो ऊपर से हथौड़ा निकालो तो भाई।
4: अच्छा
2: आइए साहब। अरे ये तो काफी मोटा ताला है। कमबख्त ये पाजी चपरासी इसी वक्त गायब होना था इसे। शंकर यार लगाओ तो चोट फिर तो।
4: हाँ
3: लीजिए साहब टूट गया।
1: अच्छा चलो जल्दी से फाटक तो खोलो।
3: हाँ सर।
1: अरे यहां तो बत्ती भी नहीं आ रही, यहां तो कुछ भी सुझाई नहीं दे रहा।
2: हाँ कुछ।
1: अरे मनोहर हाँ टॉर्च है तुम्हारे पास?
2: टॉर्च मेरे पास तो नहीं है, देखें शायद इस अलमारी में।
1: हाँ ढूंढो। मिल गई टॉर्च मिल गई।
2: अच्छा साहब टॉर्च मिल गई।
1: देखो वो रहा जनरेटर। शंकर तुम पाइप उठाओ।
3: जी अच्छा। अगर दो चार लोग और होते तो सहूलियत रहती।
1: शंकर
4: जी
1: अभी देखो अगर दो तीन लोग और अगर मिल जाए तो जरा सा बुलाओ दो उन्हें।
4: जी अच्छा। अरे ओ बाबू हर्षो
1: अरे भैया जरा जनरेटर और मोटर बाहर निकलवाने में हमारी मदद तो कर दो।
4: अब बैठो भैया
1: लगाओ।
4: आप रहने दें हम निकाल लेंगे।
1: नहीं नहीं कोई बात नहीं। बाबू तुम पाइप ले चलो। लगाओ तो
3: ये तो घूमता ही नहीं है।
1: शंकर अरे भाई देखो ये पहिए के नीचे पत्थर तो हटाओ।
3: मैं भी कहूं कि जनरेटर आगे खिसक क्यों नहीं रहा।
1: हाँ लगाओ जोर चलो शाबाश।
3: अरे अब ये नारे क्यों लगने लगे साहब? लगता है चीफ साहब आ गए। अरे साहब लोग तो बेकाबू होते जा रहे हैं। अगर कोई मर गया तब तो लोग मरने माने पुतार हो जाएंगे। अरे मनोहर जल्दी जल्दी पाई बिछाओ।
2: तो रहा
3: चीफ तो आए नहीं लगते। हाँ सर वो तो नहीं आए तो क्या सर चीफ साहब के आने तक इंतजार करें?
1: नहीं नहीं उसकी जरूरत नहीं है। मनोहर तुम मिलकर पाइप नीचे उतारो।
3: जी अच्छा जी।
1: शंकर चलो जल्दी खींचो पाइप।
3: जी समझी
1: मनोहर जल्दी करो पाइप नीचे लटकाओ।
3: हाँ।
1: और सुनो कम से कम चार पाइप का इंतजाम और करना होगा।
2: ठीक है सर मैं और बाबू जाकर इसका इंतजाम करते हैं।
1: शंकर पाइप नीचे लटकाना शुरू करो।
3: ये लीजिए सर पाइप छोटा ना पड़ जाए।
1: सुनो कितने फीट नीचे होगा पानी?
4: अरे साहब करीब 400 फुट तो होगा ही।
3: 400 फुट
4: पाइप 600 फुट लंबा है।
3: अच्छा
4: छोटा नहीं पड़े साहब। अरे बाबू जल्दी जल्दी हाथ चलाओ।
5: अरे निगम साहब जब लोगों की जान चली जाएगी
1: तो अरे भाई आप क्यों शोर कर रहे हैं आप लोग? देखिए पानी निकलते ही लिफ्ट चालू कर दी जाएगी।
3: शाबाश मनोहर और तेजी से नीचे पहुंचाओ।
2: जी सर लगता है पाइप पहुंच गया नीचे तक।
1: वेरी गुड चलो और थोड़ी सी मेहनत और करो।
2: अरे अरे अरे अरे भाई अरे अरे अरे ये पत्थर कौन देख रहा? अरे अरे अरे भाई पत्थर क्यों चला रहे हैं आप लोग? अरे पागल हो गए क्या?
1: अरे देखिए बस आधे घंटे की बात है पानी निकलते ही लिफ्ट चालू कर दी जाएगी।
2: अरे पागल हो गए आप क्या?
1: जाने कौन भड़का रहा है ना।
2: साहब मुझे लगता है लोग बढ़ते जाएंगे। आइए इधर आइए।
1: वो तो ठीक है लेकिन अगर कहीं पुलिस ने हल्का सा भी लाठी चार्ज कर दिया तो ये लोग तो और भड़क जाएंगे। सुनो तुम लोग पानी निकालते रहो मैं जाकर के समझाता हूँ।
2: नहीं साहब अरे हम जाइए साहब।

0: अरे कितना मना किया था साहब को,
1: भीड़ तो जैसे बेकाबू हो गई थी।
0: डॉक्टर कह रहा था खून बहुत निकल गया है।
1: उनके बेहोश होकर गिरने के बाद भी लोग उन्हें पांव से ठोकर मारते रहे। बच जाए बस, और क्या चाहिए।
0: हम उन्हें चाहकर भी भीड़ से नहीं निकाल पाए।
2: डॉक्टर क्या कह रहा था?
1: सीरियस बता रहा था, सिर पर गहरी चोट है। अरे डॉक्टर साहब कमरे से बाहर आ रहे हैं।
3: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब।
4: ये मनोहर और शंकर कौन है?
0: हाँ हाँ डॉक्टर साहब।
4: आप मनोहर हैं?
0: जी हाँ डॉक्टर साहब, और ये हैं शंकर
4: जी। देखिए उन्हें होश आ रहा है, वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं।
0: अच्छा, होश आ गया।
4: मगर ध्यान रहे, ज्यादा बात मत कीजिएगा।
0: जी जी
4: आइए।
0: चलिए जी, आइए आइए।
4: निगम, मिस्टर निगम, देखिए आपसे मिलने कौन आया है।
0: साहब, साहब, नमस्ते साहब।
3: नमस्ते साहब।
0: तबीयत कैसी है साहब?
3: मैं शंकर साहब। शंकर? हाँ साहब।
5: शंकर?
3: हाँ साहब।
5: शंकर
3: जी।
5: मनोहर?
3: हाँ साहब।
5: कहाँ?
3: यहाँ पर सब ठीक हो गया साहब।
0: हाँ साहब, सब ठीक हो गया।
3: पानी निकाल दिया गया साहब। सब आपकी तारीफ कर रहे हैं साहब। वो जिन्होंने आप पर हाथ उठाया था ना साहब, वो भी शर्मिंदा है।
0: जी बहुत शर्मिंदा है साहब।
3: नहीं साहब, कोई नहीं मरा, सभी को बचा लिया गया।
2: हाँ निगम, निगम, ये क्या हो गया है तुम्हें? हाँ निगम, निगम, तुमने तो हद कर दी उन लोगों के लिए अपनी जान।
5: शेखर, तुम समझते नहीं हो। शेखर, शेखर, शेखर, तुम समझते नहीं हो। शेखर, बरामदे में तरह तरह के गुलाब लगा रखे हैं मैंने, एक नहीं बचेगा, सब तोड़ ले जाएंगे ना, सब तोड़ ले जाएंगे।
2: निगम, I am sorry यार, मैंने तो यूं कह दिया था। Really, I am very sorry.
5: ठंड है तो कहीं और जाए ना।
2: निगम,
5: कहीं
4: अब आप लोग इन्हें आराम करने दें, इनकी हालत अच्छी नहीं।
2: ओह गॉड,
4: नर्स भैया इंजेक्शन।
3: डॉक्टर साहब कुछ कीजिए। मेरे साहब को बचा लीजिए, मेरे साहब को बचा लीजिए।

अभी आप सुन रहे थे नाटक लगन। इसके लेखक थे रोमी सिराज, निर्देशन किया मुद्रा राक्षस ने। आकाशवाणी लखनऊ केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: कैमरा एक्शन।
1: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं एक ऐसी कोरियोग्राफर जिनके कोरियोग्राफ किए गए गानों ने आपको जमकर थिरकाया है। उनके कई गाने ऐसे हैं जिनको सुनते ही आपके पैर मचल उठते हैं नाचने के लिए। आज के जमाने की महत्वपूर्ण कोरियोग्राफर्स में उनकी गिनती होती है। आज बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में हमारे साथ हैं जानी मानी कोरियोग्राफर शबीना खान। इनसे बातचीत कर रही हैं विधि जैन। ये है इस बातचीत का दूसरा भाग।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने सुना कुछ ऐसी बातों को जो बातें बड़ी खूबसूरत थी। हम सुन रहे थे कैसे नृत्य करते हैं हमारे बड़े बड़े कलाकार और कैसे होती है शूटिंग और उसकी ढेर सारी बातें। जी, हम आज फिर से बात करने वाले हैं अपनी कला के साथ एक फिल्म को बड़े सुंदर से मोड़ तक लाने वाली एक बेहतरीन कोरियोग्राफर शबीना खान जी। स्वागत है आपका एक बार फिर से।
3: थैंक यू। मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने मुझे याद किया, बुलाया, बिकॉज ये सबके दिलों की धड़कन है, तो मेरे दिल की बहुत बड़ी धड़कन है।
2: जी, विविध भारती देश की सुरीली धड़कन।
3: विविध भारती देश की सुरीली धड़कन।
2: जी, तो ये जो सुरीली धड़कन है, आज एक बहुत सुरीली देश की बेटी से बात करने वाली है, जिस बेटी ने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष किए, बहुत सारा काम किया और बहुत सुंदर तरीके से पर्दे पर खुद नहीं उतरी, दूसरों से उतरवाया। तो हमारे बीच में शबीना जी आप हैं और आप एक बहुत बढ़िया डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं और उसके साथ एक बेहतरीन कोरियोग्राफर हैं। तो इस सब में आपने बहुत सारी फिल्में की हैं, बहुत सारी एक्ट्रेस के लिए काम किया है, इवन एक्ट्रेस को भी डांस करवाया है, जिसमें एक बहुत बड़ा नाम हमने पढ़ा था, नाम था अमिताभ बच्चन।
3: बिल्कुल।
2: और उनके साथ कुछ तो बहुत अच्छे डांसर्स हैं जो अच्छा करते हैं, उनके नाम हमने पढ़े थे, पर उन नामों में कुछ नाम ऐसे भी थे जिन्हें डांस करते हुए शायद हम देखते भी हैं तो उतना समझ में भी नहीं आता है। उनसे भी आपने डांस करवाए, सनी देओल हैं, संजय दत्त हैं या और भी बहुत सारे, अनुपम खेर को भी आपने डांस करवाया है। ये बहुत सारे नाम है, इमरान हाशमी को आपने डांस करवाया है,
3: बोमन ईरानी
2: को,
3: डैनी डांसोंगपा।
2: जी, डैनी को कैसे, मतलब वो तो बड़े,
3: हमारी फिल्म थी ऊंचाई सूरज बड़जात्या जी की,
2: बहुत प्यारी फिल्म,
3: बहुत प्यारी फिल्म है। नेशनल अवार्ड मिला है उनको एज ए डायरेक्टर उस फिल्म पे, एज ए कोरियोग्राफर मेरा नाम भी गया था जो मुझे नहीं मिला, बट कोई बात नहीं, मुझे रिवॉर्ड मिल गया।
2: नहीं, वो फिल्म ही इतनी खूबसूरत है और आपने

0: फिल्म बनाई थी, जो
1: जी
0: सोच थी उस फिल्म के
1: जी
0: पीछे,
1: जी
0: वो सूरज
1: उसी उस
0: जी,
1: उम्र के लोगों को एक प्रेरणा स्रोत है वो
0: बिल्कुल
1: फिल्म जी
0: बिल्कुल। तो उसमें ये था सवाल कि इनका एक गाना है, ये इतनी उम्र में पहुंच चुके हैं और उस उम्र में ये गाना अपने दोस्त को बर्थडे सेलिब्रेशन में ये गाना कर रहे हैं, जिसका नाम है केटिको केटिको सॉन्ग।
1: हाँ
0: केटिको
1: हाँ
0: का मतलब होता है लड़की,
1: अच्छा
0: हाँ नेपाली भाषा
1: नेपाली
0: में है
1: शब्द है
0: लड़की।
1: जी
0: तो फिर वो गाना किया और पता चला कि ओ डैनी सर को करना है, डैनी सर को डांस करवाना है, अनुपम जी को डांस
1: जी
0: कर।
1: वही
0: अच्छा, अब इनका सबका जो लेन देन था अमिताभ बच्चन के साथ था, जो
1: हाँ
0: इतने ग्रेसफुल डांसर साबित
1: हाँ
0: कर चुके अपने आप को,
1: हाँ
0: बोमन ईरानी, अनुपम खेर, डैनी जी, तीनों कह रहे हम कैसे करेंगे।
1: जी
0: फिर उनको रिहर्सल करवाया। मैं एक चीज और करती हूँ, एक अपने असिस्टेंट्स को वो कैरेक्टर बना देती हूँ, उनको कहती हूँ आपको उनकी तरह जीना है,
1: अच्छा
0: रिहर्सल हॉल में हम ये प्रैक्टिस करते हैं।
1: हाँ
0: मेरा एक असिस्टेंट अमिताभ बच्चन बन गया, एक डैनी बन गया, एक अनुपम खेर बन गया,
1: हाँ
0: एक
1: इम्प्रोवाइजेशन चलता रहता है।
0: इम्प्रोवाइजेशन। अब आप अपने कैरेक्टर के साथ जब हम एक्टर को करके दिखाएंगे, उनको अपना आप दिखना चाहिए उनके अंदर। फिर ये कहानी शुरू हुई और फिर हमने ये गाना किया और बहुत लोगों ने सराहा और शूटिंग के दौरान भी बहुत मजा आया इन
1: हाँ
0: दिग्गज कलाकारों को।
1: हम वो मज़ा जो है ना वो सुनना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले हम चाहते हैं एक गीत हमारे श्रोताओं के लिए आपकी पसंद का दे दें, और तो इस गीत के बाद हम बताएंगे कि मज़ा क्या आया।
0: तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरी तरफ से एक मेरा फेमस गाना जो मुझे बहुत पसंद है,
1: हाँ
0: अमिताभ बच्चन, डैनी डेंजोंगपा, बोमन ईरानी साहब के साथ,
1: हाँ
0: अनुपम खेर जी,
1: जी
0: केटी को।
1: केटी को तो ये गाना हम सुनते हैं, लेकिन इसके बाद आपको बताना पड़ेगा कि मज़ा क्या आया।
0: बिल्कुल
1: हमें भी उस मज़े
0: बताऊंगी,
1: को, उस
0: बिल्कुल
1: मज़े
0: बताऊंगी,
1: वाली ज़िंदगी को जीना है।
0: बिल्कुल बताऊंगी, हर एक कैरेक्टर के साथ आपको थोड़ा एक उस सफर पे ले
1: जी
0: जाऊंगी।
1: जी चलिए तो सुनते हैं ये प्यारा गाना केटी को, और केटी को का मतलब होता है लड़की,
0: बिल्कुल,
1: इस उम्र में
0: पहाड़ी
1: भी
0: लड़की
1: बहुत
0: जी।
1: बढ़िया। चलिए सुनते हैं ये
0: हाँ
1: गाना।

0: गाना तो सुन लिया, बहुत मजा आया, लेकिन इस गाने की जो बात आप हमारे यहाँ कहते हैं कि प्राण जाए पर वचन न जाए, तो उस वचन को पूरा कीजिए और बताइए कि मजा क्या आया था।
1: तो सबसे पहले अमिताभ बच्चन जी से शुरू करते हैं। अमित जी के साथ मैंने एज एन असिस्टेंट काम किया हुआ है।
0: हाँ।
1: मुझे गुड्डी बुलाते थे सेट पर।
0: अच्छा।
1: उन्हें लगता था मैं जय बहादुरी जैसी थोड़ी लगती हूँ, तो बोलते हैं गुड्डी इधर आओ। मेजर साहब फिल्म का एक गाना था
0: जी,
1: जो हम मैंने असिस्टेंट में किया था या नहीं, तो जब वो इस सेट पे आए
0: जी,
1: तो उन्होंने कहा हम तो काम कर चुके हैं साथ में, तुम बहुत छोटी सी होती थी बड़ी हो गई।
0: गुड्डी बड़ी हो गई।
1: तो मैंने याद दिलाया कि सर मैंने इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफी शुरू की तो आपके साथ भी एक गाना किया है, और रामगोपाल वर्मा का एक गाना था कम्मो कम्मो,
0: हाँ, एक गाना सुना हुआ है जी,
1: अमिताभ बच्चन।

0: संजय दत्त वगैरह, तो हाँ अरे अरे हाँ तुम ऐसा तो काम किया है, बताओ बताओ क्या करना है मास्टर जी। अब वो मुझे मास्टर जी बुलाने
1: गुड्डी
0: लगे
1: से
0: थे।
1: मास्टर जी
0: वो अपनी दो कुर्सी लेकर बैठ जाते थे पैर पे पैर चढ़ाकर, अमिताभ बच्चन जब आपके सामने बैठा हो और आपने उनको करके दिखाना है, आप दिखाओगे मास्टर जी? ऐसे जी सर मैं करके दिखाऊंगी। तो मैं क्या लड़कों का डांस भी कर लेती हूँ, लड़कियों का भी कर लेती हूँ,
1: क्या
0: जब मैं
1: बात है,
0: लड़कों का करती हूँ तो उसी अंदाज में करती हूँ,
1: पूरा लड़का बन
0: पूरा
1: जाती
0: लड़का
1: हो।
0: बन जाती हूँ। मैं उनको कर कर दिखाई और वो खड़े हो गए, बोले इस साला, अपने कमर पे हाथ रख दिया और मुझसे कहे हम। तो मैंने कहा मुझे लगा कुछ गलती हो गई, मैं भागती भी गई, सर क्या हुआ, कुछ स्टेप चेंज करना है, कुछ भी आप बताइए जो करना है। मैं नहीं नहीं फिर वो चलकर आए मेरे साथ सेंटर ऑफ द स्टेज और कहने लगे मैं सर प्लीज बताइए क्या किया मैंने, कुछ तुमने इतना बढ़िया किया मैं कैसे कर सकता हूँ इसको, मैं तो कर ही
1: जी
0: नहीं पाऊंगा।
1: जी
0: सोचिए उन्होंने मेरे कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्ट किया। ये है लेजेंड अमिताभ बच्चन,
1: ये
0: कि
1: बड़प्पन
0: अब
1: है।
0: आप सिखाओ मुझे। और फिर उन्होंने मुझसे सीखा। अब बोले डैनी और अनुपम तुम सब आ जाओ, देखा तुमने? हाँ सर हम तो रिहर्सल कर रहे 3 दिन से। तो ही सेड हाँ मैंने भी कल रात घर पे रिहर्सल किया था, उन्होंने एक दिन रिहर्सल किया था घर पे। सोचो इस उम्र में उन्होंने घर बुला के हमें रिहर्सल किया,
1: जी
0: और सेट पे आके वो एकदम ऐसे हो गए और मेरा एनर्जी बूस्ट कर दी उन्होंने। कि जब अमिताभ बच्चन आपको ये कहता है, क्योंकि वो उनका तरीका है अपने मास्टर्स को डील करने का, उसी
1: नहीं, वो
0: दिन
1: परंपरा है
0: हाँ
1: गुरु को गुरु बनाने
0: हाँ
1: की।
0: और वो
1: जी
0: मुझे मास्टर जी कहते थे, तो सेट पे सब ऐसे परेशान, क्योंकि मास्टर जी आजकल कोई नहीं कहता
1: हाँ
0: कोरियोग्राफर्स को, बहुत कम लोग कहते हैं जो जानते हैं कि मास्टर क्यों कहते हैं
1: हाँ
0: मास्टर को। फिर उन्होंने एक अपना व्लॉग लिखते हैं वो, उन्होंने अपने व्लॉग में मेरे बारे में लिखा,
1: अच्छा
0: और उस वक्त लिखा कि एक नन्ही सी बच्ची थी जो मुझे सिखाती थी और आज वो मेरी मास्टर बन गई, और आज वो एक फीमेल जो पूरे सेट को चला रही है, 1000 लोगों के सेट को, और वो मुझे भी ऑर्डर दे रही है। मुझे बहुत पसंद आता है जब ऐसे हमारी हमारी बेटियां यहाँ तक पहुंच जाती है।
1: क्या बात।
0: तब वो मेरे एक असिस्टेंट ने कहा कि सर ने लिखा, और मैं बहुत ओवरवेल्म्ड हो गई, मैं बहुत रो पड़ी, क्योंकि यही अचीवमेंट
1: वो
0: होती है।
1: चीज
0: मैं
1: आपकी
0: ये
1: आंखों में अभी भी दिख रही
0: हाँ
1: है।
0: कि
1: जी
0: मैं बहुत खुश हो गई। ये थे अमिताभ बच्चन, और फिर आते अनुपम खेर जी।
1: हाँ, उनका तो जानना है
0: उनका जो कॉमिक टाइमिंग है उसको कोई बीट नहीं कर सकता, वो
1: बिल्कुल
0: इतने कमाल के एक्टर है,
1: जी,
0: और उसके वो रुला भी देते हैं वो हंसा भी देते हैं एक ही
1: पल
0: फ्रेम में,
1: में। हाँ
0: पल में वो है। अब उनके लिए जो असिस्टेंट करके दिखा रहा था वो उस दिन आया नहीं, और मेरी एक लड़की असिस्टेंट थी एकता, और मैं अपनी लड़कियों को तैयार करती हूँ कि तुम्हें ये करना है, जब मैं कर सकती हूँ तो तुम भी करोगी, और उसने वो कर लिया। वो आई सेट पे, सेट मैं अमित जी का करूँ तो उनका कर, और उस लड़की ने जब अनुपम खेर बन के दिखाया पूरा सेट, ताली बजाया, अनुपम जी सिटी बजाने लगे, बहुत खुश हुए, बोले बस कमाल अब मैंने ये करना है, और वो उछल उछल के सेट पे अपने स्टेप करते थे, और पूरा सेट उस गाने में ऐसा होता था कि एक भी जूनियर और एक भी डांसर, जैसे शॉट खत्म होता है ना तो हम लोग बाहर निकल जाते हैं, डांसर निकल जाते हैं
1: जी
0: हाँ सेट में आ
1: जी
0: जाएंगे,
1: जी
0: जूनियर निकल, जूनियर्स बाहर ही नहीं जाते थे,
1: सब वहीं
0: वहीं रहते थे, मतलब कि
1: रहते
0: 500 लोग
1: मजा
0: वहीं खड़े हैं,
1: आता
0: 100-150 डांसर वहीं खड़े हैं,
1: जी।
0: और एक्टरों की रिहर्सल चल रही है, और हर बात पे वो हंस भी रहे हैं, वो ताली भी बजा रहे हैं, और बूढ़े डांसर्स थे हमारे पास, हमारे पास 60-70 के डांसर्स भी थे, और वो आगे आते थे और इनके साथ नाचने लग जाते थे। तो एक अलग माहौल था उस सेट पे।
1: जी।
0: और उसके बाद डैनी सर
1: हाँ, उनका भी जानना है, वो तो इस बड़े अलग टाइप का किरदार
0: वो
1: है,
0: सीधा
1: वो
0: बोल
1: कैसे
0: देते थे
1: करें।
0: आके कि देखो बेटा मैं भूल जाऊंगा, मुझे नहीं पता तुमने करना है मेरे साथ,
1: हाँ,
0: तो कैमरा के पास हम लोग उनके लिए डांस करते
1: करते
0: रहते थे।
1: और वो कॉपी
0: और
1: करते थे।
0: बोमन ईरानी भी, इतने बड़े कलाकार हैं, उनका भी एक अलग कॉमिक टाइमिंग चल रहा होता था, और वो बोलते थे उनका एक पोर्शन था जिसमें उन्हें लड़की बनना था, तो मैं जो बोलते थे तुम करके दिखाओ मुझे मैं तुम्हें कॉपी करूंगा, और फिर उनको केटी को ये दोनों इनको बोलते हैं,
1: हाँ
0: और ये लड़की की तरह अदायगी दिखाते,
1: हाँ
0: और फिर मैं
1: इतराते
0: उनको
1: हैं
0: करके
1: जी।
0: दिखाती। तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस हम लेते हैं ना ऐसे लोगों के साथ, ऐसे कलाकारों के साथ काम करके, वो शायद मैं इतना बोलूं तो आप इमेजिन नहीं कर पाओ जो हमने जिया है,
1: फिर भी
0: बहुत
1: हम कुछ प्रतिशत तक तो पहुंच गए
0: पहुंच गए।
1: जी।
0: और फिर हमारे एक प्यारे से शर्मीले से डायरेक्टर साहब जो सूरज
1: बड़ी
0: बजातिया जी है,
1: सॉफ्टली बोलने
0: बहुत ही
1: वाले
0: सॉफ्ट, और
1: जी।
0: वो जब आते हैं इन सबको देखते करते हुए, और वो मुझे ऐसे गले लगाते हैं, बहुत असर पे हाथ रखते हैं हर बार, बहुत अच्छा किया शबीना। तो ये कहानियां हैं जिनको हम जीते हैं, जिनके साथ हम सीखते हैं, कि इस उम्र में भी उनकी जो एनर्जी थी, जो सीखने की, बच्चों की तरह वो उछलते थे रिहर्सल पे, अरे एक बार एक बार एक बार एक बार, अरे मैं गलत कर दिया, अरे मैंने ये, वो भूल जाते थे कि उनकी उम्र क्या है।
1: जी,
0: मैं कहती थी सर आराम से, नहीं नहीं करना है, वो जो
1: बहुत मजा आ रहा
0: बचपना
1: होगा ना
0: बहुत मजा,
1: जी।
0: हमने उनसे सीखा कि कलाकार की कोई उम्र नहीं होती,
1: कलाकार कभी बूढ़ा नहीं
0: बूढ़ा नहीं
1: होता।
0: होता कभी,
1: हाँ
0: वो हमेशा एक

0: बच्चा ही होता है, तो आप गाना देखिए आपको पता चले उसमें।
1: हाँ, उस गीत को देखने के बाद मजा हमको भी आया था, हम सब भी उसके साथ थोड़ा डांस किए थे कि जब ये डांस कर सकते हैं
0: तो
1: तो हम
0: हम
1: तो
0: क्यों नहीं
1: कर ही
0: कर
1: नहीं
0: सकते
1: सकते। मैंने आपसे बात कर ली एक्ट्रेसेस के बारे में यानी अभिनेत्रियों के बारे में, आपने हमारे पुराने जो दिग्गज हैं उन अभिनेताओं के बारे में भी बता दिया। एक अभिनेता है जिनकी हर फिल्म में शबीना का नाम लिखा ही हुआ है, साथ में शुरुआत कहाँ से हुई उनके साथ, और उसके बाद फिर शायद कोई फिल्म बीच में ऐसी थी ही नहीं जिसमें आप नहीं थी।
0: तो
1: आप समझ गई हैं मैं
0: बिल्कुल
1: किसके
0: समझ
1: किस
0: गई,
1: विषय पे बात कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ वो विषय आप खुद ही शुरू
0: बिल्कुल
1: करें
0: समझ गई।
1: और हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: सबसे पहले मैं ये बताऊं, आप बात कर रही हैं मेरे, जिसे मैं जिंदगी में मैं कुछ लोगों को अपना मेंटोर गुरु मानती हूँ
1: जी
0: और मेरी जिंदगी की हर एक सफलता का जरिया मानती हूँ। उनमें अगर सूरज बड़जात्या है तो उसमें एक बड़ा नाम है सलमान खान ऑल्सो,
1: जी
0: जिन्हें मैं भाई बुलाती हूँ
1: जी
0: बहुत मोहब्बत से, और बहुत जब हाथ उठाती हूँ उनके लिए दुआ करती हूँ,
1: जी
0: क्योंकि आज भी जो आप उनका रूप बाहर देखते हैं
1: जी
0: वो 5% भी नहीं है जो वो दुनिया के लिए करते हैं,
1: जी
0: 5% भी नहीं है। तो सलमान भाई का और मेरा काम जो शुरू हुआ, मेरी पहली फिल्म एज एन असिस्टेंट कोरियोग्राफर थी खामोशी, गणेश हेगड़े के साथ।
1: खामोशी द म्यूजिकल जर्नी।
0: यस, जो मैंने पहले कहा आपसे कि स्टेज के बाद जब मैं कोरियोग्राफी में आई, जो मुझे गणेश आचार्य जी ने डांस करते हुए देखा, हमारा एक हॉल होता था मंगला हॉल, वहां पे जो डांस करते हुए देखा वो गणेश हेगड़े साहब के ही गाने का डांस कर रही थी मैं।
1: अच्छा।
0: गणेश हेगड़े की जो पोनी वर्मा, जो बहुत बड़ी कोरियोग्राफर है, वो उनकी असिस्टेंट होती थी उस वक्त, वो मेरी सीनियर है और उन्होंने मुझे बहुत सिखाया है। उनके एग्जाम्स होते थे तो गणेश हेगड़े साहब को ये फिल्म मिली थी खामोशी, जिसमें वो कोरियोग्राफी कर रहे थे, उनकी पहली फिल्म थी, मतलब स्टेज करते थे वो, और
1: जी
0: संजय लीला बंसाली थे और ये एक लड़की असिस्टेंट ढूंढ रहे थे, तो उस फिल्म में पोनी वर्मा जी ने भी एज एन असिस्टेंट किया और फिर मुझे भी मौका मिला
1: जी
0: एक स्केड्यूल करने का,
1: जी
0: और मेरे पहले हीरो थे सलमान खान,
1: ओके
0: जबकि मुझे पता भी नहीं था कि ये सलमान खान है, क्योंकि उस वक्त घर में टीवी नहीं होता था, हम फिल्में नहीं देख रहे होते थे, हमें इतना पता नहीं था,
1: हाँ,
0: स्कूल में थे हम,
1: आप उस चीज को उतना समझते भी नहीं थे।
0: एक्टिंग इंस्टीट्यूट में थे, सीख
1: जी
0: रहे थे,
1: जी
0: और फिर उस फिल्म को करने का मौका मिला तो मुझे लगा कि ठीक है, पर डे इतना पैसा मिलेगा, हम गोवा चले गए,
1: हम पैसे के लिए गए थे।
0: चलो वही मास्टर है जिन्होंने स्टेज पे मेरे साथ किया है,
1: हाँ,
0: कंफर्टेबल है, हम मास्टर जी समझते हैं गणेश हेगड़े साहब,
1: कोई दिक्कत
0: कोई
1: नहीं है,
0: दिक्कत
1: रिस्क
0: नहीं है,
1: नहीं
0: मम्मी ने
1: है।
0: कहा बेटा चलो करते हैं,
1: हाँ
0: देख लो
1: हाँ
0: क्या है। तो हमने गाने उनके साथ में किए और मेरा पहला हीरो सलमान खान, और उसमें नाना पाटेकर जी भी थे और मनीषा कोराला थी, तो वो
1: बहुत
0: मेरी
1: प्यारी
0: पहली,
1: फिल्म है, बहुत
0: बहुत
1: प्यारे
0: प्यारी
1: गाने
0: फिल्म।
1: हैं। जी
0: वो फिल्म के बाद मैं 6 महीना एग्जाम्स के लिए वापस आ गई, मेरे एग्जाम्स हुए और उसके बाद स्टेज करने लगी, और फिर गणेश आचार्य जी के साथ फुल फ्लेज में फिल्म में शूट किया, तो
1: ये
0: वो मेरे,
1: खामोशी में जब सलमान खान को पहली बार आपने डायरेक्ट किया तो व्हाट यू रियलाइज कि वो बहुत अच्छे डांसर हैं या बहुत अच्छे एक्टर हैं?
0: ही वॉज अ वेरी चार्मिंग पर्सनैलिटी ऑन सेट फॉर मी,
1: हाँ, भारत की बहुत
0: जो
1: सारी लड़कियां 90 के दशक में सलमान खान का पोस्टर अपने कमरे में लगाती थी।
0: जो मुझे, मतलब छोटी है लड़की तो मुझे बड़े प्यार से बिहेव करते थे, क्या जो बता दो क्या करना है,
1: जी
0: वो भी बड़े यंग ही थे,
1: हाँ
0: बट वो
1: हाँ
0: बड़े ही सूदिंग पर्सनालिटी थी मेरे लिए
1: जी
0: उस वक्त, कुछ भी सब कुछ नया था,
1: हाँ
0: कैमरा पहली बार देखा, अच्छा ऐसे शॉट होता है, अच्छा ये कभी नहीं देखा था
1: वही सीख
0: जिंदगी,
1: रहे थे, वही कर रहे
0: तो वो जब
1: थे।
0: देख रही थी मेरे लिए था कि ये तो बड़ा अच्छा हीरो है, बड़े प्यार से बात करता है, मनीषा करोला बड़ी अच्छी है, इसको बताना है।
1: जी
0: संजय लीला बंसाली से डर जाती थी मैं सेट पे कई बार,
1: हाँ,
0: नाना पाटेकर जी से डर जाती थी, बट काम
1: बढ़िया
0: करने आए थे, बस इतनी समझ तो थी नहीं।
1: जी।
0: सिर्फ सलमान खान इसलिए याद है कि ही बिहेव रियली वेल विथ मी।
1: हाँ, वो शायद उम्र का भी ऐसा था कि वो आपसे उम्र में भी बहुत ज्यादा बड़े नहीं थे,
0: हाँ, और
1: बहुत
0: वो
1: ज्यादा गैप
0: समझते थे कि वो
1: नहीं
0: समझ रहे थे कि अच्छे बच्ची नहीं है
1: था।
0: अभी आई है, और उस वक्त वो तो बड़े स्टार हो चुके थे,
1: जी
0: वो उनकी
1: बिल्कुल
0: बड़ी बड़ी फिल्में आ रही थी।
1: जी
0: उसके बाद मैं वापस आ गई, उसके बाद मैं सलमान भाई का, अब उसके बाद जब मैं कोरियोग्राफर बनी तो काफी वक्त तक मेरी मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि मैं जब कोरियोग्राफर बनी, एक नियम होता है कि आप जाके सबसे मिलते हो जिनके साथ आपने काम किया है, कि गोविंदा से मिली मैं, सलमान से मिली, क्योंकि मैं उनके असिस्टेंट डेज में कर चुकी,
1: तो
0: मतलब
1: बताने तो जाना
0: खामोशी के बाद
1: पड़ेगा।
0: मैं गणेश आचार्य जी के असिस्टेंट बनी, तो सारे गाने सलमान खान के किए मैंने, जुड़वा से लेके जितनी भी उनकी फिल्में थी, रानी मुखर्जी के साथ बोलो, गोविंदा के साथ काम किया, तो सलमान भाई के साथ एक असिस्टेंट डेज में फिर रेपो बन गया, कि वो जब डांस करते थे कैमरा के नीचे मुझे बोलते थे चल तू कर, तो उन्हीं को सिखा रही होती थी, क्योंकि मैं गणेश मास्टर जी मेल है,
1: हाँ
0: उनके असिस्टेंट थी, उनको

0: भी करती थी तो सबको लगता था मास्टर जी के बाद शबीना है जो अच्छा करती है उनका स्टाइल। तो तू सिखा, सनी देओल बोल रहे तू सिखा, संजू बाबा बोल रहे तू सिखा, गोविंदा जी बोल रहे तू सिखा, तो लड़कियों को भी सिखा रही हूँ, वो भी कर रही हूँ। तो एक वो एक चलन आ
1: रेपो बन
0: गया,
1: गया था
0: तो वो
1: इज्जत
0: सलमान भाई के साथ रेपो बन गया जब उन्होंने पहली बार मुझे अपनी फिल्म के लिए बुलाया। वो थी दबंग में बुलाया था सबसे पहले, पहली
1: जी
0: दबंग मस्त मस्त
1: जी
0: दो नैन गाने किया
1: जी
0: था वो बुलाया। उसके बाद में एक गैप आया, उसके बाद में फिर जय हो में बुलाया उन्होंने। जय हो का गाना जय जय जय हो क्या करो आजा जय हो करो, वो गाना हिट हो गया।
1: बिल्कुल
0: उसके बाद में सूरज बड़जात्या जी की फिल्म आई, शायद आगे पीछे दबंग थ्री, सूरज बड़जात्या की फिल्म 2014, उनके साथ काम किया। सूरज जी ने बोला मेरे गाने तो शबीना ही करेगी। फिर सलमान भाई से मुलाकात हुई, तो एक
1: जी
0: रैपो बनता था ही मेरा पहले से उनके साथ, तो आसानियां बढ़ गई क्योंकि ही न्यू दैट ओके शबीना इज देयर, चलो करेगी। वो पिक्चर मेरी जो पहली हिट हुई वो भी सलमान खान की फिल्म थी, जो प्रेम रतन धन पायो,
1: जी बिल्कुल
0: उसके पहले आशिक बनाया आपने,
1: जी
0: उसके पहले नाच आई मेरी, काफी फिल्में चली, मुझे कभी किसी के पास जाके काम मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। माधुरी दीक्षित फिल्म आने के बाद

0: तो एक रेपो बनता था ही मेरा पहले से उनके साथ, तो आसानियां बढ़ गई क्योंकि ही न्यू दैट ओके शबीना इज देयर, चलो करेगी. वो पिक्चर मेरी जो पहली हिट हुई वो भी सलमान खान की फिल्म थी, जो प्रेम रतन धन पायो.
1: जी बिल्कुल.
0: उसके पहले आशिक बनाया आपने, उसके पहले नाच आई मेरी, काफी फिल्में चली, मुझे कभी किसी के पास जाके काम मांगने की जरूरत नहीं पड़ी. माधुरी दीक्षित फिल्म आने के बाद इंडस्ट्री का चलन था, मुझे बुलाने लगे
1: बहुत
0: ज्यादा. राम गोपाल वर्मा अपनी सारी फिल्में मुझे दे रहे हैं.
1: जी,
0: तो ये चलता रहा, फिर सलमान भाई की फिल्म आई, पहला गाना मेरा हिट हो गया आशिक बनाया. उसके बाद सलमान भाई का गाना जिसने मुझे नाम दिया, जिसे कहते हैं ना कि आप अपनी डीवीडी नहीं भेज रहे हो, पहले डीवीडी भेजते थे प्रोड्यूसर के पास के, सर देखिए मैंने ये काम किया.
1: अब इस बार डीवीडी नहीं भेजनी
0: अब
1: पड़ी.
0: मैं प्रेम रतन के बाद डीवीडी नहीं भेजना पड़ा, इंडस्ट्री में सबको पता चल गया शबीना खान कौन है, बिकॉज मेरा वो गाना प्रेम रतन धन पायो हिट हुआ. जबकि वो गाना सोनम कपूर की स्टेप्स थी, लेकिन सलमान खान हर जगह जा रहे थे और वो स्टेप कर रहे थे सोनम के साथ. ये पहली बार हुआ था कि सलमान भाई बोलते थे अरे लड़की का स्टेप मुझसे करा रहे हर जगह. ही यूज्ड टू डू आल्सो बिकॉज ही वाज डूइंग इट. वो हिट, वो
1: ऑरा क्रिएट हो गया था, ऑरा
0: क्रिएट हो गया. और वो स्टेप आज भी यूट्यूब में वो गाना सबसे ज्यादा,
1: कई लोग रील्स भी उस पे बहुत बनाते
0: उसी पे रील बनी, दब स्मैशेस बने, मैं हिट हो गई, मेरा करियर चल पड़ा. तो वो सलमान खान थे. फिर दबंग हुड़हुड़ दबंग जब आया, उन्होंने जो
1: वो मेरे पैंट की जेब में उंगली डाल के,
0: वो तो गणेश आचार्य जी ने किया था.
1: जी जी,
0: दो गाने उन्होंने किए. जब तीसरी दबंग का आया तो उन्होंने मुझे दिया ये गाना.
1: अच्छा.
0: कि शबीना करेगी, तुम करो ये गाना.
1: अरे वाह.
0: फिर वो स्लीव्स के साथ में मोमेंट हिट हुआ.
1: अच्छा.
0: तो फिर उन्होंने एक चलन हो गया कि वो, उन्होंने कभी मुझे फीमेल कोरियोग्राफर की तरह देखा ही नहीं है, उन्होंने हमेशा मुझे एक सेंसिबल कोरियोग्राफर देखा.
1: मतलब मेल फीमेल से परे
0: परे
1: एक कोरियोग्राफर,
0: एक कोरियोग्राफर है जो जज्बात समझती है, जो फैमिली बैकग्राउंड से आती है, ये फैमिली समझती है. तो मुझे ट्यूबलाइट का गाना दिया उठा के, कबीर खान को बोला ये गाना तो नाच मेरी जान शबीना करेगी उसको दो. तो वो मुझे हमेशा एक ऐसा गाना अपनी फिल्मों में दे देते हैं बुला के, जो उन्हें लगता है शबीना करेगी.
1: तो ये बहुत अच्छी बात है ना, साथ लेके चल रहे हैं. और साथ सिर्फ इसलिए नहीं लेके चल रहे कि करना है, इसलिए चल रहे हैं क्योंकि
0: ही नोज
1: कुबत है, काबिलियत है.
0: काबिलियत को देख के उन्होंने मुझे बुलाया. राधे में उन्होंने गाना दिया. उसके बाद
1: राधे का कौन सा गाना था आपका,
0: जो परदेसिया सॉन्ग का रिमिक था जैकलिन का और सलमान खान का?
1: हाँ, वो बहुत खूबसूरत
0: वो गाना मुझे दिया बुला के. तो एक बेस्ट गाना वो मुझे बुला के दे देते हैं. और उन्हीं की वजह से आई थिंक जब एक मेगा स्टार आप पे भरोसा करता है ना, तो आपके लिए आसानियां हो जाती है. बाकी लोगों को लगता है सलमान खान की कोरियोग्राफर, तो वो एक चलन चल गया. मुझे बोलने लगे सलमान खान की कोरियोग्राफर, सलमान खान की कोरियोग्राफर, सलमान खान की कोरियोग्राफर.
1: तो ये गीत जो आपने और सलमान खान ने साथ में किया है, यानी शबीना खान और सलमान खान का साथ का गाना है, वो कोई एक गीत जो आप कहेंगे वो हम हमारे श्रोताओं को जरूर सुनाना चाहेंगे, आपकी पसंद का, आपकी ख्वाहिश से?
0: सलमान भाई का एक हमारा साथ में किया हुआ गाना जो मुझे बहुत पसंद है. सभी गाने पसंद है. नाच मेरी जान एक गाना है, बहुत पैपी नंबर है
1: जी.

0: श्रोता हमारे साथ हैं शबीना खान, जो कि एक बहुत बहुत बहुत बेहतरीन कोरियोग्राफर हैं। और अगर मैं कहूं कि आज तक की जो लिस्ट बनी है, ऐसा कोई अभिनेता या अभिनेत्री या कोई दिग्दर्शक या कोई निर्देशक कोई नहीं बचा है जिसके साथ शबीना खान ने काम नहीं किया है, और जो भी किया है उम्दा किया है, परफेक्ट किया है और अब तक का बेस्ट किया है। हमने जब तक इनके बारे में इनके जाना या इनसे बात की है, जो अब तक उस सब में इतने सारे गाने आए हैं और हर गाना अद्भुत है, ऐसा लगता है कि वो अपने उत्कृष्टतम उत्कृष्ट पर बैठा हुआ है। तो उन्हीं में से एक और फिल्म आई थी जिसने अपना नाम पूरी दुनिया में बना लिया था, और उस फिल्म में हैंडपंप भी उखाड़ा गया, भारत के बारे में भी बात की गई। और ये फिल्म है ना, जो अपना एक कहा जाता ना, एक स्थान बना चुकी है, और कई सालों बाद वापस वो फिल्म आती है। और शायद जब ये फिल्म आई थी तब शबीना खान बहुत छोटी सी रही होंगी, और जब ये दोबारा ये फिल्म आई तब शबीना खान जो है वो कोरियोग्राफर बन चुकी हैं, और ये फिल्म इनके हाथ में आती है। फिल्म का नाम है गदर 2। ये फिल्म कैसे आपके हाथ में आई, और जो गाना अपने आप को पहले ही स्थापित कर चुका है, उस गाने को फिर से नए कलवर के साथ प्रेजेंट करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि उस गाने को हमने देखा था एक स्कूल के बड़े से ऑडिटोरियम में मंच पे नाचते हुए। अब उस गाने को आप सड़क पे, यानी एक स्थान पे, एक आंगन में नृत्य करवा रही हैं, तो थोड़ा सा अगर वहां तक हमें ले जाए तो।
1: सो पहले सवाल का जवाब ये है कि गदर, हाँ, जब गदर रिलीज हुई थी 2020-21 में, तब मैं असिस्टेंट कोरियोग्राफर थी गणेश मास्टर जी के साथ।
0: जी,
1: इस फिल्म को किया था जय बोराडे साहब ने। जय बोराडे हमारे बहुत फेमस कोरियोग्राफर, जो सूरज बरजाते की सारी फिल्म,
0: बहुत बड़े कोरियोग्राफर,
1: बहुत बड़े कोरियोग्राफर थे।
0: हम साथ साथ हैं भी उनकी,
1: हम साथ साथ हैं, मैंने प्यार किया, उनकी लास्ट फिल्म थी विवाह,
0: हाँ,
1: उसके बाद मैंने ज्वाइन किया सूरज बरजाते,
0: विवाह है, सभी विवाह के पास आया था जी।
1: उसके बाद से मैंने राजश्री प्रोडक्शन को ज्वाइन किया। तो जब गदर 2 कैसे आई, अनिल शर्मा जी जो हमारे बहुत ही दिग्गज, बहुत ही माने हुए डायरेक्टर है, उनके बेटे की एक फिल्म आई थी जीनियस, उसमें उन्होंने मुझे दो गाने दिए थे।
0: अच्छा।
1: जब उन्होंने मेरा काम देखा तो उन्होंने कहा कि बड़ी फिल्म करेंगे साथ में।
0: अच्छा।
1: और जब गदर फिल्म आई तब उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे कहा ये फिल्म तुमने करनी है।
0: अच्छा।
1: तो उन्हें लगा था दो तीन गाने देंगे, मैंने कहा सर मैं पूरी फिल्म करूंगी, अब पूरी फिल्म एक ही फिल्म करूंगी। ऊंचाई की शूटिंग चल रही थी मेरी, ऐसे ऊंचाई पूरी फिल्म मैंने अकेले खुद की है, ये फिल्म भी पूरी करने दो मुझे, और मेरा पूरा वक्त आपका, आप जब बुलाओगे सुबह शाम 3 बजे रात को 4 बजे सुबह, जब बुलाओगे मैं आपके साथ करूंगी, पूरी फिल्म करूंगी।
0: मतलब उतने दिनों में मैं कुछ और नहीं,
1: कुछ और
0: मैं
1: काम नहीं करूंगी, क्योंकि इस फिल्म की डिमांड होनी चाहिए, क्योंकि ये फिल्म इतनी बड़ी हिट थी, 22 साल बाद रिलीज हो रही है, यू नो। और चैलेंज ये था इस फिल्म के साथ कि 22 साल के बाद आज की ऑडियंस सोशल मीडिया को लेकर बहुत अलग है। अगर 40% पुराने लोग ये फिल्म देखेंगे तो 60% आज के लोग देखेंगे, जो उस वक्त पैदा हुए होंगे और आज 22 साल के होंगे, 25 साल के होंगे, या 27, 28 साल के होंगे। तो ये ऑडियंस तो यही मैंने अपनी 65-70%। तो मैंने काम तो बहुत मेहनत की इस फिल्म पे, एक एक गाने को तराशा। और सवाल ये था कि आज की ऑडियंस को, पिक्चर बनी है हमारी 1970 के ऊपर,
0: बहुत पुराने समय की बात है,
1: 70s के ऊपर फिल्म बनी है, अंदाज 70s का है, कैरेक्टर 70s के, गाने 70s के अंदाज में,
0: खुशबू उसी समय की है,
1: सब कुछ उसी समय का, लेकिन दिखाना आज की ऑडियंस को है, और पुरानी ऑडियंस भी डिसअपॉइंट नहीं हो कि अरे यार ये क्या कर दिया नहीं कोरियोग्राफर ने,
0: हाँ हमारा पुराना वाला अच्छा था।
1: तो ये जो ख्याल थे ना, ये मेरी रातों की नींद उड़ गई थी, और मैंने इतनी मेहनत की इस फिल्म को लेके कि हर एक गाना मोती के दाने की तरह निकल कर आए। मैं निकला गड्डी लेके, जो आपने कहा आंगन के अंदर किया, वही चैलेंज था। सनी देओल उस वक्त, सनी देओल इस वक्त,
0: उम्र का भी अंतर,
1: उम्र का भी अंतर है, लेकिन क्योंकि सनी सर के साथ मैंने असिस्टेंट डेज में काम किया है, हमारी एक रेपो थी, और मैंने उनसे कहा कि सर ये सिग्नेचर मूवमेंट, सबने कहा सिग्नेचर

0: मोमेंट अलग करते हैं, अलग करते हैं, अलग करते हैं। सर नहीं सर, सिग्नेचर मोमेंट वो मत करिए। कोई और कोरियोग्राफर बोलता मैं करता हूँ मेरी स्टेप,
1: हाँ
0: यहाँ पे आप की अना आपका ईगो नहीं आना चाहिए।
1: हाँ
0: अच्छा, जय मास्टर जी को एक मुझे श्रद्धांजलि देनी है,
1: हाँ
0: उन्होंने जो बनाया था स्टेप हाथ का
1: हाँ
0: गड्डी लेके,
1: हाँ हाँ
0: वही स्टेप रखेंगे। उनके बेटे का जो रोल अभिनय निभा रहे थे उत्कर्ष शर्मा, जो
1: हाँ
0: अनिल शर्मा जी के बेटे हैं,
1: जी
0: उनको मैंने अलग स्टेप दिया।
1: हाँ
0: मैंने
1: बिल्कुल
0: कहा कि आप, वो 70s का बच्चा है, तो उनको मैंने स्टेप दिया राजेश खन्ना वाला,
1: हाँ
0: क्योंकि वो बच्चा होता है राजेश खन्ना का और उसका दीवाना।
1: हाँ
0: और फिर वहां जाके ये गाना बना। और अगर आप पूरी फिल्म के गाने देखो, उसमें दो गाने नए एक्ट कलाकारों के साथ निभाए गए थे
1: जी
0: जो सबसे बड़े हिट हुए। एक
1: जी
0: गाना था चलते रे इश्क में,
1: चलते रे इश्क में बहुत
0: जो
1: पसंद किया यूथ ने।
0: उसमें ये दिखाया है कि वो लड़की पाकिस्तान की मुसलमान फैमिली से ताल्लुक रखती है, ये बच्चा हिंदुस्तान से जाता है, उनका अफेयर होता है, और लड़की पाकिस्तान की ईद के दिन डांस कर रही है। तो
1: हाँ
0: हमने चिलमन बनवाई, क्योंकि मुझे पता है
1: बहुत
0: ना,
1: खूबसूरत सेट था वो।
0: चिलमन बनवा के चिलमन के अंदर वो लड़कियों के साथ नाच रही है, चिलमन के बाहर लोग ईद, और पाकिस्तान के अंदर ये गाना हो रहा है ऐसा दिखाया है,
1: हाँ
0: और हिंदुस्तान की ऑडियंस उसको देख रही है। तो वो गाना इतना सुपरहिट हुआ कि लोग आज गदर के बाद फौरन चलते रे इश्क में कहते हैं
1: जी
0: गाना,
1: बिल्कुल
0: इतना खूबसूरत।
1: बिल्कुल
0: और उत्कर्ष शर्मा का एक गाना हिट हुआ था जो झूम झूम गाना था,
1: हाँ
0: तो हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर, पूरी दुनिया के लोगों ने। तो मैं ये कह रही हूँ फिर से कि मेहनत ही मेहनत, कंसिस्टेंसी, लगन, और बार बार एक चीज को सोचना, करते रहना, रातों की नींद गंवाना, बेचैन रहने से ही आप गदर 2 जैसी फिल्म को दर्शा सकते हो।
1: फिर से वही बात, मेहनत तो करनी पड़ेगी,
0: करनी पड़ेगी
1: बिना
0: आपको,
1: मेहनत के।
0: आप हर बार साबित करना पड़ेगा, आप बैठ नहीं सकते पीछे,
1: हाँ,
0: आपको
1: यानी कि
0: साबित करना
1: आपने
0: पड़ेगा।
1: इतनी बड़ी बड़ी सुपर डुपर हिट दे दी, बहुत सारे अवार्ड्स आपने ले लिए, लेकिन जब गदर टू सामने आई, ऊंचाई में इतने सारे बुजुर्ग वय लोगों को भी आपने काम करवा लिए, यानी वो बुजुर्ग वय नहीं बोलना चाहिए, वो दिग्गज बोलना चाहिए,
0: दिग्गज है, लेजेंडरी,
1: भारत के वो सबसे बढ़िया कोहिनूर
0: बिल्कुल
1: हैं,
0: बिल्कुल
1: उन
0: कोहिनूर
1: सबको
0: है वो,
1: आपने काम करवा लिया। और
0: बिल्कुल
1: उसके बाद, क्योंकि इन्होंने उस समय जो काम करके दिया है, 70 60 से लेके 80 90 के दशक तक, और उसके बाद भी वो करते ही जा रहे हैं, पर वो जो किया है वो तो खैर बात ही अलग है। और उनसे काम कराने के बाद गदर टू में भी वही पसीना बहा रहे हो, एसी कमरे में बैठे हो लेकिन पसीना तो आ रहा
0: बिल्कुल
1: है। तो हमें मेहनत करनी चाहिए, ये बात,
0: बिल्कुल
1: ये सीख हमारे छोटे छोटे जो श्रोता हैं
0: बिल्कुल
1: उन तक बात पहुंचनी चाहिए, और पहुंचती है। इतने सारे लोगों के साथ डांस किया, इतने सारे लोगों को काम कराया, राजपाल यादव एक नाम आता है।
0: मेरा पहला हीरो, मेरी पहली फिल्म का पहला हीरो,
1: अच्छा,
0: बिल्कुल मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ,
1: हाँ
0: मैं
1: हाँ
0: हीरो तो राजपाल यादव ही
1: जी
0: थे, तो
1: जी
0: मैं तो उनके जिंदगी भर अभी भी मिलती हूँ तो बोलती हूँ मेरा पहला हीरो।
1: हाँ, तो हमारा प्रश्न यहाँ पे ये आ रहा है कि वो तो कॉमिक साइड में जाते हैं, कॉमिक साइड को डांस में या कोरियोग्राफी में कैसे कन्वर्ट कर पाते हो, क्योंकि कोरियोग्राफी में भी वो जो कॉमिक टाइमिंग है, या वो जो मजाक मस्ती है, या वो जो हल्की सी एक छोटी सी बात ही होती है, राजपाल यादव के साथ जो उनका अभिनय है, वो एक हल्का सा किरदार थोड़ा सा घूमता है, उतने में भी जनता जो है, जो देख रही होती है, वो हंसना शुरू कर देती है।
0: बिल्कुल,
1: तो उनके साथ कैसे आपने काम किया?
0: मैं आपको एक बात बताऊं, बीइंग एन एक्टर माय सेल्फ, मैंने एक्टिंग सीखी है,
1: जी,
0: तो सबसे मुश्किल काम होता है हंसाना लोगों को, हंसाना
1: रुलाना आसान है।
0: बहुत मुश्किल है। और वही काम मैंने कहा ना, जैसे ऊंचाई में केटिको में अनुपम खेर के बारे में कह रही थी मैं, वैसे ही राजपाल यादव है, जितना बंदा उछल उछल के हंसाता है वो उतना रुला भी देता है आपको 1 मिनट के अंदर। और जिसके अंदर ये एक रिदम है, जिसके अंदर कॉमिक टाइमिंग होती है उसके अंदर रिदम होता है, तो डांस करना तो बाएं हाथ का खेल है।
1: अच्छा।
0: उसके बाद मैंने उनके 2-3 गाने किए जिनमें उन्हें नचाया है, और वो बराबर टाइमिंग पर डांस करते हैं,
1: क्या बात है।
0: बिल्कुल।
1: तो ऐसे बढ़िया बेहतरीन अभिनेता अभिनेत्रियां भी हमारे यहाँ पे हैं। आपने कुछ साउथ के डांसर्स के साथ भी काम किया
0: काफी काम किया
1: है
0: साउथ
1: ना,
0: में,
1: साउथ के अभिनेताओं के साथ, अभिनेत्रियों के साथ काम किया, तो क्या अंतर है बॉलीवुड और दक्षिण भारत के काम में?
0: जिस वक्त मैंने काम किया, मैं बात कर रही हूँ 2000 शायद 12-13 की, मैं इतना काम करती थी वहां पर कि मुझे मुंबई आने का वक्त नहीं मिलता था।
1: जी
0: तमन्ना, कार्ति, सूर्या, पवन कल्याण, ऐसे कई नाम हैं जिनके साथ मैंने काम किया। एक चीज जो मैं उस वक्त वहां देखती थी, डिसिप्लिन। अगर वो 7 बजे की शिफ्ट रखते हैं तो 7 बजे पहला शॉट होना चाहिए, मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ।
1: 7 बजे रखते हैं तो 7 बजे शॉट होता है, मतलब उसके पहले लोग
0: उसके
1: आते हैं।
0: पहले 6 बजे सब आके सेटअप करके रेडी।

0: ओके एक्टर शुड टच द सेट एट
1: मतलब
0: सेवन।
1: एक्टर 5 बजे आके मेकअप करा के तैयार होके बैठा
0: बिल्कुल,
1: होगा।
0: अगर आप वो डिसिप्लिन देखा है कि मैंने डायरेक्टर को पैकअप करते हुए देख लिया कि एक एक्टर सिर्फ 10 मिनट लेट आया तो ही कॉल्ड मी असिस्टेंट के साथ, मैंने एक्टर के साथ रिहर्सल किया, शॉट दिखाया डायरेक्टर को और डीओपी को, शॉट की रिहर्सल हो गई, बस टेक बोलने वाले है, हीरोइन ने गाउन उतारा, बोला पैकअप, बड़ी हीरोइन मैं नाम नहीं लूँ, क्यों? ही सेड अम्मा यू एंटर्ड इन द सेट एट 7:10, सो टुमारो वी रोल दिस एट 7,
1: 7 मीन 7।
0: 7 पैकअप। शी स्टार्टेड क्राइंग, ही सेड नो प्रॉब्लम। सो ये एक, इसे आप रूडनेस नहीं बोलते हो, इसको कहते हो कि आपको कभी कभी जब चीज़ें सीधी करनी होती है तो थोड़ा सा अलग रास्ता अपनाना होता है। वही किया, नेक्स्ट डे 6:30 7 में लड़की बैठी हुई थी वहां पे, जबकि उसकी गलती उस दिन भी नहीं थी, लेकिन ये एक तरीका है उनका काम करने का। लेकिन अब हमारे यहाँ पे भी मैंने ये देखा है कि हम वक्त पे काम शुरू कर देते हैं,
1: अच्छा
0: और
1: तो
0: कहते हैं ना कुछ एक्टर बहुत लेट आते हैं,
1: हाँ
0: बट लोगों को ये नहीं पता कि वो लेट आने के बाद भी 8 घंटे का काम 4 घंटे में खत्म करके दे के निकल जाते
1: निकल भी
0: हैं।
1: जाते हैं क्योंकि वो इतना क्विक है।
0: एब्सोल्युटली।
1: हाँ तो अब जब इतनी अच्छी बात चल रही है तो एक गाना और बनता है, क्योंकि हम तो इंफोटेनमेंट वाले हैं, इन्फॉर्मेशन भी देते हैं और एंटरटेनमेंट भी करते हैं। तो एंटरटेनमेंट के लिए कौन सा गाना हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे?
0: मेरा बहुत फेवरेट गाना गदर 2 का, चल
1: हाँ
0: तेरे इश्क में खो
1: हाय हाय
0: जाते
1: क्या बढ़िया,
0: हैं।
1: बहुत खूबसूरत सा गीत है। तो ये गीत हम हमारे श्रोताओं तक पहुंचाते हैं और
0: प्लीज
1: हम
0: सुनिए।
1: आपके काम के इश्क में खो जाते हैं उतनी देर के लिए। बहुत खूबसूरत काम किया शबीना जी, बहुत बढ़िया। तो चलते हैं इस गीत की तरफ।

0: हालांकि शबीना जी, हमने आपसे बात की, लेकिन ऐसा लगता है कि इतनी देर में आपको समेट पाना बहुत कठिन है। फिर भी हम ऐसा मान लेते हैं कि हमने आपसे बहुत सारी बातें कर लिया, ऐसा हम मान रहे हैं खुद से। हालांकि हम भी जानते हैं कि अभी बहुत सारे गानों की बहुत सारी कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपसे सुनी जा सकती हैं, और रोचक तथ्य और रोचक बातें आपकी सुनने को मिलेंगी, और हम चाहेंगे कि सुने भी एक आध। लेकिन उसके पहले एक बात बनती है कि शमीना खान यानी छोटी सी 7वीं 8वीं की लड़की आई थी इंडस्ट्री में, उसने बहुत मेहनत की और बहुत मेहनत करके बहुत बड़ी बन गई। अवार्ड्स भी बहुत सारे मिले, फिल्म फेयर मिला, बहुत सारे अवार्ड्स मिले। तो हम चाहते हैं कि वो अवार्ड्स जब आप ले रहे थे, कैसा लग रहा था? कौन था जो आंखों के सामने आया था कि यार थैंक यू, तेरे कारण मुझे ये मिला है?
1: मेरी अम्मी, मुझे पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला
0: जी।
1: तो मैं मुंबई में थी नहीं। प्रेम रतन धन पायो के लिए मुझे इनविटेशन आया, मैं मुंबई में थी नहीं, तो मैंने अम्मी से कहा, अम्मी चल नहीं पाती थी उस वक्त, उनका बैक का ऑपरेशन हुआ था, तो मैंने कहा अम्मी तुमको जाना पड़ेगा, ये तुम्हारा अवार्ड है। क्योंकि जिंदगी भर से मैंने सोच के रखा था कि जब भी अवार्ड मिलेगा मैं अकेले नहीं जाऊंगी स्टेज पर,
0: माँ को साथ लेके
1: अम्मी को ले
0: जाएंगे
1: जाऊंगी, क्योंकि ये उनका अवार्ड है। हर एक
0: जी।
1: कदम चली मैं थी,
0: जी।
1: बट दिल और दिमाग उनका था। मुझे इतनी तरीके से, सलीके से पालना, इस तरह बनाना, इतना सोच समझ के चलने वाली लड़की, बचपन में हमें क्या पता होता है? कुछ नहीं पता होता है। हमारी माएं होती है जो हमें
0: और उस जनरेशन के बच्चों को कुछ नहीं पता होता था।
1: हमारे पास टीवी नहीं, रेडियो
0: हाँ
1: नहीं, ये
0: जी।
1: हम सिर्फ अपनी माँ को सुनते थे,
0: हाँ
1: उसको देखते थे, उस जैसे बनना चाहते थे। बाल तुम्हारे लंबे हैं, मुझे भी बाल लंबे चाहिए, तुम ऐसी दी। मेरी माँ मेरी हीरोइन है, मेरा बाप मेरा हीरो है, हम यही थे ना उस
0: कई बार
1: जनरेशन के
0: ऐसा होता था,
1: बच्चे।
0: पूछते थे बड़े होके क्या बनना है, तो मम्मी बनना है।
1: मम्मी बनना है या टीचर बनना है,
0: जी
1: हमारी हमारी
0: जी
1: टीचर है भी हमारी बहुत बड़ी,
0: बिल्कुल,
1: आजकल वक्त बदल गया है, लेकिन हमारी टीचर है। हमारी पहली बात
0: रोल
1: होती थी, हम
0: मॉडल होती
1: टीचर
0: थी।
1: रोल मॉडल होती थी हमारी टीचर,
0: बिल्कुल।
1: हमारे सर, हमारे टीचर, हमारे ट्यूशन टीचर, यही होता था।
0: जी।
1: तो मैंने हमेशा सोचा था अम्मी को ले जाऊंगी और उनके हाथ में अवार्ड दूंगी और फिर उनको बोलूंगी मुझे अवार्ड दे। तो कई बार ऐसा भी हुआ, मैं पहुंची और मुझे अवार्ड नहीं मिला, किसी और को मिल गया। मैं स्पीच रेडी करके
0: नॉमिनेशंस में
1: गई,
0: आपका।
1: नॉमिनेशंस में मैं थी, तो जब ये अवार्ड मिला, देखो कुदरत ने भी मेरे मैनिफेस्टेशन को कैसे हाँ किया। कहते ना, हम जो मानते हैं वो ही मिलता है कुदरत
0: मिलता है।
1: से। मैं मुंबई में हूँ नहीं, बैंगलोर में शूट कर रही हूँ, फोन आया आपको अवार्ड मिल रहा है, वो भी ओरिजिनल दादा साहब फाल्के अवार्ड।
0: क्या बात है।
1: या तो अम्मी को फोन, अम्मी बोले बेटा मैं जाने पाने, मैंने अपने भाई को फोन किया ऐसे, बेटा व्हील चेयर पर ले जाना अम्मी को,
0: पर लेके
1: बट
0: जाना।
1: लेकर जाना, मैं चाहती हूँ अम्मी जाए। मेरी अम्मी गई, उन्होंने वो दादा साहब फाल्के अवार्ड लिया और वहां पे उन्होंने बोला मेरी बेटी के लिए मैं ले रही हूँ। वो अवार्ड मेरी माँ को मिला है, कम से मेरा अवार्ड नहीं है वो।
0: जी
1: तो उस अवार्ड को मैं बहुत अलग नजर से देखती हूँ।
0: जी
1: उसके बाद पटाखा फिल्म के लिए फिल्म फेयर नॉमिनेशन,
0: जी
1: उसके बाद मराठी फिल्म के लिए जी सिने अवार्ड, मैंने मराठी फिल्में भी की
0: जी
1: हैं। उसके बाद बस वहां से सिलसिला शुरू हुआ, कई सारे अवार्ड्स मिले।
0: अब अलमारियां भर चुकी हैं।
1: हाँ काफी कुछ काफी कुछ। अब तो खैर बहुत सारे अवार्ड्स हो चुके हैं,
0: जी
1: बहुत सारे अवार्ड्स हैं जिनके अभी भी फोन आते हैं और हम कभी जा पाते कभी नहीं जा पाते। लेकिन जिसको मैं सराहती हूँ बहुत ज्यादा, फिल्म फेयर और दादा साहब फाल्के अवार्ड और जी सिने अवार्ड, और गदर भी, सारे गदर के
0: जी
1: गाने भी अवार्ड्स में थे।
0: जी
1: फिर एक नेशनल अवार्ड के लिए मैं 3 बार नॉमिनेशन में आई हूँ।
0: क्या बात
1: देखो आपके सारे श्रोता मेरे लिए दुआ करें और मुझे नेशनल अवार्ड इस
0: है।
1: साल
0: हम
1: मिल
0: सबकी
1: जाए,
0: प्रार्थना है कि आपके हाथ में
1: बस
0: नेशनल अवार्ड आना
1: नेशनल
0: चाहिए,
1: अवार्ड आ
0: जिसने
1: जाए।
0: इतनी मेहनत की है, अपना पूरा जीवन दिया है और किरदारों को खुद के नजरिए से हम तक पहुंचाया है,
1: बिल्कुल
0: या कहें कि किरदारों के रूप में खुद हमारे सामने आई है, तो उसको मिलना तो चाहिए। तो हम सबकी दुआएं, हम सबकी प्रार्थनाएं आपके लिए रहेंगी। तो कोई एक गाना जिसने आपको बड़ी खुशी दी हो, ऐसा मन किया हो कि हम खड़े हैं तो 3 फीट ऊपर उछल जाएं और थोड़ा नाच लें और थोड़ा नाच लें, ऐसा कोई गाना जिसको करने के बाद बड़ा मजा आया हो या करवाने के बाद?
1: ऐसा एक गाना है तो जरूर, हमारे लेजेंडरी मेगा स्टार सलमान खान का गाना है। उस गाने की

0: हर लम्हा उसका मेरे लिए कीमती था, क्योंकि एक फीमेल कोरियोग्राफर को हुड़ हुड़ दबंग गाना देना
1: जी सही
0: पहली बात
1: बात है
0: अपने आप में बहुत.
1: जी।
0: वो गाना जब हम कोरियोग्राफी कर रहे थे तो मेरा जो मेल असिस्टेंट है, मेरा भाई शर्जिल, वो मेरा राइट हैंड है हमेशा से. जब हम
1: आपने
0: दोनों
1: बताया
0: नाचते हैं तो ऐसा लगता है कि जमाना कैरेक्टर को
1: अलग
0: देख रहा है, एक
1: जी
0: लेवल अलग है. वो भी बहुत अच्छा परफॉर्मर है.
1: जी
0: उसके बैक में प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि उससे
1: अच्छा
0: एक गाने पहले वो इंजर्ड हो गया था.
1: ओ
0: अब वो डांस कर नहीं पा रहा है. इस फिल्म के डायरेक्टर है प्रभु देवा, जो मेरे गुरु रह चुके हैं.
1: जी
0: सलमान खान साहब ने इतना बड़ा गाना दिया है, तो मैं थोड़ी सी ऐसी हो गई कि मैं फीमेल हूँ, हुरूर दबंग मुझे करना है, और मैं चाहती थी कि शर्जिल के ऊपर किया जाए और वो इंजर्ड है, तो मैं क्या करूं. तो मैं जब रिहर्सल हॉल पे जाऊं तो अपने 20 लड़के जिनके साथ मैं कंपोज कर रही थी, मेरे अपने डांसर, उनमें से चुनती रहूं, ढूंढती रहूं कि कोई है जो ऐसा परफॉर्म कर
1: किससे
0: सके.
1: करवा दें।
0: क्योंकि वो गाना जब मैं कंपोज कर रही थी उसमें एक दबंग वाला एक वो था ऑरा, और वो गाना जो था इस बार वाला, वो उस पावर से कनेक्टेड हमें करना था जो ऊपर से आता है,
1: जी
0: वैसा पावर चाहिए था.
1: हाँ
0: मुझे मिले ही ना, मिले ही ना. और मैं गाना कंपोज करती जा रही हूँ, डांसर लड़कों को सिखाती जा रही हूँ, और ढूंढ रही हूँ कोई एक लड़का मिल जाए. और फिर तीसरे दिन मुझे सारे डांसर और मेरे अपने भाई ने बैठ के बोला कि यू परफॉर्म,
1: ओ
0: यू शो इट टू प्रभु देवा, यू
1: ओके
0: शो इट टू एवरीबडी.
1: ओके
0: लड़कों ने बोला, मैम देर इज नो अदर डांसर हु कैन डांस लाइक यू द वे यू आर डूइंग दैट सॉन्ग. तब प्रभु सर जब आए, और मैंने सोचा यार सच में,
1: प्रभु देवा के सामने
0: जब
1: डांस
0: प्रभु
1: कर
0: देवा के साथ सामने
1: रहे
0: जब वो आए, बोले यू विल डू इट, वाई वाई वाई यू सर, एक बार देख लीजिए. फिर उसके बाद जब मैंने करके दिखाया, वो भूल गए कि मैं लड़की हूँ. प्रभु सर वो बस मुझसे डिस्कस करते रहे. फिर हम सेट पे पहुंचे, सलमान भाई वैसे ही रिहर्सल नहीं करते, सेट पे पहुंचे. हम कर रहे थे ये गाना शूट, हम इंदौर में कर रहे थे गाना. तो जैसे हमेशा की तरह सलमान भाई ने सोचा नहीं कि मैं लड़की हूँ, लड़का हूँ, कौन हूँ, मैं कोरियोग्राफर हूँ. मुझे बोले चलो पूरा गाना करके दिखाओ. अब पूरा गांव वहां पे खड़ा है सेट पे, सलमान भाई आए तो पूरा गांव खड़ा
1: हाँ, वो
0: हुआ
1: तो
0: है.
1: आ गई
0: और मैं भी भूल गई कि मैं लड़की हूँ भाई, मैं तो कोरियोग्राफर हूँ. हमेशा की तरह दबंग अंदाज में मैंने वो गाना गांव के सामने किया.
1: हाँ
0: पूरा गांव शूट कर रहा था, एंड दे ऑल क्लैप्ड. एंड सलमान भाई बोले करवा लेना मुझसे तुम ऐसे बस. वो जो शूट होके आया और लोगों ने पोस्ट करना शुरू किया, मैं अपने आप में हैरान थी. मेरे सारे लड़कों ने मुझे ऊपर उठा लिया कि मैम व्हाट वाइब्स यू गिव. तो उस वक्त मैं तो कोरियोग्राफर थी ना, मैं लड़की थी नहीं. अच्छा अब शूटिंग शुरू होती है और मैं हर शॉट मैं करके दिखा रही हूँ, बिकॉज माई असिस्टेंट शर्जिल वॉज ऑन सेट बट ही कुडंट डू इट. नाउ मुझे ही करना है, शॉट लगाऊं करके भी मैं दिखाऊं, भाई को भी सिखा रही हूँ, कर भी रही. अब ये पूरा जो गांव के लोग है वो खड़े रह के देख रहे. पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन,
1: वो समझ रहे उस
0: वो
1: चीज को।
0: देख रहे मुझे, देख रहे. अब मैं रोजों में थी, उस वक्त रमजान चल रहा था, मेरे रोजे भी चल रहे थे. अब ये गाना खत्म हुआ, जैसे ही सब हो गया, लास्ट शॉट एंड एवरीबडी स्टार्टेड टू लीव, और मैं अपने होटल की तरफ ऊपर जा रही हूँ, एक मजमा सा मेरी तरफ भागता हुआ आया. और मुझे लगा ये लोग आके मुझे बोलना चाहते होंगे सलमान खान से फोटो दिलवा दो, ऐसे कुछ होगा. और मैं बोली अरे अरे अरे रुको रुको, मुझे जाने दो फिर चले जाओ मुझे जा. सर नहीं मैम, वी वॉन्ट टू, दे आर ऑल कॉलेज स्टूडेंट्स एंड गांव के आसपास के लोग, एंड दे सेड कि आपके साथ फोटो उतारना है.
1: क्या बात।
0: एंड देन वो फोटो उतारे, ऑटोग्राफ ले. मैं एकदम हैरान थी. उसमें से पूरे ग्रुप ने लास्ट में मुझे बोला, मैम वी वॉन्ट टू गिव यू वन नेम टूडे. और लड़कियां थी उसमें 50 के करीब. आज के बाद हम जब भी आपका नाम ले, आपका नाम दबंगिनी होगा, असली दबंग आप हो हमारे लिए. अगर सर
1: शबीना बन गई दबंगनी
0: तो उन्होंने मुझे ये खिताब दिया कि आप हमारी दबंगिनी हो.
1: जी
0: तो आज भी वो सारे लोग जो खड़े थे वो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे है,
1: हाँ
0: मेरी पोस्ट देखते और मुझे पोस्ट बताते हैं कि आप दबंगिनी शबीना खान, दबंगिनी. तो वो एक सिलसिला सोशल मीडिया पे उस वक्त शुरू हुआ था.
1: जी
0: तो ये इस तरह की अचीवमेंट्स भी होती है आपकी जिंदगी में कभी कभी,
1: जी
0: कि आप को नहीं पता, जाने अनजाने में आप किसी के हीरो बन जाते हो.
1: ये अचीवमेंट शायद आपके सच्चे मन, बच्चे जैसा दिल
0: बिल्कुल
1: और अच्छा काम,
0: बिल्कुल,
1: इसके कारण आपको ये
0: बहुत
1: सब
0: जरूरी
1: मिली
0: है.
1: है। जी
0: रोटी की भूख खत्म ना हो पेट में और
1: जी
0: नींद ना आए, बेचैनी से आप अपना काम करते रहो.
1: जी बड़ी खूबसूरत सी बातें आपके साथ चल रही हैं। तो दबंगनी शबीना खान हमारे बीच में है, तो दबंगनी शबीना खान को एक गीत तो सुनवाना बनता है, वो गीत हम आपको सुनवा देते हैं। और गीत के परे हम आपसे हमारे उन्हीं बच्चों से कुछ कहलवाना चाहेंगे।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं, आरंभ होती है आज की हमारी दूसरी यानी सांध्यकालीन सभा। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं किसान वाणी।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि सहकारिता किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार।
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, किसान वाणी कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं संजय किशोर
4: और मैं सुधा आपके लिए लेकर आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारियाँ गीत संगीत के साथ। सुनेंगे जानकारी वर्षा जल संरक्षण एवं उपयोग पर, वार्ताकार होंगे मनीष कुमार।
3: और कैच द रेन, इसके बारे में भी आपने जरूर सुना होगा, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, इसके विषय में भी आज हम आपको जानकारी देंगे। और इसके बाद लोकगीत सुनवाएंगे, कलाकार होंगी टुक्कू पाठक,
4: साथ ही देंगे कुछ कृषि संबंधी सुझाव भी। लेकिन संजय जी, पहले शुरुआत करते हैं अपनी बातचीत से। और इस समय देखिए, हम भी और आप भी जब किसी से भी मिल रहे हैं तो यही सब लोग पूछ रहे हैं आपस में कि क्या भाई तुम्हारा धान की रोपाई हो गई।
3: जी, बात भी सही है कि इस समय रोपनी का कार्य पूरे राज्य में जोरों शोरों से चल रहा है
4: और लगभग रोपाई सब जगह हो ही गई है। कुछ ही लोग हैं जो अभी पिछड़ गए हैं, पिछात धान की कर रहे हैं, लेकिन अब मैं उनसे भी कहूंगी कि अब समय बिल्कुल बहुत तेजी से बीत रहा है।
3: बहुत सही कहा आपने,
4: यही बात हम लोग आज यही करने वाले हैं कि भाई पिछात जो धान की खेती कर रहे हैं तो उनमें किन किन बातों का ध्यान रखें।
3: चलिए,
4: तो देखिए, समय पर अगर वर्षा ना हो, खेतों की तैयारी समय पर ना हो पे तो कोई बात नहीं, इसमें घबराने की बात नहीं है, देर से हम कर सकते हैं इसकी पिछात खेती।
3: और धान की खेती के लिए जो किस्में जो होती हैं पिछात के लिए, उसका चयन उसी के हिसाब से करना चाहिए। पोषक तत्वों का प्रबंधन और सिंचाई की विशेष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसका तो जरूर ही ध्यान रखना चाहिए।
4: तो जो भी किसान भाई बहन पिछात धान लगा रहे हैं तो उचित किस्म का चुनाव करें। इसके लिए जल्दी पकने वाली किस्में हैं जो कि 90 से 110 दिन में ही तैयार हो जाती हैं। तो पिछात धान की कुछ किस्मों के बारे में बता दें।
3: बिल्कुल, जरूर बताइए।
4: तो कुछ किस्में हैं, राजेंद्र श्वेता, सोनम, सबौर हर्षित, तुरंता धान, प्रभात, बिरसा धान 105 और बिरसा धान 106, जो कि कम अवधि में तैयार होने वाली किस्में हैं।
3: तुरंता धान, प्रभात और सीआर धान 40 तो विशेष रूप से देर से रोपाई की परिस्थिति में अच्छी

0: इसके लिए तैयार होने की जो अवधि होती है वो 80 से 90 दिन की होती है सुधा जी। हाँ, तो इन किस्मों का चयन करने से लाभ होता है और इसका चयन स्थानीय जलवायु के अनुकूल होना चाहिए और अनुशंसित किस्मों का ही चयन करना चाहिए। इन बातों का ध्यान किसान भाई खास तौर से रखेंगे।
1: और एक और बात जिसका ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि पिछात धान में रोपाई के लिए बहुत अधिक उम्र के जो पौधे होते हैं उन्हें लगाने से बचना चाहिए। जैसे कि अधिक दिन के पौधे होंगे तो रोपाई के बाद उनकी वृद्धि और कल्ले निकलने की जो क्षमता होती है वो प्रभावित हो जाती है।
0: सही कहा आपने, और इसीलिए जो कम दिनों में तैयार होने वाली फसल है उसका चयन किया जाना चाहिए। और साथ ही पिछात धान में एक और भी बात ध्यान देने की है, वो है उर्वरक का संतुलित प्रयोग। खेत की मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरक देना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखें कि अधिक खाद का मतलब अधिक उपज नहीं होता है।
1: ये तो बहुत सही बात आपने कही। कुछ लोग जैसे हम लोग भी यही सोचते हैं कि अरे ये अच्छा होता है फसल, थोड़ा सा और ज्यादा दे देते हैं।
0: इससे बचना चाहिए और पौधों की आवश्यकता के अनुसार ही सभी पोषक तत्वों को देना चाहिए।
1: बिल्कुल। और पिछात धान की फसल में कीट एवं रोगों की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। धान में तना छेदक, पत्ती लपेटक, माहो, फुदका जैसे कीट और जो विभिन्न फफूंद जनित जीवाणु जनित रोग होते हैं उनका प्रकोप भी हो सकता है परिस्थितियों के अनुसार। तो इसके लिए खेत की नियमित रूप से जांच करते रहें और कीट या रोग की सही पहचान होने के बाद उचित जैविक नियंत्रण के तरीके अपनाएं। यहाँ पर मैंने जोर देकर कहा है जैविक नियंत्रण
0: जी, जैविक
1: कि किसान भाई जो रासायनिक हैं उनसे उनके प्रयोग से बचे।
0: थोड़ी दूरी बनाइए, एकदम तो बंद नहीं कर सकते।
1: बिल्कुल, अचानक से तो नहीं ही रोक सकते, लेकिन धीरे धीरे उसको करते करते हम कोशिश करेंगे कि जैविक पर आ जाएं।
0: हाँ जी, बहुत सही होगा आने वाले समय के लिए। तो किसान भाइयों, देर से धान की रोपाई होने पर भी आप इन बातों को ध्यान में रखकर अपनी अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें कि किस्म और सही प्रबंधन पिछात धान में अच्छी उपज का आधार है।
1: संजय जी
0: जी, कहिए आगे और क्या कुछ कहना।
1: मैं ये कह रही थी
0: किसान भाइयों के लिए,
1: बारिश का मौसम है, आकाश में बादल छाते हैं, बारिश की बूंदें धरती को भिगोती हैं और चारों ओर हरियाली दिखाई देने लगती है। लेकिन मैं ये कह रही कि इतना सारा पानी आखिर जाता कहाँ है?
0: सवाल तो है, इसका जवाब भी होगा।
1: बिल्कुल, तो जवाब आप दीजिए।
0: दरअसल इसका जवाब ये है कि पानी का बड़ा हिस्सा बहकर नालियों, नहरों, नदियों में चला जाता है और पर्याप्त मात्रा में ज़मीन के भीतर ये नहीं पहुंच पाता। तभी तो आज कई क्षेत्रों में भूजल का स्तर जो है लगातार नीचे जा रहा है। कुएं और हैंडपंप सूख रहे हैं। गर्मियों में तो पानी की समस्या बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो इसका
1: एक तो फिर ऐसे में करें क्या, क्योंकि मैं भी इसीलिए पूछी थी कि इतनी बारिश होती है तो भाई पूरे साल भर हम लोगों को मिलना चाहिए, भाई भूमि का जो भूमिगत जल है वो बरकरार रहना चाहिए ना।
0: जी, भूमि पर दबाव बढ़ रहा है, चूंकि जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ी है तो भूमि पर दबाव है, तो जल का
1: तो
0: जो प्रबंधन है
1: क्या करें,
0: जल का प्रबंधन करना चाहिए,
1: यानी कैच द रेन, यही कह रहा है ना।
0: मेरा इशारा इसी ओर था, कैच द रेन, बारिश का पानी जो है उसको एकत्र करें, उसका प्रबंधन करें।
1: इसका सीधा सा अर्थ, जैसे कि अब हम लोग बारिश होती है तो हाथ बढ़ाकर बूंदों को हथेली पर लेते हैं, पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो एक सीधा सा अर्थ ये हुआ। और इसका एक जो गहन अर्थ है वो ये है कि बारिश की इन बूंदों को हम बेकार न जाने दें, बारिश की एक एक बूंद को बचाएं, जहां बारिश हो, जब बारिश हो, उस पानी को संग्रहित करें और जमीन में पहुंचाएं, साथ ही भविष्य के लिए से सुरक्षित रखें।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल संरक्षण की तो बहुत ही संभावनाएं हैं। खेतों में मेढ़बंदी, खेत तालाब, छोटे जलाशय, चेक डैम जैसी संरचनाएं वर्षा के जल को रोकने में उपयोगी साबित हो सकती हैं। खेत में पानी रोकने से मिट्टी में नमी बनी रहती है। घर, स्कूल, सरकारी भवन, पंचायत भवन और अन्य संस्थानों की छतों से वर्षा जल को पाइप के माध्यम से रिचार्ज पिट या फिर संग्रहण टैंक तक पहुंचाया जा सकता है।
0: बहुत सही कहा आपने, और यही कैच द रेन अभियान की भावना है। जल शक्ति अभियान कैच द रेन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस के अवसर पर की गई थी, जिसका उद्देश्य है बारिश के पानी को सहेजने के लिए उपयुक्त संरचनाओं का निर्माण करना और सूखे तालाबों, जलाशयों में पानी पहुंचाकर भूजल के स्तर को सुधारना।
1: तो हम सभी इस अभियान से जुड़े, हर व्यक्ति, हर घर और हर संस्था बारिश की हर संभव बूंद को बचाने का प्रयास करें।
0: हाँ, और याद रखें, जल है तो कल है। जल संरक्षण केवल आज की आवश्यकता नहीं बल्कि आगे आने

0: वाली पीढ़ियों के प्रति भी हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, वो तो बात है एकदम, जो कहा जाए शत प्रतिशत सही। लेकिन संजय जी एक और बात है, हम लोग बातें ही करते रहेंगे या फिर श्रोताओं को कुछ सुनवाएंगे गीत संगीत?
0: सुधा जी, आपकी बातों से लग रहा है कि आप कुछ मनोरंजन
1: बिल्कुल
0: परोसना चाह रही हैं किसान भाइयों के लिए।
1: जानकारी की बातें अच्छी लगती है, लेकिन बीच बीच में एक म्यूजिकल ब्रेक तो बनता है ना।
0: बिल्कुल बनता है, मनोरंजन होगा तो आगे की बातें सुनने में भी रुचि लेंगे हमारे भाई।
1: तो चलिए सुनते हैं, एक कजरी कलाकार है टुक्कू पाठक।

0: वाह, बहुत ही प्यारा कजरी आपने सुनवाया किसान भाइयों को। मुझे उम्मीद है कि वो इसका भरपूर आनंद लिए होंगे। और अब आगे क्या बात बता रही हैं?
1: देखिए, जब मिट्टी पर बारिश की फुहारें पड़ती हैं तो उसकी वो सोंधी सी खुशबू और ये कजरी गीत, उनका
0: वाह
1: मेल जो है, तालमेल, बहुत ही सुकून
0: वाह वाह,
1: पहुंचाता
0: क्या
1: है।
0: बात है,
1: और
0: एकदम गांव पहुंचा दिया
1: हाँ
0: आपने।
1: संजय जी, आज हमने बात भी की कैच द रेन के बारे में और बारिश के जल को संग्रहित करने के बारे में। तो देखिए, आज हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो भी हमें बता रहे हैं कि वर्षा जल का संरक्षण और उपयोग कैसे कर सकते हैं, और विस्तार से वो बता रहे हैं कि किस तरह से इनका हम संग्रहण कर सकते हैं और भविष्य में उसका किस किस तरह से उपयोग कर सकते हैं।
2: जी, ये बहुत ही जरूरी वार्ता है, हमारे किसान भाई इसको जरूर सुनेंगे। सुनते हैं मनीष कुमार से उनकी ये वार्ता।
3: भविष्य में पानी की कमी को पूरा करने और जल को बहने से बचाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों और कृत्रिम डिजाइन संसाधनों के माध्यम से बारिश के पानी को संग्रह और संग्रहित करना वर्षा जल संचयन है। विभिन्न कारणों से जल संचयन की मात्रा प्रभावित होती है, जैसे बारिश को प्राथमिकता, बारिश की मात्रा, बारिश की पानी को संग्रह करने का तरीका और पानी को संग्रह करने के लिए संसाधनों का आकार। कई सारी वजह से वनों की कटाई और परिस्थिति के असंतुलन से भूमि जलस्तर घटता जा रहा है। खास तौर से शहरी क्षेत्रों में लगातार बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण जल आपूर्ति की मांग बढ़ रही है। इसका कारण अत्यधिक भूमिगत जल का इस्तेमाल है, जिससे ये नीचे की ओर जा रहा है। अगर कुछ प्रभावशाली कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में पानी की कमी का संकट बड़े पैमाने पर बढ़ेगा और ये जीवन यापन के लिए भी खतरा साबित हो सकता है। जल संचयन बहुत ही मददगार है, ये विभिन्न जरूरतों को पूरा करता है, जैसे जल स्तर का, जल आपूर्ति में खर्च होने वाले बिजली के बिल को घटाएगा और किसी भी समय सरल जल आपूर्ति उपलब्ध कराएगा जब भी इसकी ज़रूरत होगी। बारिश के पानी का संग्रहण सभी क्षेत्रों के लोगों के लिए जरूरी है। सतह से बारिश के पानी को इकट्ठा करना बहुत ही असरदार और पारंपरिक तकनीक है। छोटे तालाबों, भूमिगत टैंकों, डैम्प, बांध आदि के इस्तेमाल से किया जा रहा है। हालांकि भूमिगत का पुनर्भरण तकनीक संग्रहण एक नया तरीका है। इसे कुआं खोदकर, गड्ढा, खाई, हैंडपंप, कुआं को पुनः चार्ज करके किया जा सकता है। पहले गांवों, कस्बों और नगरों की सीमा पर या कहीं निचली स्तर पर तालाब अवश्य होते थे, जिनमें स्वाभाविक रूप से मानसून की वर्षा का जल एकत्रित हो जाता था। साथ ही अनुपयोगी जल भी तालाब में एकत्रित हो जाते थे, जिसे मछली और मेंढक आदि साफ करते रहते थे। यह जल पूरे गाँव के पशुओं आदि के काम आता था। जरूरी है कि गाँवों, कस्बों और नगरों में छोटे बड़े तालाब बनाकर वर्षा जल का संरक्षण किया जाए। मोहल्ला, नगरों और महानगरों में घरों की नालियों के पानी गड्ढे बनाकर एकत्र किया जा सकता है। घर की छत पर वर्षा जल एकत्र करने के लिए एक या दो टंकी बनाकर उन्हें मजबूती, जाली या फिल्टर करके कपड़े से ढका जा सकता है, जल संचयन कर सकते हैं। जल के संकट को देखते हुए आज समुद्र के खारे जल को पीने योग्य बनाया जा रहा है। बड़ी नदियों की नियमित सफाई बेहद जरूरी है। बड़ी नदियों के जल का शोधन करके पेयजल के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। जंगल कटने पर वाष्पीकरण न होने से वर्षा नहीं हो पा रही है, इसलिए वृक्षारोपण जल संरक्षण में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज की दुनिया में पानी का उपयोग घर, कृषि और औद्योगिक के क्षेत्र में अत्यधिक उपयोग में लाया जाने लगा है। अब ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में भी अत्यधिक बोरवेल स्थापित हो जाने पर भी मिट्टी के अंदर जल स्तर कम होने लगा है और कुछ जगहों पर तो कई बोरवेल बंद भी हो चुके हैं। आज न सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में बोरवेल है बल्कि शहरी क्षेत्रों में कई औद्योगिक में पानी का उपयोग होने के कारण भी पानी की दिक्कत होने लगी है। ऐसे में घरेलू और व्यावसायिक उपयोग के लिए वर्षा जल को संरक्षित करना सबसे आसान और बेहतरीन तरीका माना जा रहा है। ईश्वर की कृपा से प्रतिवर्ष थोड़ी बहुत वर्षा हर क्षेत्र में होती है। वर्षा जल संचयन या रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक ऐसी प्रक्रिया है

जिसमें हम वर्षा के पानी को ज़रूरत की चीज़ों में उपयोग कर सकते हैं। वर्षा के पानी को एक निर्धारित किए गए स्थान पर जमा करके हम वर्षा जल संचयन कर सकते हैं। इसको करने के लिए कई तरीके हैं जिनकी मदद से रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जा सकता है। इस तकनीक में जल को मिट्टी तक पहुंचने से पहले जमा करना ज़रूरी होता है। सतह जल संग्रहण सिस्टम। सतह जल वह पानी होता है जो वर्षा के बाद ज़मीन पर गिर कर धरती के निचले तल में बहकर जाने लगता है। गंदी अस्वस्थ नालियों में जाने से पहले सतह जल को रोकने के तरीके को सतह जल संग्रह कहा जाता है। बड़े बड़े पाइप के माध्यम से वर्षा जल को कुआं, नदी, तालाबों में लगा करके रखा जाता है, जो बाद में पानी की संकट को दूर करता है। छत प्रणाली। इस तरीके से आप छत पर गिरने वाले बारिश के पानी को संचय करके रख सकते हैं। ऐसे में ऊंचाई पर खुले टंकियों का उपयोग भी किया जा सकता है, जिनमें वर्षा के पानी को रोगहित करके नलों के माध्यम से घरों तक पहुँचाया जा सकता है। यह पानी स्वच्छ होता है, जो थोड़ा बहुत ब्लीचिंग पाउडर के इस्तेमाल के बाद पूर्ण तरीके से उपयोग में लाया जा सकता है। बांध। बड़े बड़े बांध के माध्यम से वर्षा के

0: आप छत पर गिरने वाले बारिश के पानी को संचय करके रख सकते हैं। ऐसे में ऊंचाई पर खुले टंकियों का उपयोग भी किया जा सकता है, जिनमें वर्षा के पानी को रोकित करके नलों के माध्यम से घरों तक पहुंचाया जा सकता है। यह पानी स्वच्छ होता है, जो थोड़ा बहुत ब्लीचिंग पाउडर के इस्तेमाल के बाद पूर्ण तरीके से उपयोग में लाया जा सकता है। बांध, बड़े बड़े बांध के माध्यम से वर्षा के पानी को बहुत ही बड़े पैमाने पर रोका जाता है, जिन्हें गर्मी के महीनों में या पानी की कमी होने पर कृषि, बिजली उत्पादन और नालियों के माध्यम से घरेलू उपयोग में भी इस्तेमाल किया जाता है। जल संरक्षण के माध्यम में बांध बहुत उपयोगी साबित हुए, इसलिए भारत में कई बांधों का निर्माण किया गया है, साथ ही नए बांध भी बनाए जा रहे हैं। भूमिगत टैंक, यह भी एक बेहतरीन तरीका है जिसके माध्यम से हम भूमि के अंदर पानी को संरक्षित कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में वर्षा जल को एक भूमिगत गड्ढे में भेज दिया जाता है, जिससे भूमिगत जल की मात्रा बढ़ जाती है। साधारण रूप से भूमि के ऊपरी भाग पर बहने वाला जल सूर्य के ताप से भाप बन जाता है और हम इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, परंतु इस तरीके से हम ज़्यादा पानी को मिट्टी के अंदर बचा कर रख सकते हैं। यह तरीका बहुत ही मददगार साबित होता है, क्योंकि मिट्टी के अंदर का पानी आसानी से नहीं सूखता है और लंबे समय तक पंप के माध्यम से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। जल संग्रहण जलाशय, यह एक साधारण प्रक्रिया है जिसमें बारिश के पानी को तालाबों और छोटे पानी के स्रोतों में जमा किया जाता है। इस तरीके में जमा किए हुए जल को ज़्यादातर कृषि के कार्यों में लगाया जाता है, क्योंकि यह जल दूषित होता है। जल संग्रहण एवं संरक्षण के लाभ, घरेलू काम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी बचा सकते हैं और इस पानी को कपड़े साफ करने, खाना पकाने, घर साफ करने तथा स्नान के काम में भी लाया जा सकता है। बड़े बड़े उद्योग में स्वच्छ पानी के इस्तेमाल में लाकर बर्बाद कर दिया जाता है, ऐसे में वर्षा जल को संचय करके इस्तेमाल में लाना जल सुरक्षित करने का बेहतरीन उपाय है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी की बचत और जल संचय करने के लिए ऊपर दिए गए तरीकों का उपयोग उद्योग कर सकते हैं। आज दुनिया एक आधुनिक टेक्नोलॉजी से जुड़ी दुनिया बन गई है, ऐसे में लोगों की बढ़ती जनसंख्या के कारण आज विश्व के हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी इमारतें का निर्माण हो रहा है। यह बात तो साधारण है कि इन इमारतों के निर्माण के लिए सबसे ज़्यादा पानी का उपयोग हो रहा है, ऐसे में वर्षा जल संचयन के माध्यम से बचाए हुए पानी को इन इमारतों के निर्माण में लगाकर कई प्रतिशत स्वच्छ पानी को हम बचा सकते हैं। वर्षा जल किसानों के लिए सबसे कारगर साबित हुआ है, क्योंकि वर्षा के पानी को बचाकर आज ज़्यादातर किसान गर्मियों के महीनों में बहुत ही आसानी से पानी के संकट को दूर कर पटवन का काम कर सकते हैं और अपना क्रॉप लगा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक पानी का इस्तेमाल करने से स्वच्छ पीने योग्य पानी को हम ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकते हैं। वर्षा के पानी को शौचालय, स्नान करने और बर्तन धोने के काम में भी हम ला सकते हैं। वर्षा जल संग्रहण एवं संरक्षण की कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां हैं, जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग की मदद से जमा किए हुए पानी को इस्तेमाल करने से पहले अच्छे से फिल्टर किया जाना चाहिए, जिससे कि इसमें मौजूद अशुद्धियाँ पानी से अलग हो जाए। वर्षा के पानी को ऐसे बर्तन या पात्रों में रखना चाहिए जो धूप के संपर्क पर आने पर जहरीले तत्व ना बनाते हों। वर्षा जल संचयन द्वारा जमा किए हुए पानी को अच्छे से उबालना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि इसमें मौजूद जहरीले तत्व और बैक्टीरिया नष्ट हो जाएं। ये भारत और दूसरे देशों के पहाड़ी और रेगिस्तान क्षेत्रों में बहुत असरकारी होता है। बड़े और स्वच्छ जल के आकारों को बनाने के द्वारा बरसाती मौसम में अधिक स्वच्छ बारिश के पानी को इकट्ठा किया जा सकता है। इस तरह से हम देखते हैं कि किसान भाई यदि वर्षा जल संग्रहण करते हैं तो वो अपने खेती में भी इसका इस्तेमाल करके और अपनी समय की बचत कर सकते हैं और अपनी लागत को भी कम करके अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं।
1: बारिश के पानी का संरक्षण कर हम इसका खेती और अन्य कार्यों में बेहतर उपयोग कर सकते हैं। बहुत ही उपयोगी वार्ता थी, तो हम इस वार्ता के लिए मनीष कुमार जी को धन्यवाद देते हैं।
2: बात हमारी जब होती है तो हम चाहते हैं कि कुछ ऐसी बातें भी अपने किसान भाई बहनों को बताएं जो उनके बहुत ही काम की हो।
1: जी,
2: अब देखिए, जैसे खेतों की मिट्टी होती है तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि धीरे धीरे कभी पानी की वजह से, हवा की वजह से या फिर कभी कभी तेज बहाव की वजह से जो ऊपर की उपजाऊ मिट्टी होती है वो बह जाती है या उड़ जाती है। तो ये हमारे लिए बहुत ही गंभीर स्थिति होती है, क्योंकि ज़्यादातर जो ऊपरी परत होती है मिट्टी की वही उपजाऊ होती है, सारे उर्वरक वगैरह उसी में होते हैं, पोषक तत्व। तो इसे ही हम मृदा अपरदन या फिर मिट्टी का क्षरण कहते हैं। तो इससे मिट्टी की उर्वरता और फसल उत्पादकता कम हो सकती है। तो खेतों की मिट्टी का क्षरण न हो, इसके लिए कुछ उपाय हम अपना सकते हैं संजय जी?
1: हाँ, बिल्कुल उपाय हैं और इसे अपनाने की आवश्यकता है। जैसे कि ढाल के विपरीत ही जुताई कर।

0: रखनी चाहिए। खेत के चारों ओर मजबूत मेड़ बनाने चाहिए जिसमें वर्षा के जल के साथ मिट्टी का क्षरण न हो सके। खेत के मेड़ पर पेड़ और ढाल वाले स्थान पर घास लगाने से मिट्टी का कटाव कम होता है। खाली खेत को लंबे समय तक खुला नहीं छोड़ना चाहिए बल्कि उसमें हरी खाद और कवर क्रॉप लगा देना चाहिए।
1: और इसके साथ ही जैसे कि पराली या फिर अन्य जो अवशेष होते हैं फसल के, उनको मिट्टी में ही छोड़ दें तो ये जो है सीधे वर्षा की बूंदों और तेज हवा से मिट्टी को बचाती हैं। इसलिए फसल अवशेष को खेत में ही दबाने की सलाह दी जाती है। हवा से होने वाले अपरदन क्षेत्रों में खेत की सीमा पर पेड़ों की कतार या फिर वायु अवरोधक पट्टी भी लगाए जा सकते हैं।
0: हाँ, और मिट्टी की ऊपरी परत जो होती है, अच्छी फसल और बेहतर उत्पादन की आधारशिला, ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। इसमें मौजूद जैविक पदार्थ मिट्टी की संरचना, उर्वरता और उत्पादकता को हमेशा बढ़ाते हैं।
1: और भी ऐसे कई कारक हैं संजय जी जो कि हमारी कृषि को प्रभावित करते हैं, उनमें से एक बहुत बड़ा कारण है क्या? मौसम। तो क्यों ना किसान भाइयों को हम मौसम की जानकारी दे दें।
0: बिल्कुल, भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा भी चलने की संभावना है और हल्की वर्षा भी हो सकती है।
1: अधिकतम तापमान 35 डिग्री से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूर्वा हवा चलने का अनुमान है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 65% रह सकता है। तो ये थी मौसम संबंधी जानकारी और अब विदा लेने का समय हो चला है श्रोताओं से।
0: तो इस अनुरोध के साथ हम विदा लेंगे कि आप इस कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं, कैसा लग रहा है या कुछ और चाहते हैं, कोई विचार मन में है या कोई प्रश्न है तो हमें अवश्य अपने सुझाव और विचार इस पते पर दें।
1: तो फीडबैक के लिए हमारा ईमेल आईडी है airpatna@gmail.com।
0: तो किसानवाणी के अगले अंक में फिर हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे यानी संजय किशोर
1: और सुधा को दें विदा। नमस्कार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच।
6: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि सहकारिता किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार।

अभी आप सुन रहे थे किसान वाणी, आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है 80वें स्वतंत्रता दिवस पर दरभंगा और उसके आसपास के क्षेत्रों में आयोजित समारोहों पर आधारित रेडियो रिपोर्ट।

0: नमस्कार, आकाशवाणी दरभंगा से प्रस्तुत है स्वतंत्रता दिवस पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के प्रायोजक हैं
1: महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा, महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान लहरिया सराय बीएमपी 13 के निकट दरभंगा। नर्सरी से 12वीं तक छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग छात्रावास के साथ पढ़ाई की उत्तम व्यवस्था। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान लहरिया सराय एवं बीएमपी 13 के निकट दरभंगा। मोबाइल नंबर 9060485516, 9060485517।
0: दरभंगा व आसपास के सभी क्षेत्रों में भी स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में झंडोत्तोलन, प्रभात फेरी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। दरभंगा में प्रमुख समारोह पोलो मैदान लहरिया सराय में आयोजित किया गया, जहां जिले के प्रभारी मंत्री सह बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेंद्र ने झंडोत्तोलन किया एवं सशस्त्र बलों की सलामी ली। रिपोर्ट के साथ उपस्थित हैं हमारे प्रतिनिधि सज्जाद अहमद खान।
2: अस्सीवें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दरभंगा में प्रातःकाल से ही हर्षोल्लास का वातावरण है। विभिन्न स्थानों पर स्कूली बच्चों ने प्रभात फेरियां निकालीं। जिले का मुख्य समारोह लहरियासराय स्थित नेहरू स्टेडियम में आयोजित हुआ, जहां तेज खिली धूप और गर्मी में भी लोग काफ़ी उत्साहित नजर आए। राष्ट्रगीत के बाद बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग के मंत्री सह दरभंगा के प्रभारी मंत्री कुमार शैलेंद्र ने ध्वजारोहण किया और फिर राष्ट्रगान गाया गया। इसके पहले मंत्री श्री शैलेंद्र ने परेड का निरीक्षण किया और सशस्त्र गारद की सलामी ली। अपने संबोधन में मंत्री कुमार शैलेंद्र ने सर्वप्रथम दरभंगा वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाइयाँ दीं और शहीदों को नमन किया। उन्होंने मिथिला की ऐतिहासिकता के साथ ही माँ सीता और कवि विद्यापति की भी चर्चा की। वर्तमान में दरभंगा ज़िले में जारी विकास कार्यों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा,
3: आज का दरभंगा अपने गौरवशाली इतिहास के साथ साथ विकास की नई कहानी भी लिख रहा है। मित्रों, आज हम एक ऐसे दरभंगा का निर्माण करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जहां बेहतर सड़कें हो, बेहतर पुल हो, बेहतर शिक्षा हो, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हो, बेहतर परिवहन व्यवस्था हो, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर हो, किसानों की आय बढ़े और महिलाओं का आत्मनिर्भरता मिले और हर गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे। दरभंगा एयरपोर्ट ने इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी को नई गति दी है। दरभंगा एयरपोर्ट का अत्याधुनिक अपना नया टर्मिनल जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। दरभंगा शहर में लगने वाले जाम से निजात पाने के लिए दरभंगा रेलवे स्टेशन से आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे, भाया दवनार चौक, कर्पूरी चौक एवं कर्पूरी चौक से एकमी चौक, भाया लहरिया सराय चौक, लोहिया चौक तक अपग्रेडेशन तथा एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण कार्य 18,68,87,00,000 रुपए से कराई जा रही है।
2: विकास कार्यों को लेकर सरकार की प्राथमिकताओं का जिक्र करते हुए मंत्री श्री कुमार शैलेंद्र,
3: साथियों, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में हमारी नई सरकार की प्राथमिकताओं में रोजगार, आधारभूत, शिक्षा, स्वास्थ्य, निवेश, महिला एवं युवा सशक्तिकरण प्रमुख है। हमारी सरकार ने आपकी समस्याओं और शिकायतों के तुरंत समाधान के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए सहयोग शिविर शुरू किया गया है। महोदय, सबका सम्मान, जीवन आसान के हमारे संकल्प के तहत 19 मई 2026 से हर महीने के पहले और हमारा पहले और तीसरे मंगलवार को पंचायत स्तर पर ये बिहार

0: पंचायत में लगाया जा रहा है सहयोग शिविर। हमारा उद्देश्य साफ है, प्रशासन को आपके दरवाजे तक लाना ताकि आपकी समस्याओं का समाधान आपके ही गांव मोहल्ले में समय पर और पूरी पारदर्शिता के साथ हो सके।
1: शिक्षा क्षेत्र में सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों और सहयोग पोर्टल की चर्चा करते हुए मंत्री श्री शैलेंद्र,
0: हमारी सरकार विद्यार्थी सहयोग पोर्टल का जल्द ही शुभारंभ करेगी। एक नई योजना है, हमारे जो बच्चे हैं, जो टीचर हैं, सॉरी हमारे जो बच्चे विद्यार्थी हैं उनके लिए ये पोर्टल खोला जा रहा है, ये बहुत जल्द ही खोला जाएगा। साथियों, हमारी सरकार का लक्ष्य सिर्फ वादे करना या योजनाएं बनाना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि उसका लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे।
1: मंत्री कुमार शैलेंद्र ने स्वास्थ्य क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की भी चर्चा की।
0: दरभंगा में बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी का अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर शुरू हो गया है। अब दरभंगा सहित पूरे बिहार के मरीजों को गंभीर स्थितियों में बेहतरीन इलाज यहीं मिल सकेगा। न्यूरो सर्जरी विभाग का ओटी और एडवांस्ड आईसीयू भी बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है।
1: इस अवसर पर दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त श्री हिमांशु कुमार राय, दरभंगा के जिलाधिकारी कौशल कुमार, एसएसपी जगुनाथ रेड्डी समेत अनेक अधिकारी मौजूद थे। आकाशवाणी दरभंगा के लिए स्थानीय नेहरू स्टेडियम से असद दाऊद के साथ मैं सज्जाद अहमद खान।
2: इस रिपोर्ट के प्रायोजक हैं
3: महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा, महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान लहरिया सराय बीएमपी 13 के निकट दरभंगा।
2: ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने झंडोत्तोलन किया एवं एनसीसी एवं एनएसएस से गार्ड ऑफ ऑनर लिया। कार्यक्रम का आरंभ वंदे मातरम गान के साथ किया गया, तदुपरांत झंडोत्तोलन एवं जनगणमन का गान किया गया। अपने संबोधन में कुलपति महोदय ने कहा,
4: भारत जो नौजवानों की धरती है और नौजवान अगर नई शिक्षा नीति के तहत अपने आप को स्किल डेवलपमेंट में आगे ले जाएंगे तो हम एक ऐसे मैन पावर का सृजन करने में सफल होंगे जिससे सामने दुनिया की सभी अर्थव्यवस्था छोटी रहेगी। अब हम उसी एस्पेक्ट्स में सोचते हैं कि हमने विश्वविद्यालय में क्या क्या स्टेप लिया, पिछले 2.5 साल से क्या क्या काम हुआ। तो आप सभी को ये मालूम है कि विश्वविद्यालय पिछले 2.5 साल से काफी पारदर्शिता को बनाए रखकर आगे बढ़ रहा है। विश्वविद्यालय मेरू के अम्ब्रेला में है, मेरू के तहत कई प्रोग्रेसिव और डेवलपमेंट का काम हुआ है, एकेडमिक्स का काम आगे बढ़ रहा है, कई विभागों में नई नई स्किल डेवलपमेंट के कोर्स चल रहे हैं और इंडियन नॉलेज सिस्टम को भी अगर ध्यान में रखा जाए तो हमारे पाठ्यक्रम में इंडियन नॉलेज सिस्टम को देकर हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारा जो अतीत था, इतिहास है, वो आत्मनिर्भर और बड़ा ही गौरवशाली। इसलिए भारत के युवाओं से मेरा ये आह्वान है और हमारे विशेषकर स्टूडेंट से जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, आप NEP 2020 के तहत हर एक एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखकर इस अवसर का ध्यान में लेते हुए पढ़ाई के साथ साथ अपना स्किल डेवलपमेंट करें। और अभी तो बिहार में आप अव्वल हैं, वो दिन दूर नहीं, धीरे धीरे आप देश के 10 स्टेट यूनिवर्सिटीज में आप आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए हैं। आप खुश रहें, आगे बढ़ें और नए नए आयामों को चुने। धन्यवाद।
2: इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कई पदाधिकारी के संग विविध विभाग के शिक्षक एवं छात्र छात्रा उपस्थित थे। इस रिपोर्ट के प्रायोजक हैं
3: महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा, महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान लहरिया सराय बीएमपी 13 के निकट दरभंगा। नर्सरी से 12वीं तक छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग छात्रावास के साथ पढ़ाई की उत्तम व्यवस्था। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान लहरिया सराय एवं बीएमपी 13 के निकट दरभंगा। मोबाइल नंबर 9060485516, 9060485517।
2: कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे ने ध्वजारोहण किया, साथ ही महाराज कामेश्वर सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर से रिपोर्ट के संग आशीष कुमार सिंह।
5: कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रांगण में यहां के कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास

0: अस्पांडे ने ध्वजारोहण किया। इससे पूर्व इन्होंने महाराज कामेश्वर सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और अपने संबोधन में इन्होंने कहा कि
1: आज इस पवित्र त्रिरंग ध्वजस्य अधः वयं सर्वेपि समवेताः अस्माकं देशस्य स्वातंत्र दिनोत्सवं सम्मानयितुं सर्वेभ्यः भारतीय स्वतंत्रतायाः अभिनंदनानि। अशीतितमोऽयं स्वतंत्रता दिवसः। अस्मिन् दिवसे अस्माभिः अस्य ध्वजोत्तोलनस्य कृते अस्य स्वतंत्रतायाः कृते ये सर्वेपि आत्मानं आहूतवन्तः आत्मनः बलिदानं दत्तवन्तः ते सर्वेपि स्वतंत्रता वीराः स्मर्तव्याः। एवमेव अस्माकं स्वतंत्रतायाः रक्षणाय अस्मिन्नपि अवसरे सीमा प्रहरिषु एतावत् अस्माकं सैनिकाः सन्ति येषां साहसेन अस्माकं देशः एतावत् सुरक्षितः अस्ति। ते सर्वेपि अस्मभिः स्मर्तव्याः अभिनन्दनीयाः। पुनश्च एतावत् वर्षाणि महान्तः स्वतंत्रता प्राप्ति अनन्तरम् अस्य देशस्य विकासार्थं ये सर्वे प्रयतितवन्तः तान् सर्वान् अपि स्मृत्वा तेषां प्रेरणया अस्माभिः अग्रे गन्तव्यम्। यः स्वतंत्रता दिवस इस दिन हम सबको स्मरण करने के लिए है कि किस तरह से आज हम खुशी खुशी इस त्रिरंगे ध्वज के नीचे उपस्थित होकर उत्साहपूर्वक अपना इस दिवस को मना रहे हैं। और स्वतंत्रता आंदोलन जब चला तो पहला स्वतंत्रता आंदोलन 1857 में शुरू होकर हमको प्राप्त हुआ 1947 में। 90 वर्ष का संघर्ष था वो, तो 90 वर्ष भी अभी पूरा नहीं हुआ। जितना संघर्ष किया गया उतना भी अभी पूरा नहीं हुआ है और अभी भी हमारे सामने कई तरह की विखंडन की चुनौतियाँ आती हैं। उन चुनौतियों को सामने करने के लिए हमको तैयार रहना है। आज जो सीमाओं पर हमारी रक्षा कर रहे हैं उनके कारण यह देश सुरक्षित बचा है। तो वह पहली पीढ़ी पर, पहले सोपान पर जो खड़े हैं, तो उनके पीछे अगर हम लोग अपना कर्तव्य ठीक से नहीं पालन करें तो किस मनोबल से वो देश की रक्षा करेंगे, किसके लिए रक्षा करें। तो यह आवश्यक है कि अगर सीमा पर लोग सैनिक हैं तो हम लोग अपने अपने स्थान पर सैनिक की तरह अपने कर्तव्यों में डटे रहें।
0: कामेश्वर सिंह, दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रांगण से आकाशवाणी के लिए मैं आशीष सिंह।
2: इस रिपोर्ट के प्रायोजक हैं
3: महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा, महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान लहरिया सराय, BMP 13 के निकट दरभंगा।
2: नगर निगम दरभंगा में मेयर अंजुम आरा ने झंडोत्तोलन किया। रिपोर्ट के साथ हैं गोपाल कृष्ण श्रीवास्तव।
4: आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर नगर निगम दरभंगा के प्रांगण में दरभंगा की महापौर अंजुम आरा ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा,
5: आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यहाँ उपस्थित नगर निगम के सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारीगण तथा मेरे प्यारे दरभंगा वासियों, आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन हम सभी भारतीयों के लिए गौरव और उत्साह का दिन है। 15 अगस्त हमें उन महान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और संघर्ष और बलिदान की याद दिलाता है जिनके कारण हम स्वतंत्र भारत में अपने अधिकारों और सम्मान के साथ जीवन जी रहे हैं। आज हम उन सभी वीर सपूतों को श्रद्धा पूर्वक नमन करते हैं जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया। स्वतंत्रता केवल अधिकारों का नाम नहीं है बल्कि कर्तव्य और जिम्मेदारियों का भी नाम है। आज हमारी दायित्व है कि हम अपने शहर और देश को स्वच्छ, सुंदर, सुरक्षित और विकसित बनाने में अपना योगदान दे। दरभंगा नगर निगम का संकल्प है कि हमारा शहर आधुनिक सुविधाओं से युक्त, स्वच्छ

0: स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, नालों की सफाई, जल जमाव की समस्या का समाधान, पेयजल व्यवस्था, सड़क एवं प्रकाश व्यवस्था, सार्वजनिक स्थलों के विकास तथा शहर के सौंदर्यीकरण जैसे कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। शहर वासियों को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने के लिए सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के तहत सभी वार्डों में डोर टू डोर कचरे का उठाव किया जा रहा है तथा कचरा प्रोसेसिंग हेतु MRF एवं कंपोस्ट प्लांट का निर्माण कराया जा रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 और 27 में बेहतर रैंक प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री स्वच्छ निधि योजना, इस योजना के अंतर्गत फुटपाथी विक्रेता जो दरभंगा नगर निगम के क्षेत्र में आते हैं उन्हें अभी तक 87,86 लोगों को इस योजना के तहत जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत 4,000 से ऊपर महिलाओं को 10,000 रुपया व्यवसाय हेतु दिया गया है। दरभंगा इस अवसर पर मैं नगर निगम के सभी कर्मचारियों को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहती हूँ।
1: नगर निगम दरभंगा से आकाशवाणी दरभंगा के लिए मैं गोपाल कृष्ण श्रीवास्तव।
2: इस रिपोर्ट के प्रायोजक हैं
3: महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा, महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान लहरिया सराय BMP 13 के निकट दरभंगा।
2: दरभंगा BSEP 13 से रिपोर्ट के साथ अमलनाथ ठाकुर।
4: 80वां स्वाधीनता दिवस BSEP 13 दरभंगा में हर्ष और उल्लास के वातावरण में मनाया गया। इस अवसर पर समादेष्टा रवीश कुमार ने बिहार सैन्य पुलिस बल टुकड़ियों की सलामी ली और ध्वजारोहण किया। जवानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा,
5: आज के इस पावन अवसर पर जब हम और हमारा देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, मैं यहाँ उपस्थित सभी पदाधिकारियों, जवानों, आगंतुक बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं सबको आज के इस ऐतिहासिक दिन की हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ। आज हम सब यहाँ अपने देश की आज़ादी की वर्षगांठ मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह तिरंगा एक कपड़ा नहीं है, एक हमारे राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक है। हम सब जानते हैं कि इसका एक ऐतिहासिक महत्व रहा है। यह हमें देश की एकता एवं अखंडता का भी स्मरण करवाता है। हमें यह दिन यह याद दिलाता है कि काफ़ी संघर्षों के बाद हमने इस आज़ादी को पाया है। इस आज़ादी को अक्षुण रखने में हर देशवासी के साथ साथ जो हमारा BSF है, इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। हमने देश की आंतरिक सुरक्षा के समय के निर्वहन में जो भी हमें दायित्व मिलते हैं उसका हमने अच्छे से निर्वहन किया है। विगत एक वर्ष में चाहे वह राष्ट्रीय चुनाव का समय हो या किसी भी विधि व्यवस्था में हमारे जवान जो भी इनको कर्तव्य दिया गया इसमें खड़े उतरे हैं, इसके लिए मैं सबका साधुवाद करता हूँ। हमारे लिए आज यह विशेष गौरव का विषय है कि बिहार सैन्य पुलिस से शुरू होकर आज हम लोग बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल के रूप में जाने जाते हैं। राज्य की आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था का संधारण एवं विशेष दायित्वों का निर्वहन हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जो हमारी वाहिनी है इसको सबसे पहले बिहार में दायित्व दिया गया था दरभंगा एयरपोर्ट की सुरक्षा का, जिसको हम लोगों ने काफ़ी दिनों तक बहुत अच्छे से निभाया। इसके लिए मैं सबको बधाई देता हूँ। आज के इस पावन अवसर पर मैं अपने वाहिनी के उन सभी जवानों और कर्मियों को ही बधाई देना चाहूँगा जो मुख्यालय से

0: हमारी जो 7 कंपनियां हैं वहां तैनात होकर लाख जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियां हैं उनका सामना करते हुए अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा एवं बहादुरी के साथ निभा रहे हैं। आइए आज पुनः हम संकल्प लें कि हमें जो भी नई जिम्मेदारी मिलेगी उसको हम उसी कर्तव्य भावना से पूरा करेंगे जैसा आज तक करते आए हैं, यहाँ तक उससे भी अच्छे से करेंगे। हमारी वाहिनी को एक और जिम्मेवारी मिली है अपने जवानों को प्रशिक्षित करने की। हमने पूर्व में भी ऐसा किया है और 17 अगस्त से जस्ट 2 दिन बाद से फिर हमारा प्रशिक्षण चालू होने जा रहा है। एक बार फिर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना।
1: इस अवसर पर कई गणमान्य अतिथि और बच्चे उपस्थित थे। आकाशवाणी दरभंगा के लिए BSAP 13 से मैं अमलनाथ ठाकुर।
2: टूट के प्रायोजक हैं
3: महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा, महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान लहरिया सराय BMP 13 के निकट दरभंगा। नर्सरी से 12वीं तक छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग छात्रावास के साथ पढ़ाई की उत्तम व्यवस्था। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान लहरिया सराय एवं BMP 13 के निकट दरभंगा। मोबाइल नंबर 9060485516, 9060485517।
2: दरभंगा केंद्रीय विद्यालय में प्राचार्य ऋषि रमण के द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वायुसेना के अधिकारीगण एवं छात्र छात्रा उपस्थित रहे। विशेष रिपोर्ट के संग उपस्थित हैं रविंद्रनाथ मिश्र।
4: दरभंगा के वायुसेना परिसर में अवस्थित केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 में ध्वजारोहण प्राचार्य ऋषि रमण ने किया। इस अवसर पर उपस्थित कर्मचारियों, छात्रों और जन समूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा,
5: और इस विद्यालय परिसर में उपस्थित हमारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे, सम्मानित अभिभावकगण, मीडिया बंधु, हमारे विद्यालय के शिक्षक और अन्य कर्मचारीगण, प्यारे बच्चों, आज हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं। हमने वो दौर नहीं देखा है, हम उस पीढ़ी के नहीं है, लेकिन ये जो आजादी मिली है ये इतनी आसानी से नहीं मिली है। हजारों और लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानियां, अपनी शहादतें दी हैं और तब जाकर ये जो आजाद भारत में हम सांस ले पा रहे हैं वो हमें प्राप्त हुआ है। तो आज सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम अपने उन तमाम शहीदों को, बलिदानियों को, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान किया इस देश की आजादी प्राप्त करने के लिए, हम इस अवसर पर उनका नमन करते हैं, उनको स्मरण करते हैं और ये प्रण भी लेते हैं कि ये जो आजादी हमें मिली है ये अक्षुण्ण बनाए रखने की जवाबदेही हमारी है और हम इसे बनाए रखेंगे। आज के जो हमारे बच्चे हमारे सामने बैठे हैं, आप कल इस देश के युवा हैं और आपके कंधों पर इस देश का भविष्य है। आजादी का मतलब ये है कि हमें जो काम दिया गया है उस काम को पूरी ईमानदारी के साथ अगर हम कर रहे हैं वही देश सेवा है, वही देश प्रेम है। तो प्यारे बच्चों, आपके पास जो अभी सबसे जरूरी काम है वो है आपकी पढ़ाई। खूब मन से पढ़िए और अपने आप को इस काबिल बनाइए कि आने वाले समय में इस देश के विकास में आप अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके और इस देश के विकास में आप अपना योगदान दे सके। उन सभी शहीदों का, उन सभी सैनिकों का जो आज भी इस देश की आजादी के लिए बॉर्डर पर दिन और रात इस भावना के साथ कि जब जरूरत पड़ेगी इस देश की आजादी के लिए हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे वो खड़े रहते हैं, हम उनको भी नमन करते हैं, स्मरण करते हैं। तो एक बार पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। भारत माता की जय, वंदे मातरम।
4: वायुसेना परिसर स्थित केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 से आकाशवाणी दरभंगा के लिए मैं रविंद्रनाथ मिश्र।
2: इस रिपोर्ट के प्रायोजक हैं
3: महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा, महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान लहरिया सराय BMP 13 के निकट दरभंगा। नर्सरी से 12वीं तक छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग छात्रावास के साथ पढ़ाई की उत्तम व्यवस्था। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान लहरिया सराय एवं BMP 13 के निकट दरभंगा। मोबाइल नंबर 9060485516, 9060485517।
2: महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान में स्वाधीनता दिवस समारोह हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अवकाश प्राप्त अधिकारी विवेकानंद झा ने झंडोत्तोलन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा,
6: हम ऐसे सद्भाव से रहे कि हमारा समाज एक बहुत ही उत्कृष्ट कोटि का ऐसा समाज बने जिस समाज में कोई भेदभाव नहीं हो, असमानता नहीं हो। शुरू होती है वो क्लास

0: वो वर्ग वो लेसन तो वो इसी विद्यालय से शुरू होता है और वो इस उस विद्यालय में आप आ जाए हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा है न चौरहार जम न राजहार जम न भातृभाज्यम न भारकारी व्यय कृते वर्धते नित्यम विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। जो पढ़ने आए हैं वो इसलिए महान है, इसलिए सबसे बड़ा है, क्यों? उसको चोर नहीं ले जाएगा, आपके भैयारी के बीच में बंटवारा नहीं होगा। राजा आपसे वो जो आपका ज्ञान आपका बुद्धि आपका जो वो प्रतिभा उसको नहीं छीन सकता है। और ये एक ऐसा धन है कि जितने खर्चा कीजिएगा उतने बढ़ेगा। व्यय कृते वर्धते नित्यम, जितना खर्चा करो उतने बढ़ेगा। और आप कितने भी बड़े विद्वान होंगे तो आपका माथा भारी नहीं होगा। जो एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे उनको, वो बहुत बड़े विद्वान थे, तो वो सामान्य ही जैसे हम लोगों का जैसा माता है हम लोग जैसे रहते थे वैसे ही रहते थे। तो ज्यादा समय हम आपका नहीं लेंगे। और सीखना जो है आदमी को मरते दम तक चाहिए, और जिसको ये ललक है कि हम कुछ सीखें, तो आप अगर सीखने का आप में प्रवृत्ति जाग जाए टू लर्न, देखो पढ़ के रट लेना वो तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो कैसे 2+2 हुआ 4 इस बात को जान करके जब तुम उसका सॉल्व करोगे देन तब का अर्थ आप समझ पाइएगा। तो आप सारे लोग इस देश के बुनियाद हैं, तो आप ऐसा करें जो आपको देख करके दूसरा लोग, दूसरे जो आपके लोग हैं जो हमारे देश के लिए, हमारे इस दरभंगा शहर के लिए आप एक उदाहरण बने। हम आप सभी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं।
1: अपने विचारों के साथ महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान की प्राचार्य श्रावणी शिखा।
2: आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, सम्मानित अभिभावकगण, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस पावन अवसर पर सर्वप्रथम मैं अपने मुख्य अतिथि महोदय का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर हमारे स्वतंत्रता दिवस समारोह की शोभा बढ़ाई और हम सभी का उत्साह वर्धन किया। मैं विद्यालय के चेयरमैन महोदय, प्रबंधन समिति, सभी शिक्षकगण एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारियों का भी धन्यवाद करती हूँ जिनके अथक प्रयास और सहयोग से आज का कार्यक्रम सफलता पूर्वक संपन्न हुआ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों के माध्यम से देशभक्ति, अनुशासन और राष्ट्र प्रेम की भावना को जीवंत कर दिया। आप सभी को भी मेरी हार्दिक बधाई। अंत में मैं सभी अभिभावकों एवं उपस्थित अतिथियों का भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने अपना समय देकर हमारा उत्साह बढ़ाया। आइए सभी मिलकर अपने देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए सदैव अपना योगदान देने का संकल्प लें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: इसी के संग स्वतंत्रता दिवस पर आधारित यह विशेष रेडियो रिपोर्ट संपन्न होती है। इस रिपोर्ट के संकलनकर्ता थे सज्जाद अहमद खान, आशीष सिंह, गोपाल कृष्ण श्रीवास्तव, अमलनाथ ठाकुर, रविन्द्रनाथ मिश्रा एवं सागर कुमार सिंह। संयोजक थे अमित कुमार, प्रस्तुतकर्ता मिथेश कुमार मिश्रा, संपादन एवं स्वर सहयोग सागर कुमार सिंह।
3: अभी आप सुन रहे थे 80वें स्वतंत्रता दिवस पर दरभंगा और उसके आसपास के क्षेत्रों में आयोजित समारोहों पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, आप सुन रहे हैं हमारी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रम। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 6 बजने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्र आज 80

0: सीमा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन हुआ। श्री मोदी ने इस वर्ष के आयोजन में 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में करोड़ों देशवासियों के संकल्प, समर्पण और हर संभव प्रयास की बदौलत देश ने नई ऊंचाइयों को छुआ है।
1: पिछले 12 वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना, खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ा, आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा, मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा। आधुनिक युग को देकर के भी, डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी हमने अपना परचम लहराया। इंटरनेट यूजर करीब 4 गुना बढ़े, पेटेंट ग्रांट होने की संख्या 4 गुना बढ़ी, डिजिटल ट्रांजेक्शन 100 गुना बढ़े।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन अपतटीय क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के काम की अनुमति नहीं थी, सरकार ने उनमें से 99% को खोल दिया है, जहां अब समुद्र के भीतर नए संसाधनों और भंडारों की खोज की जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है।
1: हमने पिछले दिनों AI इम्पैक्ट समिट किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि गांवों, शहरों और स्कूलों में 15 वर्ष तक के मेधावी बच्चों की पहचान के लिए प्रतिभा खोज अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग देने की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। महाराष्ट्र में स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों को संबोधित करते हुए किसानों, श्रमिकों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। मेघालय के राज्यपाल CH विजय शंकर ने शिलांग स्थित लोकभवन में सरकार स्वतंत्रता दिवस पर पारंपरिक एट होम समारोह का आयोजन किया। विश्व नेताओं और विभिन्न देशों के राजनयिक मिशनों ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत को शुभकामनाएं दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत और अमेरिका के बीच मजबूत होती रणनीतिक साझेदारी का उल्लेख किया। लातविया ने भारत की निरंतर प्रगति, एकता और समृद्धि की कामना की। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने कहा कि आजादी के 8 दशक भारत की आकांक्षाओं, दृढ़ता और अटूट भावना को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार व्यक्त किया। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की शुभकामनाओं के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच बहुआयामी तथा सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों पक्ष मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इंडोनेशिया में फ्लोरेस द्वीप के तट के पास आज आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 38 हो गई है। बचाव दल प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान चला रहे हैं। दूरसंचार विभाग पुणे में 17 से 21 अगस्त तक ब्रिक्स सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT ट्रैक का आयोजन करेगा। इस वर्ष का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और बदलाव। कार्यक्रम की शुरुआत 7वीं ब्रिक्स ICT कार्य समूह की बैठक से होगी। 20 अगस्त को भारत डिजिटल ब्रिक्स फोरम और एक्सपो की मेजबानी करेगा। और खेलों में गोल में श्रीलंका के साथ 2 मैचों की क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक आज भारत ने 2 विकेट पर 288 रन बना लिए हैं। उधर नीदरलैंड्स के एम्स्टलविन में FIH हॉकी विश्व कप के ग्रुप डी के मैच में भारत और वेल्स के बीच मुकाबला जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है।

आप सुन रहे हैं हमारी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रम। अब श्रोताओं, आपको जानकारी दे दें आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। अब से कुछ देर बाद यानी संध्या 6:10 से आप सुनेंगे विद्यापति गीतों का हमारा कार्यक्रम। इसके तुरंत बाद संध्या 6:25 पर आप सुनेंगे मैथिली संवाद। सांध्यकालीन दैनिक कार्यक्रम गांव घर आप सुनेंगे संध्या 6:30 से।

प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान आप सुनेंगे संध्या 6:40 से। शाम 7 बजे आप सुनेंगे बिहार प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी का स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश की जनता के नाम संदेश। रात 8:15 पर आप सुनेंगे राज्यभर में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह पर आधारित विशेष रेडियो रिपोर्ट।

रात 9:30 पर आप सुनेंगे लाल किले पर आयोजित ध्वजारोहण समारोह में भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को किए गए संबोधन का मैथिली अनुवाद। समय याद रखें आज रात 9:30 से। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में।

0: कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। श्रोताओं, सिरदर्द एक सामान्य समस्या है, लेकिन कई बार इसके लक्षण असामान्य, अत्यंत कष्टप्रद और घातक भी हो सकते हैं। सिरदर्द, कारण, लक्षण और इलाज, यही है आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगले अंक का विषय। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर भुवन जी झा, विभागाध्यक्ष, न्यूरो सर्जरी विभाग, DMCH दरभंगा। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़ने के लिए फोन नंबर होंगे 9430029353। समय याद रखें, रविवार 16 अगस्त 2026 दिन के 11 बजे। सूचना समाप्त हुई।
1: इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद

0: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मन्नापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान,
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
0: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मन्नापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान,
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
4: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, आइए सुनते हैं विद्यापति गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: सांप काटे तो समय न गवाएं, अस्पताल

0: 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
0: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
2: नमस्कार, मैं हूँ अमिताभ बच्चन। आप सभी से निवेदन मैं करना चाहता हूँ कि देखिए, सांप के काटने को हल्के में आप ना लें। क्या आप जानते हैं कि हर साल हमारे देश में सांप के काटने से 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी जो है वो गंवा देते हैं। तो सतर्क रहें और पीड़ित को तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाएं। याद रखें, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार। धन्यवाद।
3: ये जानकारी चिकित्सीय सलाह नहीं है, कृपया किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, चिंता या प्रश्न के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। आप सभी से निवेदन मैं करना चाहता हूं कि देखिए, सांप के काटने को हल्के में आप ना लें। क्या आप जानते हैं कि हर साल हमारे देश में सांप के काटने से 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी जो है वो गंवा देते हैं। तो सतर्क रहें और पीड़ित को तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाएं। याद रखें, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार। धन्यवाद।
3: ये जानकारी चिकित्सीय सलाह नहीं है, कृपया किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, चिंता या प्रश्न के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, आकाशवाणी दरभंगा FM रेनबो पटना सँ प्रस्तुत अछि संवाद। संवादक संग हम छी प्रियंका मिश्र। राष्ट्र आइ 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहल अछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आइ ऐतिहासिक लाल किलाक प्राचीर पर ध्वजारोहण कयलनि। श्री मोदी स्वाधीनता दिवसक शुभकामना दैत कहलनि जे आइ सभक हृदय वन्दे मातरमक गायन सँ गुंजयमान भऽ रहल अछि। प्रधानमंत्री कहलनि जे पिछला 12 बरख मे करोड़ों देशवासीक संकल्प, समर्पण आ हरसंभव प्रयासक बदौलत देश नव ऊंचाई के छूलक अछि। ओ कहलनि जे पहिने भारत 5 सबसँ कमजोर अर्थव्यवस्था वाला देश सभ मे गिनल जाइत छल, मुदा अखुनका भारत दुनियाक सबसँ तीव्र गति सँ विकसित होइत अर्थव्यवस्था अछि। प्रधानमंत्री कहलनि जे AI शिखर सम्मेलनक आयोजन सँ भारत विश्व के अपन ताकत देखौलक अछि। ओ कहलनि जे सरकार मध्यम वर्गक परिवारक बच्चाक लेल

0: फ्री ऑनलाइन कोचिंग के व्यवस्था कऽ रहल अछि। ओ कहलनि जे जाहि अपतटीय क्षेत्र सभ मे कोनो प्रकारक काजक अनुमति नहि छल, सरकार ओहिमे 99% काज के खोलि देलक, जतय अखनहुँ समुद्रक भीतर नव संसाधन सभ आ भंडार सभक खोज कयल जा रहल अछि। प्रधानमंत्री कहलनि जे अगिला 7-8 बरख मे लगभग 8 सेमीकंडक्टर संयंत्र काज करब शुरू कऽ देत। स्वतंत्रता दिवस पर पटनाक ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित मुख्य राजकीय समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ध्वजारोहण कयलनि आ परेडक सलामी लेलनि। एहि अवसर पर मुख्यमंत्री प्रतियोगी परीक्षा सभक निगरानी आ पारदर्शिता सुनिश्चित करबाक लेल पटना उच्च न्यायालयक एकटा न्यायाधीशक अध्यक्षता मे उच्च स्तरीय समितिक गठनक घोषणा सेहो कयलनि। मुख्यमंत्री श्री चौधरी कहलनि जे राज्य सभक विद्यालय आ महाविद्यालय सभ मे पढ़यवाली छात्रा सभक सुरक्षा लेल पुलिस दीदीक तैनाती कयल जायत। एकर शुरुआत रक्षाबंधनक दिन सँ होयत। ओ कहलनि जे 17 अगस्त सँ विद्यार्थी पोर्टलक शुरुआत कयल जायत। एहि पोर्टलक माध्यम सँ छात्र छात्रा सभ अपन शिकायत दर्ज करा सकताह, जकर निवारण 30 दिनक भीतर कयल जायत। श्री चौधरी कहलनि जे मेडिकल आ इंजीनियरिंग के तैयारी करय वाला विद्यार्थी सभक लेल ऑनलाइन पढ़ाई व्यवस्था शुरू कयल गेल अछि। मुख्यमंत्री कहलनि जे आब सभ जिला अस्पताल मे 36 तरहक ऑपरेशन होयत आ मरीजक रेफर भेला पर सिविल सर्जनक खिलाफ कार्रवाई कयल जायत। हमर संवाददाता जनौलनि जे ध्वजारोहण सँ पहिने मुख्यमंत्री परेडक सलामी लेलनि। परेड मे बिहार पुलिस, CRPF, ITBP, BSP, होमगार्ड, NCC आ भारत स्कॉट्स एंड गार्ड्सक के जवान सभ भाग लेलनि। एहि अवसर पर शिक्षा, सहकारिता, पर्यटन आ ग्रामीण विकास समेत 13 विभागक दिस सँ झांकी सभ सेहो निकालल गेल। प्रदेश भरि मे स्वतंत्रता दिवस समारोह उल्लासपूर्वक मनाओल गेल। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त अता हसनैन राजभवन मे तिरंगा फहरौलनि। विधानसभा परिसर मे विधानसभा अध्यक्ष डॉ प्रेम कुमार, विधान परिषद मे सभापति अवधेश नारायण सिंह आ पटना उच्च न्यायालय मे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुधीर सिंह झंडारोहण कयलनि। आकाशवाणी पटनाक प्रांगण मे उपमहानिदेशक सह कार्यालय प्रमुख ब्रजेश कुमार तिरंगा फहरौलनि। भाजपा, जदयू, राजद, कांग्रेस, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आ वामपंथी दल समेत कतेको राजनैतिक दलक कार्यालय सभ मे सेहो एहि अवसर पर ध्वजारोहणक कार्यक्रम आयोजित कयल गेल। जिला मुख्यालय सभ मे हमर संवाददाता सभ खबर देलनि जे प्रभारी मंत्री सभ ध्वजारोहण कयलनि। दरभंगा मे प्रभारी मंत्री कुमार शैलेन्द्र, मधुबनी मे लेसी सिंह, मधेपुरा मे शीला मंडल, कटिहार मे प्रमोद कुमार, अररिया मे रामचंद्र प्रसाद आ सीतामढ़ी मे श्रेयसी सिंह ध्वजारोहण कयलनि। स्कूल, कॉलेज, सरकारी कार्यालय आ निजी संस्थान सभ मे सेहो तिरंगा फहराओल गेल। स्वतंत्रता दिवसक अवसर पर प्रदेश मे आइ अभियान बसेराक दोसर चरणक अंतर्गत 30,000 भूमिहीन परिवार सभक बीच बास गीत पर्चाक वितरण कयल गेल। एकर अंतर्गत जिला मुख्यालय सभ मे शिविर लगा कऽ योग्य परिवार सभक बीच 3-3 डिसमिल जमीनक भूमि बंदोबस्ती प्रमाण पत्र वितरण कयल गेल। राजस्व आ भूमि सुधार मंत्री डॉ दिलीप जायसवाल जनौलनि जे लाभुक सभकेँ डिजिटल रूप मे बासगीतक पर्चा उपलब्ध कराओल जायत। एहि संग आकाशवाणी दरभंगा आ FM रेनबो पटना सँ प्रसारित संवादक ई अंक समाप्त भेल।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र। प्रस्तुत है सांध्यकालीन दैनिक कार्यक्रम गाम घर।

0: कार्यक्रम गाम घरक अंतर्गत झरोखा सुनयवला सब श्रोतागण के मिहिर कुमार झा के नमस्कार। श्रोतागण, आजुक स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने सबके स्वागत, अभिनंदन, शुभकामना। आई अपना सबके लेल बड़ हरखक दिन अछि। अपना सब सब बरख 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस खूब हर्षोल्लास, उत्साह, आनंद से सब बरख मनबैत छी। आइयो खूब हर्षित भ के सब केओ अपन अपन घर आ कार्यालय में भारतक जे आन बान शानक प्रतीक अपन सबके देशक तिरंगा झंडा अछि, सब केओ फहरेलहुँ। श्रोतागण, अपना सबके बुझल अछि जे सन 1947 में आजुक दिन अर्थात 15 अगस्त के ब्रिटिश शासन सँ आज़ादी भेटल छल। 1947 ईस्वी से आइ धरि अर्थात 2026 ईस्वी तक आजुक दिन अपना सब ई स्वतंत्रता दिवस जे मनेलहुँ यऽ, ओ 80वां स्वतंत्रता दिवस अपना सब खूब उत्साह से मनेलहुँ यऽ। श्रोता लोकनि, अपना सब जनैत छी जे 15 अगस्त 1947 के मध्य रात के देश ब्रिटिश साम्राज्यक चंगुल से आज़ाद भेल छल आ दिल्ली लाल किला पर पहिल बेर जवाहरलाल नेहरू जे देशक भारतक तिरंगा झंडा फहरेने छला। एहि दिन से आइ धरि भारतक निर्मतमान प्रधानमंत्री लाल किला से भारतक गौरवमय तिरंगा फहरबैत आबि रहल छथि। आजुक दिन सम्पूर्ण देश में उत्सव के माहौल अछि। श्रोतागण, आजुक दिन अर्थात 15 अगस्त के भारतक तिरंगा झंडा फहरबैक समारोह, पैरेड और सांस्कृतिक आयोजन संग संग पूरा भारत में सब केओ राष्ट्रीय ध्वज के स्टिकर अपन कपड़ा पर, अपन वाहन पर एहि तरह जतय ततय लगबैत छी। संगे राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान से सम्पूर्ण वातावरण देशभक्तिमय गीत से गुंजायमान रहैत अछि। झंडा फहरेलाक बाद सब केओ मिठाई बाँटैत छी आ खाइतो छी। श्रोता लोकनि, अपना सबके बुझल होयत जे 1947 ईस्वी के आजुक दिन अर्थात 15 अगस्त के तकरीबन 200 वर्षक बाद ब्रिटिश शासन से मुक्ति भेटल छल। श्रोतागण, समयानुकूल और गप करब, तब अपना सब एक संदेश सुनै छी।
1: चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का, हर सपने में है भारत की नई तस्वीर। इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं। SBI, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। आप सभी से निवेदन में करना चाहता हूँ कि देखिए, सांप के काटने को हल्के में आप ना ले। क्या आप जानते हैं कि हर साल हमारे देश में सांप के काटने से 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी जो है वो गंवा देते हैं। तो सतर्क रहें और पीड़ित को तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाएं। याद रखें, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार। धन्यवाद।
3: ये जानकारी चिकित्सीय सलाह नहीं है। कृपया किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, चिंता या प्रश्न के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
1: चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का, हर सपने में है भारत की नई तस्वीर। इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं। SBI, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। आप सभी से निवेदन में करना चाहता हूँ कि देखिए, सांप के काटने को हल्के में आप ना ले। क्या आप जानते हैं कि हर साल हमारे देश में सांप के काटने से 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी जो है वो गंवा देते हैं। तो सतर्क रहें और पीड़ित को तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाएं। याद रखें, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार। धन्यवाद।
3: ये जानकारी चिकित्सीय सलाह नहीं है। कृपया किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, चिंता या प्रश्न के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
1: चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का, हर सपने में है भारत की नई तस्वीर। इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं। SBI, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। आप सभी से निवेदन में करना चाहता हूँ कि देखिए, सांप के काटने को हल्के में आप ना ले। क्या आप जानते हैं कि हर साल हमारे देश में सांप के काटने से 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी जो है वो गंवा देते हैं।

0: सतर्क रहें और पीड़ित को तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाएं। याद रखें, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार। धन्यवाद।
1: ये जानकारी चिकित्सीय सलाह नहीं है। कृपया किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, चिंता या प्रश्न के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
2: चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का, हर सपने में है भारत की नई तस्वीर। इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं। SBI, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज।
3: हाँ, अखन अपना सब ये व्यावसायिक संदेश सुने छलो। अब श्रोता लोकन अपना सबके एकटा सुंदर सर मैथिली सुगम संगीत के आनंद ले छी, तो सुनल जाओ ये गीत।

0: चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का, हर सपने में है भारत की नई तस्वीर। इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं। SBI, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज।
1: हाँ श्रोतागण, अब अपना सब एक प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान सुनै छी, तो सुनल जाओ प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
2: उड़ान हौसलों की, उड़ान सपनों की, उड़ान उन मंजिलों की ओर जो बाहें फैलाए आप सबका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। 15 अगस्त हमारे लिए सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह वह दिन है जब हम उन अनगिनत लोगों को याद करते हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना जीवन समर्पित किया। आज हम गर्व से कहते हैं हम आजाद हैं, लेकिन एक सवाल, क्या सिर्फ आजाद देश में रहना ही आजादी है?
3: हेलो नमस्कार, मैं एनकर्मा उड़ान कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह आप सबसे पहले हमारा नंबर लिख लें।

0: क्या पता कार्यक्रम सुनने के बाद आप हमसे अपने अनुभवों को या अपने प्रश्नों को साझा करना चाहें। तो श्रोताओं, हमारा नंबर है
1: 8860088827। जी हाँ, 8860088827।
0: श्रोताओं, अगर हमारे पास कोई गरीब भूखा सो रहा हो, कोई बच्चा शिक्षा की जगह मजदूरी कर रहा हो, या किसी लड़की को उसके सपनों के लिए रोका जा रहा हो और हम गलत होते हुए भी चुप रहें, तो क्या हमारी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? आज एक सवाल है, मैं अपने देश की आज़ादी को अपनी जिम्मेदारी में कैसे बदल सकता हूँ? तो श्रोताओं, आइए आइए सुनते हैं एक छोटा सा नाटक।
2: माँ, जल्दी से सफेद कुर्ता निकालो, आज इंडिपेंडेंस डे है, मैं दोस्तों के साथ झंडा फहराने जा रहा हूँ।
3: बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन जाने से पहले नाश्ता तो कर लो।
2: नहीं माँ, देर हो रही है, आज देशभक्ति दिखानी है।
3: देशभक्ति सिर्फ आज के दिन दिखाई जाती है क्या?
2: माँ अब लेक्चर मत दो, झंडा फहराना है, राष्ट्रगान गाना है, फोटो भी डालनी है, बस।
3: बस?
2: हाँ।
3: फिर एक काम करना, रास्ते में अपनी आंखें खुली रखना।
2: मतलब?
3: आज देखना कि तुम्हारे देश में कौन कौन आजादी का इंतजार कर रहा है।
4: आरव, अरे आरव इधर आ, पहले सेल्फी ले लेते हैं। प्राउड टू बी एन इंडियन।
2: हाँ भाई, एकदम शानदार।
0: तभी एक छोटा बच्चा पास आता है।
5: भैया भैया, कुछ सामान ले लो, सुबह से कुछ नहीं बिका।
4: अरे यार, परेशान मत करो, आज इंडिपेंडेंस डे है।
5: भैया मेरे लिए भी तो आज इंडिपेंडेंस डे है।
2: तुम स्कूल नहीं जाते क्या?
5: पहले जाता था, अब पापा बीमार है, घर चलाने के लिए काम करना पड़ता है।
2: लेकिन तुम्हारी उम्र तो पढ़ने और खेलने की है।
5: पढ़ना तो मुझे भी अच्छा लगता है भैया, लेकिन मजबूरी आज़ादी से बड़ी लगती है।
4: चल चल आरव, हमें देर हो रही है।
2: नहीं राहुल, आज मुझे देर नहीं करनी।
4: कहाँ कहाँ जाना है?
2: पहले इसे कुछ खाने को देते हैं, फिर देखते हैं कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं।

0: आ गए झंडा फहरा के? कैसे रही
1: माँ? आज समझ आया कि देशभक्ति क्या है।
0: बेटा क्या समझ आया?
1: देश से प्यार करना सिर्फ झंडा लगाने या सोशल मीडिया पर आई लव माई इंडिया लिखने से नहीं होता।
0: तो
1: देशभक्ति तब है जब हम अपने आसपास के लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिश करें, जब हम किसी कमजोर का मजाक ना उड़ाएं, जब हम किसी लड़की को उसके अधिकारों से वंचित ना करें, जब हम बच्चे को मजदूरी की जगह शिक्षा दिलाने की कोशिश करें, और जब हम धर्म, भाषा, जाति या क्षेत्र के नाम पर नफरत फैलाने के बजाय इंसान को इंसान समझें।
0: बेटा अब तुमने सच में स्वतंत्रता दिवस मनाया है।

दोस्तों, हमारे देश ने बहुत प्रगति की है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, हमारे युवा नए सपने देख रहे हैं, भारत दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। लेकिन हमारे सामने कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं। गरीबी, बेरोजगारी, बाल मजदूरी, महिलाओं के प्रति भेदभाव, हिंसा, नशा, भ्रष्टाचार, मिस इन्फॉर्मेशन और समाज में बढ़ती दूरी। श्रोताओं, इन समस्याओं का समाधान केवल सरकार या किसी एक संस्था की जिम्मेदारी नहीं है। जी हाँ, हम सब की भूमिका है। देश हमारा है, समाज हमारा है और जिम्मेदारी भी हमारी है। सच्ची देश

भक्ति का मतलब ये नहीं कि हम अपने देश की कमियों को छुपाएं। सच्ची देशभक्ति का मतलब है कमियों को पहचानना और उन्हें सुधारने के लिए अपना छोटा सा योगदान देना। अब समय है आज के स्वतंत्रता दिवस के चैलेंज का, जो आपको करना है। श्रोताओं, इस बार चैलेंज सिर्फ सोशल मीडिया पर झंडे की फोटो लगाने का नहीं है या फिर आई लव माई इंडिया कहने का नहीं है, परंतु इस चैलेंज का नाम है एक दिन एक जिम्मेदारी। जी हाँ, एक दिन एक जिम्मेदारी। आज से अगले 7 दिनों तक हर दिन अपने देश के लिए एक छोटा सा अच्छा काम कीजिए। आप इनमें से कुछ भी कर सकते हैं। तो चैलेंज है किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करें, किसी बच्चे की पढ़ाई में मदद करें, अपने आसपास की गंदगी साफ करने में योगदान दें, या किसी महिला या लड़की के सम्मान और अधिकार के लिए आवाज उठाएं, या किसी बुजुर्ग व्यक्ति के साथ समय बिताएं। सोशल मीडिया पर कोई झूठी या नफरत फैलाने वाली खबर आगे ना भेजें। किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जिससे आपका मतभेद है और सम्मान के साथ उसकी बात सुने। और सबसे महत्वपूर्ण चैलेंज ये है कि आज किसी एक व्यक्ति से पूछिए कि मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। श्रोताओं, हो सकता है आपका छोटा सा कदम किसी की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला दे। तो दोस्तों, हम अक्सर कहते हैं मेरा देश महान है, लेकिन देश महान केवल उसके इतिहास से नहीं बनता, देश महान बनता है उसके नागरिकों से। जब एक युवा गलत रास्ते के बजाय सही रास्ता चुनता है, तब भारत मजबूत होता है। श्रोताओं, जब एक लड़की को शिक्षा और अपने सपनों का अवसर मिलता है, तब भारत मजबूत होता है। जब एक बच्चा मजदूरी से निकलकर स्कूल जाता है, तब भारत मजबूत होता है। या फिर जब हम भ्रष्टाचार को अरे चलता है कहकर स्वीकार नहीं करते, तब भारत मजबूत होता है। श्रोताओं, जब धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र से ऊपर उठकर एक दूसरे का सम्मान करते हैं, जी हाँ, तब भारत मजबूत होता है। और जब हम कहते हैं ये समस्या मेरी नहीं है की जगह, जब हम कहते हैं मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, तब असली बदलाव शुरू होता है।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम एक कविता सुनेंगे जिसका शीर्षक है मेरा भारत। और श्रोताओं, ये कविता हमारे साथ साझा करेंगी हमारी सहयोगी प्रियंका। तो प्रियंका, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद एना। तो श्रोताओं, सुनते हैं एक कविता मेरा भारत। मेरा भारत सिर्फ नक्शे पे बनी एक तस्वीर नहीं, यह करोड़ों दिलों की धड़कन है कहीं। यह खेतों में मेहनत करता किसान है, सीमा पे खड़ा वीर जवान है। यह माँ की आंखों का सपना है, बच्चे की मुस्कान का अपना है। यह मंदिर की घंटी, मस्जिद की अजान, गुरुद्वारे की सेवा, चर्च की प्रार्थना का सम्मान। ये अलग अलग भाषा, अलग अलग पहचान, फिर भी दिल से एक यही है हिंदुस्तान। पर मेरे भारतवासियों से एक सवाल है आज, क्या हम सच में समझते हैं आजादी का राज? अगर कोई भूखा है तो क्या मैं आजाद हूँ? अगर कोई डर में जीता है तो क्या मैं आजाद हूँ? अगर बेटी को सपने देखने से रोका जाए, अगर बच्चे के हाथ में किताब की जगह काम थमाया जाए, अगर नफरत हमारे दिलों में घर कर जाए, तो तिरंगा ऊंचा होकर भी क्या कह पाए? आओ आज एक वादा करें, अपने हिस्से का उजाला करें। जहां अन्याय दिखे वहां आवाज बनेंगे, जहां नफरत मिले वहां प्यार चुनेंगे। किसी गिरते को हाथ देंगे, किसी रोते को साथ देंगे। भारत को केवल महान कहेंगे नहीं, भारत को महान बनाने में अपना योगदान भी देंगे। क्योंकि देश सिर्फ मिट्टी का नाम नहीं, देश हम हैं, देश आप हैं और देश मैं हूँ। जय हिंद।

जय भारत। तो श्रोताओं, ये थी आज की कविता, जी हाँ, जिसका शीर्षक था मेरा भारत। श्रोताओं, आज आइए एक छोटी सी प्रतिज्ञा लें। मैं अपने देश से प्यार करूंगा, मैं अपने आसपास के लोगों का सम्मान करूंगा, मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करूंगी, मैं बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा को महत्व दूंगा, मैं महिलाओं की गरिमा और अधिकारों का सम्मान करूंगा, मैं नफरत और झूठी जानकारी फैलाने से बचूंगा, और सबसे बढ़कर मैं केवल अच्छे भारत का सपना नहीं देखूंगा बल्कि उसे बनाने में अपना योगदान भी दूंगा। जी हाँ श्रोताओं, आज़ादी हमें विरासत में मिलती है, लेकिन इस आज़ादी को जिम्मेदारी में बदलना हमारी पीढ़ी का काम है। आइए इस इंडिपेंडेंस डे, इस स्वतंत्रता दिवस के दिन पर झंडा जरूर फहराइए, लेकिन अपने दिल में भी एक झंडा फहराइए, जी हाँ, ईमानदारी का, एकता का, सम्मान का, न्याय का और इंसानियत का। श्रोताओं, क्योंकि देश हमसे है और भारत का भविष्य हमारे आज के फैसलों से बनेगा, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। तो श्रोताओं, अब समय है आपका, जी हाँ, आपका, इसलिए क्योंकि हमारे कुछ श्रोताओं ने हमें अपने नाम भेजे हैं ताकि हम कार्यक्रम में उन्हें सुनाएं। ये ऐसे श्रोता हैं जो हमारे कार्यक्रम को लगातार सुनते हैं और अपने आसपास के लोगों को, अपने पड़ोसियों को, अपने दोस्तों के साथ हमारे कार्यक्रम को साझा करते हैं। तो श्रोताओं, हमारे श्रोता हैं राम नरेश सिंह यूपी सीतापुर से, नीता मिश्रा यूपी सीतापुर से, आशा, दिव्या और कृष्णा गोरखपुर से, जगदीश प्रसाद जी बाराबंकी से, अंकित उन्नाव से, फरजाना बिहार मुजफ्फरपुर से, योगेश कुमार सीतामढ़ी से, राधिका नवादा से, रामदेव महतो खगरिया से और नासिर अली मधुबनी से। आप सब श्रोताओं का हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं जो लगातार हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं और दूसरों के साथ भी इसे साझा करते हैं और समाज में बदलाव के लिए, समाज के सुधार के लिए हमारे कार्यक्रम को दूसरों के साथ साझा करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। और श्रोताओं, अब ये समय है कि आप अपने प्रश्नों को या फिर अनुभवों को हमसे साझा करें। तो वक्त जाया ना करें, अपना फोन उठाएं और हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 8860088827। जी हाँ, 8860088827। और हमारा पता है कार्यक्रम उड़ान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। जी हाँ, कार्यक्रम उड़ान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। तो श्रोताओं, मुझे एना कर्मा को दीजिए अनुमति, आपसे हम जल्द मुलाकात करेंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।

अखन अपना सब उड़ान सुनै छलहुँ। ई प्रायोजित कार्यक्रम उड़ानसँ नव पीढ़ीके एकटा उत्साह ज्ञान जे भेटतनि ओहिसँ ओ अपन जीवनके नीकसँ सम्हारि सकै छथि, सुधारि सकै छथि। श्रोतागण, हमरा लग एकटा कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना अछि। सिर दर्द एक समान समस्या अछि, लेकिन कई बार एकर लक्षण असमान, अत्यंत कष्टप्रद और घातको भऽ जाइत अछि। सिर दर्द कारण, लक्षण और इलाज, ई छी आकाशवाणी दरभंगाके फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगीके अगला अंकके विषय। विशेषज्ञ हेता डॉक्टर भुवन जी झा, विभागाध्यक्ष न्यूरो सर्जरी विभाग DMCH दरभंगा। प्रसारणके दौरान कार्यक्रमसँ जुड़ैके लेल हमर फोन नम्बर हैत, जे टीप लेल जाउ, 0627222481। एकटा आओर यऽ फोन नम्बर 9430002935।

0: समय याद राखी, रवि दिन 16 अगस्त 2026 दिन के 11 बजे। श्रोतागण, कार्यक्रम संबंधी सूचना समाप्त भेल। आब एकटा व्यावसायिक संदेश सुनै छी।
1: चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का, हर सपने में है भारत की नई तस्वीर। इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम सब मिल के साथ भारत को और आगे ले जाएं। SBI, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज।
0: हाँ, अब अपना सब एक सुंदर सन गीत कुंज बिहारी के स्वर में सुने छी। और सुने छी कुंज बिहारी मिश्र गीत।

अखन अपना सब कुंज बिहारी सुंदर सन देशभक्ति गीत सुनै छलहुँ। एहिके संग श्रोतागण आजुक कार्यक्रम गाम घर सम्पन्न होयबा पर अछि। मीर कुमार झाका आज्ञा देल जाउ। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे सांध्यकालीन दैनिक कार्यक्रम गाम घर, आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे बिहार प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी का स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश की जनता के नाम संदेश।

संविधान ने भारत की स्वतंत्रता का स्वर्णिम अध्याय रचा है, सशक्त लोकतंत्र तथा आत्मनिर्भर राष्ट्र की नींव रखी है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के निर्माण का जो राष्ट्रीय संकल्प लिया गया है, उसमें बिहार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकार का विश्वास है कि जब बिहार समृद्ध होगा तभी विकसित भारत का सपना पूरा होगा। इसी संकल्प के साथ हमारी सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए 3,47,590 करोड़ का ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया है। यह बजट बिहार के अगले चरण के समग्र विकास का रोड मैप है। राज्य में 211 नए डिग्री कॉलेज, 551 मॉडल स्कूल तथा सैकड़ों विद्यालयों में लाइव क्लासेस

की सुविधा प्रारंभ की गई है। युवाओं को जेईई, नीट तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निशुल्क अध्ययन सुविधा उपलब्ध कराई गई है। वही तकनीकी शिक्षा को राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप और भविष्य की आवश्यकताओं के मुताबिक कौशल विकास से जोड़ने के लिए इंजीनियरिंग एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ड्रोन, 3D प्रिंटिंग जैसे अत्याधुनिक विषयों की पढ़ाई शुरू की गई है। युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ रोजगार और नौकरी उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बिहार खेल नीति 2026 लागू की गई है, जिसके माध्यम से खिलाड़ियों को सम्मान और अवसर दोनों उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मेडल लाओ, नौकरी पाओ जैसी पहल प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को नई ऊर्जा दे रही है। मशाल अभियान के जरिए गांव-गांव से खेल प्रतिभाओं की पहचान कर उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है। राज्य खेल अकादमी राजगीर परिसर में स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना का निर्णय भी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सशक्त बिहार की नींव सशक्त गांव पर ही टिकेगी, इसी भावना के साथ पंचायत विकास दिवस केवल एक आयोजन नहीं बल्कि ग्रामीण स्वशासन, जन भागीदारी एवं समावेशी विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। आज जीविका से 1,81,00,000 से अधिक महिलाएं जुड़कर राज्य की अर्थव्यवस्था में 1,36,000 करोड़ का योगदान दे रही हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 1,100 रुपया प्रति माह किया गया। लगभग 1 करोड़ लाभार्थियों को इसका लाभ मिल रहा है। हर माह 10 तारीख को पेंशन दिवस मनाकर सुनिश्चित किया जा रहा है कि लाभार्थियों तक समय पर पेंशन पहुंचे। साथ ही 1 करोड़ नए परिवारों को राशन कार्ड से जोड़ने का अभियान शुरू किया गया है। किसानों की समृद्धि और कृषि विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। कृषि फीडर को 12 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार का लक्ष्य कृषि को उद्योग से जोड़ना है। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों का विस्तार किया जा रहा है। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत लाखों गरीब और जरूरतमंद परिवारों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। डायलिसिस और पैथोलॉजी जैसी सुविधा को प्रखंड स्तर तक पहुंचाया गया है। रेफरल रोकने के लिए 15 अगस्त से नई व्यवस्था लागू की जा रही है। आधारभूत संरचना के क्षेत्र में बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक्सप्रेसवे, हाई स्पीड कॉरिडोर, नए पुल, एलिवेटेड सड़कें, रिंग रोड, गंगा पथ और पटना मेट्रो जैसी परियोजनाओं पर तेजी से कार्य हो रहा है। हवाई संपर्क को मजबूत करने के लिए नए एयरपोर्ट और एयर स्ट्रिप विकसित किए जा रहे हैं। शहरी विकास की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की कार्रवाई की जा रही है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के माध्यम से हमारा उद्देश्य राज्य के हर परिवार को बिजली उत्पादक बनाना है। 125 यूनिट तक निशुल्क बिजली की व्यवस्था से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार को आर्थिक राहत मिली है तथा विशेष रूप से महिलाओं की घरेलू बचत बढ़ी है, जिससे वो परिवार की अन्य आवश्यकताओं को भी बेहतर ढंग से पूरा कर पा रही है। पर्यटन के क्षेत्र में बिहार अपनी ऐतिहासिक और आध्यात्मिक पहचान को नई ऊंचाई दे रहा है। हेली टूरिज्म सेवा की शुरुआत की गई है। पुनौरा धाम, विष्णुपद मंदिर, बाबा हरिहरनाथ सहित अनेक धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों का विकास किया जा रहा है। उद्योग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई उद्योग नीति लागू की गई है। निवेशकों को 30 दिनों के भीतर आवश्यक स्वीकृति देने की व्यवस्था की गई है। औद्योगिक पार्क, फूड पार्क, स्टार्टअप, लैंड बैंक जैसी पहल के माध्यम से बिहार को निवेश और रोजगार का प्रमुख केंद्र बनाया जा रहा है। भ्रष्टाचार और अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। त्वरित न्याय के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट, आधुनिक पुलिस व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस दीदी की तैनाती, फॉरेंसिक

0: संस्थानों की स्थापना और सहयोग शिविर के माध्यम से जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान किया जा रहा है। प्रिय बिहारवासियों, आज़ादी का पर्व अपने गौरवशाली अतीत से प्रेरणा लेते हुए विकास, सुशासन और सामाजिक न्याय के साथ समृद्ध बिहार के निर्माण का संकल्प लेने की प्रेरणा देता है। यही हमारी स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि और विकसित भारत के निर्माण में बिहार का सबसे बड़ा योगदान होगा। एक बार पुनः आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय बिहार।
1: अभी आप सुन रहे थे माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी का स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश की जनता के नाम संदेश।
2: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत।

0: ये देशभक्ति गीत अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू और आदित्य नारायण की आवाजों में, जिसे हमने लिया था फिल्म दिल जले से। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं आर्किड बिजनेस कॉलेज राजेंद्र नगर और सगुना मोड़ पटना।
2: उड़ान उड़ान उड़ान कार्यक्रम में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से आप सबों को बहुत बहुत बधाई स्वतंत्रता दिवस की, बहुत बहुत बधाई। जी हाँ, इस स्वतंत्रता दिवस कुछ ऐसा हो जाए, हाँ, प्रण ले लें कि अगले स्वतंत्रता दिवस में हम कुछ बन जाएं। जी हाँ, कुछ बन जाएं और नहीं तो बनने की राह में अग्रसर हो जाएं। ऐसी पढ़ाई करें कि अपने लिए और अपने देश के लिए कुछ कर पाएं, ये ठान लीजिए मन में। उड़ान कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं आर्किड बिजनेस कॉलेज की तरफ से। आर्किड बिजनेस कॉलेज ने 27 साल पहले ये प्रण लिया था कि बच्चों को टेक्निकल पढ़ाई कराई जाएगी और उनके लिए उनके सफलता के द्वार खोलने का

0: प्रयास किया जाएगा और ये 27 वर्षों का सफर अनवरत जारी है आज भी। जब वो कहते हैं कि बीसीए और बीबीए की पढ़ाई आपके लिए बहुत ही उम्दा है, बीसीए और बीबीए की पढ़ाई बहुत ही उम्दा है, जरा सोचिए, हाँ, जिसने भी स्थापित किया होगा इस संस्था को क्या विजन रहा होगा, क्योंकि 27 साल पहले एकदम नई नई हलचल हुई होगी और उसने ये सोच लिया होगा कि आगे चलकर इसी कोर्सेज का जमाना आएगा, बीसी और बीबीए का, और लगातार लगातार उस एक ही जगह पर खड़ा है तब से लेकर आज तक, और वो जगह है आर्केट बिजनेस कॉलेज, आर्य कुमार रोड, राजेंद्र नगर, पटना। जी हाँ, इसके अलावा उन्होंने एक और सेंटर सगुना मोड़ पर भी खोला, क्योंकि जैसे जैसे लोगों को इस कोर्स की महत्ता पता चली, विशेषता पता चली, करियर अपॉर्चुनिटी पता चली, बच्चों का झुकाव इस ओर होने लगा और आज तो प्रासंगिक ही है बीसीए और बीबीए की पढ़ाई। बहुत सारे फ़ोन कॉल ऐसे आए, हाँ बहुत सारे फ़ोन कॉल ऐसे आए जिसमें बहुत सारा इफ़ बट था, क्या करें क्या नहीं करें, अगर मैं बीसीए और बीबीए की पढ़ाई कर लूँगा तो नौकरी मिल ही जाएगी, ढेर सारे सवाल पूरे बिहार से, क्योंकि ये उड़ान कार्यक्रम हम पूरे बिहार में लेकर जा रहे हैं आज के दिन। हमारी ये मंशा है आर्केट बिजनेस कॉलेज, जहाँ पर बीसीए और बीबीए की उम्दा पढ़ाई होती है, उनकी ये मान्यता है कि कोई भी युवा बच्चा छूटने ना पाए, जिससे कि वो कल ये ना कह सके कि मुझे तो मालूम नहीं था, मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं कि बीसीए और बीबीए की पढ़ाई इतना अव्वल है, इतनी उम्दा है, इतनी वाइब्रेंट है, नहीं तो मैं पढ़ लेता नहीं। हाँ नहीं, हम किसी को ये अपॉर्चुनिटी देना नहीं चाहते हैं। एक और साथ साथ लगे लगे बता दें, हम ये भी नहीं लोगों को अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं कि पैसा नहीं है। पैसा अब तो 4 लाख रुपए तक का लोन भी मिलता है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर। एक बात और बताएं, इन्होंने सिर्फ सफ़र शुरू ही नहीं किया आर्केड वालों ने, आगे बढ़ते चले गए, इसीलिए आज पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का एकमात्र अस्थाई स्थान है बीसीए और बीबीए के लिए। और अस्थाई मान्यता का क्या मतलब होता है सुनिए।
1: मेरे कॉलेज की मान्यता समाप्त हो गई है।
2: क्या तुमने स्थायी मान्यता वाले कॉलेज में दाखिला नहीं लिया था?
1: स्थायी मान्यता का कौन सा कॉलेज है बिहार में?
2: आर्केट बिजनेस कॉलेज, जहां से बीसीए या बीबीए कोर्सेज कर सकती हो।
1: फिर तो आर्केट से ही बीसीए या बीबीए करना सेफ है।
3: आर्केट बिजनेस कॉलेज, राजेंद्र नगर एवं सगुना मोड़, पटना। कॉल करें 7520-800-800। याद रखें 7520-800-800।
0: सुन लिया ना, यही होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि कॉलेज के सिलेक्शन में बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। अब फर्ज करो, जैसे कोई पैसा खो जाए, कोई पैसा कहीं बर्बाद हो जाए, तो पैसा तो फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन आप फिर से समय को उल्टा नहीं घुमाकर वापस ला सकते अपनी जिंदगी में। जो समय बीत गया सो बीत गया, है ना, इसीलिए बहुत सावधानी की जरूरत होती है। आपको याद है आशीष आदर्श जी आए थे हमारे इसी कार्यक्रम में, उन्होंने कहा था कि हर संस्थान बढ़ा चढ़ा के हाँ अपने संस्थान को प्रमोट करता है। सुनिए क्या कह रहे हैं।
4: देखिए एक बात बताता हूँ, आप कोई भी संस्थान का विज्ञापन उठा के देखिए, हर संस्थान अपने आप को हमेशा बढ़ा चढ़ाकर पेश करेगा। आपको यह देखना है कि उस संस्थान के जो पहले के जो छात्र हैं उनका क्या मंतव्य है। अगर आपको कोई वैसा स्टूडेंट मिल जाए जो आर्केट बिजनेस कॉलेज से पढ़ा हो, आप जरा उससे बात कीजिए, आपको पता चलेगा कि वो किस प्रकार का स्टूडेंट है, क्या उसको पढ़ाई की कैसी उसको चीजें मिली।
0: सुना आपने कितनी बेबाकी से उन्होंने कहा कि हर संस्थान जो है ना अपने विषय में बढ़ा चढ़ा कर लोगों को बताता है, और उन्होंने किसी दूसरे संस्थान का उदाहरण नहीं दिया, अपने ही आर्केट बिजनेस कॉलेज का उदाहरण दिया कि आप वहां के किसी पुराने स्टूडेंट से मिलिए और उससे पूछिए तो सही संस्थान के बारे में, तो एक्चुअल स्थिति पता चलेगी और उसे क्या क्या सुविधाएं वहां मिल रही हैं ये भी जानकारियां मिलेगी। राजेश का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको सही और सटीक जानकारी उड़ान कार्यक्रम में हम पहुंचाएं। अगर आपको ऐसा लगता है कि बीसी और बीबीए का कोर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, हम तो कह ही रहे हैं चीख चीख के एक्सपीरियंस के आधार पर कि बीसी और बीबीए हॉट केक है आज के दिन में, दूसरे टेक्निकल जो कोर्सेज हैं उससे कहीं भी कम नहीं है, तो आप डायल करें आर्केट बिजनेस कॉलेज, जहां की एकदम गुणवत्तापूर्ण क्लासरूम पढ़ाई होती है। 7520-800-800

0: 800 ये नंबर है। आशीष जी ने आगे कहा था संस्थान में कुछ प्लेसमेंट के बारे में किया था, रोजगार के बारे में, आइए सुनवाते हैं वो क्या कह रहे हैं।
1: आपको ये देखना है कि जिस ध्येय से आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपने BCA किया या BBA किया, उसके बाद आपको जॉब मिलता है कि नहीं मिलता, परसेंटेज कितना है, जॉब कितना परसेंटेज। अभी मैं आपको जस्ट अभी बताऊं, अभी तकरीबन पिछले महीने 2026 के प्लेसमेंट्स की बात मैं करता हूं, अभी तक लगभग हमारे यहाँ जो 450 स्टूडेंट करीब पास आउट करके निकले हैं, लगभग 200-225 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो चुका है, 200-225 के बीच में। और बाकी अभी कंपनियां, 4-5 कंपनियां, बहुत सारी कंपनीज ऐसा बोलती है कि भाई एग्ज़ाम के बाद हम, परीक्षा के बाद हम उनको इन कैंपस इंटरव्यू आपके यहाँ करेंगे। और हम ये बात आश्वस्त करते हैं हर स्टूडेंट को कि आपके लिए कम से कम 10 कंपनी का हम इन कैंपस इंटरव्यू लेकर के आएंगे, कहीं ना कहीं तो आपका सिलेक्शन होगा ही। बस आपको अपनी क्लासेस में अपनी जो अटेंडेंस रखनी है और अपने कोर्स के ऊपर में पूरा फोकस करना है, बाकी जिम्मेदारी आप हमारे ऊपर छोड़ सकते हैं।
0: कितनी बेबाकी के साथ आशीष जी ने बताया था, और सारे एग्जाम्पल्स वो अपने संस्थान पर दे रहे हैं कि कल को दूसरे संस्थान से कोई टीका टिप्पणी नहीं हो। आपकी आप जानिए, हम अपनी बात कहते हैं एंड ऑफ द डे, यानी पढ़ाई खत्म होने के बाद। हाँ मित्रों, छोटे छोटे भाई बहनों, रोजगार चाहिए होगा ना, कि पढ़ कर लिख करके अपने घर पर बैठ जाइएगा नहीं ना। तो रोजगार के विषय में तो सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपको रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कंफर्म है, असिस्टेंस है, ये सारी बातें आपको जाननी चाहिए कहीं जुड़ने से पहले, चाहे वो आर्केड बिजनेस कॉलेज ही क्यों ना हो। जी हाँ, उड़ान कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं आप सबों के लिए, वर्षों से आते हैं इसी महीने में आपको जानकारियां देने, क्योंकि ये महीना आपके करियर के हिसाब से, ये दौर जो चल रहा है 2-3-4 महीने, बहुत वाइब्रेंट होता है। अभी ही लिया गया डिसीजन, उसी पर पूरी बुनियाद रखी जाती है आपकी ज़िंदगी की, आपके करियर की। और उड़ान कार्यक्रम आपको मदद करता है आपको अपने डिसीजन को लेने में, किसी निश्चित मुकाम पर पहुंचने के लिए कि हाँ ये BCA सही है मैं कर सकता हूँ, ये BBA सही है मैं कर सकता हूँ। ये भी बताऊंगा, अभी आशीष जी ने बताया था कि BCA और BBA किसको करना चाहिए। हाँ, लेकिन ये कार्यक्रम उड़ान हम लेकर आ रहे हैं आर्केड बिजनेस कॉलेज की तरफ से, आर्केड बिजनेस कॉलेज जहाँ क्लासरूम स्टडी होता है, स्तरीय पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय से स्थायी मान्यता प्राप्त है, पटना के आर्य कुमार रोड राजेंद्र नगर और सगुना मोड़ पर है, और वहाँ का नंबर है, याद कर लीजिए, 75 20 800 800 75 20 800 800, ये नंबर है, आप डायल करके पूछ सकते हैं। चलिए, टीचर्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी कुछ बातें हुई थी कि संस्थान में क्या होना चाहिए, उन्हीं ने जो बातें कही थी हम आपको सुनाते हैं।
1: देखिए, टीचर तो किसी भी संस्थान का की आत्मा होती है। आपके यहाँ अगर अच्छे टीचर होंगे तभी वो एक अच्छा ज्ञान दे सकते हैं, अच्छा एक आपको नॉलेज दे सकते हैं। टीचर्स के मामले में हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, कोई समझौता नहीं करते। हमारे यहाँ आप स्टूडेंट से बातचीत करेंगे तो वो हमेशा ही, अभी आप रिव्यूज़ देखिए, आप आर्केड बिजनेस कॉलेज के वेबसाइट पर चले जाइए, abcollege.org भी है और abcollege.in भी है। abcollege.org राजेंद्र नगर कैंपस का है, abcollege.in सगुना मोड़ कैंपस का है। आप वहाँ जाकर रिव्यूज़ देखिए या गूगल में डालकर रिव्यूज़ देखिए, आपको खुद पता चलेगा कि आर्केड बिजनेस कॉलेज का क्या स्थान है, उसकी क्या विश्वसनीयता छात्रों के बीच।
0: ये सारी बातें तो हमने भी, जब हम युवा अवस्था में थे तो हमने भी देखा है, कहीं भी कोचिंग के लिए भी जाते थे, किसी कॉलेज में जाते थे, हाँ तो टीचर्स पूछते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर पूछते थे, या कहते थे कि पढ़ाई होती है कि नहीं होती। और आशीष जी वही बातें कह रहे हैं, तो कुछ बातें तो कल भी सही थी, आज भी सही और कल भी सही रहेगा। जो भी यूथ आएगा उसको ये सारी चीजें देखनी होंगी अगर आपको करियर बनाना है तो। हाँ, बनाना है तो हमने कहा, और हम बार बार कहते हैं कि इसे विज्ञापन नहीं समझिए, ये एक आईना है जिसमें आपको सब कुछ साफ साफ नजर आएगा, और हम कोशिश भी यही करते हैं। इस कार्यक्रम में भी हम कभी ये नहीं कहते कि आप आर्केड बिजनेस कॉलेज से BCA और BBA कर लें, ना कभी नहीं, ना। आप देखिए, समझिए, जानिए, परखिए, तब जाकर डिसीजन लीजिए। हम कौन होते हैं आपके करियर का डिसीजन लेने वाला? हाँ, आप हैं, आपके माता पिता हैं, और जो भी आप समझते हैं आपके शिक्षक होंगे वो हैं। हम सिर्फ बातें रख देते हैं कि भैया ये आपके लिए अच्छा रहेगा, जैसे BCA और BBA का कोर्स आपके लिए अच्छा रहेगा। अब कहाँ से पढ़िएगा ये आप सर्च

0: लीजिए। हाँ, एक बात जरूर कहते हैं, पैसा कम पैसे के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि अब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से पढ़ाई आप कर सकते हैं, इसलिए पैसे की भी चिंता नहीं रही। आर्केड बिजनेस कॉलेज स्थायी मान्यता प्राप्त है, तो मैं कहता हूं है, तो जो अगर है तो कहना तो पड़ेगा। आर्केड बिजनेस कॉलेज पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से बीसी और बीबीए के लिए स्थायी मान्यता प्राप्त एकमात्र संस्थान है, और उसका क्या मतलब होता है ये हम बार बार आपको बता रहे हैं।
1: मेरे कॉलेज की मान्यता समाप्त हो गई है।
2: क्या तुमने स्थायी मान्यता वाले कॉलेज में दाखिला नहीं लिया था?
1: स्थायी मान्यता का कौन सा कॉलेज है बिहार में?
2: आर्केड बिजनेस कॉलेज,

0: संस्थान है और उसका क्या मतलब होता है ये हम बार बार आपको बता रहे हैं।
1: मेरे कॉलेज की मान्यता समाप्त हो गई है।
2: क्या तुमने स्थायी मान्यता वाले कॉलेज में दाखिला नहीं लिया था?
1: स्थायी मान्यता का कौन सा कॉलेज है बिहार में?
2: आर्केड बिजनेस कॉलेज, जहां से BCA या BBA कोर्सेज कर सकती हो।
1: फिर तो आर्केड से ही BCA या BBA करना सेफ है।
3: आर्केड बिजनेस कॉलेज, राजेंद्र नगर एवं सगुना मोड़, पटना। कॉल करें 7520-800-800। याद रखें 7520-800-800।
0: तो हम नहीं चाहते कि आप उसके चक्कर में पड़े। हम आपसे कहे थे ना कि BCA और BBA किनको करना चाहिए युवाओं को। आशीष जी ने एक बात बताई थी, हम आप तक फिर से वो बात पहुंचाते हैं। डिसीजन लेने में मदद होगा वैसे लोगों के लिए जो इफ एंड बट कर रहे हैं।
4: आपके लिए एक बहुत अच्छा कोर्स मैं बताता हूँ, जिस कोर्स को आप जरूर करिए और आप देखिए उसका कितना फायदा आपको मिलता है। उस कोर्स का नाम है BCA, बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। 3 साल का कोर्स है। 3 साल का कोर्स करने के बाद आप 2 साल आप MCA कहीं से कर लीजिए, फिर आपको देखिए कितने सारे एवेन्यूज। MCA करने के बाद में बैंक से लेकर के इवन के जो IT कंपनी से लेकर के जितनी बड़ी कंपनियां हैं, आप TCS का, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का या विप्रो का विज्ञापन उठा करके देखिए, उसमें लिखा रहता है जो मिनिमम क्वालिफिकेशन MCA। वो MCA आप कीजिए BCA करने के बाद में, या BCA करने के बाद भी इवन बहुत सारी IT कंपनीज वो आपको एंट्री लेवल जॉब के लिए आपको अब्जॉर्ब कर लेती है। तो मेरा समझना यही है कि आप BCA करिए और उसका आप लाभ लीजिए, आगे चल के MCA कीजिए, बाकी सब मतलब बहुत अच्छा होगा।
0: बहुत अच्छा होगा, जी हाँ। अगर डिसीजन धरातल पर रह कर लिया जाए, अपने को देखते हुए लिया जाए ना, और समय की मांग क्या है उस पर हाँ साध के लिया जाए ना, तो सब कुछ अच्छा अच्छा ही होता है। जी हाँ, उड़ान कार्यक्रम चल रहा है जहाँ से आप BCA और BBA की क्लासरूम स्टडी कर सकते हैं। डायल कीजिए 7520-800-800, 7520-800-800। एक चलन आजकल चल गया है यहाँ कि माता पिता को थोड़ा सा लूप में नहीं लिया जाता है, इस पर भी आशीष जी ने कहा था। आइए पहले वो सुनवाते हैं कि माता पिता कौन होते हैं और वो आपके लिए क्या हैं।
4: देखिए ऐसा है कि मैं समझता हूँ कि जो पेरेंट्स से बेहतर करियर काउंसलर्स और कोई नहीं होते बच्चों के, क्योंकि वो अपने बच्चों की सारी लिमिटेशंस को जानते हैं कि मेरा बच्चा क्या कर सकता है क्या नहीं। मैं समझता हूं कि उनको इस बारे में जरूर सोचना चाहिए।
0: आज के लिए बस इतना ही। हर पक्ष पर हमने आज बातें की, आशीष जी की बातें सुनवाई। BCA और BBA की पढ़ाई बहुत ही अव्वल है, आप चाहें तो उसे चुन सकते हैं। आर्केड बिजनेस कॉलेज में क्लासरूम स्टडी बहुत ही उम्दा है, लेकिन आप फिर भी देखिए, समझिए, जानिए। और नंबर है, डायल कीजिए 7520-800-800, 7520-800-800, इस नंबर को डायल कीजिए और अपने लिए एक मुकम्मल जहां बना लीजिए। थैंक यू आर्केड बिजनेस कॉलेज कि आपने उड़ान कार्यक्रम लेकर आने का राजेश को मौका दिया।
1: मेरे
0: नमस्कार।
1: कॉलेज की मान्यता समाप्त हो गई है।
2: क्या तुमने स्थायी मान्यता वाले कॉलेज में दाखिला नहीं लिया था?
1: स्थायी मान्यता का कौन सा कॉलेज है बिहार में?
2: आर्केड बिजनेस कॉलेज, जहां से BCA या BBA कोर्सेज कर सकती हो।
1: फिर तो आर्केड से ही BCA या BBA करना सेफ है।
3: आर्केड बिजनेस कॉलेज, राजेंद्र नगर एवं सगुना मोड़, पटना। कॉल करें 7520-800-800। याद रखें 7520-800-800।
5: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे आर्केड बिजनेस कॉलेज, राजेंद्र नगर और सगुना मोड़, पटना।
6: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।
7: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
8: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
7: और लाइट बिल के,
8: अब 0 रुपए कैसे दूं?
7: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
8: पक्का।
9: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
2: कृपया ध्यान दें, डेंगू अपने शहर में पांव पसार रहा है, पर हम सावधानी और स्वच्छता से इसको हरा सकते हैं।
3: डेंगू की रोकथाम के लिए कुछ जरूरी बातों का पालन अवश्य करें, जैसे डेंगू का मच्छर साफ पानी में भी पनपता है, इसीलिए कहीं भी पानी जमा ना होने दें। डेंगू का मच्छर दिन में काटता है, इसीलिए अपने आसपास साफ रखें और अपने शरीर को ढक कर रखें। समय समय पर फॉगिंग करें और मच्छरदानी का प्रयोग करें। बच्चों को बाहर भेजने से पहले मच्छर भगाने की क्रीम लगाएं। खिड़की दरवाजों में मच्छर जाली लगवाएं।
2: जब होगा पूरा प्रयास हमारा, तभी मिलेगा डेंगू से छुटकारा। जीवंत बिहार, सपना हो साकार। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 104 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य विभाग और सूचना व जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किला पर फहराया तिरंगा। पहली बार वंदे मातरम का हुआ गायन। प्रधानमंत्री ने गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग और एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI कौशल प्रशिक्षण देने की घोषणा की। पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ध्वजारोहण किया। प्रतियोगी परीक्षाओं की निगरानी के लिए उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की। और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश में अभियान बसेरा के तहत 30,000 भूमिहीन परिवारों के बीच बासगीत पर्चा का वितरण किया गया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। श्री मोदी ने स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा, आज हर दिल की धड़कन वंदे मातरम के गायन से गुंजायमान है।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है।

0: आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में करोड़ों देशवासियों के संकल्प, समर्पण और हर संभव प्रयास की बदौलत देश ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। उन्होंने कहा कि भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु से ही संभव होगा। श्री मोदी ने शक्ति की सप्त धारा का आह्वान किया ताकि देश को नई ऊंचाई तक पहुंचाया जा सके। उन्होंने कहा कि पहले भारत 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देशों में था, लेकिन अब भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था है।
0: इन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है कि हम कभी फ्रेजाइल 5 में गिरे जाते थे, 12 साल के भीतर भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि AI शिखर सम्मेलन के आयोजन से भारत ने विश्व को अपनी ताकत दिखाई है। उन्होंने कहा कि देश की युवा शक्ति AI के क्षेत्र में प्रयास कर रही है।
0: हमने पिछले दिनों AI इम्पैक्ट समिट किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
1: श्री मोदी ने कहा कि सरकार मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
0: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 7-8 वर्ष में लगभग 8 सेमीकंडक्टर संयंत्र काम शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि इस समय देश में 3 संयंत्रों में सेमीकंडक्टर निर्माण हो रहा है और इस क्षेत्र में भारत की प्रगति तकनीकी आत्मनिर्भरता को दर्शाती है।
0: कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है और इस चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो जाए, और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके हैं।
1: और अब स्वाधीनता दिवस समारोह पर हमारे संवाददाता की विस्तृत रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के बाद अंतर सेवा और दिल्ली पुलिस के संयुक्त गार्ड ने उन्हें सलामी दी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ 21 तोपों की सलामी दी गई। वहीं पहली बार लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन किया गया। ध्वजारोहण के बाद भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर ने समारोह स्थल पर फूलों की बारिश की। इनमें से एक हेलीकॉप्टर पर राष्ट्रीय ध्वज था और दूसरे पर वंदे मातरम लिखा हुआ ध्वज था। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद NCC कैडेट्स और मेरा भारत के स्वयंसेवकों ने वंदे मातरम का गायन किया। इसके बाद राष्ट्रगान हुआ। सेना, नौसेना और वायुसेना के कुल 2500 कैडेट्स और मेरा भारत के स्वयंसेवकों ने समारोह में हिस्सा लिया। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों से करीब 5000 विशेष अतिथियों ने लाल किले पर आयोजित समारोह में भाग लिया। इनमें पीएम विश्वकर्मा योजना के कारीगर, पीएम मुद्रा योजना की महिला उद्यमी, पीएम स्वनिधि योजना के रेहड़ी पटरी वाले, भारत टैक्सी के चालक, स्वच्छ भारत मिशन के सफाई कर्मचारी और राष्ट्रीय नवाचार कार्यक्रम से जुड़े युवा शामिल थे। लाल किले पर आयोजित समारोह का समापन आसमान में तिरंगे गुब्बारे छोड़ने के साथ हुआ। अनुपम और आनंद के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश भर में स्वतंत्रता दिवस उल्लास पूर्वक माहौल में मनाया जा रहा है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित मुख्य राजकीय समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रतियोगी परीक्षाओं की निगरानी और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति

0: के गठन की घोषणा की।
1: परीक्षा कैसे सख्ती से लिया जा सकता है, परीक्षा के गुणवत्ता को कैसे ठीक किया जा सकता है और निष्पक्ष होकर कैसे इसकी पूरी चीजों को स्थापित किया जा सकता है, इसमें एक हाई कोर्ट के जज के नेतृत्व में कमेटी बनाएंगे और जो इस पूरी कमेटी की संरचना बनाकर बिहार के बच्चों के भविष्य का पूरी तरह निष्पक्ष काम करने का काम बिहार की सरकार करेगा। साथ
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी विद्यालयों और महाविद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं की सुरक्षा के लिए पुलिस दीदी की तैनाती की जाएगी। इसकी शुरुआत रक्षाबंधन के दिन से होगी।
1: बहन और बेटियों की सुरक्षा के लिए चाहे वो कॉलेज हो चाहे वो स्कूल हो बालिका स्कूल हो उनके जगह पर किसी राखी के दिन से पुलिस दीदी जिनको की स्कूटी दिया गया, लगभग 5000 मोटरसाइकिल और स्कूटी उपलब्ध कराए गए हैं। सभी स्कूल और कॉलेज के सामने राखी के दिन से सभी जगह सुरक्षा देने का काम हमारी महिला बहनें करने का काम करेंगे।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि 17 अगस्त से विद्यार्थी पोर्टल की शुरुआत की जाएगी। इस पोर्टल के माध्यम से छात्र छात्राएं अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे जिसका निपटारा 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था शुरू की गई है। श्री चौधरी ने कहा कि अब सभी जिला अस्पतालों में 36 तरह के ऑपरेशन होंगे और मरीज के रेफर होने पर सिविल सर्जन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
1: 15 अगस्त के बाद जो भी सिविल सर्जन रेफर करवाएगा अपने जिले से उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाएगा, क्योंकि 36 तरह का ऑपरेशन आपको जिला के स्तर पर करना है। सब मामले को पीएमसीएच में, आईजीएमएस में, एनएमसीएच में या मेडिकल कॉलेज में नहीं भेजना।
0: ध्वजारोहण से पहले मुख्यमंत्री ने परेड की सलामी ली। परेड में बिहार पुलिस, सीआरपीएफ, आईटीपीपी, पीएमपी, होमगार्ड, एनसीसी और भारत स्काउट्स एंड गाइड के जवानों ने भाग लिया। इस अवसर पर शिक्षा, सहकारिता, पर्यटन और ग्रामीण विकास समेत 13 विभागों की ओर से झांकियां भी निकाली गई। इधर हमारे संवाददाता ने बताया कि राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने लोक भवन में तिरंगा फहराया। विधानसभा परिसर में अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार, विधान परिषद में सभापति अवधेश नारायण सिंह और पटना उच्च न्यायालय में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुधीर सिंह ने ध्वजारोहण किया। भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, जदयू कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यालय में पार्टी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने ध्वजारोहण किया। राजद कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल और कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने तिरंगा फहराया। राष्ट्रीय लोक मोर्चा और वामपंथी दलों समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यालयों में भी इस अवसर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किए गए। आकाशवाणी पटना के प्रांगण में उप महानिदेशक अभियंत्रण सह कार्यालय प्रमुख ब्रजेश कुमार ने तिरंगा फहराया। जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि प्रभारी मंत्रियों ने ध्वजारोहण किया। महादलित गांवों और टोलों में आयोजित कार्यक्रम में समुदाय के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने ध्वजारोहण किया। एक रिपोर्ट।
2: छपरा में उप मुख्यमंत्री सह प्रभारी मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, गया में मंत्री विजय कुमार सिन्हा, मोतिहारी में श्रवण कुमार, मुजफ्फरपुर में प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल, बेगूसराय में रामकृपाल यादव और रोहतास में मंत्री अशोक चौधरी ने ध्वजारोहण किया। दरभंगा में प्रभारी मंत्री कुमार शैलेंद्र, शेखपुरा में श्वेता गुप्ता, औरंगाबाद में रमा निषाद, नवादा में संतोष कुमार सुमन, मधेपुरा में शीला मंडल, कटिहार में प्रमोद कुमार, आरा में अरुण शंकर प्रसाद और अरवल में प्रभारी मंत्री दीपक प्रकाश ने तिरंगा फहराया। सिवान में प्रभारी मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता, किशनगंज में शैलेश कुमार, मुंगेर में संजय कुमार, अररिया में रामचंद्र प्रसाद, पश्चिम चंपारण में लखेंद्र कुमार रोशन, भभुआ में संजय सिंह टाइगर, सहरसा में प्रभारी मंत्री मिथिलेश तिवारी, बक्सर में नंदकिशोर राम, सीतामढ़ी में श्रेयसी सिंह और मधुबनी में लेसी सिंह ने ध्वजारोहण किया। सुपौल, बांका, गोपालगंज और शिवहर जिले में जिलाधिकारी ने झंडा फहराया। स्कूल, कॉलेज, सरकारी कार्यालयों और निजी संस्थानों में भी तिरंगा फहराया गया। पटना स्थित एनर्जी इंटरनेशनल में अध्यक्ष विजय नारायण झा ने तिरंगा फहराया। समाचार कक्ष से आशुतोष प्रसाद।
0: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश में आज अभियान बसेरा के दूसरे

0: के तहत 30,000 भूमिहीन परिवारों के बीच बास्केट पर्चा का वितरण किया गया। इसके तहत जिला मुख्यालयों में शिविर लगाकर योग्य परिवारों के बीच 3-3 डिसमिल जमीन के भूमि बंदोबस्ती प्रमाण पत्र वितरित किए गए। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने बताया कि सभी लाभुकों को डिजिटल स्वरूप में बासगीत पर्चा उपलब्ध कराया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग का एक उच्च स्तरीय दल कल से 2 दिवसीय बिहार दौरे पर रहेगा। इस दौरान श्री कुमार पटना में युवाओं में निर्वाचन संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए चुनावी साक्षरता क्लब के दूसरे चरण की शुरुआत करेंगे। साथ ही वे राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के सभागार में बूथ लेवल अधिकारियों के साथ संवाद कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। आकाशवाणी पटना से स्वतंत्रता दिवस पर प्रसारित होने वाले विशेष कार्यक्रम के कारण आज जिले की हलचल का प्रसारण नहीं हो सकेगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किला पर फहराया तिरंगा। पहली बार वंदे मातरम का हुआ गायन। प्रधानमंत्री ने गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग और 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI कौशल प्रशिक्षण देने की घोषणा की। पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ध्वजारोहण किया। प्रतियोगी परीक्षाओं की निगरानी के लिए उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की। और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश में अभियान बसेरा के तहत 30,000 भूमिहीन परिवारों के बीच बासगीत पर्चा का वितरण किया गया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: कभी घर के अंदर की हिंसा, कभी बाहर की बदसलूकी, अक्सर महिलाएं सोचती हैं मेरी बात कौन सुनेगा।
2: माँ, अगर कहीं भी कोई परेशानी हो तो क्या करें?
3: बस याद रखो 1 नंबर 181।
1: बिहार महिला हेल्पलाइन 181 महिलाओं और बालिकाओं के लिए 24/7 टोल फ्री सेवा है। मानसिक या शारीरिक उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, छेड़खानी, दहेज

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

विशाल ददलानी और शेखर को अभी आप सुन रहे थे फिल्म फाइटर में। कार्यक्रम संबंधी एक सूचना श्रोताओं, सिरदर्द एक सामान्य समस्या है, लेकिन कई बार इसके लक्षण असामान्य, अत्यंत कष्टप्रद और घातक भी हो सकते हैं। सिरदर्द कारण, लक्षण और इलाज, यही है आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगले अंक का विषय। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर भुवन जी झा, विभागाध्यक्ष न्यूरोसर्जरी विभाग DMCH दरभंगा। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़ने के लिए फोन नंबर होंगे 06-272-222-481 एवं 943-00-29353। समय याद रखें, रविवार 16 अगस्त 2026 दिन के 11 बजे। सूचना समाप्त हुई।

0: पूरब और पश्चिम इस फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर की आवाज में। कुछ ही देर में आप सुनेंगे इस सप्ताह संसद में।
1: वैष्णवी से संसद में हुई इस सप्ताह के कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अविनाश। संसद के मॉनसून सत्र का ये चौथा और अंतिम सप्ताह था। इस सप्ताह भी दोनों सदनों में विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई तथा अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दों को लेकर भारी हंगामा किया। सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को लोकसभा में विपक्षी सदस्यों ने इन मुद्दों पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर हंगामा किया। सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू होते ही विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। हंगामे के कारण बैठक एक मिनट के अंदर ही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही फिर आरंभ होने पर भी विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी जारी रही। हंगामे के बीच ही विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 और कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पेश किए। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश किए। सदन की बैठक

सोमवार के स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे शुरू हुई तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार छात्रों के मुद्दे पर सदन में चर्चा के लिए तैयार है और गृहमंत्री अमित शाह विस्तार से जवाब देने को भी तैयार है। इस बीच विधि एवं न्याय मंत्री मेघवाल ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 को चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया। उन्होंने कहा कि विधेयक न्यायाधिकरणों के अधिकार क्षेत्र बदलने का विधेयक नहीं है। विधेयक का प्रमुख उद्देश्य विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति के लिए दक्षता बढ़ाने के साथ स्वतंत्रता, पारदर्शिता और पात्रता संबंधी मानदंडों में एकरूपता सुनिश्चित करना है। सदन ने विपक्ष के हंगामे के बीच ही विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा की सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने और सरकारी दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के बाद विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के कारण सभापति सीपी राधाकृष्णन ने करीब 11:20 पर बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे जब प्रश्नकाल के लिए सदन की कार्यवाही शुरू हुई तब भी सदन में वही नजारा दिखा और कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 को सदन में चर्चा और पारित करने के उद्देश्य से पेश करने के लिए कहा, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग दोहराते हुए हंगामा जारी रखा। सदन में व्यवस्था न बनते देख हरिवंश ने बैठक को 15 मिनट तक के लिए स्थगित कर दिया। 15 मिनट बाद बैठक फिर शुरू होने पर सदन में बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक और कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को लिया गया। बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 का उद्देश्य अदालतों में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रक्रिया को आधुनिक तथा स्पष्ट बनाना है। राज्यसभा ने संक्षिप्त चर्चा के बाद इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्षी दलों के सदस्यों ने कुछ देर नारेबाजी करने के बाद विरोध जताते हुए सदन से बहिर्गमन किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि इस विधेयक के माध्यम से बैंकों को प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलेगी, साथ ही अदालती मामलों में बैंक के पक्ष को मजबूती से रखा जा सकेगा। इससे पहले विधेयक पर चर्चा के दौरान कई सदस्यों ने बैंक ग्राहकों के साथ बढ़ते साइबर अपराध को लेकर चिंता व्यक्त की। इस विधेयक के पारित होने के बाद सदन में कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई, जिसका उद्देश्य उस मौजूदा कानूनी प्रावधान को हटाना है जो बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान तरीकों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR लागू करने से रोकता है। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि विधेयक में भारत को विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में विनिर्माण केंद्र के रूप में मजबूत करने और वैश्विक कंपनियों को उपकरण, पुर्जे तथा सामग्री लाने के लिए प्रोत्साहित करने का उद्देश्य निहित है। मंत्री के जवाब के बाद कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया गया। तत्पश्चात विशेष उल्लेख के जरिए सदस्यों ने लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। मंगलवार को लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे शुरू होते ही विपक्षी दलों के सदस्य हंगामा करने लगे। हंगामा देखते ही अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कुछ देर बाद ही बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद 2 बजे सदन की बैठक शुरू हुई तो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया। उन्होंने कहा कि केरल की 15वीं विधानसभा ने 14 जून 2024 को संकल्प पारित कर केंद्र सरकार से अपील की थी कि संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के लिए तत्काल कदम उठाया जाए। इस दौरान शोरगुल जारी रहा और हंगामे के बीच ही सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया। इसके बाद सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया। सदन ने इस विधेयक को भी चर्चा के बिना ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा की बैठक सुबह 11 बजे शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का हंगामा शुरू हो गया और सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। जब 12 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो सदन में वही नजारा दिखा और सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बजे सदन की बैठक शुरू होने पर विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 को चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया।

इस दौरान विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। वहीं कुछ देर बाद विपक्ष के कई दलों के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। सदन ने चर्चा के बाद इस विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी और विपक्ष द्वारा पेश संशोधनों को ध्वनिमत से खारिज कर दिया। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। इस विधेयक में विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों के चयन के लिए आयोग गठित करने का प्रावधान है। राज्यसभा ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 पर हुई चर्चा का विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा जवाब दिए जाने के बाद विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कानून मंत्री मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में चल रही सुधार एक्सप्रेस का हिस्सा है। इसके बाद उच्च सदन में विशेष उल्लेख लिया गया, जिसमें कई सदस्यों ने लोक महत्व से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाए। शाम 4:30 पर उच्च सदन की बैठक को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। बुधवार को लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा और कुछ मिनट के भीतर ही बैठक दोपहर 2 तक स्थगित कर दी गई। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही और प्रश्नकाल चलाने में सहयोग का आग्रह करते हुए कहा, नीतियों और विचारों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन देश सदन चलते हुए देखना चाहता है। 2 बैठक पुनः शुरू हुई तो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन FCRA विधेयक 2026 को संसद की संयुक्त समिति के पास भेजने का प्रस्ताव रखा। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और द्रमुक ने विधेयक को अल्पसंख्यकों के खिलाफ करार देते हुए इसे वापस लेने की मांग की। सरकार ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इस विधेयक में एक भी प्रावधान अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है तथा ये सिर्फ देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधेयक को अल्पसंख्यकों के खिलाफ बताया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस और कई विपक्षी दलों ने खुद मांग की थी कि विधेयक को संयुक्त समिति को भेजा जाए और अब जब इसे भेजा जा रहा है तो इस पर आपत्ति क्यों है। इसके बाद सदन ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच विधेयक को संयुक्त समिति को भेजने के प्रस्ताव को ध्वनिमत से मंजूरी दी। नियम के अनुसार इस संयुक्त समिति में 31 सदस्य होंगे, जिनमें लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल होंगे। प्रस्ताव में कहा गया है कि समिति वर्ष 2026 के शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के आखिरी दिन तक लोकसभा को रिपोर्ट सौंपेगी। हंगामे के बीच पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने अपराह्न 2:27 पर सदन की बैठक 3 तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बैठक पुनः शुरू हुई तो केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने विपक्षी सदस्यों के विरोध के बीच खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को सदन में चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया। हंगामे के बीच सदन ने बिना चर्चा के विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही 3:15 पर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इस बीच इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करने वाली समिति की रिपोर्ट लोकसभा में पेश की गई। न्यायमूर्ति वर्मा के आधिकारिक आवास से कथित तौर पर नोटों की अधजली गड्डियां मिलने के मामले में उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही शुरू की गई थी। लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने जांच समिति की 2 वाली रिपोर्ट लोकसभा के पटल पर रखी। उधर राज्यसभा की बैठक शुरू होने पर विपक्ष का हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच ही माकपा सदस्य जॉन ब्रिटास ने कहा कि भाजपा की एक सदस्य ने उन्हें कथित तौर पर लुंगी वाला कहकर निशाना बनाया। विपक्षी सदस्यों ने ब्रिटास का समर्थन किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभापति से अनुरोध किया कि वे संबद्ध सदस्यों को अपने कक्ष में बुलाएं और उनकी बात सुनकर समाधान निकालें। सभापति राधाकृष्णन ने कृत सदस्यों को टिप्पणियां करते समय ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि किसी की भावनाएं आहत ना हो। सभापति ने कहा कि वे संबंधित सांसदों को अपने कक्ष में बुलाकर इस मामले पर चर्चा करेंगे। सदन में हंगामा देखते हुए सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 तक के लिए स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही दोपहर 2 शुरू होने पर भाजपा सदस्य सुष्मिता देव ने अपना पक्ष रखा। सुष्मिता देव ने कहा कि उन्होंने किसी राज्य की वेशभूषा पर कोई टिप्पणी नहीं की और राज्यसभा से ऐसा कोई संदेश नहीं जाना चाहिए जिससे भारत को सांस्कृतिक या धार्मिक आधार पर बांटने की भावना पैदा हो। इसके बाद कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्य विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए सदन से बहिर्गमन कर गए। उसके बाद सदन ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा के बाद मंजूरी दे दी, जिसमें राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने का प्रावधान है।

0: ने विधेयक पर हुई चर्चा का सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल के जवाब के बाद इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। उच्च सदन ने विधेयक पर विपक्ष द्वारा पेश संशोधनों को खारिज कर दिया। इस विधेयक के पारित होने के बाद उच्च सदन ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। बृहस्पतिवार को दोनों सदनों की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। मानसून सत्र के आखिरी दिन लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे आरंभ होने पर अध्यक्ष ने आसन पर बैठते ही सदस्यों से राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सम्मान में खड़े होने के लिए कहा। हालांकि सामान्यतः सत्र समाप्ति के मौके पर वंदे मातरम से पहले वे अपने पारंपरिक संबोधन में उस सत्र की कार्य उत्पादकता, उसमें पारित विधेयकों, पूछे गए प्रश्नों आदि का उल्लेख करते हैं। वंदे मातरम की सभी 6 अंतरों के गायन के रिकॉर्डिंग के बाद उन्होंने सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कई अन्य दलों के प्रमुख नेता तथा सदस्य सदन में मौजूद थे। उधर राज्यसभा भी बृहस्पतिवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। ये राज्यसभा का 271वां सत्र था। सुबह 11 बजे सदन की बैठक शुरू होने पर विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध लोगों ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में रामलीला मैदान के उस मंच का शुद्धिकरण किया जहां उन्होंने भाषण दिया था। श्री खड़गे ने मांग की कि मंच का शुद्धिकरण करने वाले के खिलाफ अस्पृश्यता अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जाना चाहिए। सभापति राधाकृष्णन तथा सदन के नेता जेपी नड्डा ने इस घटना की निंदा की। सदन के नेता ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। इसके बाद सदन में खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई और इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। तत्पश्चात बैठक को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच विधेयक को सदन में चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया। विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए खान मंत्री रेड्डी ने कहा कि प्रस्तावित कानून का उद्देश्य राज्यों की स्वायत्तता या उनके राजस्व अधिकारों में हस्तक्षेप करना नहीं, बल्कि पूरे देश में खनिजों की दरों में एकरूपता सुनिश्चित करना है। रेड्डी ने कहा कि केंद्र सरकार कोयला, चूना पत्थर, लोह अयस्क, तांबा और मैंगनीज जैसे प्रमुख खनिजों को विनियमित करना चाहती है, जबकि 49 गौण खनिजों के मामलों में राज्यों के अधिकार बरकरार रखेंगे। चर्चा के दौरान कुछ सदस्यों ने विधेयक का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि सरकार राज्यों के अधिकारों का हनन कर रही है। सदन ने विधेयक को राज्यसभा की प्रवर समिति के पास भेजने के लिए द्रमुक सदस्य तिरुचि शिवा और कुछ अन्य विपक्षी सदस्यों द्वारा पेश संशोधन को विध्वनिमत से खारिज कर दिया। सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने से पहले सभापति ने सदस्यों से सदन की गरिमा बनाए रखने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि 20 जुलाई से शुरू हुए मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा की उत्पादकता महज 39.17% रही। हालांकि विधानों के बीच सदन ने 12 विधेयकों पर विचार किया और उन्हें पारित या वापस किया। अभी आप संसद में हुई सप्ताह की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर प्रस्तुत है राज्य भर में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह पर आधारित विशेष रेडियो रिपोर्ट। वाचन संजय किशोर, प्रस्तुति मोहम्मद शाहिद सवा एवं चंद्रमणि कुमार सिन्हा।
2: आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य भर में आयोजित विभिन्न समारोहों पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। भारतवर्ष का 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह राजधानी पटना सहित संपूर्ण बिहार में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बिहार के विभिन्न कस्बों एवं नगरों में जगह जगह प्रभात फेरियां और झांकियां निकाली गईं। सरकारी कार्यालयों एवं आवासों सहित बड़े स्तर पर लोगों ने अपने अपने घरों में शान से तिरंगा फहराकर देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम का प्रदर्शन किया।

0: यानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित किया गया, जहां बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी के द्वारा सबसे पहले परेड की सलामी ली गई और फिर गारद का निरीक्षण किया गया।
1: माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी के सरकंडों द्वारा पवित्र राष्ट्रीय ध्वज हवा में लहराने लगा।
0: समारोह के सबसे महत्वपूर्ण पलों में एक विशिष्ट पल वह था जब उपस्थित जनसमूह के द्वारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का पूर्ण गायन किया गया।

0: पश्चात माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को सम्मान पूर्वक फहराया गया। राष्ट्रधुन के साथ साथ उपस्थित जनसमूह के द्वारा राष्ट्रगान किया गया। इस अवसर पर राष्ट्र के गौरवशाली इतिहास एवं महान स्वतंत्रता सेनानियों को नमन एवं याद करते हुए माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उन्होंने कहा,
1: आज हम 80वें स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर एकत्रित हुए हैं। आज का ये पावन दिन हमें हमारे राष्ट्र के गौरवशाली इतिहास की याद दिलाती है। यह दिन उन महान स्वतंत्रता सेनानियों और अमर वीरों के त्याग, तपस्या और बलिदान का प्रतीक है, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आजादी दिलाई। मैं इस पावन अवसर पर सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूँ।
0: माननीय मुख्यमंत्री ने एक नए प्रयोग सहयोग शिविर के बारे में बताते हुए कहा,
1: हम लोगों ने एक नया प्रयोग शुरू किया, सहयोग शिविर की शुरुआत किया। साथ ये प्रशासन को जनता के द्वारा पहुंचने की एक महत्वपूर्ण पहल है। प्रत्येक माह के प्रथम और तृतीय मंगलवार को आयोजित होने वाले इस सहयोग शिविर के माध्यम से आम नागरिक की अपनी शिकायतें एवं समस्या सीधे प्रशासन के समक्ष रख सकते हैं। जन शिकायत के निष्पादन हेतु 30 दिनों के सख्त समय सीमा तय की गई है। यदि कोई अधिकारी कोई कर्मचारी इस अवधि में लापरवाही बरतता है तो उसके खिलाफ चरणबद्ध कार्रवाई की जा रही है। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि सख्त निगरानी और जवाबदेही तय करते हुए राज्य में अभी तक 6,46,181 आवेदन आए, जिसमें 95% जो आवेदन थे उसका सफल निष्पादन करने का काम हमारी सरकार ने किया।
0: महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कहते हुए माननीय मुख्यमंत्री,
1: महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सुरक्षित सफर सुविधा योजना का प्रारंभ करने वाला बिहार देश में तीसरा राज्य बन चुका है। साथ राज्य के सभी थानों क्षेत्रों में अभिया ब्रिगेड का गठन किया गया है और अब तक 855 महिला थानाओं में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने का काम किया गया, जो 24 घंटा हमारी महिला बहनों को सुरक्षा देने के लिए खड़ी रहती है। इसके साथ साथ बहन और बेटियों की सुरक्षा के लिए, चाहे वो कॉलेज हो चाहे वो बालिका स्कूल हो, उनके जगह पर इसी राखी के दिन से पुलिस दीदी जिनको की स्कूटी दिया गया, लगभग 5,000 मोटरसाइकिल और स्कूटी उपलब्ध कराए गए हैं। सभी स्कूल और कॉलेज के सामने राखी के दिन से सभी जगह सुरक्षा देने का काम हमारी महिला बहने करने का काम करेंगी। साथ
0: बिहार में बनने वाले 12 नए टाउनशिप के बारे में बिहार के वासियों को बताते हुए माननीय मुख्यमंत्री,
1: हम लोगों ने 12 टाउनशिप जो हमारा गौरवशाली इतिहास था, पटना के बगल में हम पाटलिपुत्रा सैटेलाइट टाउनशिप बनाने का काम कर रहे हैं, सोनपुर के बगल में हरियरनाथपुर बनाने का काम कर रहे हैं, गया जी के बगल में मगध के नाम पर टाउनशिप बनाने का काम कर रहे हैं और दरभंगा के बगल में मिथिला के नाम पर, सहरसा में कोसी के नाम पर और पूर्णिया में माँ पूरन देवी के नाम पर और मुंगेर में अंग के नाम पर और सीतामढ़ी में माँ सीता के नाम पर सीतापुरम बनाने का काम कर रहे हैं। भागलपुर में विक्रमशिला के नाम पर, रोहतास में डेहरी के नाम पर और उसी तरह छपरा में सारण के नाम पर नया टाउनशिप बनाने का काम

0: कर रहे हैं, उसमें सारी चीजों की कल्पना की जाएगी। वहां पर हम स्पोर्ट्स के लिए भी हम पूरी व्यवस्था करने का काम करेंगे, स्पोर्ट्स सिटी भी बनाएंगे। और पटना के बगल में तो हम लोगों ने लगभग 600 से अधिक एकड़ पर हम लोगों ने वहां पर स्पोर्ट्स सिटी बनाने का भी निर्णय लिया है।
1: डिग्री कॉलेज एवं अन्य शिक्षण संस्थानों के बारे में बोलते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी,
0: देश की आजादी के बाद याद कीजिए साथियों, बिहार जैसे राज्य में मात्र 278 डिग्री कॉलेज होते थे, लेकिन एक दिन में 15 जुलाई को हम लोगों ने तय किया और एक दिन में 211 डिग्री कॉलेज पूरे बिहार में खोलने का काम किया साथ। और आज गर्व से कह सकता हूँ, इसमें जो शिक्षक की जरूरत थी उसकी भी नियुक्ति करने का काम किया। इसके साथ साथ 9वां से लेकर 12वां तक की पढ़ाई के लिए 551 जगह पर मॉडल स्कूल सरस्वती विद्या निकेतन की स्थापना किया गया। और आपको जानकर खुशी होगी, जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए IIT, JEE और नीट की तैयारी का मुफ्त व्यवस्था इसी मॉडल स्कूल में करने का काम हमारी सरकार करेगा।

0: करने का काम किया। इसके साथ साथ नौवां से लेकर बारहवां तक की पढ़ाई के लिए 551 जगह पर मॉडल स्कूल सरस्वती विद्या निकेतन की स्थापना किया गया। और आपको जानकर खुशी होगी, जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए IIT, JEE और नीट की तैयारी का मुफ्त व्यवस्था इसी मॉडल स्कूल में करने का काम हमारी सरकार करेगा साथ, क्योंकि हमारे बजट का लगभग 20% से अधिक राशि हम लोग इसमें खर्चा कर रहे हैं। पूरे देश में 10 रुपये में इंजीनियरिंग की पढ़ाई, 5 रुपये में पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कहीं नहीं मिलेगा। ये बिहार है जहाँ ऐसी व्यवस्था किया गया है।
1: 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह बिहार विधानमंडल में भी धूमधाम से मनाया गया। बिहार विधानसभा अध्यक्ष माननीय डॉक्टर प्रेम कुमार ने इस अवसर पर राज्यवासियों को दिए अपने संदेश में कहा,
2: आज देश के कोने कोने में हम स्वाधीनता संग्राम को, स्वतंत्रता की आजादी को याद कर रहे हैं और हम अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाएंगे, क्योंकि अधिकार हमें संविधान देता है लेकिन राष्ट्र की मजबूती हमारे कर्तव्यों से होती है। और तिरंगा हमारी शान रहे, भारत माँ का मान रहे, वीरों का बलिदान रहे, भारत सदा महान रहे। आइए आज स्वाधीनता दिवस के पावन अवसर पर हम सब इस मिलकर संकल्प लें, हम भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे, हम संविधान का सम्मान करेंगे, हम लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करेंगे, हम जाति धर्म भाषा के भेद से ऊपर उठकर राष्ट्र को सर्वोपरि रखेंगे, हम स्वच्छ स्वस्थ और विकसित बिहार के निर्माण में अपना योगदान देंगे।
1: बिहार विधान परिषद के माननीय सभापति श्री अवधेश नारायण सिंह ने भी जनता को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए अपना संदेश दिया।
3: आज स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, पूरे देश में उल्लास है और लगता है स्वतः स्फूर्त लोगों में एक नई एनर्जी आ जाती है इस दिन को याद करते हुए। और आज के दिन के लिए पूरे बिहार और भारत के सभी लोगों के लिए हम लोग बधाई देते हैं।
1: आकाशवाणी पटना में 80वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर केंद्र अध्यक्ष ब्रजेश कुमार ने तिरंगा फहराकर सभी को बधाई दी। इस पुनीत अवसर पर पटना स्थित स्कूल, कॉलेजों और अन्य संस्थाओं में भी हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया गया। पटना के अलावा प्रदेश के सभी जिलों में 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह धूमधाम के साथ आयोजित किया गया। प्रस्तुत है आकाशवाणी भागलपुर की ये रिपोर्ट।
4: उषा की पहली किरण के साथ ही 80वां स्वतंत्रता दिवस स्मार्ट सिटी भागलपुर में पूरे हर्षोल्लास और उमंग के साथ मनाया गया। मुख्य समारोह शहर की हृदय स्थली सैंडिस कंपाउंड में आयोजित हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि थे प्रभारी मंत्री भागलपुर जिला सह नगर विकास एवं आवास विभाग माननीय श्री नीतीश मिश्रा। सर्वप्रथम माननीय मंत्री द्वारा परेड का निरीक्षण किया गया एवं सलामी ली गयी।
5: सलामी सस।
4: झंडोत्तोलन के पश्चात माननीय मंत्री ने वहां उपस्थित जन समूह को सरकार द्वारा चलाए जा रहे जन कल्याणकारी योजनाओं एवं विकास कार्यों से अवगत कराया।
6: आज भारत आत्मविश्वास और संभावनाओं से भरा हुआ राष्ट्र है। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत अमृत काल और विकसित भारत 2047 की दिशा में विकास भी विरासत भी के मूल मंत्र के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट जी के सशक्त नेतृत्व में सरकार भागलपुर जिले के सर्वांगीण विकास हेतु कृत संकल्पित है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भागलपुर की धरती से ही 211 नव स्थापित डिग्री कॉलेज का उद्घाटन किया जाना एक ऐतिहासिक कदम है। भागलपुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर आधारित नए विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय, ऐतिहासिक विक्रमशिला विश्वविद्यालय के लिए 220 एकड़ भूमि का स्थानांतरण, मुंगेर से सबौर तक गंगा पथ परियोजना, कहलगांव से बटेश्वर मंदिर तक रूपे के निर्माण की भी घोषणा एक ऐतिहासिक कदम है। सरकार द्वारा राज्य में 12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप का विकास किया जा रहा है। भागलपुर में बनने वाली नई सैटेलाइट टाउनशिप का नाम विक्रमशिला रखा गया है, जो कि लगभग 140 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में प्रस्तावित है। मेरे युवा साथियों, हम चाहते हैं कि बिहार का युवा केवल नौकरी खोजने वाला ना बने बल्कि वह नौकरी देने वाले बने। साथियों, विकास केवल सरकार के प्रयासों से संभव नहीं है, इसके लिए जन भागीदारी आवश्यक है। आइए स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आज हम सब मिलकर संकल्प लें कि भागलपुर और राज्य की प्रगति में निष्ठा के साथ योगदान देंगे। आइए हम सब मिलकर ऐसा बिहार बनाएं जहां इतिहास पर हमें गर्व हो, वर्तमान पर हमें विश्वास हो और भविष्य के प्रति आशा हो। अंत में

0: मैं भागलपुर जिले के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की पुनः हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय बिहार, वंदे मातरम।
1: इस मुख्य समारोह में भागलपुर के पुलिस महानिरीक्षक श्री विवेक कुमार, जिला अधिकारी श्रीमती अलंकृता पांडे, वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार सहित सभी वरीय पदाधिकारी, कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में आम जन भी मौजूद रहे। इसके अलावा भागलपुर नगर निगम परिसर में भी 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नगर निगम परिसर में झंडोत्तोलन किया मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय परिसर में भी 80वां स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम मनाया गया। झंडोत्तोलन किया कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर विमलेंदु शेखर झा ने। कृषि विश्वविद्यालय सबौर में 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर डी आर सिंह ने परेड का निरीक्षण करने के पश्चात झंडोत्तोलन किया। भागलपुर के अनुमंडल नौगछिया में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया और वहां समारोह में ध्वजारोहण किया अनुमंडल पदाधिकारी रोहित करदम ने। पड़ोसी जिला मुंगेर में भी 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे बिहार सरकार के माननीय मंत्री गन्ना उद्योग विभाग श्री संजय कुमार। माननीय मंत्री के द्वारा झंडोत्तोलन के पश्चात वहां उपस्थित जन समूह को स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं दी गई एवं सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं एवं विकास कार्यों से अवगत कराया।
2: मुझे यह बताते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी की दूरदर्शी सोच एवं कुशल नेतृत्व में मुंगेर जिला नित्य प्रतिदिन विकास की नई इबारत लिख रही है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में मुंगेर जिला में कुल 23 नए सरस्वती विद्या निकेतन का शुभारंभ किया गया। स्वास्थ्य के माध्यम से कुल 275 प्रकार की दवा निःशुल्क का लाभ मुंगेर वासियों को मिल रहा है। जल जीवन हरियाली महाअभियान अंतर्गत जिले के सभी जल निकायों को अतिक्रमण मुक्त करते हुए जीर्णोद्धार का कार्य किया जा रहा है। मैं इस पावन अवसर पर आप सभी से अपील करता हूं कि आप सभी जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर जिले के विकास में अपनी सहभागिता दें ताकि मुंगेर जिला राज की ही नहीं अपितु देश विदेश की पटल पर भी विख्यात हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
1: इसी के साथ संपन्न होती है आकाशवाणी भागलपुर की ये रिपोर्ट। अतुल कुमार प्रियदर्शन के साथ मैं मोहम्मद सरशार अहमद।
3: दरभंगा में भी सभी क्षेत्रों में स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
4: दरभंगा और इसके आसपास के क्षेत्रों में 80वां स्वतंत्रता दिवस पूरे जोशो खरगोश एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। खिली धूप और मंद मंद पुरवैया हवा के वातावरण में जिले का मुख्य समारोह लहरियासराय स्थित नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग के मंत्री सह दरभंगा जिला के प्रभारी मंत्री कुमार शैलेंद्र ने परेड का निरीक्षण किया और सशस्त्र गारद की सलामी ली। राष्ट्रीय गीत के बाद मुख्य अतिथि कुमार शैलेंद्र ने ध्वजारोहण किया, फिर राष्ट्रगान गाया गया। इस अवसर पर समारोह में आए जिलावासियों को संबोधित करते हुए मंत्री कुमार शैलेंद्र ने सबों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी, साथ ही सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र किया।
5: आज का दरभंगा अपने गौरवशाली इतिहास के साथ साथ विकास की नई कहानी भी लिख रहा है। मित्रों, दरभंगा एयरपोर्ट का अत्याधुनिक अपना नया टर्मिनल जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। हमारी नई सरकार की प्राथमिकताओं में रोजगार, आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, निवेश, महिला एवं युवा सशक्तिकरण प्रमुख है। विद्यार्थी सहयोग पोर्टल का जल्द ही शुभारंभ करेगी। हमारे जो बच्चे विद्यार्थी हैं उनके लिए ये पोर्टल खोला जा रहा है। हमारी सरकार का लक्ष्य सिर्फ वादे करना या योजनाएं बनाना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि उसका लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत 5.5 लाख से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग हुई है। निक्षय पोषण योजना के जरिए 12,000 मरीजों को आर्थिक मदद और फूड बास्केट दिए गए हैं।
4: ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के मुख्य कार्यालय भवन में कुलपति संजय कुमार चौधरी ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं, शिक्षकों एवं विश्वविद्यालय कर्मियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा,

0: भारत जो नौजवानों की धरती है और नौजवान अगर नई शिक्षा नीति के तहत अपने आप को स्किल डेवलपमेंट में आगे ले जाएंगे तो हम एक ऐसे मैन पावर का सृजन करने में सफल होंगे जिससे सामने दुनिया की सभी अर्थव्यवस्था छोटी रहेगी। मेरू के अम्ब्रेला में है, मेरू के तहत कई प्रोग्रेसिव और डेवलपमेंट का काम हुआ है, एकेडमिक्स का काम आगे बढ़ रहा है, कई विभागों में नई नई स्किल डेवलपमेंट के कोर्स चल रहे हैं। हमारा जो इतिहास है वो आत्मनिर्भर और बड़ा ही गौरवशाली, इसलिए भारत के युवाओं से मेरा ये आह्वान है, आप NEP 2020 के तहत हर एक एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखकर इस अवसर का ध्यान में लेते हुए पढ़ाई के साथ साथ अपना स्किल डेवलपमेंट करें। अभी तो बिहार में आप अव्वल हैं, वो दिन दूर नहीं, धीरे धीरे आप देश के 10 स्टेट यूनिवर्सिटीज में आप आएंगे।
1: कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा में कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे ने ध्वजारोहण किया और अपने संबोधन में उन्होंने कहा,
2: आज इस पवित्र त्रिरंग ध्वजस्य अधः वयं सर्वेपि समवेताः अस्माकं देशस्य स्वातंत्र दिनोत्सवं सम्मानयितुं सर्वेभ्यः भारतीय स्वतंत्रतायाः अभिनंदनानि। अस्माकं स्वतंत्रतायाः रक्षणाय अस्मिन्नपि अवसरे सीमा प्रहरिषु एतावत् अस्माकं सैनिकाः सन्ति, येषां साहसेन अस्माकं देशः एतावत् सुरक्षितः अस्ति। ते सर्वेपि अस्मभिः स्मर्तव्याः, अभिनंदनीयाः। पुनश्च एतावत् वर्षाणि महान्तः स्वतंत्रता प्राप्ति अनन्तरं अस्य देशस्य विकासार्थं ये सर्वे प्रयतितवन्तः तान् सर्वान् अपि स्मृत्वा तेषां प्रेरणया अस्माभिः अग्रे गन्तव्यम्।
1: दरभंगा और इसके आसपास के क्षेत्रों में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। आकाशवाणी दरभंगा से मितेश कुमार मिश्रा के साथ मैं सज्जाद अहमद खान।
3: इस अवसर पर प्रस्तुत है आकाशवाणी पूर्णिया की ये रिपोर्ट।
4: आजादी के 80 वर्ष 8 दशकों की वह गौरव गाथा जिसकी हर पंक्ति में शौर्य है, हर अध्याय में बलिदान है और हर शब्द में भारत माता के प्रति अटूट प्रेम। 15 अगस्त का दिन जब आता है तो तिरंगा केवल आकाश में नहीं लहराता, वह लहराता है हमारी स्मृतियों में, हमारे स्वाभिमान में और उन अनगिनत वीरों की याद में जिन्होंने स्वतंत्र भारत का सपना देखा था और उसे साकार करने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। इसी गौरव गरिमा और देशभक्ति के भाव के साथ पूर्णिया प्रमंडल के चारों जिलों पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार में 80वां स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। पूर्णिया के ऐतिहासिक इंदिरा गांधी स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह आयोजित हुआ। पूर्णिया के प्रभारी मंत्री श्री रत्नेश सदा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। तिरंगे के फहराते ही पूरा स्टेडियम राष्ट्रगान की स्वर लहरियों से गूंज उठा। वातावरण में देशभक्ति थी और चेहरे पर गर्व का उजास। समारोह को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री ने पूर्णिया जिले में हो रहे विकास कार्यों और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियों को सामने रखा। उन्होंने कहा कि विकास का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक सुविधाओं और अवसरों को पहुंचाना है।
5: बंधुओं एवं प्रिय जिलावासियों को सर्वप्रथम मैं अपनी ओर से 80वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना देता हूं। इस पावन अवसर पर समस्त पूर्णिया वासियों का अभिनंदन करते हुए उन सभी अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आभार व्यक्त करता हूं, जिनके बलिदान से आज ही के दिन वर्ष 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। साथ ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में ऐतिहासिक महत्व के दृष्टिगत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ को देश भर में समारोह पूर्वक आयोजित किया जा रहा है। देश एवं राज्य के कुशल नेतृत्व एवं विकसित बिहार के लिए दृढ़ संकल्पित

0: राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के माध्यम से चलाए जा रहे अनेकों कल्याणकारी योजनाओं का परिणाम आपके सामने है। मानव संसाधन का विकास हमारी पहली प्राथमिकता है। सात निश्चय थ्री उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य अंतर्गत सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज की स्थापना के परिकल्पना के तहत पूर्णिया जिले में 6 राजकीय महाविद्यालय की स्थापना की गई है। साथ ही पूर्णिया जिला अंतर्गत किसानों को योजनाओं का लाभ मिल सके इसके लिए कुल 2,18,378 किसानों को फार्मर आईडी बनाया, जिसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के कुल 1,05,046 लाभार्थी शामिल है। पूर्णिया जिला मखान की खेती के लिए अग्रणी जिला है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत अभियान बसेरा वन के तहत 4,925 एवं अभियान बसेरा टू के तहत 2,691 बांसविहीन परिवारों को बांस भूमि उपलब्ध कराई गई है। आज भी कुल 665 बांसविहीन पर्चा भूमिहीन परिवारों के बीच में मंच के माध्यम एवं अंचल अनुमंडल में वितरित किया जा रहा है। आपदा विभाग के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा बाढ़ से निपटने के लिए पूर्ण तैयारी पूरी की जा चुकी है।
1: पूर्णिया जिले के साथ ही आसपास के कटिहार, किशनगंज और अररिया में भी स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम पूरे उल्लास के साथ मनाया गया तथा अतीत के बलिदानों को सम्मान दिया गया। वर्तमान की उपलब्धियों का उत्सव और भविष्य के भारत के संकल्प के साथ ही स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से चारों तरफ मनाया गया। तिरंगा यूं ही ऊंचा रहे, भारत का गौरव यूं ही बढ़ता रहे और आजादी का यह उजाला हर पीढ़ी के जीवन को रोशन करता रहे। आकाशवाणी पूर्णिया से आशीष कुमार सिंह के साथ शिवाजी झा, जय हिंद।
2: रोहतास जिले के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर आधारित आकाशवाणी सासाराम की यह रिपोर्ट।
3: हल्के बादलों के बीच भारतीय स्वतंत्रता का 80वां समारोह रोहतास और कैमूर जिलों में धूमधाम के साथ मनाया गया। रोहतास जिला में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह न्यू स्टेडियम फजलगंज में आयोजित हुआ, जहां रोहतास जिलाधिकारी दीपक कुमार मिश्र तथा पुलिस अधीक्षक रोशन कुमार सहित जिले के विभिन्न पदाधिकारियों की उपस्थिति में माननीय मंत्री खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार सरकार सह प्रभारी मंत्री रोहतास अशोक चौधरी द्वारा ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण से पूर्व माननीय मंत्री ने परेड की सलामी ली। तत्पश्चात ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मंत्री जी ने सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए देश के शहीदों को श्रद्धांजलि दी।
4: युवा साथियों तथा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को मैं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूं। स्वतंत्रता हमें सहज रूप से प्राप्त नहीं हुई है। असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने अदम्य साहस, त्याग और देशभक्ति के बल पर विदेशी दासता से देश को मुक्ति दिलाई। आज हम उन सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। साथ ही भारत माता के उन वीर सपूतों को भी कोटि कोटि नमन करते हैं, जिन्होंने सीमाओं पर मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। उनके त्याग के कारण ही आज हम स्वतंत्र भारत की खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं।
3: रोहतास जिला में विकास की चर्चा करते हुए मंत्री अशोक चौधरी ने कहा,
4: रोहतास केवल अपने पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि यह विकास की अपार संभावनाओं वाला जिला भी है, जहाँ के लोग परिश्रमी, उत्साही और अपनी गंगा जमनी तहजीब में विश्वास रखने वाले हैं। यहाँ की मिट्टी अत्यंत उपजाऊ है। मनोहर पहाड़, मनोरम झरने, प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थल, ये सभी रोहतास की विशिष्ट पहचान है। रोहतास के प्रत्येक कोने में प्रतिभा मौजूद है, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, सेना अथवा सशस्त्र बलों का क्षेत्र हो या उद्यमिता का। रोहतास वासियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है तथा राज्य और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हमारा दायित्व है कि इस प्रतिभा को अवसर मिले।
3: खाद्य सुरक्षा के बारे में बताते हुए मंत्री जी,
4: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा

0: अधिनियम 2013 के तहत रोहतास जिले में पूर्व से चयनित परिवारों अर्थात PHH कार्ड धारियों की कुल संख्या 3,76,092 है तथा परिवारों की कुल सदस्यों की संख्या 17,42,048 है। वर्तमान में NFC योजना अंतर्गत प्रत्येक लाभुक सदस्यों को निःशुल्क 2 किलोग्राम गेहूँ, 3 किलोग्राम चावल अर्थात 5 किलोग्राम खदान का वितरण किया जा रहा है। साथ ही ई श्रम पोर्टल पर निबंधित असंगठित क्षेत्र प्रवासी श्रमिकों को चिन्हित कर कुल 18,243 पात्र लाभुकों को राशन कार्ड निर्गत किया गया है। हमारा स्पष्ट संकल्प है अन्न केवल गोदाम में नहीं जरूरतमंदों के घर तक पहुंचना चाहिए।
1: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा राज्य में किए जा रहे विकास की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा,
0: माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में आज हमारा बिहार नव निर्माण की ऊंचाइयों को छू रहा है। हमारा रोहतास जिला भी चतुर्दिक विकास की ओर अग्रसर है। हमारी सरकार का लक्ष्य है केवल योजनाओं बनाना नहीं बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक सही समय पर और पारदर्शी तरीके से पहुंचे। यही जनता की अपनी सरकार के वास्तविक अर्थ है।
1: समारोह का समापन जिला के विभिन्न अंचलों के भूमिहीनों के बीच बसेरा योजना के तहत पर्चा वितरण के साथ हुआ। उधर कैमूर जिला मुख्यालय भभुआ स्थित जगजीवन स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह आयोजित हुआ। जिलाधिकारी नितिन कुमार सिंह तथा पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी सहित जिले के विभिन्न पदाधिकारियों की उपस्थिति में माननीय मंत्री उच्च शिक्षा एवं विधि विभाग बिहार सरकार सह प्रभारी मंत्री कैमूर संजय सिंह टाइगर द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इसके अलावा जिला अंतर्गत अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर भी धूमधाम के साथ भारतीय स्वतंत्रता दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आकाशवाणी सासाराम से अपने सहयोगी तकनीशियन विनय कुमार, सहायक निरंजन कुमार तथा कार्यक्रम मधिशासी आशीष कुमार रंजन के साथ मैं लाल बहादुर दुबे।
2: इसी के साथ आकाशवाणी पटना द्वारा 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में राज्य भर में आयोजित विभिन्न समारोहों पर आधारित रेडियो रिपोर्ट सम्पन्न हुई। वाचन सहयोग संजय किशोर और प्रस्तुतकर्ता थे मोहम्मद शाहिद सबा और चंद्रमणि कुमार सिन्हा।

0: अभी आप सुन रहे थे स्वतंत्रता दिवस समारोह पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। अब आप समाचार सुनेंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व किया। नागरिकों से मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़े सपने देखने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भरता और युवाओं तथा महिलाओं के सशक्तिकरण पर बल दिया। भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में युवा शक्ति का उपयोग करने के लिए सप्तधारा रूपरेखा का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य घोषित किया। विश्व नेताओं ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। देश की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। इंडोनेशिया में फ्लोरेस तट के पास आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 47 लोगों की मौत। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट। FIH हॉकी विश्व कप में भारत ने ग्रुप डी के मैच में वेल्स को 3-1 से हराया और टेस्ट क्रिकेट में भारत ने गोल में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट के नुकसान पर 288 रन बनाए। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम

0: मातरम का गायन हुआ।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा। वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
0: श्री मोदी ने इस वर्ष के आयोजन में 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया।
1: आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा और वो सपना है जब आजादी के 100 साल होंगे 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कई अभूतपूर्व संकटों से बाहर निकलने में सफल रहा है। उन्होंने कहा कि इन संकटों के दौरान टीके, ईंधन, गैस, डीजल और उर्वरक की कमी को लेकर काफी अफवाहें फैलाई गई थी। श्री मोदी ने कहा कि सुनियोजित नीतियों, तैयारियों और समय रहते उठाए गए कदमों के कारण देश ने इन चुनौतियों का डटकर मुकाबला किया। श्री मोदी ने कहा कि सरकार 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने की दिशा में बढ़ रहा है।
1: एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारे समय की मांग है और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की।
1: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से सप्तधारा की शक्ति के उपयोग का आह्वान किया।
1: मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे। अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आह्वान करता हूँ। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा।
0: स्वतंत्रता दिवस समारोह पर हमारे संवाददाता की विस्तृत रिपोर्ट।
2: आज स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 वर्षों से चली आ रही गौरवशाली विरासत का स्मरण किया गया। इस वर्ष पहली बार लाल किले पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया गया। प्रधानमंत्री को तीनों सेनाओं और दिल्ली पुलिस के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जिसके साथ 21 तोपों की सलामी दी गई। वहीं भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टरों ने समारोह स्थल पर पुष्प वर्षा की। सेना के बैंड ने वंदे मातरम की मधुर धुन प्रस्तुत की और लाल किले पर मौजूद सभी लोगों ने एक साथ राष्ट्रीय गीत का गायन किया। इसके बाद राष्ट्रगान का भी गायन किया गया। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह में समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लगभग 5000 विशेष अतिथियों को लाल किले पर आमंत्रित किया गया था। सुपर्णा और सौम्य के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। महाराष्ट्र में स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों को संबोधित करते हुए किसानों, श्रमिकों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा

0: विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। मेघालय के राज्यपाल सीएच विजय शंकर ने शिलांग स्थित लोकभवन में स्वतंत्रता दिवस पर पारंपरिक एट होम समारोह का आयोजन किया। बिहार में स्वतंत्रता दिवस पारंपरिक उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया गया। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित मुख्य राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। लद्दाख में स्वतंत्रता दिवस समारोह करगिल के ख्री सुल्तान चो स्पोर्ट्स स्टेडियम में देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। आकाशवाणी करगिल ने बारू परिसर में उत्साह के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया। मणिपुर में स्वतंत्रता दिवस समारोह इम्फाल पश्चिम स्थित प्रथम मणिपुर राइफल्स परेड ग्राउंड में आयोजित हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विश्व नेताओं और विभिन्न देशों के राजनयिक मिशनों ने आज स्वतंत्रता दिवस पर भारत को शुभकामनाएं दी। उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत और अमेरिका के बीच मजबूत होती रणनीतिक साझेदारी का उल्लेख किया। सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम ने कौशल विकास, डिजिटल तकनीक, सतत विकास और उन्नत विनिर्माण के क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग का उल्लेख किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने भी भारत को शुभकामनाएं दी। लातविया के विदेश मंत्रालय ने भारत की निरंतर प्रगति, एकता और की कामना की। इसराइल के राजदूत रुवे नजार, अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो कोसिनो, श्रीलंका के उच्चायुक्त महिशिनी कोलोन ने, ऑस्ट्रेलिया उच्चायुक्त और कनाडा के उच्चायोग ने भी भारत को शुभकामनाएं दी। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने कहा कि आजादी के 8 दशक भारत की आकांक्षाओं, दृढ़ता और अटूट भावना को दर्शाते हैं। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार व्यक्त किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की शुभकामनाओं के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच बहुआयामी तथा सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों पक्ष मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इंडोनेशिया में फ्लोरेस द्वीप तट के पास आज आई 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 47 हो गई है। बचाव दल प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान चला रहे हैं। भूकंप के बाद देश के कई हिस्सों में 1 मीटर से कम ऊंचाई की सुनामी लहरें भी दर्ज की गई। मुख्य शहर माओमेर में बचाव दल ने 20 शव बरामद किए और 6 घायलों को बाहर निकाला। दक्षिणी लेबनान में आज इसराइल के हवाई हमले में 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। लेबनान की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने बताया कि अंसार गांव में एक मकान पर हुए इस हवाई हमले में 3 लोग घायल हुए हैं। इसराइल की सेना ने कहा है कि इसराइली सैनिकों के खिलाफ की गई एक कार्रवाई के जवाब में हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट news.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान कल से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा, जबकि अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे तक होगा। यह रखरखाव के कारण प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा।
2: अमृत उद्यान के संस्करण में देशज और स्थानीय ग्रीष्मकालीन पुष्प प्रमुख आकर्षण है। इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। वहीं रखरखाव कार्य के लिए उद्यान प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: सहकारिता मंत्री अमित शाह कल राजस्थान के अलवर में अलवर सरस डेयरी परिसर में नए डेयरी प्लांट की आधारशिला रखेंगे। वे वर्चुअल माध्यम से विभिन्न डेयरी प्रसंस्करण संयंत्रों और पशु आहार संयंत्रों का उद्घाटन करेंगे। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार कार्यक्रम के दौरान राजस्थान के 17 जिलों में

0: 6,262 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास और उद्घाटन किया जाएगा। इसके अलावा रोजगार उत्सव के तहत नवनियुक्त 10,500 से अधिक कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। दूरसंचार विभाग पुणे में 17 से 21 अगस्त तक ब्रिक्स सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT ट्रैक का आयोजन करेगा। इस वर्ष का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और बदलाव। कार्यक्रम की शुरुआत 7वें ब्रिक्स ICT कार्य समूह की बैठक से होगी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मूसलाधार वर्षा की संभावना है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 21 अगस्त तक इसी तरह के मौसम का अनुमान है। और खेलों में नीदरलैंड्स के एम्स्टलविन में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के ग्रुप डी के मैच में आज भारत ने वेल्स को 3-1 से हरा दिया। भारत की ओर से कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 जबकि संजय राणा ने 1 गोल किया। हरमनप्रीत को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत अपना अगला मैच 17 अगस्त को इंग्लैंड से खेलेगा। वहीं श्रीलंका के साथ गोल में खेले जा रहे भारत के ऐतिहासिक 600वें टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 2 विकेट पर 288 रन बनाए। भारत की ओर से देवदत्त पडिक्कल 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद रहे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व किया। नागरिकों से मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़े सपने देखने का आग्रह। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भरता और युवाओं तथा महिलाओं के सशक्तिकरण पर बल दिया। भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में युवा शक्ति का उपयोग करने के लिए सप्तधारा रूपरेखा का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य घोषित किया। विश्व नेताओं ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। देश की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। इंडोनेशिया के फ्लोरेस तट के पास आए भूकंप में 47 लोगों की मौत और टेस्ट क्रिकेट में भारत ने गोल में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट के नुकसान पर 288 रन बनाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम वल्सा विलियम्स with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi leads the nation in celebrating 80th Independence Day, urges citizens to dream big for a strong and self-reliant India. Prime Minister emphasizes on empowerment of youth and women for a Vikasit Bharat, unveils Saptadhara framework with aim of harnessing youth power to propel India to new heights. Prime Minister Modi announces target of 100 gigawatts nuclear power capacity by 2047. World leaders extend Independence Day greetings to India, praising its democratic journey, civilizational heritage, and expanding role in regional and global cooperation. In Indonesia, death toll in powerful earthquake rises to 47. Heavy rain alert issued in Arunachal Pradesh, Gangetic, West Bengal, Odisha, Uttar Pradesh and Uttarakhand till tomorrow. In hockey, India defeat Wales 3-1 in Group D match of FIH World Cup in the Netherlands. And in cricket, India post 288 for 2 at stumps on day 1 of first test against hosts Sri Lanka. The nation is celebrating its 80th Independence Day today. Prime Minister Narendra Modi led the Independence Day celebrations from the iconic Red Fort in Delhi. Addressing the nation from the ramparts of Red Fort, the Prime Minister said over the past 12 years, crores of citizens of the country, with their determination and dedication, made every possible effort to take the country to new heights. He said, a nation achieves greatness when it moves forward on the strength of its own dreams and resolve. The Prime Minister stressed that higher dreams and stronger resolutions

0: the overall scale and capability of the nation's efforts.
1: कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है जब अपने सपनों, अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है. बड़े सपने हमारी सोच को विस्तार देते हैं. हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए. जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से, आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है.
0: Prime Minister Modi said energy security is one of the major requirements of the present times, and the government has taken several significant steps in this direction. He said nuclear energy is an important means of ensuring a country's energy security.
1: Energy security ye hamare samay ki mang hai aur isliye humne pehle se hi us disha mein ek ke baad ek majboot kadam uthaye hain. Energy security ka ek bada madhyam hai parmanu urja, nuclear energy. हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है. 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं.
0: Prime Minister Modi said the government has opened up 99% of offshore areas that were once designated as no-go zones and converted them into go-ahead areas. He said the government is now actively pursuing exploration beneath the sea and making efforts to discover new reserves.
1: हमने 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया. और अब हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त हैं, हम प्रयास कर रहे हैं. हमने पिछले वर्ष उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रखते हुए समुद्र मंथन की घोषणा करके काम को गति देने का निर्णय कर लिया है.
0: Stressing on empowerment of youth and women for a Vikasit Bharat, Prime Minister Modi announced to provide free online coaching for poor and middle class families for various public examinations. He also announced that the government has decided that 1 crore youth will be given training in AI skilling in the next 1 year. He said this will enable them to take the lead in the global AI sector.
1: हमने पिछले दिनों AI Impact Summit किया था. AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है. लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूँ, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे.
0: The Prime Minister urged all parties to support the implementation of women's reservation in Parliament and state assemblies without making it a political fight. He said women should be given the opportunity to contribute to shaping India's policies. On Naxalism, the Prime Minister said the people of the country gave the opportunity to serve the nation in 2014 and he resolves to make the country free from Naxalism. In his address, the Prime Minister called upon the nation to harness the 7 streams of strength called Saptadhara. He said in the next 5 to 7 years, the country will achieve all that could not be achieved in the past 5 to 7 decades.
1: आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आह्वान करता हूँ. आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे. और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा.
0: Prime Minister Modi said in the next 7 to 8 years, another 5 to 8 semiconductor plants are set to commence operations. He said India has started production at 3 semiconductor manufacturing plants.
1: कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है और इसे चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो जाए. और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके हैं.
0: The Prime Minister highlighted the government's focus on critical minerals, saying that modern technology depends entirely on critical minerals and India is actively working to secure its position in this sector. Our correspondent takes a glimpse at independence celebrations at the Red Fort today.
2: Independence Day celebrations today commemorated 150 years of the enduring legacy of the

0: Sylvain, the Netherlands. For India, captain Harmanpreet Singh scored two goals, while Sanjay Rana scored one. Sam Welch scored the lone goal for Wales. In men's cricket, India were 288 for two in their first innings at stumps on day one of the first test against hosts Sri Lanka at Galle International Cricket Stadium. Earlier, India won the toss and opted to bat first. Devdutt Padikkal remained unbeaten on 131, while Rishabh Pant was on 27 when stumps were drawn this evening. KL Rahul retired hurt at 77. Today's game was cut short to 73 overs due to two rain breaks. Youth Affairs and Sports Minister Dr. Mansukh Mandavia today interacted with My Bharat NSS volunteers during the Independence Day celebrations in New Delhi. Addressing the volunteers, Dr. Mandavia appreciated their contribution towards social service and encouraged them to actively participate in initiatives aimed at building a Vikasit Bharat. He emphasized that the energy, commitment and innovative ideas of young people are essential for achieving the vision of a developed and self-reliant India. Amrit Udyan will be open to the general public from tomorrow till the 15th of next month. Our correspondent reports that the garden will remain open from 10 a.m. to 6 p.m. with the last entry at 5 p.m. It will remain closed on Mondays for maintenance. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi leads the nation in celebrating 80th Independence Day, urges citizens to dream big for a strong and self-reliant India. Prime Minister emphasizes on empowerment of youth and women for a Vikasit Bharat, unveils Saptadhara framework with aim of harnessing youth power to propel India to new heights. Prime Minister Modi announces target of 100 gigawatts nuclear power capacity by 2047. World leaders extend Independence Day greetings to India, praising its democratic journey, civilizational heritage, and expanding role in regional and global cooperation. In Indonesia, death toll in powerful earthquake rises to 47. Heavy rain alert issued in Arunachal Pradesh, Gangetic, West Bengal, Odisha, Uttar Pradesh, and Uttarakhand till tomorrow. In hockey, India defeat Wales 3-1 in Group D match of FIH World Cup in the Netherlands, and in cricket, India post 288 for 2 at stumps on day 1 of first test against host Sri Lanka. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 80वें यौम-ए-आज़ादी का जश्न मनाने में मुल्क की क़यादत की और लोगों पर जोर दिया कि वो एक मजबूत और खुदकफील भारत के लिए बड़े ख्वाब देखें। वज़ीर-ए-आज़म ने विकसित भारत के लिए नौजवानों और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाए जाने पर जोर दिया और भारत को नई बुलंदियों पर ले जाने की खातिर नौजवानों की क़ुव्वत को बरूए-कार लाने के मकसद से सप्तधारा फ्रेमवर्क का ऐलान किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 2047 तक 100 गीगावाट की एटमी बिजली की सलाहियत के निशाने का ऐलान किया। आलमी रहनुमाओं ने भारत के यौम-ए-आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद दी और उसके जमहूरी सफर, तहजीबी विरसे और इलाकाई और आलमी इश्तराक में उसके बढ़ते हुए रोल की सताइश की। इंडोनेशिया में शदीद जलजले में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 47 तक पहुंच गई है। अरुणाचल प्रदेश, गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक शदीद बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई की गई है। हॉकी में नीदरलैंड्स में एफआईएच वर्ल्ड कप के ग्रुप डी के मैच में भारत ने वेल्स को 3-1 से हरा दिया। और क्रिकेट में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 2 विकेट पर 288 रन बना लिए थे। आज 80वां यौम-ए-आज़ादी पूरी धूमधाम के साथ मनाया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में तारीखी लाल किले पर यौम-ए-आज़ादी की तकरीबात में मुल्क की क़यादत की। वहां उनके पहुंचने के बाद लाल किले पर पहली मर्तबा कौमी गीत वंदे मातरम गाया गया। इस साल की तकरीबात में 2047 तक विकसित भारत की तामीर में नौजवानों के रोल को तस्लीम करते हुए युवा शक्ति की अहमियत उजागर की गई। लाल किले की फसील से कौम से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुज़श्ता 12 साल के दौरान मुल्क के करोड़ों शहरियों ने अपने पुख्ता

गीत वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने का जश्न भी मनाया गया। पहली मरतबा लाल किले पर इन तकरीबात के दौरान वंदे मातरम गाया गया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह, दिफा के वजीर ममलकत संजय सेठ और महकमे दिफा के सेक्रेटरी राजेश सिंह ने लाल किले पहुंचने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल किया। वजीर आजम को पेश किए गए गार्ड ऑफ ऑनर के दस्ते में एक अफसर और फौज, बहरिया, फजाइया और दिल्ली पुलिस से ताल्लुक रखने वाले 24 अहलकार शामिल थे। वजीर आजम ने कौमी परचम लहराया और इसके साथ साथ 21 तोपों की सलामी दी गई। तकरीब के

0: प्रदेश में भी अगले 2-3 दिन के दौरान मूसलाधार बारिश का इम्कान है। मुंबई के बांद्रा वेस्ट इलाके में स्टेशन रोड पर वाकई आज एक इमारत में आग लग गई। आग लगने के बाद कई लोगों का दम घुटने लगा। हुक्काम के मुताबिक मुतासर लोगों को एक अस्पताल में ले जाया गया। बताया जाता है कि उनकी हालत मुस्तहकम है। हुक्काम का कहना है कि आग बुझाने वाले महकमे ने आग पर काबू पा लिया है। ये वाकया बांद्रा के MK चेंबूर इलाके में पेश आया। भारत ने नीदरलैंड्स के आमस्टेलवेन में FIH हॉकी आलमी कप के ग्रुप डी के एक मैच में वेल्स को 1-3 गोल से हरा दिया। भारत की तरफ से कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 गोल किए। संजय राणा ने 1 गोल किया। वेल्स की तरफ से सैम वेल्श ने वाहिद गोल किया। गाले में मेजबान श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने अपनी पहली इनिंग्स में 2 विकेट पर 288 रन बना लिए थे। आज जब खेल खत्म हुआ तो देवदत्त पडिक्कल ने 131 रन बना लिए थे, जबकि ऋषभ पंत 27 रन पर खेल रहे थे। इससे कबल यशस्वी जायसवाल ने 32 और कप्तान शुभमन गिल ने 16 रन बनाए। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 80वें यौम आज़ादी का जश्न मनाने में मुल्क की क़यादत की और लोगों पर जोर दिया कि वह एक मजबूत और खुदकफील भारत के लिए बड़े ख्वाब देखें। वज़ीर आज़म ने विकसित भारत के लिए नौजवानों और ख़वातीन को बाख्तियार बनाए जाने पर जोर दिया और भारत को नई बुलंदियों पर ले जाने की खातिर नौजवानों की क़ुव्वत को बरूए कार लाने के मकसद से सप्तधारा फ्रेमवर्क का ऐलान किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 2047 तक 100 GW की एटमी बिजली की सलाहियत के निशाने का ऐलान किया। आलमी रहनुमाओं ने भारत के यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद दी और उसके जमहूरी सफर, तहजीबी विरसे और इलाकाई और आलमी इश्तराक में उसके बढ़ते हुए रोल की सताइश की। इंडोनेशिया में शदीद जलजले में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 47 तक पहुंच गई है। अरुणाचल प्रदेश, गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक शदीद बारिश का सिलसिला जारी रखने की पेशगोई की गई है। और क्रिकेट में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 2 विकेट पर 288 रन बना लिए थे। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है लाल किले पर आयोजित ध्वजारोहण समारोह में भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को किए गए संबोधन का मैथिली अनुवाद।
2: हमर प्रिय देशवासी लोकनि, आइ हमरा लोकनि 80वें स्वाधीनता दिवस मना रहल छी। आइ प्रत्येक हृदय केर धड़कन वंदे मातरम केर नाद सँ गूंजि रहल अछि। आइ प्रत्येक घर तिरंगा अछि, प्रत्येक मोन तिरंगा अछि। आ देश उछाह आ उमंगक संग नव संकल्प सबके लऽ कऽ आइ आगू बढ़ि रहल अछि। अहाँ सबके स्वाधीनता दिवस केर बहुत बहुत शुभकामना। देश आइ ओहि महान सपूत सभक पुण्य स्मरण कऽ रहल अछि जे लोकनि देशक स्वाधीनता लेल त्याग बलिदान केर पराकाष्ठा कयलनि। अपन तप, त्याग आ बलिदान सँ स्वाधीनताक एकमात्र लक्ष्यकेँ लऽ कऽ अपन पूरा जिंदगी खपा देलनि। पूज्य बापू समेत सभ स्वाधीनता सेनानी लोकनिकेँ, बलिदानक महान परम्परा जगाबयवला महान क्रांतिकारी लोकनिकेँ आइ हम श्रद्धापूर्वक नमन करैत छी। आइ जे एहि समारोहमे उपस्थित छथि हुनका सब लेल आइ एकटा ऐतिहासिक पल सेहो अछि। स्वाधीनताक बाद 15 अगस्तकेँ लाल किला पर पहिल बेर वंदे मातरम गूंजि रहल अछि। आइ जखन हमरा लोकनि देशक लोक वंदे मातरम केर 150 वर्ष मना रहल छी तऽ एहिसँ पैघ उत्तम अवसर की भऽ सकैत अछि। हमर प्रिय देशवासी लोकनि, पछिला दिन सबमे देशक किछु भाग सबमे बाढ़ि केर प्रकोप रहल, भूस्खलन केर प्रकोप रहल, अनेक परिवार प्रभावित भेल। हुनका लोकनिक दुख दर्दकेँ हम नीक जकाँ अनुभव कऽ रहल छी। पीड़ित परिवार सबकेँ हम विश्वास दियाबैत छी जे हम आ पूरा देश हुनका सभक संग ठाढ़ अछि। हमर प्रिय देशवासी लोकनि, कोनहु राष्ट्र तखन महान बनैत अछि, तखन अपन सिद्धि सबके प्राप्त करैत अछि जखन

अपन सपना सभ, अपन संकल्प सभ आ अपन सामर्थ्य केर दम पर आगू बढ़ैत अछि। हमर देशवासी लोकनि आब छोट सपना सँ चलऽ वला नहि अछि, हमरा सबके पैघ सपना, किया तँ पैघ सपना हमरा सभक सोचके सेहो विस्तार दैत अछि, हमरा सभक सोचक क्षितिजके विस्तृत करैत अछि। हमरा सभक संकल्प दृढ़ हेबाक चाही। जखन संकल्प दृढ़ होइत अछि तखन कठिनता सबसँ, आपदा सभक बीचसँ बाट निकलबाक सामर्थ्य स्वयं उभरि कऽ अबैत अछि। आ हमर प्रिय देशवासी लोकनि, हमरा लोकनिक संकल्प सेहो ऊँच हेबाक चाही, किया तँ जखन सपना ऊँच होइत अछि, संकल्प ऊँच होइत अछि, तखन हमरा लोकनिक सामर्थ्यक ऊँचास सेहो बढ़ैत अछि, हमरा सभक प्रयास केर सेहो ऊँचाई बढ़ैत अछि, आ तखन जाकऽ सपना सबके साकार कऽ सकैत छी। हमर प्रिय देशवासी लोकनि, आइ भारत सेहो एकटा बहुत पैघ सपना देखलक अछि, दृढ़ संकल्प केर संग देखलक अछि, नव ऊँचासके छूबा लेल देखलक अछि। आ ओ सपना अछि जखन स्वाधीनताक 100 बरख होयत 2047 मे हमरा लोकनि विकसित भारत बना कऽ रहब, 140 करोड़ देशवासी लोकनिक पुरुषार्थसँ एहि लक्ष्यकेँ हमरा लोकनिकेँ प्राप्त करबाक अछि। आ जखन संसारक सभसँ पैघ जनसंख्यावला देश विकसित हेबाक संकल्प लैत अछि तँ ई संसारक नजरिमे सेहो हमरा लोकनिक साहस केर परिचायक बनि जाइत अछि। संसार हमरा दिस देखबाक नजरिया बदलबा लेल विवश भऽ जाइत अछि। प्रिय देशवासी लोकनि, आ हम ओहिना नहि कहि रहल छी, पछिला 12 बरखमे देशक कोटि कोटि नागरिक लोकनि, दलित होथि, पीड़ित होथि, वंचित होथि, आदिवासी होथि, गाममे रहयवला होथि, शहरमे रहयवला होथि, गरीब होथि, मध्यम वर्गक होथि, युवा होथि, बुजुर्ग होथि, महिला होथि, पुरुष होथि, उत्तर हो, दक्षिण होय, पूरब होय, पश्चिम होय, प्रत्येक गोटे पछिला 12 बरखमे एकटा संकल्प केर सङ्ग, समर्पणक सङ्ग देशकेँ नव ऊँचास पर लऽ जेबामे प्रत्येक ढङ्गसँ प्रयास कयलक अछि। हम हुनकर एहि प्रयासकेँ आदरपूर्वक स्वीकार करैत छी, आ ओकरहि परिणाम अछि जे एतेक कम समयमे 25 करोड़ देशवासी लोकनि गरीबीकेँ हरा कऽ निर्धनतासँ बाहर निकसला अछि। एहि देशवासी लोकनिक प्रयासक परिणाम अछि कहियो फ्रेजाइल 5 मे गनल जाइ छलहुँ, 12 बरख केर भीतर भीतर हम एकटा मेजर इकोनॉमीमे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनि गेलहुँ अछि। सङ्गी लोकनि, देश स्वतंत्र भेल, बहुत रास सपना सभ लऽ कऽ स्वतंत्र भेल, मुदा हमरा लोकनि गति नहि पकड़ि पेलहुँ, रफ्तार नहि पकड़ि पेलहुँ। होइत अछि, चलैत अछि, भऽ जायत, देखल जायत, ओहिमे हेरायल रहलहुँ। 2014 धरि अबैत अबैत तँ पूरा विश्व हमरा फ्रेजाइल 5 केर ओकरामे डम्प कऽ देल गेल छल। एहिना समयमे पछिला 12 बरखमे भारत एकटा नव गति पकड़लक अछि, तेज गतिसँ हम आगू बढ़ि रहल छी। आ देशवासी लोकनिक संकल्प अछि जे आब 140 करोड़ देशवासी लोकनिक संकल्पकेँ, सामर्थ्यकेँ रोकब असंभव अछि। प्रिय देशवासी लोकनि, पछिला 12 बरखमे डिफेंस प्रोडक्शन लगभग 4 गुना, खादी ग्रामोद्योग केर उत्पादन लगभग 5 गुना भेल अछि, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग लगभग 7 गुना बढ़ल, आधुनिक रेलवे कोच केर निर्माण 21 गुना बढ़ल, मोबाइल फोन उत्पादन 35 गुना बढ़ल। एतबे नहि, आधुनिक युगके लऽ कऽ सेहो, डिजिटल आ इनोवेशन केर दुनियामे सेहो हमरा लोकनि अपन परचम लहरेलहुँ अछि। इंटरनेट यूजर, इंटरनेट कंज्यूमर लगभग लगभग 4 गुना बढ़ल, पेटेंट ग्रांट हेबाक संख्या 4 गुना बढ़ल, डिजिटल ट्रांजेक्शन 100 गुना बढ़ल, सामान्य मानव केर सुविधा

सभक दिस हमरा लोकनि ओतबे गंभीरता सँ काज केलहुँ। प्रत्येक बरख औसतन 15 गुना बेसी तेजी सँ हमरा लोकनि नल सँ जल केर कनेक्शन देलहुँ। प्रत्येक बरस औसतन 6 गुना बेसी तेजी सँ लोक सबके गैस कनेक्शन देलहुँ। प्रत्येक बरख 4 गुना तेजी सँ निर्धन सब लेल टॉयलेट बनेबाक काज केलहुँ। प्रत्येक बरख 3 गुना बेसी तेजी सँ निर्धन लोकनिकेँ घर देबाक काज केलहुँ। देश गवर्नेंसमे सेहो बहुत परिवर्तन अनलक। हजारों केर संख्यामे कंप्लायंसेस खत्म केलक, सैकड़ों केर संख्यामे पुरान कानून सब खत्म केलक। पछिला शताब्दी केर कानून सबसँ 21 शताब्दीक मार्च नहि भऽ सकैत अछि। हमरा लोकनि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर लेल मेट्रो केर विस्तार केलहुँ। हमरा लोकनि पब्लिक ट्रांसपोर्टकेँ ताकत देलहुँ, जाहि स्पीडसँ काज, जाहि स्केल पर काज केलहुँ। ई सब, ई रफ्तार, ई विस्तार, ई अचीवमेंट स्वाधीनताक बाद पछिला एक दशकमे देखलहुँ अछि। आ जखन एतेक रास सिद्धि हमरा सभक समक्ष हुए, एतेक तेज गति देखाई दैत हो, देशवासी लोकनिक सामर्थ्य क्षण क्षण प्रबल होइत होय, तखन तऽ 2047 विकसित भारत बनबाक संकल्प कखनहु अधखरू नहि रहि सकैत अछि। ई सभ आंकड़ा सब एहि बातक गवाही दैत अछि जे हमरा लोकनि आगू बढ़यवला छी। हमर प्रिय देशवासी लोकनि, मुदा ओहि लेल आत्मविश्वास केर आवश्यकता होइत अछि, आत्मगौरव केर आवश्यकता होइत अछि, आओर सङ्गे सङ्ग आत्मनिर्भर भारत होयब सेहो बहुत आवश्यक होइत अछि। आ तैँ बीतल बरख सबमे हमर सभक कन्विक्शन रहल अछि जे भारतकेँ हमरा आब दोसर देश सब पर निर्भर रहि कऽ नहि जीबाक अछि। हमरा सबके आत्मनिर्भर बनबाक चाही। संसारमे बहुत किछु भेटैत अछि, सस्त भेटैत अछि, जल्दी भेट सकैत अछि, मुदा ओहिसँ हमर सामर्थ्य तैयार नहि होइत अछि, नहि हमर सभक सामर्थ्य केर कसौटी होइत अछि। आ तैँ हमरा सबके सेहो अपन क्षमताकेँ बढ़ेबाक अछि, अपन हित सभक सुरक्षा हमरा स्वयं करबाक अछि। आ तैँ आत्मनिर्भर भारत केर संकल्प बहुत दृढ़ता केर सङ्ग हम लऽ कऽ आगू बढ़ि रहल छी। मेक इन इंडिया, स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल, एहि सब क्षेत्र सबमे आइ प्रत्येक भारतीय केर मोन जुड़ि रहल अछि। हमर प्रिय देशवासी लोकनि, हम अहाँके एकटा उदाहरण दैत छी सेमी कंडक्टर केर। देश स्वाधीन हेबाक बाद विश्वमे तऽ सेमी कंडक्टर केर चर्च भऽ चुकल छल, हमरा सब ओहिठाम सेहो बात होइत छल, मुदा सेमी कंडक्टर केर कोनो पैघ प्लान हमरा लोकनि आगू नहि बढ़ा सकलहुँ। आइ स्थिति की अछि? आइ केर डिजिटल दुनियामे, आइ केर टेक्नोलॉजीमे चिप केर महात्म्य हमरा लोकनि बुझैत छी। कोनो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैत, हमरा लोकनिक मेडिकल इक्विपमेंट हैत, हमरा लोकनिक ट्रांसपोर्ट केर बाट हैत, प्रत्येकमे चिप अनिवार्य अछि। आ एकरा एहि चिप केर बिना संसार थमि जाय, एहन स्थिति उत्पन्न भऽ गेल अछि। आ तैँ भारत आत्मनिर्भर हेबाक दिशामे अपन सेमी कंडक्टर प्लांट, पैघ सेमी कंडक्टर प्लांट, 3 सेमी कंडक्टर प्लांट आरम्भ भऽ चुकल अछि। आ हमरा बतायल गेल अछि ओतय जे प्रोडक्शन भऽ रहल अछि ओ एक्सपोर्ट होयब आरम्भ भऽ गेल अछि। आ हम देशवासी लोकनिकेँ कहय चाहैत छी, आबयवला 7-8 बरखमे आओर 5, 7 वा 8 सेमी कंडक्टर प्लांट बहुत जल्दी आरम्भ हुअवला अछि। ई आत्मनिर्भर भारत हमरा लोकनिकेँ विकसित भारत केर दिशामे जयबाक महामार्ग दैत अछि। हमर प्रिय देशवासी लोकनि, ओहिना एकटा चर्चा क्रिटिकल मिनरल केर भऽ रहल अछि। पूरा टेक्नोलॉजी क्रिटिकल मिनरल पर निर्भर अछि। भारत एहिमे सेहो स्वयंकेँ सुरक्षित करबामे जुटल अछि। क्रिटिकल मिनरल केर लक्ष्य साझी कयल जाय, नेशनल क्रिटिकल मिनरल, ई हमरा लोकनि लॉन्च केलहुँ। बजटमे क्रिटिकल मिनरल कॉरिडोर केर हमरा लोकनि घोषणा केलहुँ अछि। कतेको देश सभक सङ्ग एग्रीमेंट भऽ रहल अछि। विश्वक कतेको देश आब एहि क्रिटिकल मिनरल केर विषयमे भारत पर भरोस करय लागल अछि।
हमर प्रिय देश

विश्वासी लोकनि, जेना सेमी कंडक्टर केर गप होय, क्रिटिकल मिनरल केर गप होय, ओहिना जाहि टेक्नोलॉजी केर दिशा में हमरा लोकनि जा रहल छी, दुनिया जा रहल अछि, ओहि में एनर्जी केर महत्व और बढ़ैत चलि जा रहल अछि। आब एनर्जी के बिना सेहो नव संसार के चलायब मुश्किल अछि। अतः हमरा सबके चिप होय, एआई होय, डेटा सेंटर होय, हमरा सबके बहुत पैघ मात्रा में बिजली केर आवश्यकता हैत। एनर्जी सिक्योरिटी ई हमरा सबक समय केर मांग अछि। अतः हमरा लोकनि पहिने सँ ओहि दिशा में एक केर बाद एक मजबूत डेग उठेलहुँ अछि। एनर्जी सिक्योरिटी केर एकटा पैघ माध्यम अछि परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमरा लोकनि पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कऽ कऽ एकटा नव लक्ष्य धरि जेबाक बाट तय कऽ लेलहुँ अछि। 2047 तक हम 100 GW न्यूक्लियर पावर केर लक्ष्य लऽ कऽ चलि रहल छी। एहि एक दशक में हमरा लोकनि 5 नव न्यूक्लियर रिएक्टर शुरू करबाक लक्ष्य लऽ कऽ चलि रहल छी। एहि बरख भारत फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में महारत प्राप्त कऽ कऽ एकटा महत्वपूर्ण पड़ाव पार केलक अछि आ एकरा कारणे परमाणु ईंधन में आत्मनिर्भर बनबाक दिशा में हमरा सबके बहुत पैघ सफलता केर डेग हमरा लोकनि रखलहुँ अछि। हमर प्रिय देशवासी लोकनि, कतेको बेर संसाधन सभक कमी केर कारण देश रुकैत नहि अछि, मुदा रुकबाक कारण सोच केर सीमा सब होइत अछि। जखन सोच बनि जाइत अछि, सीमा सबमे सड़ लागैत अछि, तखन हमरा लोकनि अपन सामर्थ्यकेँ सेहो नहि चिन्ह पबै छी। देशकेँ आइ कच्चा तेल पर निर्भर रहऽ पड़ि रहल अछि आ हमरा लोकनिक गलत सोच केर कारणे अछि। अहाँ बुझि कऽ हैरान भऽ जायब, हमरा लोकनि समुद्र तट पर 99% हमरा सभक समुद्र तट केर भाग एहन सोच केर कारण नो गो एरिया घोषित कऽ कऽ रखने छलहुँ। हमही लोकनि समुद्र केर भीतर जा कऽ एक्सप्लोरेशन नहि करबाक निर्णय कऽ लेने छलहुँ। ई सोच केर दरिद्रता छल। हमरा लोकनि निर्णय कयलहुँ जे ई नहि चलि सकत। हमरा लोकनि ओहि 99% जे कखनो नो गो एरिया भेल करैत छल, हमरा लोकनि ओकरा गो अहेड एरिया केर रूपमे खोलि देलहुँ अछि आ आब हमरा लोकनि समुद्र केर भीतर सेहो एक्सप्लोरेशन करबाक नव नव भंडार तकबाक दिशामे हमरा लोकनि प्रवृत्त छी, प्रयास कऽ रहल छी। हमरा लोकनि पछिला बरख ओहि दिशामे एकटा महत्वपूर्ण डेग रखैत समुद्र मंथन केर घोषणा केने छलहुँ आ पछिला दिन सबमे हमरा लोकनि 85,000 करोड़ रुपया एहि काज लेल आवंटित कऽ कऽ एहि काजके गति देबाक निर्णय कऽ लेलहुँ अछि। हमर प्रिय देशवासी लोकनि, एनर्जी सिक्योरिटी, एकरा हम कहलहुँ जे हमरा सबके अल्टरनेट स्रोत सब दिस सेहो पूरा शक्ति लगेबाक सेहो आवश्यकता अछि। अतः ऊर्जाक सही प्रयोग बढ़बैत भारत एहि दिशामे आइ तेजीसँ काज कऽ रहल अछि। 2014 पहिने, मतलब आइसँ 12 साल पहिने, हमरा लोकनिक देशमे मात्र 70 शहर सबमे पाइपसँ गैसक व्यवस्था छल, पाइपसँ गैस डिस्ट्रीब्यूशन होइ छल। 12 बरखमे एहि 70 शहर सबके हमरा लोकनि 700 शहर धरि पहुँचा देलहुँ अछि। ई होइत अछि गति, ई होइत अछि विस्तार। 2014 केर पहिने मुश्किलसँ 20-22 लाख घर सबमे पाइपसँ गैस पहुँचै छल। आइ 2.25 करोड़ घर सबमे पाइपसँ गैस पहुँचेबाक काज भऽ रहल अछि। 12 बरख पहिने देशमे सोलर एनर्जी केर कैपेसिटी मात्र 2 GW छल। 2 GW आइ 160 GW हमरा लोकनि प्राप्त केलहुँ अछि लक्ष्य। हमर प्रिय देशवासी लोकनि, हम एकटा आओर जनतब दै छी, हमरा लोकनि एकर लाभ देशके मध्य

यम वर्गकें सामान्य परिवार के भेटे एहि पर सेहो ओतबे ध्यान केंद्रित केलहुँ। हमरा लोकनि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना चालू केलहुँ आ आइ हमरा संतोष अछि जे एते कम समय में 50 लाख घर सबकें सोलर एनर्जी केर काज हम आकरा पार कऽ चुकल छी। तेजी सँ चलि रहल अछि आ ओकरा कारणे हजारो घर सभक बिजली बिल जीरो भऽ गेल अछि। हजारो घर अपन बिजली केर उपयोग करबासँ अतिरिक्त बिजली आइ बेच कऽ कमाई कऽ रहल अछि। प्रत्येक परिवारकें हम एहि काज लेल 80,000 टका सरकार दिससँ एक एक परिवारकें सहयोग कयल जा रहल अछि, तखन जा कऽ हम एहि काजकें पूरा कऽ रहल छी। हमर प्रिय देशवासी लोकनि, अहाँकें जानि कऽ आश्चर्य होयत ई जे हमरा सभक रेलवे अछि ओकर इलेक्ट्रिफिकेशन केर काज हमरा लोकनिक देशमे 1925 शुरू भेल छल। 1925 इलेक्ट्रिफिकेशन केर काज शुरू भेल मुदा 90 बरखमे 1925 लऽ कऽ 90 बरखमे मात्र 30% रेल केर इलेक्ट्रिफिकेशन भेल छल, माने 90 बरखमे 30%। हमर रफ्तार देखू, लक्ष्यकें प्राप्त करबा लेल हमर दौड़ देखू। हमरा सबकें एहि एक दशक केर भीतर 100% काज पूरा कऽ देलहुँ अछि। 90 बरखमे 30%, 10 बरखमे 70% ई होइत अछि काज। आ एकरा कारणे डीजल जे हमरा सबकें बाहरसँ आनऽ पड़ैत अछि ओकर बचत भेल, बिजलीसँ हमरा लोकनिक ट्रेन चलल, पर्यावरण केर फायदा हुअ लागल। हमर प्रिय देशवासी लोकनि, हमरा लोकनि एतहि नहि रुकलहुँ अछि, हम संसार केर भीतर पाछू नहि रहऽ चाहैत छी। पछिला दिन सबमे अहाँ खबरि सुनने होयब, भारत ईंधन केर एकटा नव क्षेत्रकें सेहो छूबि लेलक अछि। देश पहिल हाइड्रोजनसँ चलऽ वला ट्रेन शुरू कऽ देलक अछि आ हमरा प्रसन्नता अछि। ई सबसँ नम्मा ट्रेन अछि आ सबसँ ताकतवर ट्रेन अछि। संसारमे हाइड्रोजन ट्रेन केर क्षेत्रमे सेहो भारत अपन झंडा गाड़ि देलक अछि। प्रिय देशवासी लोकनि, पछिला 10-12 बरख हमरा लोकनि लगातार 2047 केर लक्ष्यकें प्राप्त करबा लेल भागि रहल छी, एक केर बाद एक सोपान सिद्ध कऽ रहल छी। हमरा लोकनि सोचनहुँ नहि छलहुँ जे हमरा सबकें एहिमे सेहो किछु संकट सभक सोझा करऽ पड़त। पछिला 10-12 बरखमे कतेको संकट सभक सोझा करऽ पड़ल। कोरोना सन वैश्विक महामारी पूरा संसारकें चिंतामे दऽ देने छल, प्रत्येक व्यवस्था चरमरा गेल छल। कोरोनासँ बाहर निकललहुँ, युद्ध केर विभीषिका केर खबरि आबऽ लागल, कतौ यूक्रेन तऽ कतौ पश्चिम एशिया, प्रत्येक ठाम तनाव केर वातावरण आ पता नहि भविष्यमे नेता सब ने जानि कोन कोन घोषणा कऽ देने छलाह। देशकें डराएब, देशकें भयभीत राखब, देशकें चिंतित राखब, एहिमे किछु लोककें आनंद अबैत अछि। वैक्सीन नहि भेटत, कोविडमे लोक बचत नहि, किछु नहि होबयवला, वेस्ट एशिया केर स्थिति आयल, पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहि भेटत, गैस नहि भेटत, डीजल नहि भेटत, फर्टिलाइजर नहि भेटत, पूरा संसार भरिक गोलंजर पसारि कऽ भारतके लोक सबकें भयभीत करबाक, डरेबाक, चिंता केर भीतर डुबा देबाक किछु लोककें आनंद आबि रहल छल। मुदा देश देख लेलक जे पछिला 10-12 बरख केर सुविचारित योजना रंग आनि रहल अछि आ हमरा लोकनि एतेक पैघ संकट केर अछैतो नागरिक देवो भव केर मंत्र केर लऽ कऽ जीवैत भारत जे तैयारी सब केने छल, एक केर बाद एक डेग उठेने छल, सोचने नहि छल जे ई संकट आयत, मुदा ओहि संकट केर समयमे ओ प्रत्येक वस्तु काज आबि गेल आ आइ देशमे डीजलो अछि, पेट्रोलो अछि, यूरियो अछि। हमरा लोकनि अपन शक्तिक ऊपर ठाढ़ भऽ रहल छी, चलि रहल छी। हमर प्रिय देशवासी लोकनि, संसारक एहि संकट सभक प्रभाव प्रत्येक पर भेल, हमहूँ अछूत नहि छी। यूरिया केर दाम

3000 टका पहुँच गेल एक बोरा केर। आइयो हम हमर देशक किसान लोकनिके ओ बोझ सहबा लेल विवश नहि कऽ रहल छी। सरकार अपन कन्हा पर ओ बोझ उठा रहल अछि आ संसारसँ जे 3000 टकामे यूरिया केर बोरा हमरा भेटैत अछि ओ हम अपन कृषक लोकनिके 300 रुपयामे दऽ पबै छी। एतबे नहि, DAP आइ दुनियामे बाजार 5000 पहुँच चुकल अछि, मुदा हमर देशक कृषक लोकनिके दिक्कत नहि होइन तैँ 1350 रुपयामे आइयो DAP देबाक काज हमसब कऽ रहल छी। हमर प्रिय देशवासी लोकनि, एकटा समय छल जखन हम आत्मनिर्भरताक गप कऽ रहल छलहुँ तऽ किछु लोकसब, एयर कंडीशन चैम्बरमे बैसि कऽ सोचयवला लोक, हमरा सबकेँ बता रहल छलाह ग्लोबलाइजेशन केर की हैत। मुदा संसार देखि रहल अछि जे पछिला एक दशकमे जे एहन लागि रहल अछि जे संसार ग्लोबलाइजेशन बजनाइए बन्द कऽ देने अछि। जतयसँ ग्लोबलाइजेशन केर आवाज अबै छल ओ बन्द भऽ गेल, सुनाइ नहि दैत अछि। संसारक प्रत्येक देश अपन अपन प्रश्न केर मिजाज दिस गेल अछि, मुदा दुर्भाग्यसँ एहि संकट केर कालखण्डमे किछु लोकसब अपन रुतबा देखेबा लेल संसाधन सबकेँ वेपनाइज करबाक खेल खेललक अछि। संसार अपना लग जे किछु अछि ओकरा वेपनाइज करबामे लागल अछि। संसाधन सभक वेपनाइज, रिसोर्स केर वेपनाइज, पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर्स, दवाई सब, टेक्नोलॉजी केर चिप्स, एतबे नहि भूभागके सेहो वेपनाइज कयल जा रहल अछि। आ एहना समयमे हमरा लोकनि आत्मनिर्भरता केर मंत्रकेँ लऽ कऽ 10 साल सही दिशामे नहि चलल रहितहुँ तऽ हम कल्पना कऽ सकैत छी जे एहन चुनौती सबकेँ मजबूतीसँ मुकाबिला केना करितहुँ। आ हमरा सभक तैयारी सब निरंतर बढ़ैत जा रहल अछि। हमर प्रिय देशवासी लोकनि, दोसर दिस आइ भारतके प्रोफाइल पूरा तरह बढ़ि रहल अछि। आइ भारत संसार लेल एकटा स्वीकृत आ सम्मानीय देशक रूपमे बनि रहल अछि। भारत लग स्थिर पॉलिटिकल मैंडेट अछि, स्थिर सरकार अछि, भारत केर वाइब्रेंट लोकतंत्र अछि, भारत केर मजबूत न्यायतंत्र अछि आ हमरा सबकेँ दिशा देबयवला भारत केर संविधान अछि। आ आब संसार हमर सभक एहि सामर्थ्यकेँ चिन्ह लागल अछि आ तैँ 2014 केर बाद दुनिया लगभग 40 देश सभक सङ्ग हमरा लोकनिक FTA एग्रीमेंट भऽ रहल अछि। आब देखू कतेक पैघ अवसर आयल अछि, मुदा ई जे ट्रेड एग्रीमेंट्स भेल अछि ई एकटा बहुत पैघ अवसर अछि। आ तैँ विशेष कऽ हम हमर MSMEs के कहऽ चाहब जे हमरा सबकेँ एहि अवसरकेँ छोड़बाक नहि अछि, संसारमे हमरा पहुँचबाक अछि। भारत केर उत्पाद केर प्रत्येक वस्तु विश्व केर बाजारमे पहुँचय आओर खाहे हमर टेक्सटाइल हुए, हमर सभक मशीनरी हुए, हमरा सभक दवाई हुए, हमरा सबकेँ अवसर नहि छोड़बाक अछि। मुदा वैश्विक जे पैरामीटर्स अछि ओहि पैरामीटरकेँ हमरा सबकेँ पार करबाक हैत। हमरा संसारसँ जे भेटैत अछि ओहिसँ नीक देबऽ पड़त, संसारमे जे भेटैत अछि ओहिसँ सस्ता देबऽ पड़त। आ पंजाब केर लुधियानासँ लऽ कऽ तमिलनाडु केर तिरुपुर तक हमरा सभक टेक्सटाइल सेक्टर संसारमे पहुँच सकैत अछि। एतबे नहि, केरलमसँ लऽ कऽ गुजरात आ तमिलनाडुसँ लऽ कऽ बंगाल, ई हमर सभक समुद्री तट, हमरा लोकनिक मछुआरा भाई बहिन। आइ एहि FTA केर कारण हमरा सभक श्रिम्प यानि झींगा ओकर एक्सपोर्ट केर बहुत पैघ सम्भावना बनल अछि। हमरा लोकनिक सी फूड केर संसारमे पहुँच बनबाक सम्भावना बढ़ल अछि। आ हम ई चाहब जे हमसब एहि परिस्थिति केर लाभ उठबैत, हमसब आगू बढ़ैत एहि काज सबकेँ पार करबाक हमरा लोकनि प्रयास करी। हमर प्रिय देशवासी लोकनि, हम जे भूमिका अहाँ सभक समक्ष रखलहुँ अछि ओकरा पाछू 2047 केर लक्ष्य एहि मजगूत नियोँ पर ठाढ़ अछि। 2047 विकसित भारत केर लक्ष्य हमरा लोकनि पछिला 10

12 बरखमे देशवासी लोकन जे सामर्थ्य देखौलन अछि ओ ओहि सामर्थ्य केर हिस्सा अछि। अतें हमर प्रिय भाई बहिन लोकन, शताब्दी केर एक चौथाई भाग बीत चुकल अछि आ अगिला एक चौथाई हमरा सब लेल अत्यंत महत्वपूर्ण अछि। आब हमरा लोकन रुकि नहीं सकैत छी, हमरा लोकनिक गति नहीं रुकि सकैत अछि, हमरा सबक दिशा तय भ चुकल अछि, हमरा सबके प्राप्त कऽ रहबाक अछि आ एहि लेल हमरा सबके अपन वर्क कल्चर बदलऽ पड़त। हमर वर्क कल्चर के बदलैत हमरा सबके अपन सोच के सेहो बदलऽ पड़त, हमरा सबके अपन काजक गति के सेहो बदलऽ पड़त। जे काज पछिला 5-7 दशक में नहीं भेल अछि ओ काज हमरा सबके आवा वाला 5-7 बरख में करऽ पड़त। हमर भरोस अछि हमर देशक युवा शक्ति पर, हमर देश कर नौजवान लोकन पर, हमर देश कर माय बहिन लोकन पर, हमर देश कर कृषक लोकन पर, हमर देश कर मजूर लोकन पर, जे हम ओहि सपना के साकार कऽ सकै छी। अतः हमरा रिफॉर्म्स कर गति के सेहो आगू बढ़ेबाक अछि। आ जखन हम रिफॉर्म कर गप कऽ रहल छी, रिफॉर्म ने हमरा लेल कंपल्सन अछि, ने रिफॉर्म हमरा सब लेल कोनो बज वर्ड अछि, हमरा सब लेल ई रिफॉर्म कन्विक्शन अछि। आउट ऑफ कन्विक्शन हम सब रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चलि पड़ल छी आ आबऽ वाला दिन सब में सेहो नेक्स्ट लेवल रिफॉर्म दिस बढ़ऽ वाला छी। आ तैं सरकार, समाज, उद्योग, उत्पादक, किसान, प्रत्येक गोटे अपन ट्रेडिशनल व्यवस्था में रिफॉर्म करऽ पड़त, सोच में रिफॉर्म करऽ पड़त, अपन लक्ष्य सबके रिफॉर्म करऽ पड़त। अतः हमर प्रिय देशवासी लोकन, हमरा एकटा निश्चित दिशा लऽ कऽ चलऽ पड़त। हम आइ ओहि युग के सेहो स्मरण करऽ चाहब जखन देश भारत केर सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में जनैत छलहुँ, हम बुझैत छलहुँ, हम सुनैत छलहुँ। आब विकसित भारत बनेबा लेल हमरा सबके नव धारा चाही। आइ लाल किलाक प्राचीर सँ हम देशक समक्ष शक्तिक सप्त धारा केर आह्वान करै छी। आबऽ वाला 5-7 बरख में जे पछिला 5-7 दशक में नहीं भेल ओ सप्त धारा केर सामर्थ्य सँ, शक्ति सँ हम देश के नव ऊंचास, नव गति देव आ नव लक्ष्य के पार करऽ वाला सामर्थ्य देव। आ एकरा संग संग देशक युवा शक्ति केर सामर्थ्य केर भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग हैत, हुनका लोकनिक शक्ति जोड़ल जायत। आबऽ वाला दिन सब में जखन हम सप्त धारा केर गप करै छी, सप्त धारा केर पहिल शक्ति अछि मैन्युफैक्चरिंग पावर। हमर प्रिय देशवासी लोकन, हमरा सबके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बहुत आगू बढ़ाबऽ पड़त आ प्रोडक्शन बढ़ेबाक संग संग हमरा सबके छोट छोट पुर्जा सब सेहो बनेबाक अछि आ पैघ पैघ प्रोडक्ट सेहो बनेबाक अछि। पूरा वैल्यू चेन हमर हेबाक चाही, हमरा सबके कंपोनेंटो चाही आ हमरा सबके कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग सेहो चाही, कंप्लीट प्रोडक्ट सेहो चाही। डिजाइन से लऽ कऽ मैन्युफैक्चरिंग धरि भारत के ग्लोबल सप्लाई चेन केर भरोसगर केंद्र बनऽ पड़त। एहि लेल हम तीन वस्तु पर विशेष जोर देबऽ चाहब। मैन्युफैक्चरिंग केर क्षेत्र में जे हमर भाई बहिन छथि, ई समय केर ई अवसर अछि, एहि अवसर के जाय नहि दिय। आ एहि लेल हमरा सबके कॉस्ट, क्वालिटी आ स्केल एकर विषय में वैश्विक मानदंड सँ खड़ा उतरऽ पड़त। हमरा सबक फैक्ट्रीज कॉम्पिटिटिव होय, हमरा सबक प्रोडक्ट्स यूजर फ्रेंडली होय, हमर सबक पैकेजिंग संसारक लोक सबके लोभावा वाला हुए, आकर्षित करऽ वाला होय, हमरा सबक जीरो डिफेक्ट प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग ई हमर सबक परिचिति हेबाक चाही। प्रत्येक मैन्युफैक्चरर, प्रत्येक एंटरप्रेन्योर, प्रत्येक MSMEs से

कहऽ चाहै छी। ग्लोबल मार्केटमे हमर सभक परिचिति, विश्वसनीयता आ गुणवत्ताक आधार पर हेबाक चाही। क्वालिटीक सम्बन्धमे नो कॉम्प्रोमाइज। आ तैं हमर सभक मंत्र क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी हेबाक चाही। इएह हमर सभक ग्लोबल ब्रांड वैल्यू बनत। हमर प्रिय देशवासी लोकनि, एहि सप्तधाराक दोसर शक्ति अछि कृषि आ फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोसेसिंग। हमरा सभकेँ एहि दिशामे आगू बढ़ पड़त। हमरा सभक कृषक लोकनि आब संसारक बाजार खुजि चुकल अछि। FTA के कारण हमरा सभकेँ एकटा बहुत पैघ मार्केट भेटि रहल अछि। हमरा सभकेँ ओतय पहुँचबाक अछि। हमरा सभकेँ ओहि स्थानके हाथ लगेबाक अछि। हमरा सभकेँ खेतसँ लऽ कऽ एक्सपोर्ट मार्केट धरि जाय पड़त। हमरा सभक पारम्परिक खान पान होय, हमरा सभक मिलेट्स होय, हमरा सभक मसाला हुए, हमरा सभक फल हुए, फूल हुए, की सब नहि अछि हमरा सभ लग, ओ ग्लोबल ब्रांड बनबाक चाही। हमरा सभक कृषक लोकनि केमिकल फ्री खेतीके जोर देता। संसारमे एकर मांग आरो बढ़यवला अछि। आ जे ग्लोबल पैरामीटर्स के अंदर प्रत्येक ढंगसँ सिद्ध होबयवला जे हमरा लोकनिक एग्रो प्रोडक्ट्स हैत, तऽ संसारमे हम सहजतासँ पहुँच पायब। हमर सप्तधारा केर तेसर शक्ति अछि टेक्नोलॉजी आ इनोवेशन। हमर प्रिय देशवासी लोकनि, आइ जमाना AI केर अछि, क्वांटम केर अछि, स्पेस केर अछि, रोबोटिक्स केर अछि, डेटा सेंटर्स केर अछि। सम्पूर्ण रूपसँ एकटा नव क्षेत्र फूजि चुकल अछि। आ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ई सेहो प्रत्येक क्षण हमरा सभकेँ चुनौती दऽ रहल अछि। आ तैँ देशकेँ संसार लेल मार्केट नहि बना देबाक अछि, हमरा सभकेँ इनोवेशन केर हब बनबाक अछि। हमरा लोकनि UPI आ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चरमे लोहा मनवा लेलहुँ अछि। हमरा सभक शक्तिक परिचय करबा देलहुँ अछि। आ भारतकेँ डिजिटल पब्लिक टेक्नोलॉजी ओकरो संसारक कोन कोन धरि पहुँचेबाक अछि, भारतके नेक्स्ट जेनरेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीमे लीड करबाक अछि। मेड इन इंडिया 6G प्रत्येक कोन धरि पहुँचय, ई हमर सभक लक्ष्य हेबाक चाही। आ हमरा सभकेँ ओहिमे तेजी करबाक चाही। आ एहि लेल हमर सभक प्रयास कम नहि हेबाक चाही। सप्तधारा केर चालीम शक्ति अछि गतिशक्ति। ई गतिशक्ति देशक भीतर सीमलेस फास्ट कनेक्टिविटी पर हमरा सभकेँ जोर देबय पड़त। शहर सभकेँ हाई स्पीड रेलसँ हमरा सभकेँ जोड़य पड़त। मॉडर्न हाईवेज चाही, इनलैंड वाटरवेज चाही, एयरपोर्ट्स चाही, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स के व्यवस्था चाही। पोर्ट्सकेँ मात्र सामान उतारबा चढ़ेबाक जगह नहि, संसारक शिप्स आबिकऽ लंगर भऽ जाय एतबे नहि। हमरा हमर सभक पोर्ट्सकेँ पोर्ट लेड डेवलपमेंट ग्रोथ केर दिशामे हमरा सभकेँ आगू बढ़य पड़त। हमरा सभक पाँचवीं शक्ति अछि सप्तधारा केर, ओ अछि रक्षा शक्ति। रक्षा शक्तिक महत्व प्रत्येक ढंगसँ अछि। हमर प्रिय देशवासी लोकनि, डिफेंसमे आत्मनिर्भर होयब आ भारत अनुभूति कऽ लेलक अछि, संसार अनुभव कऽ लेलक अछि, एकरा बिना कोनो चारा नहि अछि। विश्व जखन अपने अपने सोचि रहल अछि, तखन भारत विश्व लेल बाजार बनि कऽ नहि रहि सकैत अछि। हमरा सभकेँ डिफेंस केर क्षेत्रमे आत्मनिर्भर होबय पड़त। नेक्स्ट जेनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप कऽ कऽ हमरा सभकेँ ग्लोबल सप्लायर बनबाक दिशामे हमरा सभकेँ लक्ष्य लऽ कऽ चलबाक अछि। हमरा सभकेँ ड्रोन, काउंटर ड्रोन सिस्टमकेँ विकसित करय पड़त। आ हाइपरसोनिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज, ओहिपर हमरा सभकेँ लीडरशिप लेबय पड़त। संगी लोकनि, आइ साइबर सुरक्षा सेहो प्रत्येक घर लेल समस्या बनि रहल अछि। ओहो एकटा रक्षाक क्षेत्र अछि जाहिमे हमरा सभक जे युवा लोकनिक सामर्थ्य अछि, ओहि सामर्थ्य केर उपयोग हम देश आ दुनिया लेल कऽ सकैत छी। हमर सप्तधारा केर छठम शक्ति अछि ग्रीन इकोनॉमी, ब्लू

इकोनॉमी जे ग्रीन जॉब के सेहो जन्म दैत अछि। हमरा सबके ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग इन ग्लोबल स्केल हमरा सबके पाबि कऽ रहबाक अछि। हमरा सबके संसार जखन ग्लोबल वार्मिंग के चर्च करैत रहैत अछि, हम बाट तकैत रहै छी, हम समस्या सबक समाधान दऽ रहल छी आ भारत एहि ग्रीन मूवमेंट के बहुत पैघ सामर्थ्य लऽ कऽ चलल अछि। भारत लग ब्लू इकोनॉमी लेल सेहो बहुत पैघ अवसर अछि। बहुत नम्मा हमरा सभक कोस्ट लाइन अछि, ब्लू इकोनॉमी लेल बहुत पैघ अवसर अछि। फिशरीज अछि, कोस्टल टूरिज्म अछि, ओशन टेक्नोलॉजी अछि, एहन कतेको क्षेत्र अछि जाहिमे हमसब आगाँ बढ़ि सकैत छी। हमर प्रिय देशवासी लोकनि, भारत सप्तधारा केर जे गप कऽ कऽ चलल अछि तऽ हमर सभक सातम धारा अछि आ संसार लेल एकर अपनो एकटा महत्व अछि आ ओ अछि भारत केर सॉफ्ट पावर। भारत केर सॉफ्ट पावर केर शक्ति अछि। आइ योग पूरा संसार के भारत संग जोड़ि कऽ रखलक अछि। योग संसार लेल एकटा ऊर्जा बनल जा रहल अछि, भारत लेल विश्वासक एकटा पैघ कारण बनल जा रहल अछि। जाहि भारत लग आस्था केंद्र होय, जाहि भारत लग आयुर्वेद होय, जाहि ढंग सँ भारत लग होलिस्टिक हेल्थ केयर केर व्यवस्था होय, हील इन इंडिया केर मूवमेंट होय, हम संसारक भीतर अपन सामर्थ्य के लऽ कऽ जा सकैत छी। हैंडीक्राफ्ट होय, संस्कृति होय, हमरा सभक फिल्म होय, हमर सभक क्रिएटिव वर्ल्ड होय, VFX होय, हमर सभक एनिमेशन होय, हमर सभक गेमिंग होय, डिजिटल कंटेंट होय, क्रिएटिव वर्ल्ड केर भीतर भारत अपन रुतबा देखा सकैत अछि। हमरा लोकनि ओकरा वैश्विक सामर्थ्य के रूप में विकसित करऽ पड़त। आइ भारत वेब्स समिट के एकटा बड़ पैघ शक्ति देलक अछि। संसार धीरे धीरे भारत के ई जे वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट अछि ओकर बाट तकैत रहैत अछि आ ओ भारत केर सॉफ्ट पावर केर, भारत केर क्रिएटिव संसार के संसार सँ परिचित करबैत। हमर प्रिय देशवासी लोकनि, भारत लग विशाल वन्य सम्पदा अछि। हमरा सब लग 100 से बेसी नेशनल पार्क अछि। क्षमता बहुत अछि, मुदा विदेशी टूरिस्ट सबके आकर्षित करबा में हम कम पड़ल छी। हमरा सब लग अवसर अछि हमरा सभक सॉफ्ट पावर केर माध्यम सँ संसारक टूरिस्ट सबके भारत लेल आकर्षित करबाक। हमर सामर्थ्य हमरा संसार के देखेबाक अछि। हम ई काज करी आ हम जल्दी सँ जल्दी हम एहि लोक सबके आइ दुनिया मे स्पोर्ट्स जे अछि ओ सेहो एकटा बहुत पैघ भारत केर प्रति आकर्षण केर केंद्र। संसारक स्पोर्ट्स इवेंट भारत मे किया नहि होय, कंसर्ट इकोनॉमी बहुत बढ़ि रहल अछि, देशक नवयुवक लोकनि केर आकर्षण अछि, विश्व केर प्रत्येक कलाकार चाहैत अछि कखनो ने कखनो भारत केर धरती पर अपन कंसर्ट करी। ई बहुत पैघ अवसर अछि। हमरा एकरा मोबिलाइज करबा लेल व्यवस्था सब ठाढ़ करऽ पड़त। संगी लोकनि, सप्तधारा केर एहि सात शक्ति सब, सप्त शक्ति सब उद्देश्य मात्र एकटा सेक्टर मे प्रगति करबाक नहि अछि, एकटा होलिस्टिक अप्रोच केर संग हम राष्ट्र के जे लक्ष्य लऽ कऽ हम चलि रहल छी, जे एम्बिशन लऽ कऽ चलि रहल छी, ओहि स्केल के हमरा पार करबाक दिशा मे काज करबाक अछि। हमर प्रिय देशवासी लोकनि, किछु वस्तु हम बतेलहुँ अछि मुदा हम एहिसँ सेहो आगू सोचैत छी। हम कनि देश के झकझोरऽ चाहैत छी, हम देश केर शक्ति के सेहो झकझोरऽ चाहैत छी। देश माने मात्र सरकार नहि होइत अछि, देश माने प्रत्येक नागरिक जुड़ैत अछि। की हम सोचि नहि सकैत छी कि फॉर्च्यून

500 के चर्च के बहुत सुनै छी। आबवला एक दशक में एहि फॉर्च्यून 500 में 50 कंपनी सब भारत के किया नहीं होई? ई लक्ष्य हमरा किया नहीं हेबाक चाही? आई बैंकिंग सेक्टर फेर फुला रहल अछि। संसारक टॉप बैंक के भीतर भारत के बैंक के झंडा सेहो किया नहीं फहराइत होय? भारत के बैंक सेहो टॉप बैंक, 5 बैंक में भारतक सेहो एकटा बैंक हेबाक चाही, भारत के फार्मा। फार्मा के दिशा में हम सब बहुत काज केलहुँ अछि, मुदा समय के मांग अछि जे संसार के 5 पैघ फार्मा कंपनी में भारत के सेहो 1-2 फार्मा कंपनी के नाम गुंजबाक चाही, भारत के ओही में अपन स्थान बनेबाक चाही। लॉ फर्म्स होइत अछि, रेटिंग एजेंसीज होइत अछि, कि समय के मांग नहीं अछि कि ग्लोबल लीडरशिप अब हमरा संग में हेबाक चाही? टैलेंट अछि, सामर्थ्य अछि, हमरा सभक नम्मा इतिहास सेहो अछि, भाषा सब पर हमर प्रभुत्व अछि, हमरा सबके विश्व में पहुँचबाक अछि। हमरा सभक कोनो कंसल्टिंग फर्म, अकाउंटिंग फर्म संसारक टॉप फर्म्स के भीतर किया नहीं हेबाक चाही? भारत के टेक्नोलॉजी कंपनी सब संसारक भीतर सिरमौर होए, यह हमर सभक लक्ष्य हेबाक चाही। हमरा सभक एहन ब्रांड होए जाहि सँ संसार आकर्षित होइत होए, हमर सभक ब्रांड हमर सभक देश के परिचिति होए आ विश्व लेल एकटा डेस्टिनेशन बनि जाए, ओहि दिशा में हमरा सबके काज करबाक अछि। आ एहि लेल हम राज्य सरकार सबके कह चाहै छी, हम स्थानिक स्वराज के संस्था सबके कह चाहै छी, भारत सरकार के सेहो ई दायित्व अछि कि हमरा सबके हमर रिफॉर्म के गति बढ़ाबऽ पड़त। हमरा सबके 2047 के लक्ष्य के अनुरूप अपन व्यवस्था सबके विकसित करऽ पड़त। हम सब बीतल समय के नीति नियम सबसँ नहीं चल सकैत छी, हमरा सबके आबऽ वाला सपना सबके हिसाबसँ नीति नियम के गढ़ऽ पड़त। आ एकरा जो हम गढ़ब तो हमरा पूरा भरोस अछि आ हम देशवासी लोकनि के भरोस दै छी, एही बाटसँ मेहनत में कोनो कमी नहीं रखैत हम सब विकसित भारत के सपना पार कऽ कऽ रहब। हमरा सबके मिलकर चलबाक अछि, केंद्र सरकार होए, राज्य सरकार होए, इंडस्ट्री होए, हमरा सबके मिलकर आगू बढ़बाक अछि, हमरा सबके रिफॉर्म्स करैत रहबाक अछि, रिफॉर्म्स के आगू बढ़बैत रहबाक अछि। आ हम पहिने सेहो कहने छलहुँ, हम सब रिफॉर्म्स कंपल्शन सँ नहि कन्विक्शन सँ कऽ रहल छी, लक्ष्य के प्राप्त करबा लेल कऽ रहल छी। हमर प्रिय देशवासी लोकनि, जखन हम ई विकसित भारत के बात कऽ रहल छी, देश के तेज गति सँ आगू बढ़ेबाक बात कऽ रहल छी, ओकर सबसँ पैघ लाभार्थी के अछि? एहि सम्पूर्ण प्रयास सभक सबसँ पैघ साधक के अछि? अगर साधक अछि तऽ हमर देशक युवा अछि, हमर देश के युवा शक्ति अछि। विकसित भारत के यात्रा में युवा लोकनिक बहुत पैघ भूमिका अछि, एतबे नहि विकसित भारत के सबसँ पैघ लाभार्थी सेहो हमर देशक युवा अछि। आ एहि लेल हमरा सबके विकसित भारत के लक्ष्य के युवा लोकनिक संग जोड़ि कऽ आगू बढ़ेबाक अछि। युवा लोकनि हमरा सबके सर्वोच्च प्राथमिकताक संग हमरा सबके आगू बढ़बाक अछि। संगी लोकनि, पछिला 10-12 बरख में ओहि दिशा में बहुत किछु भेल अछि। स्टार्टअप इंडिया अभियान आइ सम्पूर्ण देश में 2.5 लाख सँ बेसी रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स बनि गेल अछि। देश के नौजवान स्वयं तक काज कऽ रहल छथि, कतेको के रोजगार दऽ रहल छथि। 1 लाख करोड़ टाका इनोवेशन फंड भारत सरकार घोषित केलक अछि। हम देशक नौजवान के कह चाहै छी, अहाँ अपन सपना के लऽ कऽ आओ, संसाधन के कमी नहीं रह देब। 1 लाख करोड़ रुपया

अहक दिल दिमाग के सामर्थ्य देबाक एकटा व्यवस्था हम सब कऽ देलहुँ अछि। रिसर्च लेल नव अवसर भेटय, डिजिटल इंडिया केर नव सस्ता डाटा यह युवा के सशक्त केलक अछि। संसार में सस्ता डाटा कतौ अछि तऽ ओ भारत केर धरती पर अछि आ देशक नौजवान के ओ नव शक्ति देलक अछि। स्किल इंडिया हमरा लोकनि नेशनल प्रोग्राम बनेलहुँ अछि। स्पेस सेक्टर के हम सब ओपन कऽ देलहुँ। नेशनल ड्रोन पॉलिसी हमरा लोकनि बनेलहुँ अछि। खेलो इंडिया पॉलिसी बनेलहुँ अछि। 35 वर्ष तक एजुकेशन पॉलिसी नहि छल, नव एजुकेशन पॉलिसी लऽ कऽ अयलहुँ अछि आ एकर लाभ मिडिल क्लास केर परिवार के भेटल अछि। संगी लोकनि, 2004-2014 आंकड़ा हमरा देबाक चाही अहाँके। 2004-2014 हमरा सभक देश में 350 सेहो कम यूनिवर्सिटीज छल आ आइ 10-12 बरख केर भीतर भीतर लगभग 650 नव यूनिवर्सिटीज जुड़ि चुकल अछि। लगभग 1000 केर आंकड़ा हम पहुँच रहल छी। 2014 केर पहिने मेडिकल केर मात्र 400 सीट भेल करै छल, आइ लगभग 850 सीट मेडिकल केर भऽ रहल अछि। एतबे नहि, आब विदेशी यूनिवर्सिटीज सेहो भारत केर धरती पर आबि रहल अछि। भारत केर भीतर विदेशी यूनिवर्सिटीज के डिग्री हमर नौजवान के भेटय एकर प्रबंध सेहो भऽ चुकल अछि। हमरा सभक देशक युवा मन बचपने सँ टेक्नोलॉजी केर दिस आकर्षित होय, ओहि दिशा मे हम सब काज कऽ रहल छी आ एहि लेल हमरा लोकनि लगभग 10,000 सँ बेसी अटल टिंकरिंग लैब छोट छोट बच्चा सबके जिम्मा कऽ देलहुँ अछि, जाहिसँ हुनकर इनोवेशन आ टेक्नोलॉजी केर भीतर ओकर मोन बनय। हमसब कतेको बाट फोललहुँ, हमरा लोकनि स्टार्टअप ओपन कऽ देलहुँ। अहाँ सब देखने हैब भारत केर प्राइवेट स्टार्टअप 28 बरख केर एवरेज वयस केर बच्चा सब, नौजवान सब संसार मे पहिले ट्रायल मे अपन सैटेलाइट लॉन्च कऽ देलनि आ रॉकेट लॉन्च कऽ देलनि। ओ सब बहुत पैघ काज कऽ देलनि। संगी लोकनि, आइ 2.5 लाख सँ बेसी रजिस्टर्ड स्टार्टअप अछि। हमरा लोकनि पछिला दिन सबमे AI इम्पैक्ट सबमिट कयने छलहुँ। AI केर विस्तार बहुत तेजी सँ बढ़ि रहल अछि। लाल किला सँ हम देश के नौजवान लेल घोषणा करऽ चाहैत छी, हमसब तय कयलहुँ अछि जे आबयवला 1 बरखमे 1 करोड़ युवा लोकनिकेँ AI स्किल लेल ट्रेनिंग देबाक हमसब काज करब, जाहिसँ हमरा सभक देश केर नौजवान AI केर दुनियामे सेहो नेतृत्व केर सामर्थ्य होय। हमर संगी लोकनि, बायो इकोनॉमी एकटा नव क्षेत्र अछि। एक समय छल 2014 केर पहिने मात्र 60,000 करोड़ टाका केर बायो इकोनॉमी केर काज होइ छल। हमर सभक देश केर नौजवान, अहाँ सब की कमाल कऽ देलहुँ अछि। देखू, नीति सब जखन सही होइत अछि, लक्ष्य जखन साफ होइत अछि तऽ हमर देश केर नौजवान केना कऽ कऽ दै छथि। बायो इकोनॉमी मे देश केर युवा शक्ति सामर्थ्य देखौलक। 2014 केर पहिने जे 60,000 करोड़ केर कारोबार छल, आइ ओ बायो इकोनॉमी 20 लाख करोड़ पहुँच चुकल अछि। संगी लोकनि, 2009-10 केर कालखंड छल, मात्र 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिकल छल। 2009-10 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल, एहि 25-26 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिकल अछि। हमर प्रिय देशवासी लोकनि, एविएशन सेक्टर सेहो हमर सभक नौजवान लोकनि लेल बहुत तेजी सँ आगू बढ़ि रहल अछि। नव एयरपोर्ट, नव रूट, नव नव रोजगार केर अवसर बनि रहल अछि। मेंटेनेंस, ओवरहॉलिंग, एकर कारण सेहो देश मे बहुत पैघ मात्रा मे स्किल्ड मैन पावर के काज भेटि रहल अछि। मेड इन इंडिया हवाई जहाज बनेबाक दिशा मे हमरा लोकनि सफलता प्राप्त कयलहुँ अछि। मेड इन इंडिया डिफेंस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 ऑलरेडी अपन उड़ान भरि चुकल अछि, सफल उड़ान भरि चुकल अछि। ई देशक नौजवान लेल, हमर संगी लोकनि, ड्रोन सेहो बहुत पैघ काज

केला कहै छै। स्वामित्व योजना गाँव में ड्रोन सँ स्वामित्व योजना सफल भ रहल अछि। लगभग 3.25 करोड़ परिवार के स्वामित्व योजना के लाभ भेटल अछि आ एकरा कारणे 140 लाख करोड़ रुपया सन संपत्ति अनलॉक भेल अछि, जेकरा कारणे बैंक सँ लोन भेट सकैत अछि, लोक अपन कारोबार कऽ सकैत छथि। हमर प्रिय देशवासी लोकनि, हमरा लोकनिक मध्यम वर्गीय परिवार सबके समक्ष एकटा बहुत पैघ बोझ बनि चुकल अछि कोचिंग क्लास के स्पर्धा। प्रत्येक माँ बाप के लागि रहल छनि जे कोचिंग क्लास मे बच्चा के नहीं पठेलहुँ तऽ हम प्रतिष्ठित परिवार नहि छी, एहि गरीब आ मिडिल क्लास परिवार के हम चिंता करैत। हजारों करोड़ टाका के हुनका जे खर्च अछि ओ सेहो बचय, बेटा सब सेहो अपन लग पास रहि सकय, ओकर देखरेख भऽ सकय, परिवार पर आर्थिक बोझ नहि आबय। आ एहि लेल हमरा लोकनि युवा सब लेल विभिन्न परीक्षा सबके फ्री ऑनलाइन कोचिंग हम सब

मिडिल क्लास परिवार के हम चिंता करैत हजारों करोड़ टका के हुनका जे खर्च है ओ सेहो बचे बेटा सब सेहो अपन लग पास रह सके ओकर देखरेख भ सके परिवार पर आर्थिक बोझ नहीं आबे आ एहि लेल हमरा लोकन युवा सब लेल विभिन्न परीक्षा सबके फ्री ऑनलाइन कोचिंग हम सब करबाक निर्णय केलहुँ अछि। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अछि, हमरा सब लग उत्तम टैलेंट अछि, टीचर्स छथि, ओहि संसाधन के जोड़ि कऽ हम देश के नौजवान के फ्री कोचिंग देबाक पूरा नेटवर्क हम सब ठाढ़ करय वाला छी। हमर प्रिय देशवासी लोकनि, हम सदिखन कहैत एलहुँ अछि जे खेलाय ओ फूलाय। जखन हम खेलब आ खिलाएब के बात करै छी तहन हमर प्रिय देशवासी लोकनि, आइ भारत खेल के संसार में अपन स्थान बना रहल अछि। आब खेल के पोडियम में भारत के राष्ट्रीय गीत सुनाई दैत अछि, भारत के राष्ट्रगान सुनाई दैत अछि, भारत के तिरंगा झंडा लहराइत नजर अबैत अछि। टॉप्स योजना बहुत पैघ सफलता प्राप्त केलक अछि। खेलो इंडिया गेम्स, यूनिवर्सिटीज गेम्स, विंटर गेम्स, बीच गेम्स, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स लेल कोचिंग, स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स लेल न्यूट्रिशन, एहि सब विषय में भारत आब महारत प्राप्त करबाक दिशा में आगू बढ़ि रहल अछि। नौजवान लेल पूरा नव क्षेत्र, खिलाड़ी नहि बन सकय तऽ ओकर सपोर्ट सिस्टम में सेहो बहुत पैघ क्षेत्र फूजि रहल अछि। स्पोर्ट्स के दुनिया में भारत के प्रदर्शन नीक होइत जा रहल अछि आ हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बनि कऽ आगू बढ़ि रहल छी आ 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स के भारत आब होस्ट करय वाला अछि। आ हमर संगी लोकनि, संसार में जे ओलंपिक के खेल होइत अछि लगभग 40 प्रकार के गेम होइत अछि आ लगभग 325-350 स्पर्धा होइत अछि ओलंपिक में। आ अहाँके जानि कऽ दुख हैत हमर देशवासी लोकनि, हमर नौजवान सब, हम अहाँके चुनौती दै छी, हम आह्वान करै छी, हम अहाँके सहयोग चाहै छी। 325 सन स्पर्धा सब में भारत दू तिहाई खेल सब में कतौ होइते नहि अछि, हमर सभक उपस्थिति नहि होइ अछि, हम क्वालिफाई नहि होइत छी। हमरा लोकनि तय केलहुँ अछि जे 2036 में जे ओलंपिक हैत हमसब चाहै छी जे ओ भारत में होय, मुदा 2036 में जाहि विधा सब में आइ भारत खेलैत नहि अछि, जाहि विधा में भारत क्वालिफाई नहि करैत अछि, जाहि स्पर्धा में भारत छोड़ि कऽ रखलक अछि, 3/4 हिस्सा हमरा सभक प्रतीक्षा कऽ रहल अछि, भारत ओहि पर जोर देत। आ एहि लेल हमसब टैलेंट हंट के एकटा अभियान सेहो चलबऽ चाहै छी। हमरा सबके जो 2036 लेल खिलाड़ी चाही तऽ आइ जे 5 साल 10 साल 15 साल के उम्र के ई नौजवान छथि, बेटा छथि, हुनका दिस ध्यान देबऽ पड़त, ओहि बेटी सब पर ध्यान देबऽ पड़त। आ एहि लेल 5 सँ 15 वयस के बच्चा सब में खेल प्रतिभा तकबा लेल गाम गाम, शहर शहर, स्कूल स्कूल एकटा टैलेंट हंट अभियान चलाओल जायत, बच्चा सभक प्रतिभा के देखल जायत आ फेर ओकरा स्पेशल ट्रेनिंग दऽ कऽ देश लेल खेलय वाला नीक खिलाड़ी बनाओल जायत। हमर प्रिय युवा, देशक समक्ष, देश के नौजवानक समक्ष नशा एकटा बहुत पैघ संकट बनैत जा रहल अछि। नशा मुक्त भारत, ई हमर सभक सामूहिक दायित्व हेबाक चाही। हमरा सभक उज्ज्वल भविष्य लेल हमर सभक युवा पीढ़ी मजबूत होय, हमरा सभक युवा सामर्थ्य हमरा देश लेल काज आबे, एहि लेल नशा मुक्त भारत। पछिला दिन सब में माय भारत केर वॉलंटियर्स, देश केर एनजीओज, देश केर सामाजिक सांस्कृतिक संगठन, देश केर आध्यात्मिक पुरुष लोकनि मिलकर नशा मुक्त भारत केर 100 सप्ताह के एकटा कार्यक्रम तय कयलनि अछि। 100 सप्ताह धरि एक अभियान चलय वाला अछि। हम प्रत्येक परिवार के कहय चाहै छी जे अहाँ सब सेहो एहि अभियान के भाग बनी, अहाँ सब एहि संग जुड़ी आ देश के नशा मुक्त भारत के सपना के पूरा करबा लेल अहाँ सब आगू आबी।

हमर प्रिय देशवासी लोकनि, एकैसम शताब्दीमे दशकों पुरान जे चुनौती सब अछि ओहि चुनौती सबके खत्म करब बहुत अनिवार्य अछि। नक्सलवाद, माओवाद लाखों युवा लोकनिक भविष्यकें तबाह कऽ देलक, अनेक माय सभक दूधमल नौजवानकें छीनि लेलक, बर्बाद कऽ देलक, प्रत्येक माय बाप केर सपनाकें चूर चूर कऽ देलक। ई नक्सलवाद चारि चारि दशक धरि हिंदुस्तान केर बहुत पैघ हिस्साकें, बहुत पैघ आबादीकें दबोच कऽ रखने छल, बंदूक केर नोक पर दबोच कऽ रखने छल, संविधान केर धज्जी उड़ा देने छल आ देशक सामान्य नागरिक सभक रक्षामे 3500 बेसी हमरा लोकनिक पुलिस केर सुरक्षा बल के जवान शहीद भऽ गेला। युद्धक भीतर जतेक सैनिक मरै छथि ओहिसँ बेसी हमरा लोकनिक पुलिस जवानकें जानक बाजी लगबऽ पड़लनि, जाहिसँ देश केर सामान्य मानवीकें सुरक्षा भेटै। ई नक्सलवाद धरती केर लहूलुहान कऽ देलक। 2014 अहाँ सब जखन हमरा मौका देलहुँ ओही दिन हम संकल्प लेने छलहुँ जे हम देशकें नक्सलवादसँ मुक्त करब आ आइ हमरा प्रसन्नता अछि जे नक्सली माओवादी हिंसा आखिरी सांस सेहो किंसायत रहबाक आब ताकत नहि रहल अछि। सम्पूर्ण रूपसँ ओकरा खत्म करबाक दिशामे जतय कहियो नक्सलवादी सबके गोली चलैत छल, जतय कहियो धरती रक्त रंजित रहल करै छल, आइ ओही नक्सल क्षेत्र सबमे ओही नक्सल मुक्त हेबाक कारणे विकास, विश्वास आ प्रयास केर तिरंगा लहरा रहल अछि। हमर प्रिय देशवासी लोकनि, मुदा एहि चुनौतीकें हमरा लोकनिकें कम नहि आँकबाक अछि। एहि चुनौतीसँ हमरा सबकें आरो बेसी सावधान रहबाक आवश्यकता अछि। बरखो धरि देशक सत्तामे माओवादी सोच केर लोक गलियारा सबमे अपन जगह बना कऽ बैसल छलाह। सरकारी कमिटी सबमे सलाहकारक रूपमे सेहो ई माओवादी सोच नीति सबकें प्रभावित करै छल। हमर प्रिय देशवासी लोकनि, जंगल सबमे हमरा लोकनि हथियारी नक्सलकें खात्मा करऽमे ओहि संकटसँ देशकें मुक्त करबामे सफलता भेटल अछि। मुदा हथियारी नक्सल तऽ गेल, मुदा दिमागी नक्सल, ई दिमागी नक्सल मौकाक तलाशमे अछि, हिंसा अराजकताक ओ रास्ता ताकि रहल अछि, समाजकें गलत बाट पर घिचबा लेल भांति भांति केर दाव कऽ रहल अछि। एहि दिमागी नक्सलीकें चिन्हय पड़त, एहि दिमागी नक्सली सबकें आइसोलेट करऽ पड़त आ राष्ट्रकें विकसित राष्ट्र बनेबाक मुख्य धारा दिस देशक युवा पीढ़ीकें जोड़ पड़त। हमर प्रिय देशवासी लोकनि, सुरक्षित भारत बनायब हमर सभक दायित्व अछि, चुनौती सीमाक भीतर होय वा सीमासँ बाहर, भारत हरेक परिस्थिति लेल तैयार अछि। आइ युद्ध केर नेचर बदलि रहल अछि, आब युद्ध सीमे पर होइत अछि ई गारंटी नहि अछि। आइ युद्ध सीमा केर भीतर कतौ रिफाइनरीमे जा कऽ, कतौ बैंकिंग सेक्टरमे जा कऽ, कतौ डाटा सेंटरकें जा कऽ एक प्रकारसँ युद्ध केर नव रूप इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ल जा रहल अछि, फैक्ट्री सब तोड़ल जा रहल अछि। हमरा लोकनि मिशन सुदर्शन चक्र केर पछिला साल घोषणा केने छलहुँ, बहुत तेजीसँ ओहिपर काज चलि रहल अछि। आइ डिफेंस एक्सपोर्ट हमरा सभक लगभग 50 गुना बढ़ल अछि, लगभग 100 देशमे हमरा लोकनिक अस्त्र शस्त्र पहुँचि रहल अछि, वैश्विक पटल पर भारत केर प्रतिष्ठा धीरे धीरे बढ़ि रहल अछि। बदलैत समयमे अस्त्र शस्त्र दिस काज करबाक अछि, सैन्य बलकें सामर्थ्य बढ़ेबाक अछि, मुदा सङ्ग सङ्ग नागरिक लोकनिकें सेहो तैयार करऽ पड़त। पछिला शताब्दीक युद्ध सभक अनुरूप जे सिविल डिफेंस केर व्यवस्था सब हमरा सभक देशमे विकसित भेल अछि ओ कालवाह भऽ चुकल अछि आ एहि लेल हम आइ लाल किलासँ घोषणा कऽ रहल छी जे हम आबयवला दिन सबमे सिविल डिफेंस केर एकटा वाइब्रेंट नेटवर्क ठाढ़ करब, आधुनिक व्यवस्था सबसँ ओकर परिचिति करवायब, आधुनिक संकटसँ नागरिक सबकें रक्षा करबाक की व्यवस्था भऽ सकैत

होइत अछि। एकटा बहुत पैघ वॉलेंटरी फोर्स सिविल डिफेंस केर आधुनिक चुनौती सबके पार करय वाला हम सब बनबय वाला छी। हमर प्रिय देशवासी लोकनि, राष्ट्र निर्माण मे आइ हमरा लोकनिक बहिन बेटी सभक योगदान हमरा सब लेल बहुत पैघ प्रेरणाक कारण बनल अछि। फाइटर जेट होय वा सिविल एविएशन, हमरा लोकनिक बेटी सब सबसँ आगू देखाई दऽ रहल छथि। खेलकूद केर मैदान होय, हमरा लोकनिक बेटी आगू देखाई दऽ रहल छथि। स्टेम एजुकेशन मे भर्ती हेबाक प्रक्रिया होय, सबसँ बेसी हमरा लोकनिक बेटी आगू देखा रहल छथि। आइ सेना मे सेहो NDA सँ जे बेटी सब निकलली अछि, ओ बहुत रौब केर सङ्ग देशक सेनाक नेतृत्व करबाक सामर्थ्य देखाबऽ लगली अछि। हमर बेटी सभक ताकत केहन अछि, हम पछिला दिन सानन्दमे एकटा सेमी कंडक्टर प्लांटमे गेल छलहुँ। ओतय आदिवासी बेटी सब देशक फराक फराक कोनसँ आयल बेटी सब काज कऽ रहल छलीह। ओ ओहि गामसँ आयल छलीह जे पासपोर्ट की होइत अछि बुझल तक नहि छल। ओ बेटी सब विदेशमे गेली, ट्रेनिंग लऽ कऽ अयली आ आइ चिप निर्माण काज कऽ रहल छथि आ पैघ कॉन्फिडेंस। हम जे हुनकर कॉन्फिडेंस देखलहुँ, हम सत्यमे बहुत प्रभावित भेल छलहुँ। आइ 3 करोड़ बहिन सबके हमरा लोकनि लखपति दीदी बनेबाक लक्ष्य तय कयने छलहुँ, ओकरा पार कऽ लेलहुँ। आब हम 6 करोड़ लखपति दीदी बनेबाक लक्ष्यकेँ लऽ कऽ आगू बढ़ि रहल छी। 3 करोड़ नव लखपति दीदी बनायब मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्थामे बहुत पैघ परिवर्तन मातृशक्तिके द्वारा आबयवला अछि। हमर प्रिय देशवासी लोकनि, आइ पंचायत सबमे, नगरपालिकामे, महानगरपालिकामे बहुत पैघ मात्रामे हमरा लोकनिक स्त्रीगण जनप्रतिनिधि बनिकऽ देशक मार्गदर्शन कऽ रहल छथि, समस्या सभक समाधान कऽ रहल छथि, बहुत सक्षम नेतृत्व दऽ रहल छथि। आ एकरे ध्यानमे रखैत हमरा लोकनि पार्लियामेंटमे नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित केने छलहुँ, मुदा कोनो ने कोनो कारणसँ राजनीतिक अखाड़ामे पछिला 40 सालसँ ई सपना सदिखन राजनीतिक अखाड़ा केर शिकार भऽ गेल अछि। हम देशक प्रत्येक राजनीतिक दलसँ आइ लाल किलाक प्राचीरसँ तिरंगा झंडाक छाहमे ठाढ़ भऽ कऽ प्रार्थना करैत छी, आग्रह करैत छी, आउ ओहि महिला लोकनिक सामर्थ्य केर पुजारी बनू, ओहि महिला लोकनिक सम्मानमे आगू आउ आ जल्दीसँ जल्दी अपन माय बहिनकेँ 33% विधानसभा आ लोकसभामे हुनकर प्रतिनिधित्व भेटय। ओ भारत केर नीति गढ़ि कऽ भीतर अपन योगदान दैथ। समय केर मांग अछि आ हम प्रत्येक राजनीतिक दलसँ फेरसँ आग्रह करैत छी, आउ महिला आरक्षण लागू कऽ कऽ महिला सम्मानमे अहूँ जुड़ू, अहूँ सब यश लिअ, अहाँ सब सेहो क्रेडिट लिअ, मुदा हमर माय बहिनकेँ अधिकार दियौन। हमर प्रिय देशवासी लोकनि, विकसित भारत केर संकल्प तखने पूरा होयत जखन विकास अंतिम व्यक्ति धरि पहुँचत। 2014 पहिले मात्र 25 करोड़ लोक सब लग सोशल सिक्योरिटी केर कवर छल, मात्र 25 करोड़ लग। संगी लोकनि, पछिला 5-7 दशकमे मात्र 25 करोड़, हमरा लोकनि 1 दशक केर भीतर 100 करोड़ देशवासी लोकनिकेँ सोशल सिक्योरिटी केर कवच देलहुँ अछि। आयुष्मान भारत योजनासँ 70 वर्षक उम्र केर बुजुर्ग लोकनि लेल सेहो आइ 5 लाख रुपया धरि केर मुफ्त दवाइ केर व्यवस्था भऽ रहल अछि। करोड़ों करोड़ परिवारकेँ एकरा कारणे बहुत पैघ सुविधा भेटल अछि आ ई आयुष्मान कार्ड केर कारण 2 लाख करोड़ रुपया केर जे दवाइ आ ऑपरेशन केर पाछू खर्च होइ छल, ओ हमर परिवार केर बचल अछि। ओ गरीब परिवार अछि, ओ मध्यम वर्ग केर परिवार अछि, हुनका सबकेँ एते पैघ सहयोग भेटल अछि। हमर प्रिय देशवासी लोकनि, आइ हमरा एकटा काज लेल अहाँ सभक सहयोग चाही। हम अहाँ सबसँ एकटा मदति माँगि रहल छी। प्रत्येक नौजवानसँ हम चाहैत छी जे अहाँ सब एकर नेतृत्व करू। अहाँ सभक 1 या 2 घंटा देशकेँ बहुत पैघ शक्ति देबयवला अछि। अहाँ सबके लागत जे 1-2 घंटामे हम देश केर की शक्ति,

0: हम बतबै छी, अहाँ बहुत पैघ शक्ति बनयवला छी आ एहि लेल प्रत्येक घरमे वातावरण बनय। एहि दिन सभमे देशमे जनगणना केर काज भऽ रहल अछि, सेंसस केर काज भऽ रहल अछि, गिनती चलि रहल अछि आ गिनती मात्र आँकड़ासँ बात बनैत नहि अछि, ओकर बारीकी सभसँ नीति बनैत अछि, योजनासभ बनैत अछि, देश आगू बढ़बाक अपन रूपरेखा तैयार करैत अछि आ एहि लेल सटीक जनतब भेनाइ बड्ड आवश्यक अछि। कखनो कखनो जे सरकार दिससँ प्रतिनिधि अबै छथि ओ एतेक जल्दीमे होइ छथि, कखनो स्पेलिंग एक लिख दै छथि, कखनो अलग लिखै छथि आ एकरा कारणे अल्टीमेटली परिणाम हमरा सभके सही भेटबामे दिक्कत अबैत अछि। आब जखन टेक्नोलॉजी अवेलेबल अछि आ एहिबेर निर्णय कयल गेल अछि, अहाँ सभ स्वयं सेहो जनगणनामे अपन जनतब सभ अपन मोबाइल फोनसँ भरि कऽ दऽ सकैत छी। बादमे कोनो बाबू अयता, कोनो प्रतिनिधि अयता, अहाँसँ चर्चा करता, मुदा अहाँक परिवार केर सभ बैसि कऽ अगर डिजिटली अपन रजिस्ट्री करबा दी, सभ बालिकी सभ स्पेलिंगमे सेहो गलती नहि होय, कोनो जनतब सभमे गलती नहि होय, अहाँ सभ जतेक परफेक्ट जानकारी देब देशकेँ आगू बढ़ेबामे बहुत पैघ सहयोग भेटत। आ तैँ हम देशक नौजवान सभके कहैत छी जे अहाँ सभ अपन परिवारके लोकके बैसा कऽ पूरा फॉर्मके बुझू, पहिने कागज पर फॉर्मके भरि लिअ, कोनो गलती अछि तऽ करेक्ट कऽ लिअ आ फेर टेक्नोलॉजिकली ओकरा डिजिटली ओकरा अपलोड कऽ दिअ। अहाँ देखू एतेक पैघ काज देश कऽ लेत आ देश केर समय आ शक्ति सेहो काज लेल उपयोग आयत। आ तैँ हमर देश केर नौजवानके जनगणनाक एहि काजमे सक्रियतासँ जुड़बा लेल हम आग्रह करै छी। हमर प्रिय देश सेवक, हम लाल किलासँ पंच प्रण केर बात कहने छलहुँ। ई पंच प्रण देशकेँ अपन आत्मगौरव दिस लऽ कऽ आगू बढ़बाक, लक्ष्यकेँ पार करबाक सामर्थ्य केर सङ्ग आगू बढ़बाक एकटा बहुत पैघ सम्बल देलक अछि। हमरा सभकेँ पराधीनताक मानसिकता प्रत्येक पल मिटबैत रहबाक अछि। जय भारत केर सपना नेताजी सुभाष चंद्र बोस देखने छलाह, बाबा साहब अम्बेडकर देखने छलाह, पंडित नेहरू देखने छलाह, सरदार पटेल, भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु देखने छलाह, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी देखने छलाह, भगवान बिरसा मुंडा देखने छलाह, ज्योतिबा फुले देखने छलाह। ओहि सभसँ प्रेरणा लऽ कऽ हमसभ आगू बढ़ी, आउ एहि संकल्पकेँ हमसभ दोहराबी, स्वयंसँ ऊपर राष्ट्र केर हित होय आ कर्तव्य हमर सभक परिचिति होय। हम प्रत्येक देशवासीसँ कहब, समय हमरा सभक अछि, अवसर हमरा सभक अछि, संकल्प हमर अछि, आउ सपना सभकेँ संकल्प बनाबी, संकल्पकेँ सामर्थ्य बनाबी आ सामर्थ्यकेँ सफलतामे बदलि कऽ रही, आउ प्रत्येक डेगकेँ विकास केर डेग बनाबी, डेगसँ डेग मिलाबी, मोनसँ मोन मिलाबी, लक्ष्यसँ जुड़ल रही, एक दीपसँ जरा दीप हजारो, आओ मिलकर विकसित भारत बनाबी। एहि एक भावनाक सङ्ग एहि मंगल पर्व पर अहाँ सभके अनेक अनेक शुभकामना। हमरा सङ्ग बाजू, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे लाल किले पर आयोजित ध्वजारोहण समारोह में भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को किए गए संबोधन का मैथिली अनुवाद। स्वर सहयोग राकेश चंद्र नंदन का था। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत।

मोहम्मद रफ़ी को अभी आप सुन रहे थे फिल्म हकीकत में। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। हमारे कार्यक्रमों को आप सुन सकते हैं न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी।

0: ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में हम सब के लिए यह धरती बनाई थी, पर मोहब्बत के दुश्मनों ने इस पर लकीरें खींच के सरहदें बना दी। मैं जानता हूं वो लोग तुम्हें इस बार नहीं आने देंगे, मगर ये पवन जो तुम्हारे यहां से होकर आई है तुम्हें छू कर आई होगी। मैं इसे सांस बनाकर अपने सीने में भर लूंगा।
1: ये नदिया जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होंठों को भिगो लूंगी।

सोनू निगम और अलका याग्निक को अभी आप सुन रहे थे फिल्म रिफ्यूजी में। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। आप सुन रहे हैं हमारी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रम। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11 बजने को हैं। अब समाचार होंगे क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन हुआ।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
0: श्री मोदी ने इस वर्ष के आयोजन में 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कई अभूतपूर्व संकटों से बाहर निकलने में सफल रहा है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने की दिशा में बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की।
1: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से सप्तधारा की शक्ति के उपयोग का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। विश्व नेताओं और विभिन्न देशों के राजनयिक मिशनों ने आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत को शुभकामनाएं दी। उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार व्यक्त किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह की शुभकामनाओं के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच बहुआयामी तथा सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों पक्ष मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अमृत उद्यान कल से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा, जबकि अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे तक होगा। ये रखरखाव के चलते प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। इंडोनेशिया में आज फ्लोरेस के तट के पास आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 47 हो गई। भूकंप के बाद दर्जनों झटके महसूस किए गए। राहत और

बचाव दल सबसे अधिक प्रभावित इलाकों तक पहुंचने के प्रयास में जुटे हैं। देश के कई हिस्सों में 1 मीटर से कम ऊंचाई की सुनामी लहरें भी दर्ज की गई। अधिकारियों के अनुसार कई प्रभावित इलाकों में अब भी लोगों के इमारतों के भीतर फंसे होने की आशंका है। नीदरलैंड्स के एम्स्टलविन में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के ग्रुप डी के मैच में आज भारत ने वेल्स को 3-1 से हरा दिया। भारत की ओर से कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 जबकि संजय राणा ने 1 गोल किया। हरमनप्रीत को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत अपना अगला मैच 17 अगस्त को इंग्लैंड से खेलेगा। श्रीलंका के साथ गोल में खेले जा रहे भारत के ऐतिहासिक 600वें टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 2 विकेट पर 288 रन बनाए। भारत की ओर से देवदत्त पडिक्कल 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद रहे। श्रीलंका के लिए एकमात्र विकेट प्रभात जयसूर्या ने लिया। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र और उत्तराखंड में कल तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।